0: चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
1: जी,
0: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं, उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
1: जी।
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
1: जी,
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें, और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए। उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
1: जी।
0: अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, दो तिहाई भाग तक ही भरना चाहिए
2: ताकि प्रेशर बने,
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो दो तिहाई से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
1: जी।
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को खराब कर देगा
1: जी,
0: ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
1: जी,
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
1: जी,
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद कर देगा
0: ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें
1: जी।
0: शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है। अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
2: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सके। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
1: जी।
0: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियाँ थी पहले उसी तरीके के हैं उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से

0: अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाई डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 83, अध्याय 7, वर्षा बहार। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, मुकुट धर पांडेय। भाई, इसने तो हंस उड़ा दिए। यहां इस पृष्ठ पर वर्षा से संबंधित एक सुंदर चित्र प्रस्तुत है। चित्र में दो ओर पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी के ऊपर एक बालक और बालिका रंग बिरंगी छतरी लिए नृत्य कर रहे हैं, दूसरी ओर की पहाड़ी के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं जिनसे एक पानी की धार बहती हुई नीचे आ रही है। पहाड़ी के नीचे हरियाली है और वहां कुछ बालक बालिकाएं एक कुत्ते के साथ वर्षा में भीगते हुए आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर नीचे की ओर एक पुरुष और एक महिला छाता लिए चल रहे हैं। चित्र के अगले भाग की ओर एक बालक छाता लिए चल रहा है, वहीं एक दूसरा बालक केले के पत्ते को लिए स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक बालिका और एक पुरुष कपड़े अथवा पॉलीथीन के माध्यम से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए हंसों की कतार जा रही है। भूमि पर एक मेंढक बैठा हुआ है और एक मोर अपने पंखों को फैलाए वर्षा को निहार रहा है। पृष्ठ संख्या 84। कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडेय का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। था प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडेय के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। यहां मुकुटधर पांडेय का एक रेखाचित्र दिया गया है। रेखाचित्र के नीचे उनका जन्म वर्ष 1895 और मृत्यु वर्ष 1989 अंकित है। पृष्ठ संख्या 85। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता, क्रोध और विरोध। दो, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है, पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। तीन, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। चार, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बालक बालिकाएं रंग बिरंगी छतरियां लिए वर्षा का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 86। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। ख, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। यहां एक मोर का चित्र है। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां स्तंभ एक में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ दो में दिए गए हैं। स्तंभ एक की पंक्तियों का स्तंभ दो की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहां एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। स्तंभ एक से संबंधित पंक्तियां हैं। एक, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। दो, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। तीन, तालों में जीव जलचर, अति हैं प्रसन्न होते। चार, फिरते लखो पपीहे, हैं ग्रीष्म ताप खोते। पांच, खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ा रहा है। छः, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। स्तंभ दो से संबंधित पंक्तियां हैं। एक, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। दो, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। तीन, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। चार, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। पांच, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। छः, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? ख, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। यहां दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है? क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक तालाब है और वर्षा का जल उसमें गिर रहा है। तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही हैं और तालाब के किनारे एक पक्षी और एक मेंढक बैठे हैं। पृष्ठ संख्या 87। ग, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, इसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। घ, खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? अणा, कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? ख, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है? संकेत, आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। ग, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीव ग करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे? यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में उड़ते हुए हंसों की एक कतार है। आपकी रचनाएं। क, कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। ख, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। ग, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए, उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों? रिपीट,

रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार वसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इस पृष्ठ पर एक जंगल का चित्र है, घनघोर वर्षा हो रही है, चारों ओर हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं, जगह जगह फूल खिले हुए हैं, बीचों बीच एक तालाब है जिसमें बत्तख तैर रही हैं और एक बगुला खड़ा हुआ है। तालाब के किनारे एक मेंढक और एक पक्षी पत्थर पर हैं। एक ओर एक हिरन इन्हें देख रहा है और एक मेंढक इनकी ओर मुंह कर बैठा है। पृष्ठ संख्या 89, कविता का सौंदर्य। क, यहां कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रही हैं, उन पर घेरा बनाइए। रिक्त स्थान बहार के मन को लुभा रही है। संकेत के लिए कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, बारिश, बरसात, बरखा, वृष्टि। पंक्ति संख्या 2, रिक्त स्थान में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। संकेत शब्द हैं आकाश, गगन, अंबर, व्योम। पंक्ति संख्या 3, बिजली चमक रही है, रिक्त स्थान गरज रहे हैं। शब्द संकेत हैं मेघ, जलधर, घन, जलद। पंक्ति संख्या 4, रिक्त स्थान बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। शब्द संकेत हैं जल, नीर, सलिल, तोए। ख, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जंच रहे हैं और क्यों। विशेषण, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य शब्द है। क, यहां दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक पंक्ति और उसके समक्ष विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। यहां एक तालिका है जिसके 3 स्तंभ हैं। स्तंभ के पहले भाग में पंक्ति, दूसरे में विशेषण और तीसरे भाग में विशेष्य शब्दों के लिए उपयुक्त स्थान दिया गया है। पंक्ति 1, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आपकी सुविधा के लिए विशेषण शब्द दिया गया है अनूठी और विशेष्य के लिए शब्द दिया गया है छटा। पंक्ति संख्या 2, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। अब आप इसके समक्ष विशेषण और विशेष शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। पंक्ति संख्या 3, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब आप समक्ष दिए गए रिक्त स्थानों में विशेषण और विशेष शब्द छांट कर लिखिए। पंक्ति संख्या 4, चलती हवा है ठंडी हिलती हैं डालियां सब। अब आप विशेषण और विशेष शब्द इस पंक्ति से ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक झरने का चित्र है जो वर्षा के जल से और अधिक विस्तार में बह रही है। पृष्ठ संख्या 90, ख, यहां दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। यहां प्रत्येक शब्द के आगे 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक विशेष्य के लिए आपको 2 विशेषण सोचकर लिखने हैं। 1, वर्षा, 2, पानी, 3, बादल, 4, डालियां, 5,

0: गुलाब, ऋतु और शब्द। फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। यहां दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। यहां ऋतुओं से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं धूप, लू, बयार, हिमपात, वृष्टि, पाला, ताप, जाड़ा, झड़ी, ठिठुरन, धुंध, कोहरा, आंधी, उमस, हरियाली, बहार, तपन, जेठ, सावन, रिमझिम, शीतलता, ओस, ठंडक, बादल फटना, कड़ाके की ठंड। अब इन शब्दों से आपके मन में कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, ये आप कल्पना कीजिए और इसी के अनुसार आगे दिए गए ऋतुओं के समक्ष इन शब्दों को लिखिए। संकेत संख्या 1, वसंत ऋतु, सामान्यतः मार्च अप्रैल। अब आप वसंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या 2, ग्रीष्म ऋतु, सामान्यतः मई जून। अब आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या 3, वर्षा ऋतु, सामान्यतः जुलाई अगस्त। अब आप वर्षा ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 91, संकेत संख्या 4, शरद ऋतु, सामान्यतः सितंबर अक्टूबर। अब आप शरद ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 5, हेमंत ऋतु, सामान्यतः नवंबर दिसंबर। अब आप हेमंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 6, शिशिर ऋतु, सामान्यतः जनवरी फरवरी। अब आप शिशिर ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। यहां एक चित्र है जिसमें एक पेड़ का चित्र है। पेड़ के अलग अलग भागों को अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से, इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें अलग अलग ऋतुओं में एक पेड़ के अलग अलग स्वरूपों को दिया गया है। पृष्ठ संख्या 91, पाठ से आगे आपकी बात। क, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ख, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। ग, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं। घ, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। अण, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर और आस पड़ोस से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। यहां इस पृष्ठ पर एक मुर्गी का चित्र है जो वर्षा से बचाने के लिए अपने चूजों को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी है। पृष्ठ संख्या 92, साक्षात्कार। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। क, अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। संकेत, आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं आदि। ख, अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बिल्ली वर्षा के जल के भरने से उसके ऊपर छतरी को उल्टा किए तैर रही है और कुछ गा रही है। वर्षा के दृश्य। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। ख, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देते हैं, क्यों पता कीजिए। ग, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा, आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए। घ, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए अनुभव किया है? संकेत, चींटी, गाड़ियां, बच्चे आदि। वर्षा में ध्वनियां। क, कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं, इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी, अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। ख, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है, आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं। यहां वर्षा की एक बूंद का तबला बजाते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 93, सृजन। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद इस प्रकार है, हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थीं, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब यहाँ दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। आपके अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं जो कि आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्य हैं, इनका उपयोग करते हुए एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। ये संकेत हैं, बारिश के बाद उपवन में सैर, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम। वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने, अब गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। रिपीट, इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 94, आज की पहेली। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है, आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। यहां कुछ पहेलियां हैं और उनके साथ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन पहेलियों को बूझने का प्रयास कीजिए। यहां एक चमकते हुए सूर्य का चित्र है और उसी के साथ पंक्तियां हैं। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर बताइए। यहां इस पृष्ठ पर एक फसल का चित्र है और इसी के साथ पंक्तियां हैं। हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। अब आप इन पंक्तियों के द्वारा इस मौसम का नाम सोचिए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बादल है और उससे बरसती बूंदें हैं। इसके साथ जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर सोचिए। यहां इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उसके साथ ही पहेली है। पत्ता पत्ता गिरता जाए, यहां इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उन फूलों के चित्र के साथ ही पहेली इस प्रकार है। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। तो आप बूझिए ये कौन सी ऋतु है। यही इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं और उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। तो अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से पहेली का उत्तर सोचें। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें ऊन की बनी हुई टोपी और मफलर का चित्र है। उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस ऋतु के नाम को सोचिए। झरोखे से आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी है उसे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। आइए अब पढ़ते हैं इन्हीं की लिखी एक अन्य कविता, ग्रीष्म का अंश। ग्रीष्म, बीते दिवस बसंत के, लगा ज्येष्ठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास, अवनी आतप से लगी जलने सब ही हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल, रवि मयूख के ताप से झुलस गए बन बाग, सूखे सरिता सर तथा नाले कूप तड़ाग, लगी आग पुर ग्राम में चिंता बढ़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे भय सदैव उर्धार। यहां इस पृष्ठ पर एक चमकते हुए सूर्य का चित्र भी है। पृष्ठ संख्या 95, साझी समझ। अब इस कविता पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। खोजबीन के लिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पर अधिक जानकारी के लिए यहां एक YouTube लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है /www.yout.com/wattch?vequal to capital T 6 capital V capital A capital V capital O C capital U B capital Y capital U। आंधी पानी। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https https://www.youtube.co/v=v6DQ(B)E(N)2U8। वसंत। वसंत से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v=_P5z-V8 1 0। ऋतुएं। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v8। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यंकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सुनो।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी दवा या फिर डाई मेथो 8

प्लीज इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आरजे अनु को और ये है हमारा खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। अभी हम बात करेंगे, जी हाँ, वैसे तो जो खेती है वो सिर्फ हल और जो खेत है वहीं तक सीमित नहीं रह गई है, इसमें किसानों की सहायता के लिए बहुत सारे ऐप भी डेवलप किए गए हैं जहाँ से वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे योजनाओं के बारे में हो, चाहे आपको खेती से जुड़ी कोई भी दिक्कतें आ रही हों, आप उन ऐप का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि हमारा विषय है सूचना क्रांति, मोबाइल ऐप का कृषि में उपयोग। इस विषय को लेकर हमारे बीच है डॉक्टर चंदन कुमार पांडा, जो कि वैज्ञानिक हैं प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू मैडम।
2: डॉक्टर साहब, सूचना और एक उपयोगी सूचना, क्या अंतर है, ये क्या होता है?
3: थैंक यू मैडम। एगेन, तो पहले जितना किसान बंधु हमारा FM रेडियो स्टेशन सुन रहे, सबको थैंक यू बोलूँगा, और उसके साथ मैं प्रसार शिक्षा की तरफ से भी आप सबको हार्टफेल ये बताता हूँ। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, जो सूचना और मतलबी सूचना बा जो भी बोले यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होता है, देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जब सूचना आता है, सब सूचना सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्यों? आप देखेंगे तो मोबाइल में जाएंगे तो सोशल मीडिया में जाएंगे तो बहुत तरह का सूचना आता है आपके पास। मान लिया मेडिकल रिलेटेड कुछ सूचना आ गया, इमीडिएटली उस तरह का इन्फॉर्मेशन की आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन वैल्यूलेस हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उसी तरह से कोई किसान के पास, मान लिया हमारा सबौर बा भागलपुर एरिया में किसान है, तो उसके हम दूसरी तरह का कुछ क्रॉप के बारे में, यहाँ का किसान क्या गेहूँ हुआ, मकई हुआ, डिफरेंट टेबल जो वेजिटेबल्स हुआ, उसके बारे में पता करना चाहते हैं, उसके हम ग्रेप्स के बारे में बताएंगे तो उनको क्या इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहिए जो उनका ज़रूरत है, और उसी आधार पर आप भी मैं डिस्कस भी करूँगा मोबाइल ऐप्स में, जिसे डिफरेंट टाइप का मोबाइल से ऐप है, बहुत मोबाइल ऐप्स है, आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का गूगल प्ले स्टोर में जाके एक बार टाइप करेंगे तो मोबाइल ऐप्स इन एग्रीकल्चर अब बहुत तरह का मिल जाएगा। नॉन नेसेसरीली किसान के लिए हर तरह का मोबाइल ऐप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्यों? सब मोबाइल ऐप सब तो एक ही तरह से उसको सपोर्ट नहीं करता है, पर जरूरत को उसको जो जरूरत है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो डिस्कशन में किसान के पास रहता है, जो मोस्टली किस तरह का इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है किसान को, ये सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, क्यों? मोबाइल ऐप्स जब डेवलप किया जा रहा है तो डेवलप इसीलिए किया जा रहा है ना, किसान के जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। तो किसान को किस तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है, मैंने एक स्टडी भी किया था यही बाजू वाला 3-4 गाँव लेके, जो इन्फॉर्मेशन किस तरह का इन्फॉर्मेशन किसान को जरूरत था, मैं उसका रैंकिंग भी किया था। तो रैंकिंग करने के बाद मैंने देखा जो किसान को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जरूरत होता है, बीज, जो सीड हम लोग बोलते हैं, बीज का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग। सबसे बोलते हैं सर बीज अच्छा क्वालिटी बीज मिल जाएगा, बाकी तो हम लोग देख लेंगे सर। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही होता है जो अच्छा क्वालिटी का बीज, इसके बारे में किसान को इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जरूरत होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो तो पौधा तो क्या बोलते हैं, जर्मिनेट हो गया, सीड भी जर्मिनेट कर गया, पौधा भी आ गया, उसके बाद कीड़ा मकोड़े के मतलब इंसेक्ट और डिजीज का अटैक आ जाता है। इसके बारे में किसान को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जरूरत है, क्यों, टाइमली समय के आधार पर जितना कीड़ा मकोड़ा आता है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो फसल का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब हुआ उनका जो एक्सपेक्ट जो यील्ड होता है वो एक्सपेक्ट यील्ड के आधार पर नहीं पहुँच पाएंगे। और दूसरा उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसान लोग, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के मतलब हम लोग बोल सकते हैं जे शुरुआत से लेके, जैसे मतलब किस समय हम बुआई करें और किस समय हम जुताई करें, कब पटाए मतलब इरिगेशन कब डाले, हम खाद किस समय दें, कितना अमाउंट ऑफ खाद देंगे, इस तरह का तरह तरह के इन्फॉर्मेशन का किसान के पास ज़रूरत पड़ता है। और आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत भी है ना, किसान को हम लोग कैटेगरी करते हैं मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, मतलब उसका लैंड कितना अमाउंट ऑफ लैंड है उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ कैटेगरी है, रेगुलेशन है उसके, वो किसान का भी इन्फॉर्मेशन का भी रिक्वायरमेंट ना हम ये स्टडी करके देखे हैं, जो वो भी चेंज हो जाता है उसका लैंड होल्डिंग के आधार पर। और खरपतवार मतलब वीड मैनेजमेंट के बारे में किसान को भी बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है
2: जी। और पहले किस प्रकार की सूचना पहुंचाई जाती थी किसानों तक?
3: ओके हाँ, पहला देखिए इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करने का जो तरीका था मोस्टली क्या होता था, अभी भी है मतलब फार्मर टू फार्मर, एक कोई गांव में अच्छा किसान है बहुत दिन से खेती के वगैरह कर रहा है, उनके इस क्रॉप के कल्टीवेशन व खेती के बारे में ज़्यादा कुछ पता है, वो तो क्या करते थे, वो एक्सपीरियंस जो हो जाता है और उनके साथ थोड़ा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व साइंटिस्ट बोलिए उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत रिश्ता बना रहते थे, रेगुलर आना जाना लगा रहते थे, वो आने जाने के अंदर उनका भी नॉलेज ग्रेन हो जाता था, एक्सपीरियंस भी बढ़ता था। वो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर, वो हो गया गाँव का प्रोग्रेसिव फार्मर। तो गाँव का जितना भी प्रोग्रेसिव फार्मर होता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पहले भी प्ले करता था, अभी भी वो लोग वो इम्पोर्टेंट रोल आपका किस खेती में प्ले कर रहा है। ये छोड़ के भी हम लोगों का सिस्टम में जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होता है, किसान सलाहकार होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, ये सबसे भी किसान को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी किए है तो उसमें भी देखा है एग्री इनपुट डीलर्स, इसका मतलब जहाँ से किसान लोग खाद दबा वगैरह जो भी लेते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। क्यों होता है, देखिए उनके पास वो लोग जब दुकान मनाते हैं या दुकान चलाते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड बोलिए जो भी है वो सब रहता है, और किसान को भी वो लोग एडवाइस देते हैं, वो लोग भी ट्रेंड होता है। हमारा यूनिवर्सिटी में भी 15 दिन का एक ट्रेनिंग भी चलता है उन लोगों के लिए, फर्टिलाइजर डीलर के लिए है, तो उसे फर्टिलाइजर तो नहीं है उसके साथ वो लोग कुछ दबाव वगैरह भी रखते हैं, तो उस आधार पर उन लोगों के पास भी थोड़ा अच्छा सा नॉलेज हो जाता है और वो लोग कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं और कंपनी वाले भी उन लोगों को रेगुलरली टाइम टू टाइम उन लोगों को अपडेट भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये सब अपना जो कन्वेंशनल जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है मतलब जहाँ से किसान को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो है वहाँ से वो मिल जाता है। वो छोड़ के हमारा पुराना जो है, अब हम लोग रेडियो FM बोल रहे हैं लेकिन रेडियो तो बहुत पुराना समय से है, जब से हमारा क्या बोलते हैं सोवियत क्रांति जब हुआ था, हाई यील्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तब से ही वो क्या बोलते हैं जब शाम के समय में किसान के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता है रेडियो, गवर्नमेंट का क्या सोच है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है, मान लिया गेहूं का खेती हो रहा है उस समय के आधार पर किस तरह का कीड़ा मकोड़ा आ सकते हैं उसके बारे में वो लोग भी डिस्कस भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये टोटल एक सिस्टम है जो पहले था अभी भी है, लेकिन समय के आधार पर आप देखिए सोशल मीडिया बोलिए, आपको ये भी पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये भी है किसान हेल्पलाइन है, वहाँ से भी किसान लोग वहाँ पे भी किसान लोग फ़ोन लगाते हैं व फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और अभी के समय में जो ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन जो किसान लोगों को पहले मिलता था व लेते थे अभी भी ले रहा है, लेकिन नया नया कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये लोग मांग रहे हैं, जैसे आप मान लिया ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कुछ किसान बोलते हैं सर अब बताइए ना सर कहाँ से ड्रोन खरीदेंगे, कितना प्राइस होगा, उसको कैसे यूज किया जाएगा, और फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में वो पूछते हैं। और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट अभी एरिया हो रहा है, देखिए लेबर जो मार्केट है ना थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर में ज़्यादा लेबर शिफ्ट हो रहा है, तो लेबर एक इशू हो गया। जो जैसे जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय ज़्यादा दिक्कत है, हार्वेस्टर जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ लेबर का भी क्राइसिस होता है, इस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और किस तरह के इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट इंफॉर्मेशन तो है, मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब जैसे मान लिया कोई एक फसल का भागलपुर यहाँ पर एक प्राइस होता है, पटना में भी एक प्राइस होता है, तो थोड़ा गैप हो जाता है। कोई कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे भागलपुर में 5 रुपया कम, पटना में 10 रुपया मान लिया ज़्यादा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसान के पास पहुँच जाएगा, तो उसमें भी ज़्यादा भाव मिल जाता है और उनको भी उस तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है और ये भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है
2: जी। अगला सवाल ये है सर कि इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होगा किसान भाइयों को, क्या कुछ प्रोसेस है इसके बारे में बताइए।
3: हाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हो ही गया है उसके आधार पर आप मोबाइल ऐप्स आ गया है, मोबाइल ऐप्स आपका पहुंच गया है। मोबाइल ऐप्स मतलब एक एंड्रॉयड जो फोन होता है, स्मार्टफोन बोलते हैं, दो तरह का, एक आईओएस सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, दूसरा होता है एंड्रॉयड, मोस्टली आप देखेंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में चलता है। और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर वही मोबाइल, अभी देखिए जो स्मार्टफोन हम लोग बोलते हैं, इस स्मार्टफोन के कारण इन्फॉर्मेशन ठीक से आप देंगे तो हम लोग एक टेक्निकल टर्म फिंगरप्रिंट बोलते हैं, फिंगर टिप बोलते हैं, तो आपका सामने ऑलवेज 24/7 मोड में कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मोबाइल ऐप्स के थ्रू से। नहीं अभी जो बात होता है, मोबाइल ऐप्स है क्या और ये कैसे किसान को हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे ना। मोबाइल ऐप्स एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू से कोई भी किसान क्रॉप का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसका क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब उसका जो बीमारी वगैरह होता है, जो कीड़ा मकोड़े आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और भी कुछ इशू जैसे मार्केटिंग रिलेटेड जो इशू है वो भी यहाँ से ये लोग ले सकते हैं
2: जी। अब इसके बाद एक सवाल और कि खेती में कौन कौन से मोबाइल ऐप्स जो अभी हैं उपलब्ध हैं जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होंगे।
3: अच्छा देखिए, अब देखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मोबाइल से लिखेंगे तो बहुत मोबाइल से आपको मिल जाएगा, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह वो लोग भी बना रहे हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल भी बना रहे हैं, तो कुछ मोबाइल ऐप्स आपको फ्री में मिल जाता है, कोई मोबाइल सब पेड होता है, लेकिन इस मोबाइल ऐप को हम कैटेगरी करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कुछ होता है क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड, दूसरा होता है मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा होता है क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, और भी होता है प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और फाइनली वो हम लोग बोल सके सीड रिलेटेड। इसका मतलब यही हो गया, आप जितना भी मोबाइल ऐप है उसको कैटेगरी कर दो ब्रॉडली, हम लोग 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक हो गया क्रॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया फिर रिपीट कर रहा हूँ मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा हो गया क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, चौथा हो गया प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और पांचवा हो गया सीड रिलेटेड, मतलब कहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी सीड मिल जाएगा ये आपको। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हम छोटा छोटा करके इसके बारे में बताए, क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड इसमें क्या किस तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे मान लिया आपको सोइंग कब करना चाहिए, सीड रेट आपको कितना देना चाहिए, और कब आपको क्रॉप के मैच्योरिटी के बारे में बताएगा, इरिगेशन कब देना मतलब आपको देना चाहिए, इस रिलेटेड छोटा छोटा जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसमें ज़्यादा रहता है। और क्रॉप प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो मोबाइल ऐप्स होता है उसमें देखिए क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड ज़्यादा नहीं रहता है, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब आप कीड़ा मकोड़ा जो लगेगा, जो जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा, मान लिया मकई का बा गेहूं का फसल में किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया, मतलब कीड़ा का अटैक हो गया, उस समय किसान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्यों वो टाइम नहीं देता है, मतलब जब कीड़ा का अटैक हो जाता है या कोई बीमारी आ जाता है तो किसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। कुछ कुछ ऐसा होता है, मान लिया आपको जैसे बताया था मेज के लिए फॉल आर्मी वार्म, ये बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इंसेक्ट के आधार पर काम करता है, तो ये फॉल आर्मी वार्म को आप 2-3 दिन उसका क्या बोलते हैं मोस्टली जो सीडलिंग स्टेज में रहता है या छोटा जब रहता है पौधा, उस समय टाइमली उसको मैनेज आप नहीं किए हो तो आपका क्रॉप को वो टोटली डैमेज कर देगा। तो किसान को उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम वो सिम्टम क्या है, किस तरह से दबा दे, मतलब पेस्टिसाइड कैसे अप्लाई करे, किस समय अप्लाई करे, शाम में करे ना सुबह करे, और करने के समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्यों ये भी सब इशू को ये प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो एप्स होता है, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का ई नीरोग आप लोगों को पता होगा, वो इस रिलेटेड डिस्कशन करता है। और मार्केटिंग रिलेटेड जो क्या होता है, आपको पता होगा गवर्नमेंट का ई नेम एक प्रोग्राम भी है, उसके आधार पर वो जो जितना भी मार्केट को कनेक्ट करके रखते हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्केट है ऑल ओवर इंडिया का, मेजर जो क्रॉप होता है बा वेजिटेबल होता है उसका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है बा कैसा प्राइस रहता है पता चलता है। आप बोलेंगे सर इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा किसान को जरूर होगा, वो बार्गेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हम जितने भी बोले, अभी भी हमारा सिस्टम में एग्रीकल्चर सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम में मिडिलमैन सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं मेजर रोल प्ले करता है। तो किसान को जब पता चल जाएगा, जैसे ठीक है दिल्ली का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, पटना का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, कलकत्ता में ऐसा चल रहा है, तो किसान क्या मिडिलमैन के साथ बार्गेन करके वो थोड़ा प्राइस भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग रिलेटेड ऐप्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। और मैंने ये भी बताया था जो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ ऐसा भी ऐप्स है जिस ऐप्स के थ्रू से किसान भी चाहे तो अपना सामान वगैरह थोड़ा लार्ज क्वांटिटी होना चाहे वो भी बेच भी सकते हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस सपोर्ट करते हैं, और कुछ कुछ कंपनी भी आगे बढ़ गए हैं वो क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके किसान को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नेचुरली आप लोगों के मन में आएगा, वो क्वेश्चन यही है ये सर मोबाइल ऐप्स तो है, मोबाइल ऐप्स कैसे हम सर्च करें और कैसे मोबाइल ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल करें, ये क्वेश्चन जरूर आपके पास आएगा। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत को पता है लेकिन फिर भी मैं ये भी मालूम करना हम लोग को होना चाहिए जी। कुछ कुछ किसान मान लिया इस रेडियो टॉक सुनने के बाद उसका मन में भी आ सकता है नहीं सर इन लोग जब बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग जब बोल रहे हैं यार ये माने मोबाइल ऐप्स हमारा काम में आ सकता है, तो कैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ बता देता हूँ। पहले आपको स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक सर्च बॉक्स दिखाएगा, तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मान लिया हमारा यूनिवर्सिटी का जो मोबाइल ऐप है ई नीरोग, बा आप इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा एक ऐप चलता है प्लांटिक्स, मान लिया आप टर्म को आपको ये करना पड़ेगा क्या बोलते हैं टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के बाद क्या होता है वो सर्च जो एक क्या बोलते हैं एक ग्लास की तरह सर्च को सिम्बल कुछ देता है उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने उस रिलेटेड मोस्टली मान लिया हमारा ई नीरोग होगा तो ई नीरोग का ऐप्स का आइकॉन आपके पास आ जाएगा, और उसमें फाइल कितना एमबी का होगा नहीं होगा वो भी उसमें लिखा रहता है, आप देख लीजिए उतना ज़्यादा मान लिया किसी का 10 MB हो सकता है, किसी का 15 MB हो सकता है, 20 MB हो सकता है, आप आपका मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी का आधार सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल में जाइए। तो इंस्टॉल जब कर देंगे थोड़ा टाइम लेगा सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हुए जो भी है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के पहले अभी जो सिस्टम होता है सिक्योरिटी चेक में जाता है, तो सिक्योरिटी चेक करके आपको भी दिखा देगा इस ऐप्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधा आपको वार्न कर देगा ये ऐप्स का सिक्योरिटी रिलेटेड सम इशू है। आप देखने के बाद कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हैं ये कर लीजिए मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा सीधा ही ओपन करके आएगा OPEN, तो ओपन आप क्लिक करेंगे तो जैसे प्लांटिक्स जो है अभी देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, सर हम इंग्लिश में तो हमको डील नहीं कर पाएंगे, बात सही है, उसके लिए भी अभी का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ लोकल वर्नाकुलर भी आ सकता है, मान लिया आपको हिंदी की जरूरत है ठीक है लैंग्वेज चूज कर लीजिए, इंग्लिश की जगह आप हिंदी मराठी गुजराती इंग्लिश बंगाली बहुत तरह का लैंग्वेज उसमें ऑप्शन रहता है, आप हिंदी चूज करना चाहते हैं सीधा हिंदी को चूज कीजिए, और चूज करने के बाद वहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, मतलब आपके ऐप्स के क्या बेनिफिट है आप ऐप्स को कैसे ऑपरेट करोगे इस तरह का दिया जाता है, और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे बहुत तरह का वो आपका ये मांगता है एक्सेप्टेंस मांगता है, जैसे वो आपका लोकेशन भी ट्रैक करने के लिए परमिशन मांगता है, आप देंगे तो होगा, वो आपका मोबाइल का कैमरा का भी परमिशन मांग सकता है, जैसे आपका मोबाइल कैमरा यूज कर सक परमिशन देंगे कि नहीं देंगे वो भी मांगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट टाइप कोई कोई मोबाइल में ऐप्स में ऐसा भी हो सकता है आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे और मतलब आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा उसके बाद एक OTP आएगा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इस तरह से आपको कॉम्प्लीट हो जाएगा। तो उसके आधार पर आपका जो मोबाइल ऐप्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा, होने के बाद आपको वो मोबाइल ऐप्स को यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर किस तरह का मोबाइल है आपसे, पहले मैंने बता दिया आप आपके पास पेन और पेपर है तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ई नीरोग एक मोबाइल ऐप्स है, पर्टिकुलरली हमारे यूनिवर्सिटी का ये मोबाइल ऐप्स है, ये प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्ट कैटाग हो डिजीज का प्रॉब्लम हो इसके बारे में। दूसरा एक ऐप्स है लिख लीजिए एग्री ऐप्स है, AGRI एग्री APP ऐप। इसके बाद एक है इपको फर्टिलाइजर के बारे में आप सुने हैं, इपको एक बड़ा कंपनी है, इपको किसान IFFCOKISAN इपको किसान। इसके बाद आपको मिल जाएगा पूसा कृषि PUSA पूसा KRISHI पूसा कृषि। इसके बाद आपको ऐप्स मिल जाएगा खेती KHETI खेती। इसके बाद आपको मिल जाएगा कृषि जागरण KRISHI JAGRAN कृषि जागरण। इसके बाद आपको एक ऐप्स मिलेगा BIJAK ऐप्स बीजक, ये मोस्टली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस। इसके बाद आपको मिल जाएगा खेती बाड़ी KHETI BADI, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ KHETI BADI खेती बाड़ी। ये मोस्टली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ना उन लोगों के लिए ये इस ऐप्स के थ्रू से आप मार्केटिंग करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं इसके थ्रू से। ये छोड़ के एग्री मार्केट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 से एक ऐप्स अभी भी काम कर रहा है, इसमें वेदर डाटा क्रॉप रिलेटेड डाटा वो पिक्चर बेस है, देख सकते किसान सुविधा बोलते हैं KISAN SUVIDH सुविधा है। ये छोड़ के आपको और भी मोबाइल्स है जैसे है FARM BEE, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स है, आप थोड़ा ऐप्स के बारे में पढ़ भी लीजिए और YouTube वगैरह में जाइए, वहाँ भी जाके भी आप ऐप्स के बारे में थोड़े देख भी सकते हैं वो कौन सा ऐप किस कितनी आपका काम में आएगा, क्यों बहुत तरह का ऐप्स है। देखिए हर तरह का ऐप्स आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वही ऐप्स को यूज़ कीजिए। पहली बार बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी के लिए, आप इंस्टॉल करने के समय सिक्योरिटी एक बार चेक देखिए क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ये मोबाइल ऐप्स को आपका मोबाइल में कंटिन्यू, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत तरह का फ्रॉडुलेंस रिलेटेड इशू आता है, कुछ लिंक वगैरह भेज देते, उसके बारे में भी केयरफुल आप लोग रहिए, ये भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। तो फाइनली यही बताएंगे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसका अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी है, आप कैसे इसको यूज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों स्मार्टफोन भी अवेलेबल है और इंटरनेट का नेटवर्क भी अभी अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द गांव में तो पहुंच ही गया इंटरनेट का कनेक्शन। सो इट इज़ नाउ अप टू यू किसान बंधु, फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और नया साल आप लोगों के लिए अच्छा भी हो, ये भी हम ऊपरवाला से क्या प्रार्थना भी करते हैं, और आप लोग यूज कीजिए और हमारा यूनिवर्सिटी का जो 90.8 FM ग्रीन जो इसको भी सुनिए और आप लोग भी बेनिफिट भी रहिए। थैंक यू
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों तो आप इन ऐप का ज़रूर लाभ उठाएं, आपके लिए ही ये ऐप डेवलप किए जाते हैं, इससे आपको बहुत बहुत सारे फायदे होंगे। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम, नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत है लेकिन सही जानकारी अभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। आज हम बात करने वाले हैं TB रोग के बारे में, यानी क्षय रोग के बारे में। आज हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं, किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं TB मुक्त भारत, इस बारे में हम बातें करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, पास के ना एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश भाई जी को कई हफ्तों से खांसी थी। पहले उन्होंने सोचा मौसम बदल गया होगा, फिर पड़ोसियों ने कहा कि पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, बुखार आने लगा, रात में पसीना आने लगा, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने जांच ही नहीं करवाई। जब हालात ज्यादा बिगड़ गई तब आशा दीदी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तब पता चला कि TB है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई? इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मुफ्त मिली, पोषण सहायता मिली और आज रमेश पूरी तरह स्वस्थ है। यानी सच यही है कि टीबी लाइलाज नहीं है बल्कि पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अपनी प्रिय टीकन देवी। स्वागत है आपका टीकन देवी जी।
5: धन्यवाद आरजी जी। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, टीबी से डरने की नहीं समझने की जरूरत है। जी हाँ, टीबी को समझने की जरूरत है। टीबी को हम समझेंगे तभी उससे हम लड़ पाएंगे। श्रोताओं, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलती है, और जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, टीबी का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ये पूरी तरह मुफ्त है। और भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से टीबी को पूरी तरीके से देश से खत्म कर दिया जा सके।
4: टीकन देवी जी, आपने बताया कि देश में टीबी खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, क्या कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं?
5: बिल्कुल आरजी जी, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साफ और समयबद्ध लक्ष्य तय किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी हो सके टीबी मरीजों की पहचान की जाए, क्योंकि अक्सर लोग महीनों तक खांसी को सामान्य समझते रहते हैं, जांच नहीं करवाते हैं, उन्हें लगता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम के बदलने की वजह से हो गया है या फिर किसी भी वजह से वो जांच नहीं करवाते, जिससे टीबी जैसी बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। इसलिए अब सरकार की कोशिश ये है कि हर संदिग्ध व्यक्ति तक जांच की सुविधा पहुंचे और बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान हो। और दूसरा लक्ष्य है टीबी से होने वाली मौतों को कम करना। देखिए, जब मरीज समय पर इलाज शुरू करता है और दवाइयां नियमित लेता है तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज देर करता है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मरीज का इलाज बीच में ना छूटे। इसलिए मरीजों के लिए जरूरी होता है कि वो नियमित और पूरी दवाई ले। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा है हमारे भारत सरकार ने कि समुदाय में नए टीबी मामले कम से कम मिले या बिल्कुल खत्म हो जाए। यानी सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। श्रोताओं, दरअसल ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। जैसा अभियान का संदेश भी कहता है, टुगेदर वी कैन स्टॉप टीवी, योर वॉइस, योर अवेयरनेस एंड योर एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर टीबी मुक्त भारत। यानी हम सबकी आवाज और भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत संभव है।
4: बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब सरकार अपना काम कर रही है लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी साथ आएगा। टीकन देवी जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टीबी के लक्षण पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य खांसी या कमजोरी है। ऐसे में लोग कैसे समझें कि जांच करवाने का समय आ गया है?
5: आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है और कुछ मामलों में खून भी दिखाई दे सकता है, और ये गंभीर संकेत होते हैं अगर आपको बलगम के साथ खून दिखाई दे। इसके अलावा अगर बार बार बुखार आता रहे, खासकर शाम या रात के समय, और रात में अधिक पसीना आए, तो ये भी टीबी का लक्षण हो सकता है। कई मरीजों में धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, भूख कम लगती है और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है, और कुछ लोग सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ भी महसूस करते हैं। इसलिए रोजमर्रा के काम करते हुए जल्दी थक जाना भी एक संकेत हो सकता है आरजे जी। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो जांच करवाने में देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी।
4: यानी शरीर संकेत देता है, बस हमें समझने की जरूरत होती है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। एक सवाल और, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं?
5: देखिए, टीबी किसी को भी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को पहले कभी टीबी हो चुकी है उनमें दोबारा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरह अगर घर में किसी सदस्य को टीबी है तो बाकी परिवार के लोगों की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे लंबे समय तक एक मरीज के संपर्क में रहते हैं तो हो सकता है कि उनमें भी संक्रमण फैल जाए। और एक और बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कुपोषण और टीबी का क्या रिश्ता होगा। है, जिन लोगों का शरीर कमजोर होता है या जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम

0: शराब का सेवन करते हैं उन सभी की नियमित स्क्रीनिंग बहुत जरूरी मानी जाती है ताकि बीमारी समय रहते पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके।
1: मतलब जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने और समय समय पर जांच करवाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, और यही जागरूकता टीबी मुक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
1: अब तक हमने लक्षणों और जोखिम वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है जल्दी जांच और जल्दी इलाज। आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
0: देखिए आरजे जी, टीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति बहुत सरल है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पहला कदम हमें क्या उठाना है? बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना है, और जब किसी व्यक्ति की समय पर जांच हो जाती है तो संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचानना, दूसरा कदम है तुरंत इलाज शुरू करना। कई बार लोग जांच तो करवा लेते हैं लेकिन दवा शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं या फिर वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप दवा शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज स्वस्थ होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा इलाज पूरा करना। टीबी की दवाइयां बीच में छोड़ देने से बीमारी वापस आ सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आप टीबी का इलाज बीच में छोड़ेंगे तो उसके बाद मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा हो जाता है आरजे बाबू। इसलिए ये तीन कदम बहुत जरूरी होते हैं। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचान लीजिए, दूसरा कदम कि तुरंत इलाज शुरू कीजिए, और इलाज शुरू करने के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम इलाज पूरा कीजिए। डरना नहीं है, इलाज करवाना है, नियमित और पूरी दवाई खानी है और पौष्टिक आहार लेना है। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, खर्चा बहुत होगा और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है टीबी को लेकर। इसलिए अब सरकार सिर्फ इंतजार नहीं कर रही है कि टीबी मरीज अस्पताल आएंगे, बल्कि अस्पतालों में, विशेष ओपीडी में और हाई रिस्क समूहों में स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि बीमारी की पहचान खुद लोगों तक पहुँच कर की जा सके। इससे क्या होगा कि बीमारी की पहचान हो जाएगी, उनका इलाज जल्दी शुरू होगा, और उनका इलाज जल्दी शुरू होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इंतजार नहीं कर रही बल्कि लोगों तक खुद पहुंच रही है। ये सच में बहुत अच्छी पहल है। टीकन देवी जी, कई श्रोता ये सोचते हैं कि टीबी की जांच और इलाज बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग डर जाते हैं और जांच कराने में देर करते हैं। क्या सच में इलाज इतना मुश्किल और खर्चीला है?
0: नहीं आरजे जी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मैं आज सभी श्रोताओं से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, टीबी की जांच और इलाज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में बलगम की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है, यानी कि उनके जांच में टीबी निकलता है, तो पूरी दवाइयां भी सरकार के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे बहुत खर्च होंगे, आपको जांच से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा।
1: मतलब मरीज को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं?
0: बिल्कुल नहीं, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर ना करें। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की चिंता की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए, और ये बात हर किसी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आप, अगर आपको लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाइए जो मुफ्त होगा, और अगर लक्षण दिखने के बाद, जांच करवाने के बाद टीबी निकलता है तो उसके बाद आगे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। डरिए मत, इलाज करवाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे।
1: लेकिन लोग अक्सर दवा कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टीबी का इलाज सामान्य बुखार या खांसी जैसा नहीं होता है, इसका इलाज कई महीनों तक लगातार चलता है। और सबसे जरूरी बात, दवा नियमित और पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो बीमारी दोबारा और बहुत गंभीर रूप में लौट सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद क्या होगा कि दवाइयां कम असर करने लगेगी और उसके बाद टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, और याद रखें कि पूरा इलाज ही टीबी को पूरी तरह से ठीक करता है।
1: टीकन देवी जी, आपने पहले बताया था कि सरकार सक्रिय रूप से लोगों की जांच भी करा रही है, ये जांच कहाँ कहाँ की जा रही है?
0: बहुत अच्छा सवाल। अब टीबी की पहचान सिर्फ अस्पताल वाले मरीजों तक सीमित नहीं है, सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सक्रिय खोज अभियान चला रही है और अब जांच कई जगहों पर की जा रही है, जैसे कि एचआईवी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग

0: होती है, एनसीडी क्लिनिक में होती है जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियों के मरीज आते हैं, डायलिसिस केंद्र में भी मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर उपचार केंद्र में, वहीं तंबाकू निषेध क्लिनिक में भी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है क्योंकि इस समूह को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अस्पताल के ओपीडी में या फिर आईपीडी में दोनों ही जगहों पर, दोनों ही विभागों में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय खोज अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य साफ है, बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके ताकि संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके।
1: यानी अब सरकार मरीज के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद खोज रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, यही रणनीति टीबी खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जल्दी पहचान और तुरंत इलाज।
1: टीकन देवी जी, क्या इन प्रयासों से भारत में सच में कोई बदलाव दिख रहा है?
0: जी हाँ, ये बहुत उत्साहजनक खबर है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच हमने टीबी के रोकथाम में बहुत सफलता पाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में टीबी के मामलों में लगभग 18% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सबके प्रयासों का ही फल है कि हम वैश्विक औसत से भी तेज प्रगति कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जब सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव बहुत संभव हो जाता है।
1: ये सच में उम्मीद देने वाली बात है, यानी अगर लोग समय पर जांच और पूरा इलाज करवाएं तो टीबी को खत्म किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं से फिर कहना चाहूंगी, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, जांच और इलाज मुफ्त है, दवा नियमित लें और पूरा कोर्स करें और लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर बिल्कुल ना करें।
1: दोस्तों, याद रखिए, जानकारी ही बचाव है और समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। एक सवाल जो अक्सर श्रोता पूछते हैं, इलाज तो ठीक है लेकिन टीबी मरीज कमजोर हो जाता है, ऐसे में सरकार या समाज उनकी क्या मदद कर सकता है?
0: बहुत जरूरी सवाल है ये। टीबी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही पोषण से भी ठीक होती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है तभी दवाइयां असर करती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होता है कि टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो पौष्टिक भोजन ले सके और इलाज के दौरान जो कमजोरी होती है उससे बच सके। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल भी चल रही है जिसमें समाज के लोग, संस्थाएं और समुदाय आगे आकर मरीजों को पोषण, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी मरीजों को आप किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप उन्हें हौसला दे सकते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज पूरा कीजिए और जो भी जरूरी सहायता आपसे संभव हो सके वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा समाज मरीज का सहारा बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान अकेला महसूस ना करे।
1: वाह, मतलब इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के सहयोग से पूरा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत सिर्फ सरकार अकेले नहीं बना सकती है ना, इसमें समाज की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जन भागीदारी का मतलब होता है हर व्यक्ति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सबसे पहले लोगों तक टीबी के लक्षणों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है और जब जानकारी होगी तभी लोग जांच के लिए आगे आएंगे। दूसरा, हमें लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। कई लोग डर या शर्म की वजह से जांच नहीं करवाते और ये सोच बदलनी होगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। आप जांच करवाइए और इलाज करवाइए। और लोग इसलिए भी डरते हैं, शर्माते हैं कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो, तो तीसरी सबसे जरूरी बात यही है कि भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। टीबी मरीज को अलग या कमजोर समझना बहुत गलत है बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मरीज को पूरा इलाज करवाने में मदद करना चाहिए। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि मरीज को पूरा इलाज के लिए आप प्रोत्साहित करें। और सबसे अहम बात कि मरीज को पोषण और मानसिक सहयोग देना होता है। जब समाज साथ खड़ा होता है तो मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि टीबी पर खुलकर बात करें, इसे छुपाएं नहीं।
1: सही कहा आपने, बीमारी छुपाने से नहीं समझने और मिलकर लड़ने से खत्म होती है। टीकन देवी जी, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीबी छूने से फैलती है या मरीज के पास बैठने से बीमारी हो जाती है। क्या ये सच है?
0: नहीं, ये पूरी तरह गलत धारणा है आरजे बाबू। टीबी साथ बैठने से नहीं फैलती, ना ही खाना साझा करने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से तब फैलती है जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है या छींकता है और हवा में मौजूद जीवाणु उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी सावधानियां बहुत ही सरल है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें और घर या कमरे में ताजी हवा आने दें। जब सही जानकारी होगी तब डर और गलत फहमियां भी खत्म होगी आरजे।
1: यानी डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तीकन देवी जी, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुद को टीबी से कैसे बचा सकता है?
0: देखिए, रोकथाम के तरीके बहुत आसान हैं और रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले खांसी शिष्टाचार, यानी कि जब भी खांसी आए तो अपने मुंह को ढकें, छींके तो भी अपने नाक को ढककर छींके। इससे क्या होगा कि संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है कि पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर लड़ पाता है ना। और तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और घर में अच्छा वेंटिलेशन रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। आप बंद कमरे में रहेंगे तो जो भी संक्रमण होगा वो कमरे में ही रहेगा, लेकिन जब साफ हवा कमरे के अंदर आएगी तो आप संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। और जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जोखिम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए।
1: छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, यही संदेश है।
0: और अंत में मैं सभी श्रोताओं से दिल से कहना चाहूंगी कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी जांच और इलाज दोनों मुफ्त है। बस सबसे जरूरी है कि पूरा इलाज करिए और मरीजों का साथ दीजिए, भेदभाव नहीं करिए। और याद रखिए, अभियान का संदेश यही है, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय इंडिया, पावर्ड बाय जन भागीदारी। यानी कि जन भागीदारी के साथ ही हम टीबी को खत्म कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता और आपका सहयोग ही बनाएगा टीबी मुक्त भारत। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी टीबी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। और अब समय है विदा लेने का, पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
3: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली दा।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं ईश्वर चंद्र और आपके समक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार जो कि SMS हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, इसका विषय है प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त कृषि का एक विकल्प। हम विकल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खेती को इतनी ज़्यादा रासायनिक युक्त कर दिया है कि अब हम उस रासायनिक मुक्त की तरफ हम बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों ज़रूरी है और आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान द्वारा समर्थित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, जो इसे टिकाऊ और व्यवहार्य पद्धति बनाती है। इसे आज की भाषा में परिभाषित करें तो प्राकृतिक खेती एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है तथा जिससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। अगर दूसरी सरल भाषा में से बात किया जाए तो प्राकृतिक खेती एक ऐसे अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणाली का संरक्षण और पोषण करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों के उपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि प्राकृतिक खेती क्यों करें, प्राकृतिक खेती करने के लिए कई कारण हैं, जैसे कि खाद्य असुरक्षा, भोजन और पानी में जो कीटनाशकों और उर्वरकों का अवशेषों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं जैसी विभिन्न समस्याओं से समाधान प्रदान करती है।

0: प्राकृतिक खेती से रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। प्राकृतिक खेती उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखती है जिससे ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।
1: जी, तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती ये आपके लिए आज के समय बेहद ज़रूरी है। अब हम थोड़ा अपने पीछे चलें तो इस रासायनिक खेती की शुरुआत बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, बल्कि जो जिस जनरेशन के साथ हम लोग हैं उसे पिछली पीढ़ी जो है, पिछली जनरेशन ने इसे शुरू किया था और संभवतः इस वजह से किया था ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता ली जाए। लेकिन इस वर्ष या पिछले वर्ष भारत सरकार का जो एक लक्ष्य रहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब हमें बढ़ना है, अब हमें थोड़ा गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीनी है। जब हमें चुनौतियां थीं कि हमें पेट भरना है, अधिक से अधिक खाद्यान्न संकट को पूर्ति करनी है, गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, तब तक तो ये रासायनिक खेती ने हमें बहुत सहायता भी किया है, हम एक बारगी इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव सामने आया है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगली पीढ़ी को हम क्या हस्तांतरित करेंगे, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच क्या समानताएं समानताएं हैं, क्योंकि हम जैविक खेती के बारे में हम बहुत सारे जैविक उत्पाद देखते हैं और मार्केट में थोड़ी सी महंगी कीमत पे या कई बार ज़्यादा कीमत पे जैविक उत्पाद हमें आसानी से मिल जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर के ग्रॉसरी मार्केट तक में आपको हर तरह के जैविक उत्पाद की भरमार रहती है। तो अब ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या फर्क है, जरा हमारे जो श्रोता भाई हैं, श्रोता बहने हैं, उनके लिए जरिए बताएं।
0: सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त खेती का एक प्रकार का तरीका है। दोनों प्रणाली में किसानों को खेती के साथ साथ सभी कृषि पद्धतियों में किसी भी रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करने से प्रबंधित करती है। इसमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों तरीके में किसानों को देसी नस्ल का बीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सब्जी, अनाज और दालों का बीज का। और लास्ट यह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के जो तरीके होते हैं वो जैव रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण तरीका को बढ़ावा देते हैं। अब जब जैविक खेती था तो प्राकृतिक खेती लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा कि किसान भाइयों आप लोग जानते हैं कि जैविक खेती में जो इनपुट लगते थे जैसे वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, यह सब ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। अब उसी चीज़ को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती का विषय लाया गया है, जिसमें कम मात्रा में गोबर, गोमूत्र, इस सब का उपयोग करके हम उसको प्राकृतिक खेती में अपना सकते हैं।
1: तो इस तरीके से हमने जाना कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या समानताएं हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में क्या क्या अंतर हैं, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जैविक खेती में हैं और प्राकृतिक खेती में नहीं है, जो प्राकृतिक खेती के जो उद्देश्य हैं वो जैविक खेती से थोड़े अलग हैं। तो इसके अंतर जो हैं डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: जैसा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में कोई भी बाहरी उर्वरक मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है और न ही पौधों को दिया जाता है, जबकि जैविक खेती में जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और इसमें बाहरी स्रोतों से खेत में मिलाया जाता है। दूसरी बात, प्राकृतिक खेतों में सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मिट्टी की सतह पर ही प्रोत्साहित किया जाता है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, जबकि जैविक खेती के लिए अभी भी बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे जुताई, खाद मिश्रण, निराई गुड़ाई आदि की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, प्राकृतिक खेती में न तो जुताई की जा सकती है और न मिट्टी को चुकाया जा सकता है और न ही उर्वरक दिया जाता है और न ही इसमें निराई गुड़ाई का कोई तरीका अपनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जैविक खेती में खाद की अधिक मात्रा में उसका आवश्यकता होता है, जिससे उसकी लागत और महंगी हो जाती है और इसका आसपास के वातावरण पर भी पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती एक बेहद कम लागत वाली कृषि पद्धति है जो पूरी तरह से स्थानीय जैव विविधता के अनुरूप होता है।
1: तो इस प्रकार आपने जाना कि जो प्राकृतिक खेती है वो जैव विविधताओं को अपने में समेटता है और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को भी बरकरार रखता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन से ऐसी पद्धति है जो अपनाई जाती है जिससे कि हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति के जो जितने भी अवयव हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं और साथ साथ जो उसके उत्पाद होते हैं वो भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव और पशु जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण को सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थानीय संसाधन को कुशल उपयोग पर जोर देना और पारिस्थितिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती जैव विविधता के साथ काम करती है या मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और खाद उत्पादन प्रणाली के साथ साथ पौधे और जीवित जीवों दोनों के जीवन की जटिलता का प्रबंधन करती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। पहला जुताई न करना, इसके अंदर होता है कि वार्षिक जुताई में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग से केचुआ की आबादी में लगातार बदलाव आता है। जब खेत की जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे केचुओं के प्रसार में वृद्धि होती है। केचुओं मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाने और अपनी कास्टिंग से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे जो पत्ती है मल्चिंग है वो मिट्टी की सतह पर लगाई जाने वाली एक परत है। मल्चिंग निश्चित रूप से मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, उसे ठंडा करती है और उसके सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। पुलाव से मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी की मात्रा विकसित होती है जो सूक्ष्म जीवों और केचों के विकास के लिए अनुकूल होती है। यह बिना जुताई के बीजों के अनुकरण में सुधार करता है। दाल वाली फसलों को मल्चिंग से उगाने पर मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बढ़ जाता है और खरपतवार की वृद्धि में कमी आती है। उसके बाद बीजा अमृत जो कि बीजों को उपचार के लिए मुक्त यूज किया जाता है। प्राकृतिक खेती में बीजा अमृत का जो प्रयोग किया जाता है वो बीजों को उपचार के लिए किया जाता है। यह गाय के गोबर, गोमूत्र, चूने और मुट्ठी भर मिट्टी से तैयार किया जाता है। गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से लाभकारी सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को बीजा अमृत से के रूप में संवर्धित किया जाता है और बीजों को इनोकुलम के रूप में क्रियाशील किया जाता है। बताया गया है कि बीजा अमृत से बीज का उपचार करने से फसल में हानिकारक मिट्टी जनित रोग जनकों से बचाया जाता है। 20 लीटर बीजा अमृत 100 किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होते हैं। अब सवाल है कि बीजा अमृत बनाए कैसे। इसके बनाने के लिए पहले 5 किलो गोबर को एक सूती के कपड़े में बांधकर उसे 20 लीटर पानी में डुबाया जाता है जिसे हम 12 घंटे तक छोड़ देते हैं। दूसरा 1 लीटर पानी हम एक दूसरा 1 लीटर पानी हम लेते हैं और जिसमें हम 50 ग्राम चूना मिलाकर उसे हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जो कपड़े में बांधे जो 5 किलो गोबर होते हैं उसे निकाल कर हम 2 से 3 बार उसे पानी में निचोड़ देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। फिर उस 20 लीटर पानी में खेत की मुट्ठी भर मिट्टी को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के साथ साथ जो हम 50 ग्राम चूना जो 1 लीटर पानी में मिलाए हुए रहते हैं उसे भी हम उस बाल्टी में मिला देते हैं। इसके बाद उसमें हम 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं और उसे अच्छी तरह मिलाकर हम उसको तैयार करते हैं। जब बीजा अमृत जब बन जाते हैं तो उसके अगले दिन से हम उसे बीज उपचार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और बीज उपचार के लिए 100 किलोग्राम बीज उपचार के लिए 20 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त है। बीजों पे घोल लगाकर अच्छी तरह मिला ले या बीजों को छाया में उसको सुखा देना चाहिए। बीजा अमृत से पौधों को जड़ों को भी उपचारित किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पत्ती है जीवा अमृत जो है जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों मिट्टी की उर्वरकता में सक्रिय कार्य करते हैं क्योंकि वे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के चक्र में शामिल होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे मिट्टी में प्रवेश करने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और विघटन के लिए तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण के लिए लाभदायक है। यह पौधे के अपघटन खनिजीकरण और पोषक तत्व प्रदान करने में भाग लेते हैं। अब यह बीजा अमृत अगर बनाना है तो उसको हम बनाने की क्या क्या विधि होते हैं। एक जैसा आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 200 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त होते हैं जिसे हम सिंचाई के द्वारा या उसको छिड़काव कर सकते हैं। अब उसके बनाने की विधि क्या क्या है। 200 लीटर बीजा अमृत बनाने के लिए पहले हम एक ड्रम लेते हैं जो 250 से 300 लीटर का ड्रम होते हैं। उसमें हम 180 लीटर पानी लेते हैं। पानी लेने के साथ 10 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर मिलाते हैं। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ मिलाते हैं और 2 किलोग्राम बेसन मिलाते हैं। उसके बाद 100 से 150 ग्राम पीपल के नीचे का मिट्टी जड़ का मिट्टी लेकर उसमें हम मिला देते हैं। सभी सामग्रियों को ड्रम में मिलाकर उसे हम पूरी रात भर के लिए हम छोड़ देते हैं। पूरे सामान मिलने के बाद हम दिन में उसे 2 बार एक लकड़ी से उसे हम घुमाते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक सुई के दिशा में और एक सुई के दिशा के उल्टा 2 बार उसे हम मिलाते हैं जिसे वो अच्छी तरह मिल जाए। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि ड्रम को बोरी से ढककर छाया में रखते हैं या अगर छाया में रखने के लिए सूती कपड़ों या प्लास्टिक का मच्छरदानी का उपयोग करते हैं उस ड्रम को ढकने के लिए। अब हर जीवा अमृत जब हम 9वें दिन जब हो ऐसा ये सेम प्रक्रिया हम 9-8 दिन तक करते हैं। 9वें दिन हम इसे उपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अब इसे जीवा अमृत को उपयोग करने के लिए आप 12 से 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: और इस तरीके से आपने जाना किसान भाइयों कि बहुत सारे अवयव जो हैं इसमें कुछ जीवामृत या बीजामृत बनाकर अपने फसल पद्धतियों में बदलाव लाकर और साथ ही मल्चिंग करके आप प्राकृतिक खेती के जो फायदे हैं उसे आप लेना शुरू कर देते हैं। तो प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं आप तो एक तो आप ये बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक खेती की शुरुआत करते हैं, इससे आपके आसपास के किसान भाई भी प्रोत्साहित होते हैं। और आप ख्याल रखें कि यह पृथ्वी और एक जो भूमि है और मिट्टी सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, जिस तरीके से आपको अपने पूर्वजों द्वारा आपको हस्तांतरित की गई यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे भी आप आने वाली पीढ़ियों को ठीक उसी तरीके से उपजाऊ भूमि की तरह आप हस्तांतरित करें, लेकिन जिस तरीके से इसका दोहन चल रहा है रासायनिक खेतियों द्वारा, ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ मिट्टी दे पाएंगे जिसमें कि हम जिस तरीके की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए उपज के लिए वो हो पाएगी। तो हम इसी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, उसके जो बिल्कुल एक प्रायोगिक जो एक वार्तालाप यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब हम इसके जो प्रयोग विधि हैं जो अभी आपको बताया गया, बीजामृत, जीवामृत, इन सभी का, तो उसमें से जीवामृत है उसका क्या प्रयोग विधि है आप जानिए।
0: जब जीवामृत तैयार हो जाता है 9 दिन के बाद, तो उसे महीना में 2 बार या 1 बार खेत में डालना चाहिए। अब 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ खेत के लिए, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। जो फसल है गन्ना, केला, गेहूं, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, बैंगन, टमाटर, आलू, लहसुन एवं सुगंधित पौधों आदि पर जीवामृत का छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है। अब यह जो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, यह अपनाने से कुछ इसके फायदे जो होते हैं और कुछ फायदे आप जानते हैं, जैसे कि यह जो प्राकृतिक खेती है वो अन्य कृषि प्रणाली की तुलना में शारीरिक कार्य और श्रम को अत्यधिक कम किया जा सकता है। दूसरा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से रासायनिक खेती के समान पैदावार संभव है, जो कि आप जब प्राकृतिक खेती अपनाते हैं उसके 3 साल के बाद आप रासायनिक खेती के बराबर पैदावार आप ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि साल दर साल मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होता है जब आप प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, तो उससे सूक्ष्म जीवों का जो संख्या होता है उसमें बढ़ते हैं, केचुआ को जो संख्या होते हैं वो खेतों में बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं केचुआ जो किसान का मित्र होते हैं, जिस खेतों में केचुआ का मात्रा, सूक्ष्म जीवों का मात्रा जितना ज़्यादा होगा उस खेतों का जो उर्वरकता शक्ति है वो उतना ही ज़्यादा होगा। चौथी बात कि इसमें जो पानी की आवश्यकता है वह न्यूनतम हो जाती है। पांचवी, यह प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, उसमें 100 kg लगते हैं। प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगता है उसका जो मात्रा होता है वो बहुत कम लगता है। जैसा कि आप 5 से लेकर 20 किलो गोबर जो पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ प्राकृतिक खेती में उपयोग करने के लिए, जैसा कि आपने सुना इससे पहले बीजामृत में 5 किलो गोबर उपयोग किए जाते हैं 20 लीटर बीजामृत बनाने के लिए, और वह 20 लीटर 100 केजी बीजों को उपचार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी, आपने सुना कि जो जीवामृत है, जीवामृत में 20 किलो जीवामृत में जो 10 किलो जो गोबर होते हैं वो पर्याप्त होते हैं 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए, जो कि इसका जो इनपुट जो लागत है इससे कम हो जाता है। और जो प्राकृतिक खेती है उसका जो मुनाफा के साथ साथ जो उपज है वह ज़्यादा किसानों को मिलता है।
1: तो किसान भाइयों, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में सभी पहलुओं से परिचित हो गए होंगे, किस प्रकार की खेती है, क्या इसमें इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत होती है, यानी कि बहुत ही कम लागत होती है, क्योंकि रासायनिक खेती में जब खेती अपने बिल्कुल चरम पे होता है तो आप पूरी भागदौड़ करते हैं कि किस तरीके से उसमें खाद डालें, कीड़ा लग गया है तो उसको कीटनाशी डालें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गया है तो फिर उसमें आप खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती में इस सभी के रोकथाम के लिए डाले जाते हैं, लेकिन रसायनों से बचा जाता है, यानी आपको बहुत सारे तरीके का खर्च करने से बच जाते हैं, बाजार पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है, और सीधे तौर पर आप अपने जो घरेलू स्तर पे जो आपके जो गाय हैं उनके गोबर हैं और अन्य तरह की जो बातें बताई गई बीजामृत और जीवामृत के द्वारा ही आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो इस प्रकार आपके इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, उसकी उत्पादकता बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, और आप भविष्य के लिए एक बेहतरीन मिट्टी, एक स्वच्छ जलवायु आप आगे की ओर हस्तांतरित करके जाते हैं। तो आप प्राकृतिक खेती अपनाएं, यही हमसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज

0: साथ संबंधित व्यक्तियों को जागरूक भी करते हैं। तो ओम, आप हमें यह बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन वसा और ऊर्जा मिलती है।
0: जी, और पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं?
1: हम पोषण को संतुलित कर उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कमजोरी, थकान, स्वास्थ्य में नहीं होती है तकलीफ, समस्याएं।
0: अगर व्यक्ति दवाई ना खाए और पोषण अपने तरीके से ही लेना चाहे, अपने घरेलू उपाय के हिसाब से ही पोषण को लेना चाहे, तो क्या करेगा?
1: उसे अच्छी साग सब्जियां खानी चाहिए, स्वस्थ और ताजे फल सब्जियां खानी चाहिए, जिससे उसका संतुलित आहार बना रहे।
0: पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए?
1: आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोलिक एसिड प्राप्त करने के लिए आप अंडे, मांस मछलियाँ, डेयरी, फल सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड आपको अंडे और मांस मछलियों, दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही से इत्यादि से मिल जाएगी। और
0: आपका अगर आदमी या व्यक्ति सही से पोषा आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती
1: है? अगर कोई व्यक्ति सही से पोषण ना ले तो उसे बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकान, खत्म करने की क्षमता कम हो जाएगी उस रोगों से लड़ने की, हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है और हड्डियां कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे।
0: आपका महिलाओं को सही से पोषा आहार ना मिले तो क्या क्या समस्या हो सकती है?
1: महिलाओं को सही से पोषण नहीं मिलने से एनीमिया, यानी खून की कमी, कमजोरी, थकान, बार बार संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन जैसी कई अस्वस्थ समस्याएं हो सकती है। मैं यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित कर।
0: चलिए ठीक है, बच्चों को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या परेशानियां हो सकती है?
1: बच्चों को सही से पोषण ना मिले, यानी उनके पसंद की नहीं बल्कि पोषण से रिलेटेड नहीं मिले तो उन्हें बहुत सी समस्या हो सकती है, जैसे शारीरिक विकास में बाधा हो सकती है, कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, मानसिक बौद्धिक विकास में कमी, सीखने और अध्ययन केंद्रता कम हो सकती है और स्वास्थ्य समस्या और कुपोषण संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
0: जी ठीक। लीन प्रोटीन क्या होता है?
1: लीन प्रोटीन उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा यानी फैट, खासकर संतृप्त वसा और कैलोरी का स्तर कम होता है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों के रख रखाव में मदद करता है। इसके कुछ अच्छे स्रोत में शामिल है अंडे, मछली, स्नेल्स, फालियाँ, कम वसा वाला डेयरी।
0: हमारा कृषि कॉलेज एक कार्यक्रम चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो अपनी क्यारी अपनी थाली क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते?
1: अपनी क्यारी अपनी थाली भारत में खासकर बिहार राज्य में शुरू किया गया एक सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और पोषण युक्त आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण वाटिका या छोटी क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों या घरों के पास लगाई जाती है। इन क्यारियों में मौसमी पोषण से भरपूर सब्जियां और फल

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन BAU सबौर से। आज मैं सरधो ग्राम के एक दीपक कुमार से मिल रहा हूं, जो कि गांव में स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां व्यक्तियों के घरों में साझा करती है। तो दीपक जी, आप हमें ये बताएंगे कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं?
4: पोषण एक आहार जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिसमें भोजन की प्रक्रिया को किया जा भोजन की प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिसके अंतर्गत साग सब्जी इत्यादि आती है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन प्राप्त हो, प्रोटीन मिले, ऊर्जा मिले, इसे हम पोषण कर सकते हैं।
3: जी, ये तो हो गई किताबी नॉलेज की तरह, आप अपनी भाषाओं में भी सभी सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
4: पोषण को हम अपने जीवन में उपयोग खाद्य पदार्थ के द्वारा ला सकते हैं, जिसके अंतर्गत साग सब्जी इत्यादि आती है, साग सब्जी, मांस मछली, दूध दही, दाल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं।
3: जी जरूर, बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों को लेते हैं पोषण के रूप में। अगर कोई व्यक्ति दवाई ना लेकर पोषण के लिए घरेलू चीजों का उपयोग करे तो वो किन किन प्रकार से ले सकते हैं?
4: इसके अंदर हम मांस मछली, दाल, मशरूम, ये सब चीजों को ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं, साबुत अनाज भी यूज कर सकते हैं, मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, उससे भी शरीर को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, पोषण मिलता है।
3: जी जरूर, पोषण में आपका चौथा क्वेश्चन है, पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड वगैरह को हम कैसे प्राप्त करें?
4: इसमें हम यूज कर सकते हैं, मशरूम को यूज कर सकते हैं, दाल को यूज कर सकते हैं, अंडे को यूज कर सकते हैं, मांस मछली इत्यादि, कद्दू का बीज, मशरूम, ये सब हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत,
3: जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड वगैरह पाया जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, अगर व्यक्ति सही से पोषण या पोषाहार नहीं लेता है तो उन्हें क्या क्या समस्या का सामना किया करना पड़ सकता है?
4: सही से खाना पीना नहीं खाने के चलते आदमी बीमार पड़ सकता है, मोटापन हो सकता है, हार्ट अटैक का आ सकता है समस्या, थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकता है सही पोषण नहीं मिलने के बाद।
3: जी, महिलाओं को सही से पोषाहार ना मिले तो क्या समस्या हो सकती है?
4: खून की कमी आ सकती है, बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है, कमजोरी आ सकता है, थकान आ सकता है, हार्मोन का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आ सकती है।
3: सातवां क्वेश्चन है, बच्चों को सही पोषाहार नहीं मिलने पर क्या समस्या हो सकती है?
4: बच्चों को सही पोषाहार नहीं मिलने पर उसके सोचने की क्षमता बिगड़ सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है, कुपोषण का शिकार हो सकता है, बच्चे के शरीर में वृद्धि नहीं आएगी, बहुत सारी समस्याएं से उसको जूझना पड़ सकता है।
3: जी, हमारे श्रोताओं से कुछ एक क्वेश्चन ये है कि लीन प्रोटीन क्या होती है?
4: लीन प्रोटीन आदमी को मोटा कर सकता है, जिसमें आदमी को बहुत संभल कर खाना पीना यूज करना पड़ता है, जैसे उसको प्रोटीन के लिए अंडे यूज करने पड़ेंगे, मछली यूज करने पड़ेंगे, दाल, कच्ची सब्जी, जिससे प्रोटीन उसको सही मात्रा में मिल जाए।
3: नौवां है कि अपनी चारी, अपनी थाली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और या फिर आप क्या जानते हैं?
4: अपनी क्यारी अपनी थाली वो है जिसमें हम अपने बागीचे में या फिर अपने बाड़ी में जो भी साग सब्जी उपजाएं, मशरूम, हरी सब्जी, साग, ये इसका उपयोग आंगनबाड़ी में भी किया जाता है बच्चों को देने में, जो हम अपने घर में उपजा सकते हैं बिना खाद बिना रसायन के, उसको हम अपनी थाली अपनी क्यारी कह सकते हैं।
3: तो क्या अपनी क्यारी अपनी थाली का प्रयोग सभी ग्रामीणों को या फिर सभी व्यक्तियों को करनी चाहिए?
4: करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, इससे समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इससे आदमी लंबा टाइम तक स्वस्थ रह सकता है। आदमी को ये यूज करना चाहिए, बिना रसायन का खाद्य पदार्थ यूज करना चाहिए।
3: जी दीपक जी, दीपक जी आपको धन्यवाद 90.8 FM ग्रीन की ओर से, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम दिया, धन्यवाद।
5: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
5: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
5: डॉक्टर, खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में

अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में।

0: और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से, और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी, तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों, भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है, तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है, तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी, वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है, वो गैस का जो एक्सचेंज है, उस मिट्टी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीड और रंध्र और बृहत रंध्र जो है, वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से, पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं। और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व, यानी सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व, न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है, जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है, उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्म जीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्म जीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो उसको क्या करता है ये जीवाणु, जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है, जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं, वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए, तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में, और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो टोबैक्टर हो गया, ये जो एस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज है कि वो जो है सूक्ष्म जीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्म जीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में आयनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो वो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिसको इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं। और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु। और वो क्या करता है, तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु में ये है सूक्ष्मजीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्मजीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थुरिंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए अब हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्मजीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्मजीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
0: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
1: जी धन्यवाद। साहब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्मजीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसान के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्मजीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है। जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है, यानी अंकुरण अच्छा होता है। जो पौधा होता है, जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज़ हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान, इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला

0: जैसे राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है, जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSB के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है, जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो PSB बायोफर्टिलाइजर है, और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जो सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 KG तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है, और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी, रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे उस मात्रा में, उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे चावल यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है, और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का, तो वो क्या करते हैं उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है, जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेर को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए, और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल को बोलते हैं, या ब्लू ग्रीन अल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा, और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे, और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 KG प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडल नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या, वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है पौधा को अवेलेबल कर। उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम एक केजी सॉरी 25 से 30 ग्राम एक केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं, और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए, किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में, या सब्जी के केस में, या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचड़ा जो 20-21 दिन का बिचड़ा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचड़ा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचड़ा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचड़ा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सूटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे, और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचड़ा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचड़ा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, दो 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना, या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना, या फाइटो हार्मोन उपलब्ध कराना, या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं, और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में, और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में, और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है, और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है ये जैव उर्वरक के को प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर। आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में अमेज़न फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है, यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी के स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपनी बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर एफएम ग्रीन में हम कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं और मैं हूं ईश्वर चंद्र। साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री शशिकांत शशि जी, जो कि सहायक निदेशक प्रशासन हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे एफएम ग्रीन के स्टूडियो में पहली बार आप पधारे हैं। तो किसान भाइयों और सभी युवा जनों और किसान बहनों, हम काफ़ी लंबे अरसे समय से आप तक हम कृषक मंच कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं, जिसमें कि खेती की बातें और जो आपके हर रोज़ की जो मौसम के हिसाब से खेती और उसके मौसम की जानकारी के साथ हाजिर होते रहे हैं। लेकिन आज का दिन, आज का ये जो विषय है वो बिल्कुल ख़ास है और इसमें कृषि की बात नहीं होगी लेकिन कृषकों की बात होगी, और वो बात है वो जो हमारे मुख्य भूमिका में होंगे वो किसान होंगे, और चर्चा का जो विषय होगा वो है किसान और पुरुषार्थ। तो शशि जी, आज का जो विषय है किसान और पुरुषार्थ, इसमें जो पुरुषार्थ है एक बहुत ही इसकी विहंगम, एक जैसे ही पुरुषार्थ की बात आती है तो इसका अर्थ हम किसान के साथ जोड़ के कर रहे हैं, इसका आप विश्लेषण थोड़ा करेंगे।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल किसान, जो हमारे देश के किसानों के बारे में आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान ही देश है, आप जानते हैं। यहाँ के लगभग 64% लोगों की जो रोजी रोटी है वह किसानी या खेती से ही होती है।
1: जी,
2: किसान अपने लिए, उसका एक कर्तव्य है कि वह अन्न उपजाएगा।
1: जी,
2: अन्न उपजाने के बाद वह लोगों के बीच वह कुछ अर्थ के लिए वितरित करेगा या बेचेगा। उस अन्न का जो उपयोग होता है वह इंसानों के बीच होता है। इंसान अगर भूखा है तो वह पशु के समान है।
1: बिल्कुल,
2: आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में अन्न की उपलब्धता हर जगह नहीं है।
1: जी,
2: और कई बार ऐसे भी विषम परिस्थितियां आई हैं जब अन्न की उपलब्धता नहीं होने पे इंसान इंसान नहीं रह गया है।
1: जी,
2: तो उस समय किसानों की जो सार्थकता है वह समझ में आती है। किसान जो अन्न उपजाता है विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, किस प्रकार से वह धरती माँ को

0: आग्रह करके अपना सब कुछ न्योछावर करता है, एक उद्यमी के रूप में अपना सब कुछ दे देता है, तो किसानों की जो बात जब होती है तो किसानों की मेहनत की बात बहुत कम होती है, तकनीक की बात होती है, विज्ञान की बात होती है, मौसम आधारित खेती की कभी बात करते हैं तो कभी इस तकनीक को इस प्रकार से उपयोग करने की बात होती है, खाद आधारित जो है सो कई सारी फसलों की बात होती है, लेकिन उसको करने वाले जो किसान हैं उनकी मेहनत की बात, उनके पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं ज़्यादातर कृषक समाज के लोग और कृषक समुदाय के लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कृषि से संबंध रखते हैं लेकिन सिर्फ कृषि को उपभोग के तौर पर लेते हैं, आप कभी सोच कर देखिए कि एक किलो चावल आपके घर में एक दिन में खपत होती है, लेकिन उसे उगाने के लिए किसान कितना मेहनत करता है। आप कभी एक किलो धान उगा करके आप देख लें, आपको पता चल जाए कि उसे उगाने में कितना मेहनत लगता है, एक किसान अपना खून पसीना कैसे एक करता है उसे उगाने के लिए। तो हम अब बात कर रहे हैं शशि जी की उसके पुरुषार्थ में किसानों की मेहनत के बारे में। तो मेहनत जो है वो किसानों का सुबह से लेकर के जब से वो हल कंधे पे रखने की परंपरा थी, आजकल ट्रैक्टर की परंपरा हो गई है, और रात में जब वो थका हुआ घर पे आता है उस समय तक वो राउंड क्लॉक वो अपना काम में संलग्न रहता है और एक बार भी उफ नहीं करता है। तो अब जो उसकी भूमिका है उसकी अगर हम चर्चा करें हमारी जो अर्थव्यवस्था में, उस पर भी एक बार प्रकाश डाल दें।
0: किसान जो है, जैसे भारत में कहते हैं कि किसानी एक प्रकार से आप कहें कि सेवा भी कह सकते हैं, आप उनको व्यवसाय भी कह सकते हैं, परंतु मैं मानता हूँ कि किसान का जो कार्य है जी, वह आध्यात्म से जुड़ा है जी। वह इंसानों को एक ऐसी व्यवस्था देता है कि इंसान जीवित भी रहे, व्यवस्थित भी रहे। तो किसान का जो कार्य है वह किसी अच्छे उद्यमी से 100 गुना है, एक साधु के जैसा है, एक संत के जैसा है, मैं मानता हूँ। आध्यात्मिक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान को आप देखेंगे तो बेचारे बड़े सीधे तरीके से एक ही काम में अपना तल्लीनता रखेंगे, अपने गायों को, अपने पशुओं को नित्य क्रम नित्य प्रति जो है उसके प्रति वो सेवा भाव रखते हैं, अपने खेत के प्रति, अपने अपने जो आसपास की जो चीज़ें हैं प्रकृति ने जो उनको प्रदत्त की है उसके प्रति वो निष्ठा भाव से लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अनवरत, ऐसा नहीं कि यह मौसम प्रतिकूल है तो हम आज खेती करने नहीं जाएंगे, कहते हैं ना कि का वर्षा जब किसी
1: वाले,
0: तो उनके लिए ना कोई रेस्ट नहीं है, दे विल डू कंटिन्यूसली देयर हार्ड वर्क। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज ये खाना नहीं खाना है, आज ये खाना जो है ना बासी, अब थोड़ा सा पेट भर गया, अब छोड़ो इसको फेंको। उस थोड़े से अन्न को उपजाने की जो मेहनत है, कभी अगर हम लोग सोचें और करने की हिम्मत करें तो शायद नहीं हो पाएगी। किसान उद्यमी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम पार्ट जो है धरती माँ को अर्पित कर देता है कि माँ अगर आप लौटाएं तो ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा है। और धरती माँ भी उनको कभी नाराज नहीं करती है, शायद ही वो उनको नाराज करती हूँ। वो अगर 10 दाना बोता है किसान तो उन्हें वह 100 दाने में परिवर्तित करती है। तो ये किसानों का साधुपन ही है, एक एक उद्यमी के रूप में इतना साधुपन किसी में नहीं आएगा, लेकिन इस व्यवसाय में, किसानी व्यवसाय में ये साधुपन आपको दिखेगा। अब पुरुषार्थ की बात करते हैं। ईश्वर ने पुरुषार्थ करने की ताकत केवल मनुष्य में दी है, सभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, एक इंसान ही है जो पुरुषार्थ कर सकता है। और पुरुषार्थ का जो एक जो भाव है मन में आना, सभी के लिए संभव नहीं है। किसान पुरुषार्थ से क्यों अटैच्ड है, मैं बताऊं, पुरुषार्थ के 4 भेद
1: जी,
0: धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये हम सब मानते हैं, पर मेरा मानना है कि अनुशासन और हृदय की पवित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है
1: जी।
0: अनुशासन किस प्रकार से किसानों से अटैच्ड है, वो नित्य

0: अपने आसपास के जो प्रकृति की चीजें प्रदत्त हैं उनको जरूर सेवा उसकी करनी है, बदले में ईश्वर जो उन्हें दे
1: बिल्कुल
0: अन्न उपजाएंगे, लोगों की भूख मिटेगी, भूख मिटेगी तो इंसानियत का भाव बढ़ेगा, संतुष्टि आएगी। ये जो पवित्रता है, ये जो अनुशासन है, ये धर्म है, सच्चा धर्म इसे ही कहते हैं। तो किसानों से बढ़िया धर्म कौन निभा रहा है?
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं लगता।
1: अगर आज खाने की जहाँ किल्लत हो जाए,
0: जी जी,
1: वहाँ पर सभी धर्म अपने घुटने टेक दे,
0: सभी टेक देंगे।
1: तो यानी कि जो धर्म का उद्गम कहें तो ये किसानी से ही
0: किसानी से
1: होती है।
0: भूख जो है ना, भूख कोई मजहब नहीं देखता है। जहाँ रोटी की आवश्यकता होगी वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख नहीं देखते,
1: नहीं।
0: उन्हें भूख में रोटी चाहिए।
1: रोटी
0: और रोटी कौन उपजा के देगा? तो किसान देगा। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, पर मूलतः हुआ किसान ही रहेगा। अब हम बात करते हैं अर्थ की,
1: तभी वो उत्तम खेती मध्यम,
0: उत्तम खेती मध्यम का। और इनका जो ये जो कार्य है, ये एक व्यवसाय नहीं है। ये कृषि जो है व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय के रूप में नहीं लेते हैं। इनको लगता है ये मेरा कर्तव्य है। अगर हम गाय की सेवा नहीं करेंगे तो माँ भगवती रूठ जाएगी, अगर हम धरती की सेवा नहीं करेंगे तो माँ धरती रूठ जाएगी, भगवान सूर्य की सेवा, सूर्य को प्रणाम करने से भगवान रूठ जाएंगे। तो ये जो परंपरा है, जो भक्ति है, आप देखिए कई सारे त्यौहार में भी है। आप छठ माँ की पूजा करते हैं, प्रसाद क्या चढ़ाते हैं? वही गेहूं का बना हुआ, वही गन्ना,
1: बिल्कुल
0: वही हम सूर्य को, भगवान को जो है जल अर्पण करते हैं। तो ये सब किसानों के द्वारा है। ये सब जो है जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं, ये किसान के द्वारा उन्हीं के तौर तरीके से बना है। ये वो सीधे भगवान को वो जो अर्पण करते हैं, वो सीधा लगता है जैसे कि एक मन को एक तरीके से जोड़ा हुआ है उन्होंने, उनके साथ समर्पण है उनका, वो भाव दिखता है। अब आप कहते हैं कि सो जो हमारा जो काम है, देखिए काम को ना हम लोग भौतिक रूप से ले लेते हैं कि भोगने की इच्छा है, हमारी काम है। दरअसल किसान जो काम करते हैं, किसान के लिए जो काम है, काम का जो लक्ष्य है, उनका है कि यदि हम कुछ भी उपज दिलाते हैं या दूध ही अपने जो भी गाय माता है उनसे दूध दूह के जब लाते हैं, जब कोई बच्चा पीता है ना, उनकी संतुष्टि ही उनको ना एक आत्मसंतुष्टि ही उनको ना एक तरीके का सुख देती है। यही काम है उनके लिए, यही काम है। और मोक्ष, हम तो कहते हैं साहब कि इस देश में अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अगर कोई रास्ता चुनते हैं तो खेती को चुनिए, प्रकृति से जुड़िए। यदि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, छोटा सा किचन गार्डन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने बच्चों को दिखाएंगे कि कुछ फसल उगाइए खेती से, खेती के लिए नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने के लिए, तो वह बच्चे संस्कारी बनेंगे। आपके बच्चे यदि संस्कारी बनेंगे तो समाज में एक अच्छा निर्माण होगा, देश में एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होगा। तो ये जुड़ाव कैसे हो रहा है किसानों को देख के, ये भी यही एक तरीके से मोक्ष है। हम कह रहे हैं कि संस्कार तो तभी बनेंगे ना जब आप इसकी पहल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बच्चों में यह बात बताएंगे। मैं बार बार यह कहता हूँ कि किसान इस देश की रीढ़ है। सेवा क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, निर्माण क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, हम चांद पे पहुंच गए हों, लेकिन साहब चांद पे जाने वाले वैज्ञानिक के बच्चों को भी भूख लगती है,
1: और वो खाना यहीं से जाएगा,
0: खाना किसान के द्वारा जाएगा। किसान नहीं उगाएगा तो जापान से आपके लिए अन्न आना बहुत मुश्किल काम है। तुरंत कहते हैं ना कि तुरंत एनर्जी के लिए या शरीर को जो है भूख मिटाने के लिए आपको अन्न चाहिए, वहाँ पैसे या सामानों की उपलब्धता या अंतरिक्ष में पहुँचने से नहीं, आपको पेट तो वह रोटी ही,
1: रोटी से ही भरे,
0: ठीक है। तो हम यह मानते हैं कि किसान जो है भगवान के साक्षात बनाए हुए ऐसे रूप हैं जो इंसानों को एक तरीके से वह व्यवस्थित रूप देता है, एक तरीके से वह ऊर्जा का एक कहते हैं कि भंडार देता है कि आप जीवित रह सकते हैं। हम जीवित रहेंगे तब ना इंसानियत।
1: बिल्कुल। तो साथियों, आप में से जो भी लोग अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो अपने डाइनिंग टेबल पर जो रखी हुई रोटियां और जो सब्जियां हैं उसको उगाने वाले के लिए आपने कभी धन्यवाद नहीं कहा होगा, बनाने वाले के लिए आपने जरूर उसके शुक्रिया कहा होगा, परोसने वाले के लिए कहा होगा, लेकिन जो उगाने में जो मेहनत लगती है, उसके पीछे जो मेन हीरो जो हमारा किसान है, उसके बारे में आपके दिमाग में कभी एक पल ख्याल नहीं आता है। तो ये जो कार्यक्रम है वो हम इसी वजह से, एक हमने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, एक हमने एक कदम उठाया कि किसानों के बारे में आपको अवगत कराया जाए कि आखिर वो किसान कैसे युगों युगों से आपकी सेवा कर रहे हैं, और बिना किसी लालच, बिना किसी भय, बिना किसी दुख और इस सभी चीज़ों से परे होकर के एक ऋषि की तरह एक कृषि कार्य किए चले जा रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में खाएगा वही जो उगाएगा। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए कि

0: कि आपको जब आने वाले दिनों में इतनी सारी जो तंत्र विकसित हो जाएंगे तो आप थर्मोकोल खा करके जीवित नहीं रहेंगे, आखिरकार आपको रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान जो युगों युगों से आपकी सेवा में रत हैं, वो अगर आप उनके बारे में नहीं जाने, उनके बारे में सम्मान और उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे, तो एक दिन आपको भूखे रहने की बारी आएगी और आप खुद उगा पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि हम किसान हैं लेकिन अपने बच्चों को किसान नहीं बनने देंगे?
1: मेरा तो आम लोगों के लिए भी सुझाव है। आजकल देखते हैं कि एक आजकल नया रोग चला है, डिप्रेशन वर्ड कई बच्चों में आजकल सुनने को आया कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बड़े लोग भी आजकल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये डिप्रेशन जो है ना, ये शौकिया रोग है। आप किसानों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, किसानों के बच्चों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, उनके पास तो मुसीबतों का अंबार लगा रहता है। तो अगर अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो डिप्रेस्ड होने लगे तो खेती कौन करे? मैं तो यह कहता हूँ कि जो भी अच्छे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वह अगर अपने बच्चों को हो सके तो साल में दो चार दिन किसानों के समक्ष लेके जाएं, उनकी रोजमर्रा की रूटीन को दिखाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब साथ तो उन्हें आएगा ही नहीं। किसानों के जो तौर तरीके जीवन, उनकी जो जीवन शैली है, उनसे यदि उनको रूबरू करा दें, उनके दैनिक जो कार्यक्रम है या उनके जो दैनिक काम करने की जो क्षमता है, जो जिस प्रकार से वो काम निष्पादित करते हैं, उन्हें अगर बच्चे देख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है कि उनको अवसाद तो कभी पूरे जीवन में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे रोग भी उनको नजर आएंगे। अब किसान अगर उनको डायबिटीज होने लगे, किसान को अगर मोटापा होने लगे, यह मैंने कभी सुना ही नहीं है। अवसाद तो खैर बहुत दूर की बात है। तो आजकल मैं यही कहूँगा कि बच्चों को जो है कम से कम कृषि से जुड़ाव के लिए उनके समक्ष जरूर कभी कभी ले जाया जाए। और हम लोग किसानों को क्या है कि उनकी वेशभूषा से आंकते हैं, उनके हृदय की गहराइयों को हम नहीं देखते हैं। आप अगर किसान, चाहे वो कितने ही गरीब हों, आप यदि उनके दरवाजे पे चले गए ना, तो आपको वो दो रोटी और एक गिलास दूध जरूर दे देंगे। ये उनकी क्षमता में हो या ना हो, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सेवा भाव कहाँ है? ये सेवा भाव नहीं मिलता है। मैंने देखा है, मैंने गाँव में भी देखा है, मैंने आसपास में भी देखा है। और मुझे जब भी कुछ परेशानी होती है ना, तो मैं अपने आप को ना किसानों से थोड़ा सा जुड़ के महसूस करता हूँ कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, इस सिचुएशन में वो कैसे करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में आखिर वो लड़ कैसे लेते हैं, उनको वो क्षमता कहाँ से आ जाती है। तो शायद ईश्वरीय उनको जो है, एक तरीके से कहिए कि उनको प्रसाद मिला हुआ है, ईश्वर ने उनको कुछ ऐसी दी है क्षमता कि वो विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी बैल से उनको जो है दोस्ती है, उसी हल से उनको प्रेम है, उसी क्या कहते हैं पृथ्वी माँ से जो है उनको लगाव है, प्रकृति के समक्ष वो एकदम जुड़े रहते हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बरसात, क्या धूप, हर एक मौसम में उनको जो है सो आप देखेंगे कि लगे हुए हैं। तो यह जो निरंतरता है, यह उनके अंदर की जो क्षमता है, वो पुरुषार्थ का सार्थक एकदम सार्थक है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आम आदमी में आप नहीं देख सकते। और भारतीय किसान के बारे में कह रहा हूँ मैं, भारतीय किसान, चूंकि हम लोग आसपास में जब भी देखते हैं तो यह मानते हैं किसान बाहर के विदेश में जो है सो हो सकता है कि सेवा भाव जो है जैसा भी रहा, पर किसान किसान है, किसान किसान है। हो सकता है कि उनके पास ट्रैक्टर बहुत अच्छे आ गए हों, साधन बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन फिर भी अंततः हुआ अन्न उपजा के दूसरे का पेट भरते हैं। और पेट अगर किसी ने भर दिया तो या तो वो माँ भरेगी या किसान भरेगा। तो मेरा किसानों को नमन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि वह इसी प्रकार अनवरत मेहनत करें और नई नई तकनीकों का उपयोग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं भी, और किसानी वाला जो गुण है उसको कभी वो
0: बरकरार रखें,
1: वो बरकरार रखें
0: जी। तो किसान भाइयों, आपके अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं उसको लेकर आप कई बार कुंठित भी महसूस करते होंगे, लेकिन आज हमने आपका महिमा मंडन नहीं किया है, हमने याद दिलाया है कि आपके भीतर क्या क्या वो हीरे और वो खजाने हैं जिसने इस देश को, एक भारतवर्ष को आज तक अक्षुण रखा है। तो हम इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम कुछ बेहतर कार्यक्रम आपको अगले भाग में फिर से सुनाएंगे शशिकांत जी के साथ। तो आज के लिए हम यहीं पे इजाज़त चाहेंगे और

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, यानी

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी दोस्त अनु। और एक बार फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक उपयोगी बातें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस महीने में हम मना रहे हैं पोषण माह, यानी कि सितंबर माह को हम मना रहे हैं पोषण माह, और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि इस पोषण माह में हम आपको उन चीज़ों से, उन सारी बातों से अवगत करवाएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको पोषण देंगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए थे मशरूम की बातें, और अब बारी आती है सहजन की। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ किसान भाइयों, सहजन जो है कुपोषण दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप इसे अपने दिनचर्या, अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज यही विषय है हमारा, पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपनिदेशक प्रशिक्षण एवं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अभय मानकर सर। सर आपका स्वागत है हमारे साथ।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि सहजन की उपयोगिता के बारे में आज हम जानेंगे, साथ ही उसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा विषय है उसी के बारे में बताएं, यानी कि पोषण सुरक्षा, खासतौर पर पोषण पर हम नज़र डालेंगे और इसी से हम इसे आज कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि इसी से जोड़ेंगे हम पोषण के साथ। तो पोषण सुरक्षा हेतु सहजन की उपयोगिता और महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: किसान भाई, सहजन के पोषक तत्व के बारे में हम लोग सभी परिचित हैं। सहजन को आमतौर पर ड्रमस्टिक पेड़ या हॉर्स रेडिश पेड़ के रूप में जाना जाता है।
0: जी,
1: इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। सहजन वास्तव में एक चमत्कारिक पौधा है। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर मानव स्वास्थ्य के लिए एक दिव्य उपहार है।
0: जी,
1: सहजन कुपोषण से बचाव हेतु एक प्रभावी खाद्य है। सहजन को ऐसी भूमि में उगाया जाता है जहां शायद ही कोई पौधा उग सकता है। वास्तव में विपरीत मौसम और यहाँ के सूखे से बचने की अविश्वसनीय क्षमता के कारण इसका एक प्रचलित नाम है कभी न मरने वाला पौधा।
0: अच्छा।
1: भारत सहजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्यों में सबसे प्रमुख आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है।
0: जी।
1: सहजन में विकासशील देशों के लोगों के पोषण सुधार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा और ग्रामीण विकास की क्षमता है।
0: जी।
1: इसके पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग कुपोषण, भूखमरी, साथ ही साथ दुनिया भर के कई बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए किया जा सकता है।
0: जी।
1: साथ ही यह पशु चारा के लिए भी काफी उपयोगी है। वास्तव में सहजन में संतरे की तुलना में 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर की तुलना में 10 गुना अधिक विटामिन ए, दूध की तुलना में 17 गुना अधिक कैल्शियम, दही की तुलना में 9 गुना अधिक प्रोटीन, केले की तुलना में 15 गुना अधिक पोटेशियम और 25 गुना अधिक आयरन पाया जाता है।
0: जी।
1: गर्भावस्था के दौरान लगभग 6 चम्मच सहजन पत्ते के पाउडर एक महिला के दैनिक आयरन और कैल्शियम आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
0: तो कुल मिलाकर कहें तो सहजन कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वोपरि है, एक पूरक आहार है। आप इसे सब्जियों के तौर पर आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे जो यूं कहें कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी बनाए जाते हैं, इसके अचार भी बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सर यहाँ पर महत्व पर आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम सभी को पता है कि सहजन का अगर हम पौधा लगाते हैं, ये पेड़ बनता है, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है।
1: किसान भाई, सहजन पौधे का प्रत्येक भाग का महत्वपूर्ण पोषक तत्वों एवं एंटी न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। सहजन की पत्तियां कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और तांबा जैसे खनिजों से समृद्ध है।
0: जी।
1: विटामिन ए के बीटा कैरोटीन, विटामिन बी जैसे फोलिक एसिड, पैराडॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई भी सहजन में मौजूद होते हैं।
0: जी।
1: सहजन पत्तियों में कैलोरी कम मात्रा में होता है, जिसके कारण यह मोटापे को कम करने हेतु उपयोगी है। सहजन में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। इसमें कैल्शियम मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक माना जाता है।
0: अच्छा।
1: एनीमिया के इलाज में सहजन पाउडर आयरन की गोलियों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यूफा लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और ओलाइक एसिड, इसमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
0: अच्छा।
1: शोध से पता चलता है कि सहजन बीज के तेल में लगभग 76% प्यूफालिनोलिक एसिड होता है, जो इसे जैतून का तेल के विकल्प के उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। अधिकांश पौधे संसाधित होने पर अपनी पोषक गुणों को खो देते हैं, जबकि कच्चे अंकुरित और किण्वित सहजन बीज के आटे में यह पाया गया है कि इसमें फाइटोकेमिकल्स और एमाइनो एसिड सामग्री किण्वन और अंकुरण में भी अधिकतम थी। सहजन में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो आसानी से पच जाता है।
0: अच्छा।
1: सहजन में 40 से अधिक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नुकसान के बिना सहजन को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। निर्जलीकरण द्वारा सहजन के पौष्टिक मूल्य को बरकरार रखते हुए इसे संरक्षित किया जा सकता है। सहजन का अधिक उपयोग शरीर में उच्च आयरन का संचय का कारण बन सकता है। शरीर में अधिक आयरन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेमाक्रोटोमाइसिस रोग के कारण बन सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन 70 ग्राम सहजन की खुराक का सुझाव दिया जाता है। 300 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग के कारण सहजन को रामबाण के रूप में जाना जाता है। भारतीयों द्वारा सहजन का उपयोग लंबे समय से हर्बल दवा के रूप में किया जाता रहा है। सहजन के बीज का उपयोग बेन नामक तेल निकालने के लिए किया जाता है। यह तेल ओलाइक एसिड, टोकोफेरॉल और स्टेरॉल से समृद्ध होता है। बेन तेल खाना पकाने के लिए जैतून तेल के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग इत्र, लुब्रिकेंट्स आदि के लिए भी होता है। सहजन बीज एक प्राकृतिक कोगुलेंट होता है, जिसमें एक केटायनिक प्रोटीन पाया जाता है, जो अशुद्ध पानी को साफ कर सकता है। अन्य कोगुलेंट जैसे एलम, सैक्रिम कार्बन और फेरिक क्लोराइड महंगा और दुर्लभ होता है, जिसके कारण सहजन बीजों का यह गुण इस पर अधिक शोध कार्यों को बढ़ावा दे रही है। सहजन बीज में पानी से भरी धातुओं जैसे लीड, तांबे, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक को खत्म करने की क्षमता होती है। इसके बीज के खल्ली में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो जीवाणु विकास को रोकते हैं और पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने में सहायता करते हैं। सहजन बीजों के इन गुणों और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण बीमारियों को ठीक करने में और ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली में सुधार कर सकने में सहायक हो सकती है।
0: अच्छा।
1: सहजन बीज बायोडीजल के स्रोत भी होते हैं, तथा इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों और इसके बीज केक का प्रयोग हरी खाद या उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक गुणों के कारण सहजन के फूलों का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसके जड़ की छाल में औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग अनिद्रा, आँखों और दिल की बीमारियों के लिए किया जाता है। इसके पत्तियों में जेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो फसल की पैदावार में 25-30% तक की वृद्धि कर सकती है। पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और कुपोषण से निपटने के लिए सहजन का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सम्मिलित करना काफ़ी लाभदायक पाया गया है।
0: तो ये आपने जाना कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है। यहाँ पर जानते हैं हम कि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहजन के विभिन्न भागों के बारे में आपने बताया कि किस रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताएं कि सहजन के विभिन्न भाग जो होते हैं, तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, और आपने हर्बल दवा की बात भी की है, तो हम इसके औषधीय उपयोग के बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: किसान भाई, हम जानते हैं सहजन के विभिन्न भाग में काफ़ी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, और उसका जो औषधीय गुण है, सबसे हम पहले बात करते हैं पत्ती के बारे में। सहजन की पत्तियों में काफ़ी औषधीय गुण होता है, जो हमारे अस्थमा, हाइपरग्लिसीमिया, डिप्सिलीमेडिया, फ्लू, दिल की बीमारी, सिफिलिस, मलेरिया, निमोनिया, दस्त, सिरदर्द, स्कर्वी, त्वचा रोग, ब्रोंकाइटिस, आँख और कान का संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। साथ ही रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को भी यह काफ़ी नियंत्रित करता है। एक और एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बायोटिक और एंटी एथेरोक्लोरिटिक एजेंट के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है
0: जी।
1: जहाँ तक पत्ती में पोषक तत्व की बात है, सहजन की पत्तियों में फाइबर, वसा, प्रोटीन और खनिजों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, आयरन और सल्फर इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी वन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में इसमें की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सहजन के बीज में।
0: अच्छा,
1: तो सहजन के बीज का भी काफ़ी औषधीय महत्व है। सहजन के बीज में हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रॉन्स की बीमारी, एंटी हर्ब्स, सिंप्लेक्स वायरस, गठिया इत्यादि इलाज में मददगार होते हैं। गठिया, क्रैम्प, मिर्गी और यौन संक्रमित बीमारियों में एंटी माइक्रोबियल और सूजन रोधी के रूप में भी यह कार्य कर सकता है। बीज की अगर पोषक तत्व के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें ओलिक एसिड जिससे बेन ऑयल भी बनता है, इसमें काफ़ी एंटीबायोटिक जिसे टेरिगोस्पर्मिक कहा जाता है और एंटी फैटी एसिड लिनोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, बिहेनिक एसिड, फाइटोकेमिकल्स आदि इसमें पाए जाते हैं। अब जड़ के की चर्चा हम करते हैं। जड़ के छाल में इसका भी काफ़ी औषधीय महत्व है। जड़ की छाल जो होता है उसमें कार्डियक उत्तेजक, एंटी अल्सर और सूजन रोधी

0: या जलन रोधी के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। पोषक तत्व की बात करें तो इसमें एलेलोइड मॉर्फिन, मोरिंगिनिन, खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम सहजन के फूल का चर्चा करते हैं। इसके हम सभी जानते हैं कि इसके फूल का भी कई रूप में व्यवहार करते हैं। अच्छा। इसके जो औषधीय गुण है, सहजन के फूल में मुख्य रूप से हाइपोकोलेस्टेरोलिक के रूप में यह कार्य करता है और यह गठिया में बहुत ही कारगर काम करता है। मूत्र संबंधी समस्याओं और सर्दी के इलाज में भी यह काफ़ी सहायक होता है।
1: अच्छा।
0: फूल के में जो पोषक तत्व होता है इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, पोटेशियम और एमिनो एसिड पाया जाता है। अब इसके फल का, जिसे हम लोग सब्जी के रूप में ज़्यादा यूज उपयोग में लाते हैं, इसका औषधि के रूप में जो होता है, इसके फली से दस्त, यकृत, स्प्लीन की समस्याओं और जोड़ों के दर्द में काफ़ी कारगर होता है। पोषक तत्व जो इसके फली में होता है उसमें फाइबर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। फैटी एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड भी इसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
1: आपने पहले भी बताया था कि ये इसकी उपयोगिता के बारे में हम जान रहे थे और महत्व के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि कुपोषण को दूर करने में और साथ ही बीमारियों से लड़ने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है, तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार मदद करता है कुपोषण को दूर करने में और बीमारियों से कैसे लड़ता है ये सहजन?
0: सहजन में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे गैर विषाक्त और आसानी से पचाने में ये सहायक होता है। सहजन में इन पोषक तत्वों का संयोजन शरीर में समायोजित होने और पचाने में सहायक होने के कारण काफी उपयोगी होता है।
1: अच्छा।
0: ये इसीलिए सहजन को चमत्कारी पेड़ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसमें हमारे जीवन को बचाने की क्षमता है
1: बहुत ज्यादा।
0: शरीर में पोषक तत्वों की मौजूदगी आंतरिक रूप से बीमारी को रोकने और साथ ही साथ बीमारी से लड़ने में सहायक होती है। शरीर और इसके अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिसाल के तौर पर कई बच्चे रतौंधी और अन्य आंखों की बीमारियों और परेशानियों से पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिल पाता है। सहजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है जिससे इसे भोजन में सम्मिलित कर उक्त बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। विटामिन ए के चर्चा अगर हम करें तो सहजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होने के कारण ये कई रोगों के इलाज में सहायक होता है, जैसे अंधापन, जिसे रतौंधी और पूर्ण अंधापन के रूप में भी जानते हैं, उसमें काफ़ी कारगर होता है। मातृ मृत्यु दर, गर्भावस्था और स्तनपान, कमजोर प्रतिरक्षा और संक्रमण से लड़ने की असमर्थता में ये विटामिन ए के रूप में काफ़ी अच्छा कार्य करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विटामिन ए की कमी से दुनिया में भर में लगभग 100 मिलियन से अधिक बच्चे अंधे होते हैं। विडम्बना यह है कि कई देशों में जहाँ यह एक समस्या है वहीं सहजन प्रायः स्वतः विकसित हो जाते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इसे जंगली पेड़ समझकर इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बच्चों के भोजन में सहजन को सम्मिलित कर उन्हें अंधेपन की समस्या से बचाया जा सकता है। सहजन में आयरन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों के इलाज में कारगर होता है। मुख्य रूप से जो आयरन की उपयोगिता है, जिसे एनीमिया, थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीलापन पड़ना, जीभ में छाले होना, नाखून का झड़ना, भूख में कमी, विशेष रूप से बच्चों में और सिरदर्द की समस्या में इसका काफ़ी उपयोग कार्य कर रही
1: है।
0: सहजन में कैल्शियम भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों में सहायक के इलाज में सहायक होता है, खास करके एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी की बीमारी कमजोरी के रूप में भी जाना जाता है, मांसपेशियों की समस्या, तंत्रिका की समस्या, दिल की असामान्य धड़कन और कार्य करने की इफिशेंसी को भी कैल्शियम बढ़ाता है।
1: हाँ।
0: अब हम प्रोटीन की चर्चा करें जो एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। सहजन में यह काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है और इसका खास करके जो ये फायदा पहुंचाता है एडिमा, त्वचा के नीचे तरल पदार्थ का संग्रह होता है जो आमतौर पर पैरों और एड़ियों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी यह हो सकता है।
1: अच्छा।
0: एडिमा वजन घटाने में इसका भी काफ़ी उपयोग है। पतले या रूखे बाल या बालों के झड़ने में इसका काफ़ी कारगर उपयोग है। हाथों और पैरों की उंगली के नाखूनों में रीज या गहरी रेखाएं उभर आती हैं। त्वचा की समस्या जिसमें यह सूर्य की गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। शरीर और बालों में कम पिगमेंटेशन होता है, इसको में सहायक होता है। त्वचा पर चकते या सूखापन होता है, कमजोरी और सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन, बेडसोर या अन्य त्वचा अल्सर, अनिद्रा, सिरदर्द, गंभीर अवसाद, चिंता, पेट दर्द आदि में ये काफ़ी फायदेमंद होता है
1: जी।
0: इसमें खास करके सहजन में विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमें स्कर्वी, जो मसूड़ों में खून अक्सर बहने की समस्या आती है, उसमें काफ़ी कारगर इसका फायदा होता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कमजोरी, नाक और मसूड़ों में सूजन और खून बहना आदि में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भी विस्तार से आपने बताया हमें कि कौन कौन बीमारियों से लड़ने में सहायक है, साथ ही इसमें कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से जो भी चीज़ें पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं जिससे कि ये बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो सर कुल मिलाकर कहें तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है हमारे लिए, तो आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
0: सहजन को तो हम लोग अभी चर्चा किए कि इसे रामबाण के रूप में जाना जाता है और इसका जितना औषधीय या पौष्टिकता है इससे हम सभी परिचित हैं। फिर भी इसमें जो कुछ तत्व जो मौजूद होता है, खास करके एंटीऑक्सीडेंट, प्रोस्टेट और त्वचा कैंसर, ट्यूमर और बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में ये काफ़ी सहायक होता है। यह एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ के रूप में भी हम जानते हैं, उच्च सीरम या रक्त कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड, यकृत और गुर्दे की समस्याओं को दूर करता है। इसमें मौजूद सूजन रोधी गुणों के कारण जो जोड़ों में दर्द, गठिया, एनीमिया और लूपस को दूर करने में सहायक है। यह कोलाइटिस, दस्त, पेट फूलना जैसे गैस की बीमारी में जो होता है, अल्सर और पाचन विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। एंटी बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल के रूप में यह काफ़ी कारगर होता है। यह मूत्र संक्रमण जो इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड, सिफिलिस, दंत क्षय, कबक, सामान्य जुकाम और HIV में भी के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावकारी है। एक जहर रोधी के रूप में यह सांप और बिच्छू काटने के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी पाया गया है। यह सिरदर्द, माइग्रेन और मिर्गी सहित तंत्रिका विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी।
1: आपने अभी कहा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं और साथ ही आपने कहा कि बुढ़ापे के जो लक्षण हैं उसे भी दूर करने में यह सहायक होता है, तो कहने के इसमें एंटी एजिंग कंपाउंड भी पाए जाते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं।
0: सहजन में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग गैलोर के रूप में इनके नाम से जानते हैं। सहजन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है। सहजन पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स से समृद्ध है। सहजन पत्तियों में मौजूदा बीटा कैरोटीन भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक संयोजन एंटीऑक्सीडेंट कैस्केड तंत्र के कारण तुलनात्मक रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट से अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि सहजन चाय, किसी अन्य हर्बल चाय, यहाँ तक कि एक हरी चाय जिसे ग्रीन टी के रूप में हम जानते हैं, कि तुलना में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक प्रभावी स्रोत के रूप में कार्य करती है। सहजन का एक दूसरा भी यह है, ये एक एंटी एजिंग कंपाउंड के रूप में, जिसे हम जेटिन के नाम से जानते हैं, ये एक हार्मोन होता है। यह पौध विकास के हार्मोन परिवार का सदस्य है जिसे साइटोकाइनिन कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: जेटिन की खोज पहली बार अपरिपक्व मकई कर्नेल की जीन से की गई थी। जेटिन मानव त्वचा पर एंटी एजिंग से प्रभावी है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के खिलाफ विभाजित और संरक्षित करने में मदद करते हैं। जैतून सभी साइटोकाइनिन में सबसे शक्तिशाली है। 2004 के डेनिस अध्ययन के अनुसार जैतून छोटे सेल आकार को बढ़ावा देने में काफी मददगार पाया गया है, जो अधिक त्वचा युवा त्वचा के लिए काफी महत्वपूर्ण घटक है। यह सेल की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता को भी प्रभावित करता है और सेल में माइक्रोमोल्यूलर क्षति को रोकता है। सहजन में न केवल किसी अन्य ज्ञात पौधे की तुलना में हजारों गुना अधिक जैतून होता है, बल्कि यह कई पोषक गुणों से भरपूर पौधा भी है, जिसमें 90 एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरीज सहित 90 पौष्टिक यौगिक पाया जाता है।
1: तो ये तो बातें हुई कि मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे ये लाभप्रद है, और हमने ये भी सुना है कि ये पौधे की वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा।
0: किसान भाई, हम लोग तो अभी उसके औषधीय गुण या हम लोगों के लिए किस मानव के लिए, हाँ, उसमें क्या उपयोग होता है, लेकिन इसका सहजन का काफ़ी जो हमारे पौधा की वृद्धि के रूप में भी, खास करके इसमें एक हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन, जिसे जीटिन के नाम से जानते हैं, ये उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे और फसल में अधिक उपज पैदा करने के लिए जिम्मेवार बताया गया या काफ़ी सहयोगी होता है। सहजन पत्ते का छिड़काव पौधे की वृद्धि के लिए और इससे बनी हरी खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जा सकता है। सहजन पत्ती में पौधे के विकास से तो हार्मोन पाए जाते हैं। फुगनी के अनुसार ताज़ा सहजन पत्तियों के रस का उपयोग पौधों के विकास हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए प्रभावी है। इससे किसी भी फसल का उत्पादन लगभग 25-30% बढ़ सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे प्याज, काली मिर्च, मक्का, ज्वार, मिर्च, खरबूजा इत्यादि। जैतून एक प्लांट हार्मोन है जो साइटोकाइनिन समूह के सक्रिय पदार्थों में से एक है। उन्नत कृषि व्यवहार में इसका छिड़काव अन्य उर्वरकों और पानी के साथ किया जाना चाहिए।
1: जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि इसे चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है, तो इसके चमत्कार में एक और गुण शामिल है, वो है ये पानी को शुद्ध करता है और साफ करता है। तो ये हमें बताएं कि सहजन का उपयोग पानी को शुद्ध और साफ करने में कैसे किया जाता है।
0: हाँ किसान भाई, ये काफ़ी प्रचलित रहा है, चूँकि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज लोग पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया करते थे।
1: अच्छा।
0: और खास करके ग्रामीण महिलाओं द्वारा अत्यधिक गंदे पानी को साफ करने के लिए सूखी सहजन के बीज का उपयोग फिटकरी के स्थान पर किया करते थे।
1: अच्छा।
0: जो रिपोर्टेड भी है, सहजन की ताज़ा पत्तियों को एक सब्जी, जड़ों को औषधीय प्रयोजनों के लिए और शाखाओं का उपयोग बाड़ लगाने में भी किया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस तरह से हम देखते हैं कि सहजन का काफ़ी आज के दैनिक जीवन में, खास करके स्वास्थ्य के लिए इसका काफ़ी उपयोग है और इसका औषधीय महत्व।
1: तो आज आपने जाना सहजन के बारे में, और हम आपके लिए विषय लेकर आए थे पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। हमारे साथ डॉक्टर अभय मानकर थे और उन्होंने आपको विस्तार से बताया क्या इसकी महत्व के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, कुपोषण को कैसे दूर करता है ये, साथ ही इसके क्या क्या गुण हैं, सारी बातें यहाँ पर आपको मालूम हुई। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा, और अगले दिन आप सभी के साथ हम और एक विषय लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध ना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफी ज्यादा मदद करती है, काफी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत जरूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी, और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है, लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है, पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है, तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की जरूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, ये बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझिए कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं। और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है। और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए। और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए। जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल। और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं

वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
6: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो

0: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक है, किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों एवं भाइयों, आप जानते होंगे, जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे, तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वो फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है, तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपने फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व तो बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है, इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपना ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है, जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर, सूर्य का प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है। मीन्स इसकी कमी के बिना भी पोषक जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फॉस्फोरस है, अगर फॉस्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फॉस्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फॉस्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग, इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है, नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों, भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपना जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में इंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं, कुछ पोषक तत्व की कमी में। तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी इंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
1: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं ठीक है, उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी। जैसे मैंने बताया जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व है आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे, तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाइअमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी हमको प्रदान करता है और फॉस्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फॉस्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। जो उनके अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व है हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह है, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूंगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएं और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशेष पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं उनकी जो लाइक जो होती है ना ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे, उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदि मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में, हमारे वर्षा के पानी में घुल कर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पांचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का किसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को, मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक की बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे एक जाकर ये हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है, हमारा सीजन हो, और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या ना डालें, हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, जरूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पे जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120 60-40 मीस एनपीके डालें, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, डीएपी रख लिया और एमओपी रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दें। तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगे, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होगी, जिससे हमें उच्च आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना। कभी कभी होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज़्यादा खाते तो आपको भी ज़्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पर क्या उसका मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज़्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूँ, पीएच। आप जानते हैं पीएच हम करते हैं, जैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसके उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा हो जाता है, तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, मिस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारे मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होगा तो हमारे पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों और बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सपोज आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियाँ जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है, ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियाँ के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे इसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसको भी हम अपने मृदा में, मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना, कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मींस जो जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है। बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है, जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है, नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रह्मासी है, आप ईयर, होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपकी नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प। आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मर्सी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना, वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन, उससे वे फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और का फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रेजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है, तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर, 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को, बहुत कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप फसल चक्र का जरूर अपनाएं और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें, और यही है इसके लिए। और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपकी फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फास्फोरस की कमी आती है, तो फास्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक उर्वरक जो हैं, वो आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फास्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फास्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसको जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो उसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात वाला मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया है। तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोएल्जा इनोक्लेंट्स है, क्या करता है ये फॉस्फोरस जहाँ हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है जहाँ से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहाँ से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करते हैं उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए और फॉस्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए आप बहुत सारे रासायनिक खाद भी आप प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने डीएपी का नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है। और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मील में भी जान लेने से क्या होता है हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं उसको भी क्या करता है एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए, तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है ये जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है ये खाद डाल रहे हैं तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गोबर खाद में, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहां फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद, जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से इनके ट्यूब से इनके फली से क्या करना है केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में, ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया उसकी उपज अच्छी से लेनी है और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी, तो उस केस में हमें क्या होता है जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोलकर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए, जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो, देखो क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
2: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
4: Yes sir, we have seen.
5: I have seen sir.
6: I like bicycle sir.
7: I love it.
3: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me, how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
5: And mine is blue.
9: My cycle has a bell.
3: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
4: Yes, sir!
3: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
4: Yes, sir!
3: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
4: Trin, trin, trin!
3: Do it again, please.
4: Trin, trin, trin!
3: I have a red bicycle.
4: I have a red bicycle.
3: I pedal and I ride.
4: I pedal and ride.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
4: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Makes my friends move aside.
4: Makes my friends move aside.
3: The seat is blue in color.
4: The seat is blue in color.
3: The tires and pedals are black.
4: The tires and pedals are black.
3: Sometimes fast.
4: Sometimes fast.
3: Sometimes slow.
4: Sometimes slow.
3: But my bicycle is always on track.
4: But my bicycle is always on track.
3: To keep my bicycle moving.
4: To keep my bicycle moving.
3: All I need is some air.
4: All I need is some air.
3: I put on my little helmet.
5: I put on my little helmet.
3: And I go happily everywhere.
4: And I go happily everywhere.
3: Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
4: Yes, sir. It's lovely.
3: So now let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl just like you.
5: Just like us.
3: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
4: Yes, sir!
3: So here comes the song on bicycle. Listen and enjoy.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
6: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
5: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
4: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
7: माँ।
8: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
7: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
8: हाँ।
7: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
8: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
7: जी।
8: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
7: जानता हूं मां।
8: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
7: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
8: जाओ बेटा।
4: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया, और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
9: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
10: यस सर।
4: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
9: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
10: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा,
5: अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगा कर ही दम लूंगा।
4: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
10: सर, सर ये क्या? ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
5: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
11: यस सर।
5: नाथु सिंह, निशाना साधो।
11: ठीक है जी।
10: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
5: फायर।
10: सर
5: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
11: जी।
5: फायर।
10: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
5: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
10: ठीक है सर।
4: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे

0: सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए खास विषय, नए बागों की स्थापना। और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैडम। मैं आप सभी को बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और नए बाग लगाने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, उनके बारे में कृपया बताएं।
6: धन्यवाद अनु। नए बाग लगाने से पहले किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से हम पौधा लेंगे वो पौधशाला विश्वसनीय होना चाहिए, या नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई सरकारी नर्सरी पौधशाला से ही पौधा लें, एवं स्वस्थ पौधा होना चाहिए। अगर अधिक संख्या में पौधा को लगाना है, अधिक एरिया में लगाना है, तो जो विश्वसनीय पौधशाला है उसको पहले से अपना ऑर्डर दे देना चाहिए और पौधा को बुक करा लेना चाहिए। इससे है कि समय पर उनको अच्छा पौधा मिल जाएगा। यह भी देखना चाहिए कि पौधों में जड़ें अच्छी है या नहीं है। पौधों की जो मिट्टी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, या अगर वो टूट जाता है तो उसमें उससे क्या होता है कि जड़ डिस्टर्ब हो जाता है, जड़ भी साथ साथ टूट जाता है। तो लगाने अगर उस वैसा पौधा लगाएंगे किसान भाई तो हो सकता है कि वो सूख जाए, तो इन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए। और जिन भूमि में जल निकास की उचित सुविधा नहीं है उस भूमि में नींबू वर्गीय फल, पपीता एवं केला कदापि नहीं लगाना चाहिए। और किसान भाई को गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढा ठीक से भरा जाए, गड्ढे को कम से कम भूमि तल से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरना चाहिए। और जब पौधा को लगा देते हैं तो उसको अच्छी तरह से दबा देना चाहिए पिंडी को। ये सब बातें शुरू में किसान भाई को ध्यान देना चाहिए
5: जी। और अगर नए बाग हम लगा रहे हैं तो इसमें क्या जलवायु, मिट्टी और स्थान पर ध्यान देना चाहिए?
6: हाँ, जलवायु होता क्या है कि सब फल वृक्ष सभी जलवायु में अच्छा नहीं करता है, तो किसान भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि जिस जलवायु में जो फल वृक्ष अच्छा करता है, अच्छा का मतलब कि जो उपज अच्छा दे और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो जिस जलवायु में जो फल वृक्ष अच्छा करता है उसी जलवायु में उस जलवायु में उसी फल वृक्ष को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल एंड एरर मेथड से लगा दिए, कोई भी फल वृक्ष लगा दिए, यहाँ होगा नहीं तो फिर वैसे में किसान भाई को लॉस हो सकता है। अब स्थान की बात करें कि तो अगर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई, बहुत बड़ा रकबा में कर रहे हैं, तो उनको ये देखना है कि ये जो जगह है वहाँ अप्रोच है कि नहीं, मतलब कि यातायात की सुविधा है कि नहीं, रोड है कि नहीं, क्योंकि उनको तैयार करेंगे, फसल तैयार होगा तो उनको सेल आउट भी करना है, तो अधिक रकबा में लगा रहे हैं तो वहाँ ट्रक पहुँचना चाहिए तभी ठीक रहेगा, या फिर उनका जो यंत्र है, ट्रैक्टर है, दवाई लाने की सुविधा है, तो सब रोड पर होना चाहिए वो जगह। और मिट्टी की बात करें तो दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी में जिसका पीएच मान 5.5 एवं 7.5 के बीच रहता है वो फल वृक्ष के लिए अच्छा माना जाता है। और है कि बाग में पानी के निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, उचित प्रबंध नहीं होने से तो हम पहले भी बताए हैं कि पपीता, नींबू, बरगद फल ये सब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ है कि जैसे कि लवणीय एवं क्षारीय भूमि को कुछ फल वृक्ष बर्दाश्त कर लेता है, तो वो फल वृक्ष हैं जैसे कि बेर है, अमरूद है, आंवला है, बेल है, फालसा है, ये सब लवणीय मिट्टी को कुछ हद तक सहन कर लेता है। तो किसान भाई सब सर्वप्रथम अपनी मिट्टी का भी जांच शुरू में करवा लें कि मिट्टी किस तरह का है, उस अनुसार से अपना फल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फल वृक्ष यहाँ हम लगा सकते हैं।
5: जी, फल वृक्ष के किस्मों के बारे में थोड़ी जानकारी मैडम दें।
6: हाँ, यहाँ का जो हम लोग के बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का व्यावसायिक जो फल वृक्ष है वो है आम, अमरूद, केला, लीची, पपीता, ये सब हम लोग के यहाँ लगाते हैं किसान भाई, लेकिन पठारी एरिया या फिर जो जो है एरिया जो बर्दाश्त सूखा को बर्दाश्त करता है वहाँ आंवला, बेर ये सब लगा सकते हैं। तो इसके लिए है कि आम में जैसे कि अभी जर्दालू को जीआई टैग मिला हुआ है तो जर्दालू का डिमांड बहुत अधिक है, तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। अब दशहरी है, ये अर्ली वैरायटी है, गुलाब खास भी अर्ली वैरायटी है, तो अगर शुरू में मार्केट पकड़ना चाहते हैं किसान भाई तो अर्ली वैरायटी को लगाएं, या फिर टेस्ट का की बात करें बहुत अच्छी टेस्ट होनी चाहिए तो लंगड़ा यहाँ बहुत फेमस है भागलपुर में, तो लंगड़ा लोग लगाते हैं, कमर्शियल स्केल में लगाते हैं। और हम लोग का BAU का भी कुछ हाइब्रिड रिलीज किया हुआ है, जैसे सुंदर लंगड़ा है, सबरी है, जवाहर है, अलफजली है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। आम्रपाली, मलिका, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, ये सब अच्छी वैरायटी है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। अब केला की बात करें तो G9 केला है, मालभोग है, अल्पान है, रोबस्टा है। G9 का यहाँ हम लोग के BAU सबौर में कमर्शियल उत्पादन होता है, और इसका एक फ़ायदा है कि ये टिश्यू कल्चर्ड प्लांट होता है, इसमें बीमारी बहुत कम लगता है या नहीं के बराबर ही लगता है क्योंकि टिश्यू कल्चर्ड प्लांट है। और लीची की बात करें तो शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है, तो शाही है, पूर्वी है, चाइना है, देसी है, कस्बा है। देखिए इसमें देसी क्या है, देसी अर्ली वैरायटी है, तो किसान भाई अगर अर्ली मार्केट को पकड़ना चाहते हैं तो देसी को लगा सकते हैं शुरू का अगर बाजार पकड़ना है तो। और कस्बा में क्या क्वालिटी है कि ये एडवर्स सिचुएशन को बर्दाश्त करता है, तो कस्बा को भी लगा सकते हैं, इसमें आंधी तूफान से उतना फसल को नुकसान नहीं होता है।
5: जी है। अब बारी आती है बाग के रेखांकन की, तो इसे कैसे करना चाहिए?
6: देखिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बाग हम बहुत बहुत फसल लगाना चाहते हैं तो उस अनुसार से जो जितना भूमि को हम लोग तय किए हैं, किसान भाई तय किए हैं कि हमको इतना में बाग लगाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में उसको बांट लें कि यहाँ पर हमको आम लगाना है, यहाँ पर केला लगाना है, यहाँ पर पपीता लगाना है, यहाँ पर अमरूद लगाना है, उसको ब्लॉक में डिवाइड करके उसका लेआउट करना है। देखिए विधि लगाने का रेखांकन जो है डिपेंड करता है कि फल का किस्म भी कौन है और भूमि कैसा है। तो फल का कोई लंबा किस्म होता है, कोई विग्रस ग्रोथ होता है तो उसके लिए अधिक डिस्टेंस रखा जाता है, कोई छोटा नाटक किस्म का फल है तो उसके लिए कम जगह की ज़रूरत होती है। और इसको लगाने के लिए सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। फिर अपना स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सब प्रत्येक वृक्ष को अच्छी तरह विकसित होने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिल जाए और जो कर्षण क्रियाएं हैं जैसे कि इरिगेशन देना है, सिंचाई करना है, खाद देना है, वहाँ से खरपतवार को निकालना है, ये सब करने में असुविधा नहीं हो। इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए कि किस विधि से रेखांकन करना है। रेखांकन की विधि बहुत है, जैसे कि वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, पंचक विधि है, कंटूर विधि है। तो इसमें से सबसे अच्छा जो है रेखांकन वर्गाकार विधि को माना गया है। इससे पौधा से सभी जो कर्षण क्रियाएं होती है करने में सुविधा होती है किसान भाई को। तो वर्गाकार विधि जो है सबसे अच्छा है फल वृक्ष के लिए
5: जी। अब बारी आती है गड्ढा बनाने और उसे भरने की, तो इसे किस प्रकार कैसे करना चाहिए?
6: देखिए गड्ढा बनाने का है कि गड्ढा बनाएंगे, ये भी डिपेंड करता है कि मेरा फल वृक्ष कैसा है, जैसे कि बड़ा है, आम है, अमरूद है, लीची है, कटहल है, सपाटू है, आंवला है, तो इसके लिए गड्ढे का आकार 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए गड्ढे का साइज। अब उससे छोटा पौधा हम लें जैसे बेर है, सहतूत है, लेमन है, नाशपाती है, इस सब के लिए 0.75 मीटर का गड्ढा बनाना चाहिए। और उससे भी छोटा पौधा अगर है, आड़ू है, आलू बुखारा है, केला है, पपीता है, शरीफा है, अनार है, फालसा है, ये सब के लिए आधा मीटर का गड्ढा बनाना चाहिए। और गड्ढा भरने की जहाँ तक बात है तो गड्ढा इसके लिए पहले रेखांकन, इसका पहला टॉपिक हमने रेखांकन बताया है किसान भाई को, तो रेखांकन करके वहाँ पर बीच में खूंटी लगा देना चाहिए। जैसे कि अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर पे हमको पौधा लगाना है तो 10 मीटर 10 मीटर पे खूंटी गड़ा हुआ रहना चाहिए, उसी के सेंटर पे वहीं पे गड्ढा बनेगा। और फिर उसको नीचे के मिट्टी को, गड्ढा जब बनाते हैं तो नीचे के आधा मिट्टी को अलग रखते हैं और ऊपर के आधा मिट्टी को अलग रखते हैं। और नीचे के मिट्टी में जो है ऊपर वाला मिट्टी पहले भर देते हैं और नीचे वाला मिट्टी में कंपोस्ट है, कुछ अगर इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफॉस दीमक मरने वाला इंसेक्टिसाइड को डालकर उसको मिला के अच्छी तरह से फिर नीचे वाली मिट्टी को ऊपर भर देते हैं और उसको अच्छी तरह दबा देते हैं
5: जी। मैडम पौधे खरीदते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो क्या कुछ सावधानियां किसान भाइयों को लेनी चाहिए इस समय?
6: हाँ देखिए फलों के पौधे लगाने के लिए किसी विश्वसनीय या कोशिश करना चाहिए कि सरकारी पौधशाला से ही पौधे खरीदने चाहिए। उसमें और ध्यान देना चाहिए कि पौधा कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, रोगी या कीड़ा लगा हुआ अस्वस्थ पौधा को नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कलम बांधा जाता है, फल वृक्षों में क्या होता है कि कलम बांधा जाता है, नीचे का अलग रहता है ऊपर का अलग रहता है, वो भी देखना चाहिए कि नीचे का मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए, नीचे और ऊपर का जो तना का मोटाई होता है दोनों सेम होना चाहिए। पौधों की पैकिंग, जैसे कि दूर ले जाना है हमको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ले जाना है, ट्रक में लाद कर ले जाना है, तो उसका पैकिंग करवा लेना चाहिए अच्छी तरह। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पिंडी का मिट्टी टूटे नहीं, और अगर पौधा देते समय उसमें टैग नहीं लगा हुआ है तो टैग भी किसान भाई को लगवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पौधा मिल जाएगा पता नहीं चलेगा कौन सा वैरायटी है, तो टैगिंग भी करवा लेना चाहिए। पौधशाला की क्यारी से पौधों को निकालते समय मिट्टी की पिंडी पौधों की जड़ों के आसपास टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पौधे अधिक आयु के भी नहीं होनी चाहिए। अगर दूर ले जाना है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच में उसको अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए
5: जी। पौधा कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए मैडम।
6: देखिए इससे पहले एक रेखांकन जब हम लोग करते हैं तो वो तो मिट्टी ये क्या कहते हैं पिट का खुदाई हो गया, गड्ढा का खुदाई हो गया, फिर उसको हम लोग भर दिए। अब उस गड्ढे में एक दो पानी, अगर वर्षा नहीं पड़ता है तो एक दो पानी देना चाहिए जिससे कि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए, या वर्षा पड़ता है तो वो अपने आप बैठ जाएगा, उसमें पानी लगेगा तो मिट्टी अच्छी तरह गड्ढे का बैठा हुआ रहना चाहिए। और फिर जैसे पहले हम रेखांकन किए थे उसी तरह से फिर लगाते समय भी लेआउट करना है, खूंटी को गाड़ना है, जहाँ पर सेंटर है गड्ढे का वहाँ पर खूंटी लगाना है, उसी तरह से जैसे रस्सी बांध कर हम लोग लेआउट करते हैं उसी तरह से लगाते समय भी लेआउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, एकदम एक लाइन में लगेगा। तो ये ध्यान देना चाहिए किसान भाई को, फिर से क्या करना चाहिए कि लेआउट करना चाहिए, फिर से खूंटी लगाना चाहिए। ये हम सावधानी में मैं ये बता दिया कि पौधे की जड़ को जड़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और गड्ढा उतना ही हम बनाएंगे गड्ढे में कि जितना से कि वो पिंडी जो है, जो बॉल है उसका पौधा का, वो अच्छी तरह बैठ जाए। जहाँ पर जॉइंट है, जहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ निशाना है, वो नीचे मिट्टी के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो मिट्टी से करीब करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए जी। ये सब ध्यान देना चाहिए किसान भाई को।
5: और अंत में किसान भाई अंतर्वर्ती फसल के रूप में कौन कौन से पौधों को लगा सकते हैं इसकी भी जानकारी दे दें मैम।
6: हाँ देखिए, शुरू में जिसे हम लगाए पौधा तो जो फील्ड है, जो भूमि है बहुत खाली रहता है, उसमें अंतर्वर्ती फसल अगर किसान भाई लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि उनको कुछ इकोनॉमिक लाभ हो जाएगा, कुछ सेल आउट करके कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तो दलहनी फसल में अगर लेना चाहते हैं तो उनको उड़द लेना चाहिए, मूँग लेना चाहिए, अरहर, राजमा, मसूर। और तिलहनी की बात करें तो मूँगफली है, सरसों है, तिल है, ये सब लेना चाहिए। सब्जी में बैंगन, लौकी, तोरी, सहजन, लोबिया, भिंडी, हल्दी, अदरक, ये सब ले सकते हैं। और औषधीय पौधा में भी है, अश्वगंधा है, गुगल है, शंखपुष्पी है, धतूरा है, तुलसी है, धृत कुमारी है, इत्यादि को किसान भाई लगा सकते हैं
5: जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना में आपको क्या कुछ ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी बातें मैडम ने बताई हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये वार्ता, और जानकारियों से भरा ये हमारा वार्ता था। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
7: उन्नत कृषि।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की

0: डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी आपके लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपके कोर्स APP 1-1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा है और अभी आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए तो कितना अच्छा। तो आइए हम आपको आपके कोर्स का रिवीजन कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्राच्य सिंह मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो रिविजन में।
5: धन्यवाद उमा। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 1-1, उसका रेडियो रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, बट फॉर क्विक रिवीजन विल गो थ्रू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंडर में आप टर्मिनोलॉजीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जैसे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है, अल्टरनेट होस्ट, कोलैटरल होस्ट और जो भी बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज डिफरेंट बेसिस पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन द इनोकुलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनोकुलम एज वेल एज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इन सबको आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द डिफरेंट बेसिस। ओके, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज पिरामिड, ये सब टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक है जो, इसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन प्लांट पैथोलॉजी, स्पेशली द मेजर साइंटिस्ट सच एज एंटॉन डी बैरी हैं जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूएनहुक, और जो भी मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और आपका वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री है, फादर ऑफ वायरोलॉजी, और उसके अलावा भी जो भी आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हो गया। प्लस जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बटलर और बाकी मुंडकर और अदर जो भी साइंटिस्ट हैं, केसी मेहता, ये लोग सबका आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन एक बार अच्छे से देख लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर है आपका फंजाई, इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. फंजाई का से रिलेटेड आप लोग जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स की कौन कौन से फंजाइज हैं और वो मेजर फंजाइज जो कौन कौन से बीमारियां करते हैं, जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में, उनको आप कॉजल ऑर्गेनिज्म जो मेजर डिजीजेस के हैं एक बार आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीजों को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, प्लाज्मोगैमी के मेथड्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जैसे कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, ये सब किस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं किस फंजाइज में, ये पढ़ लीजिएगा. एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जो फंजाइज के हैं उनको, जैसे कि आपका उसमें है आपका सिनेमेटा, स्पोरोडोकियम, ये सब भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. फिर आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो आपके फाइलम हैं अंडर किंगडम फंजाई उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो भी सर ने आप लोगों को क्लास में बताया होगा उससे रिलेटेड फंजाइज का पढ़ लीजिएगा. प्लस बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ओके. फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, जैसे कि किस किस तरह से फ्लैजिलेशन पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है, पेरी ट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इन सारे किस किस तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्लस वो फ्लैजिलास मतलब ये तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न किस बैक्टीरियाज में पाया जाता है, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, मेमोराइज इट विथ एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, ओके. आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स विच हैज बीन टॉट इन अ क्लास बाई श्रद्धा मैडम अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जेनरेशन टाइम और सम एल्स, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट. उसके बाद बैक्टीरियाज का आप लोगों को जो भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाए हो गए होंगे वो सब उसको भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा बैक्टीरियाज को. जो क्वेश्चंस हैं जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है कि फिलअप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर्स रहेंगे एज वेल एज कुछ आपके डिफरेंशिएशन होंगे, जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए दो दिया रहेगा आपको और उनके बीच आपको डिफरेंसेस लिखने हैं. आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि राइट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जितना नेसेसिटी है, जैसे मार्क्स आपको असाइन किया गया, जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स लिखना है. बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीजें आंसर्स में आपको नहीं लिखनी है. फिलअप में ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग एंड कटिंग्स, यू शुड अवॉइड ओवर राइटिंग्स एंड कटिंग्स. ट्रू फॉल्स है तो उसमें केवल आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करेक्ट करने का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, तो उतना ही आप लोग स्टिक टू द पॉइंट. उसके बाद आप लोग ओवरऑल जो भी है, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं या जो डिफरेंशिएशन है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए डिफरेंशिएशन में विथ एग्जाम्पल्स, या 5 पॉइंट्स जितना भी लिखो, उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपको लोडिंग नहीं करनी है आंसर्स में. क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, बच्चे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे होंगे मुझे जो लगता है, तो क्लासिफिकेशन में आप जो मेजर ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा, फोकस ऑन दोज ग्रुप्स. और जो क्या कहते हैं इनके एग्जांपल्स हैं मेनली जो बिलोंग करते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, और जो मेन उनका एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा मेन जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे एस्कोमाइकोटा में आपका पाउडरी मिल्डिव है, फिर पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए कि क्या कहें कि किससे होता है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका इनका. फिर उसके बाद आपका उमाइकोटा में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्डिव, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं. लोअर फंजाइज में आपका पीथियम भी है, तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में कि आए। फिर आपका बेसिडियो माइकोटा में जैसे मशरूम्स आते हैं जो भी बिलोंग करते हैं इस फाइलम के, तो उनको भी आप एक बार कौन कौन से मशरूम्स हैं, क्या क्या है, ये जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया होगा घटक सर ने, उसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। फिर इंट्रोडक्शन मेनली आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज प्लांट डिजीजेस पे फोकस रखना है, और जो भी साइंटिस्ट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है क्लास में आप लोगों को कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मेजर जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में, और उनका मतलब क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, उसको ध्यान रखना है। ओके, आई होप सो दिस इज एनफ and you all will prepare well for the exam and perform your best in the exam. Okay, all the best for the exams.
0: Thank you ma'am. दोस्तों उम्मीद है कि ये रेडियो रिवीजन आपके कल के एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी। घबराना नहीं है, बस कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।
6: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
7: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
6: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: आप जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु KS रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी। लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बदूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक, जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी आपके लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपके कोर्स APP 121 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा है और अभी आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए तो कितना अच्छा। तो आइए हम आपको आपके कोर्स का रिवीजन कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्राची सिंह मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में।
1: धन्यवाद उमा। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जिसका कोर्स कोड है APP 121 उसका रेडियो रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, बट फॉर क्विक रिविजन विल गो थ्रू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंडर में आप टर्मिनोलॉजीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जैसे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है, अल्टरनेट होस्ट, कोलैटरल होस्ट और जो भी बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ डिफरेंट बेसिस पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन द इनोकुलम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनोकुलम एज वेल एज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। तो इन सब को आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द डिफरेंट बेसिस। ओके, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज पिरामिड, ये सब टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक है जो इसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन प्लांट पैथोलॉजी, स्पेशली द मेजर साइंटिस्ट सच एज एंटोन डी बैरी हैं जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक, और जो भी मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और आपका वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री है फादर ऑफ वायरोलॉजी, और उसके अलावा भी जो भी आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हो गया। प्लस जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जैसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बटलर और बाकी मुंडकर और अदर जो भी साइंटिस्ट हैं, केसी मेहता, ये लोग सबका आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन एक बार अच्छे से देख लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर है आपका फंजाई, इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का से रिलेटेड आप लोग जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स की कौन कौन से फंजाइज हैं और वो मेजर फंजाइज जो कौन कौन से बीमारियां करते हैं, जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में, उनको आप कॉजल ऑर्गेनिज्म जो मेजर डिजीजेस के हैं एक बार आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीज़ों को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, प्लाज्मोगैमी के मेथड्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जैसे कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, ये सब

0: ये फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं किस फंजाइज में, ये पढ़ लीजिएगा। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जो फंजाइज के हैं उनको, जैसे कि आपका उसमें है आपका सिनेमेटा, स्पोरोडोकियम, ये सब भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो आपके फाइलम हैं अंडर किंगडम फंजाई उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो भी सर ने आप लोगों को क्लास में बताया होगा उससे रिलेटेड फंजाइज का पढ़ लीजिएगा। प्लस बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ओके, फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, जैसे कि किस किस तरह से फ्लैजिलेशन पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है, पेरिट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इन सारे किस किस तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्लस वो फ्लैजिलास मतलब ये तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न किस बैक्टीरियाज में पाया जाता है, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, मेमोराइज इट विथ एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, ओके। आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स विच हैज़ बीन टॉट इन अ क्लास बाय श्रद्धा मैडम अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जनरेशन टाइम और सम एल्स, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट। उसके बाद बैक्टीरियाज का आप लोगों को जो भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाए हो गए होंगे वो सब उसको भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा बैक्टीरियाज को। जो क्वेश्चंस हैं जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है कि फिलअप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर्स रहेंगे एज वेल एज कुछ आपके डिफरेंशिएशन होंगे, जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए दो दिया रहेगा आपको और उनके बीच आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि राइट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जितना नेसेसिटी है, जैसे मार्क्स आपको असाइन किया गया, जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आंसर्स में आपको नहीं लिखनी है। फिलअप में ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग एंड कटिंग्स, यू शुड अवॉइड ओवर राइटिंग्स एंड कटिंग्स। ट्रू फॉल्स है तो उसमें केवल आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करेक्ट करने का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, तो उतना ही आप लोग स्टिक टू द पॉइंट। उसके बाद आप लोग ओवरऑल जो भी है, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं या जो डिफरेंशिएशन है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए डिफरेंशिएशन में विथ एग्जाम्पल्स, या 5 पॉइंट्स जितना भी लिखो उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपको लोडिंग नहीं करनी है आंसर्स में। क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, बच्चे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे होंगे मुझे जो लगता है, तो क्लासिफिकेशन में आप जो मेजर ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडियो माइकोटा एंड जाइगो माइकोटा, फोकस ऑन दोज ग्रुप्स। और जो क्या कहते हैं इनके एग्जांपल्स हैं मेनली जो बिलोंग करते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, और जो मेन उनका एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा मेन जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे एस्कोमाइकोटा में आपका पाउडरी मिल्डिव है, फिर पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए कि क्या कहें कि किससे होता है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका इनका। फिर उसके बाद आपका उमाइकोटा में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्डिव, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। लोअर फंजाइज में आपका पीथियम भी है, तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में कि आए। फिर आपका बेसिडियो माइकोटा में जैसे मशरूम्स आते हैं जो भी बिलोंग करते हैं इस फाइलम के, तो उनको भी आप एक बार कौन कौन से मशरूम्स हैं, क्या क्या है, ये जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया होगा घटक सर ने, उसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। फिर इंट्रोडक्शन मेनली आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, प्लांट डिजीजेस पे फोकस रखना है, और जो भी साइंटिस्ट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है क्लास में आप लोगों को कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मेजर जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में, और उनका मतलब क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, उसको ध्यान रखना है, ओके। आई होप सो दिस इज एनफ, and you all will prepare well for the exam and perform your best in the exam. Okay, all the best for the exams.
1: थैंक यू मैम. दोस्तों उम्मीद है कि ये रेडियो रिवीजन आपके कल के एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगी. घबराना नहीं है, बस कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए. बेस्ट ऑफ लक. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्य. आज हम रेशेदार फसलों के बारे में बात करेंगे और इसी क्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर सबोर्णा रॉय चौधरी मैम. मैं आप सभी को बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. और मैडम हमें आज रेशेदार फसलों के पैकेज और प्रैक्टिस के बारे में बताएंगी. मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले तो ये रेशेदार फसल क्या है मैडम, ये हमारे श्रोताओं को बताएं.
2: जी, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है जिस विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशेदार फसलें. रेशेदार फसलें एक्चुअली फाइबर क्रॉप्स है. ये कुछ अलग से टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. एक्चुअली कुछ क्रॉप है जिनको हम लोग फसल के रूप में नहीं लेके उसकी फाइबर को लेते हैं. फाइबर से तरह तरह का चीज़ें बन सकता है. जैसे आप लोग जानते हैं जैसे फसल के बीच में कॉटन, कॉटन मतलब कपास, जैसे जूट, जूट मतलब पाट, जैसे कपास पाट, इस तरह का फसलों में जैसे बनता है, जैसे बैग बन सकता है, इवन साड़ी बन सकता है उसका, उसका डोर मैट घर में बिछाई चटाई बन सकता है. ऐसे तरह तरह का चीज़ें, कार्टेन दरवाजे पे लगाने वाला पर्दा बन सकता है, ऐसे तरह तरह का चीज़ें बन सकता है. तो जितने भी फाइबर क्रॉप्स है आज के जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया के, जहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक एकदम पॉलीथिलीन के वजह से पूरा बैंड हो रहा है, उसमें बहुत आगे बढ़ के आ रहा है, उभर के आ रहा है ये सब कपास पाट इस तरह का फसलें. तो रेशेदार फसलें अपनी जगह पे बहुत तो महत्वपूर्ण है.
1: जी, अभी आपने पाट के बारे में बताया, जूट के बारे में, तो हमने भी अभी प्रदर्शनी कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो वहाँ पर जूट के जो फोल्डर होते हैं फाइल रखने वाले वो बनाए गए थे, महिलाओं के लिए पर्स बनाए गए. तो इस तरीके से बहुत ही नई नई चीज़ें बनाई गई थी. मैडम अभी हम बात करते हैं कपास के बारे में, तो उसके बारे में बताइए. हाँ, इसके पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में.
2: जी जी, कपास के बारे में हम पहले बता दें, कपास जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बिहार में उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कतें यही आती है, कपास काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है. अच्छा. तो बिहार में काली मिट्टी के ज़्यादा मिलते नहीं है, इसीलिए ब्लैक सॉइल जहाँ पे है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है. जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह का जो स्टेट्स है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है. कपास जनरली दो तरह का होता है, एक है जिनके लॉन्ग फाइबर होते हैं, मतलब लंबे फाइबर, उनको हम लोग बोलेंगे धर्मा, धर्मा या आप लोग बोल सकते हैं अमेरिकन कपास, या जिनके शॉर्ट फाइबर, छोटा जिनके फाइबर होते हैं, रेशे जिनके छोटे होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नरमा. नरमा मतलब देसी कपास. तो दो तरह का कपास होते हैं, एक अमेरिकन कपास, एक होता है देसी कपास. तो जनरली चाइना एक्चुअली, अगर आप कंट्री में बात करें तो चाइना एक्चुअली लीड ले रहा है कपास में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. लेकिन सेकेंड नंबर पर इंडिया, आपके भारत है सेकेंड नंबर पर. अगर आप स्टेट्स के बात करें तो स्टेट्स में भी बहुत सारा स्टेट्स कपास का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब कपास में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है. सो कपास के बारे में थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा बता दें, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तभी भी कोई कोई जगह पे होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होता है. तो कपास के बारे में बता दें, कपास या फिर पाट, कोई भी फसल लगाइए, इन तरह इन मतलब ये रेशेदार फसलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी को महीन करना पड़ता है, इसीलिए 6-7 हैरोइंग, प्लाउइंग, मतलब मिट्टी का जुताई करना, उसको पाटा लगाना, बहुत मिही करके ज़मीन तैयार करना पड़ता है. ज़मीन तैयार करने के बाद ज़मीन में, जैसे कपास को मैंने बोला, कपास दो तरह का होता है, देसी कपास और अमेरिकन कपास. अगर आप देसी कपास का बात करें तो देसी कपास 10 से 18 केजी के बीज दर पर हेक्टर में लगता है. अगर आप अमेरिकन कपास के बात करें तो 15 से 25 केजी पर हेक्टर के बीज दर से उसकी सीड लगता है. अगर आप लोग स्पेसिंग के बात करें तो अगर देशी कपास है उसको बहुत कम स्पेसिंग में भी हो जाता है, जैसे प्लांट टू प्लांट मतलब पौधे से पौधे की दूरी और रो टू रो एक पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो देशी कपास के बारे में हम पहले बोलते हैं, देशी कपास जो होता है उसकी 60x30 पंक्ति से पंक्ति और 30 एक पौधा से पौधे की दूरी होता है। और अगर हम अमेरिकन कपास की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति 60 रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। तो ये सब है स्पेसिंग। स्पेसिंग के बाद आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिही करके सॉइल मिट्टी को लगाना चाहिए। सॉइल के हम लोग कब लगाएंगे इसके बारे में अगर बात करें तो मई का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मई मंथ के अगर पहला हफ्ते में, शुरू के हफ्ते में हम लगा सकते हैं कपास को, या फिर मई के पहला 15 दिन या फिर मिडिल ऑफ द मई तक, मतलब बीच में बीचों बीच मई के बीचों बीच तक हम लोग कपास ले जा सकते हैं। कपास के बहुत सारा फायदे हैं। कपास के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हम कहना चाहते हैं कि कपास और पाट ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पाट में जो रेशे हम लेते हैं, फाइबर जो हम लेते हैं, वो पाट के स्टेम से आते हैं, उनकी शरीर से आते हैं, और कपास के जो रेशे लेते हैं वो उनके फूल से आते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, फूल से आते हैं। तो कपास के जब फ्लावरिंग टाइम आए या फ्लावरिंग से जब पॉट फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जूट के मतलब पाट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो पाट के जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब उनकी जब स्टेम बन रहा है, उनकी शरीर जब बन रहा है, तो उनकी शरीर जब बन, क्योंकि शरीर से ही हमें रेशे मिलने वाले हैं जी, तो इसीलिए उस टाइम में जूट के टाइम में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कपास के हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है 80 केजी पर हेक्टर के दर से नाइट्रोजन, 40 केजी पर हेक्टर के दर से P2O5 और 60 केजी पर हेक्टर के दर से पोटाशियम। ऐसे देखे हम लोग उसकी मैन्योरिंग मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जनरली बहुत कम पानी में ही ये सब कपास पाट ये सब फसल हो जाते हैं। लेकिन पहला 40 से 45 दिन के बाद शोइंग करने के बीज बुआई करने का 40 से 45 दिनों के बाद एक इरिगेशन की ज़रूरत होता है। और मैंने पहले ही बोला था कपास के फूल से हमें रेशा मिलता है, तो फूल आने तक सारे ख्याल रखना पड़ेगा। उसके पहले एक इरिगेशन और ज़रूरी होता है। अगर कभी भी इरिगेशन का कमी दिखाई दे तो 2 से 3 हफ्ते के बाद लगातार इरिगेशन देते रहना चाहिए, उसी इंटरवल में इरिगेशन देते रहना चाहिए। और कपास में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होता है। कपास के फ्लावर जो होता है उस फ्लावर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि वो फूल जब फूट जाते तो एक स्क्वायर चार कोना उसकी फूल में कॉटन जैसा दिखने लगते हैं, मतलब कपास के रेशा आने लगते हैं। कपास के रेशा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस फूल को जो कलेक्ट करके रखते हैं, एक जगह करके रखते हैं, उसको कभी भी पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उस फूल को पानी में रखिएगा उसकी जो रेशा की क्वालिटी है, रेशा की जो गुणवत्ता है, वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए एकदम सन में, एकदम खुली धूप में उनको सूखा लेना चाहिए, ताकि चीटा मटेरियल जो लगा हुआ रहता है, फूजी मटेरियल जो लगा हुआ रहता है, वो सूख जाए। उसके बाद ही उसकी कॉटन की कलेक्शन होती है, उस फूल से, उसकी स्क्वायर बार्ड से उस कॉटन की कलेक्शन होती है, कॉटन को लिया जाता है, उसकी रेशे को लिया जाता है। अभी सबसे गुरुत्वपूर्ण बात जो है कपास में, कपास जो हमारे टोटल ईल्ड जो देता है कपास के ईल्ड महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कपास होता है। अगर महाराष्ट्र छोड़ दीजिएगा तो लगभग 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर में कपास की रेशा आते हैं। फाइबर जो टोटल फाइबर यील्ड है कपास के 15 से 20 क्विंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपके साड़ी बनता है, बहुत सारे चीज़ें कॉस्मेटिक्स बनते हैं कपास से, बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
1: जी, तो ये हो गई बात कपास की, और पाट के पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में मैडम हमें बताइए।
2: जी, अगर हम लोग पाट के बारे में बोलेंगे तो पाट का जैसे साइंटिफिक नेम है कॉर्चोरस, कॉर्चोरस मतलब ये है जूट, और कपास के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो कपास का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, गॉसिपियम मतलब कपास मतलब कॉटन। तो हम लोग जूट के बारे में अभी बात करेंगे, पाट के बारे में। पाट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, सबसे अच्छा लीडिंग स्टेट है आपके वेस्ट बंगाल, बंगाल जो है, क्योंकि बंगाल के पास नदियां बहुत है, क्योंकि जूट होने के पहले, मैंने पहले ही बोली थी, जूट के स्टेम से फाइबर निकालते, उनकी रेशा जो है उनकी शरीर से निकालते, इसीलिए उनकी रेटिंग मतलब उसको गलाना, उसको पचाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पानी की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए फ्री फ्लोटिंग वाटर मतलब चलता हुआ क्लीन पानी, साफ सुथरा पानी बहुत जरूरत होता है। इसीलिए बंगाल बहुत ज्यादा लीड ले रहा है, बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार में भी बहुत सारा एरिया है जहाँ पे जूट में बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है। जूट जो है एक्चुअली इंदो बर्मा एक जगह था, उस जगह से जूट के पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पाट देश में आया था। पाट में लीड लेने वाला कंट्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास बहुत पानी है, बहुत नदियां है, इसीलिए बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो जूट में लीड ले रहा है। लेकिन पूरा वर्ल्ड में 60% प्रोडक्शन इंडिया देता है, भारत आपके जूट का पाट का 60% प्रोडक्शन भारत कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। कपास में बहुत जगह बिहार और वेस्ट बंगाल छोड़ के आसाम में भी, सॉरी जूट आसाम में भी बहुत होता है ये पाट। पाट के लिए भी मैं फिर से बोल रही हूँ, पाट के सीड बहुत मिही होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, इसीलिए पाट बहुत अच्छे से मिट्टी अगर तैयार नहीं रहे तो उस जगह पे पाट होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मिट्टी बहुत 6-7 हैरोइंग प्लाउइंग करके, मिट्टी का जुताई करके, उसको पाटा लगा के बहुत मिही करके मिट्टी बनाना पड़ता है। जूट भी दो तरह का होता है, एक मीठा पाट एक तीता पाट। हम लोग अगर तीता पाट के बात करें तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉर्चोरस कैप्सुलरिस, अगर हम लोग मीठा पाट के बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉर्चोरस ऑलिटोरियस। एक्चुअली जो तीता पाट होता है उसको हम लोग व्हाइट जूट भी बोलते हैं, व्हाइट मतलब सफेद, क्यों सफेद बोलते, उनसे जो रेशा निकलते हैं वो सफेद कलर के होते, रंग के होते, इसीलिए हम व्हाइट जूट सफेद जूट भी बोलते हैं तीता पाट को। और मीठा पाट को हम लोग तोशा जूट भी बोलते हैं। तोशा जूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो स्टेम से, उनके शरीर से जो रेशा निकलते हैं वो थोड़ा क्रीमिश कलर के होते हैं या पीला, हल्का पीला रंग के होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग तोशा पाट बोलते हैं। ये जो तोशा पाट ही सबसे ज्यादा होता है, मतलब ऑलिटोरियस जो है तोशा पाट मतलब आपकी मीठा पाट, मीठा पाट ही सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये दोनों पाटों के बारे में ही हम बताएंगे, क्योंकि किसी किसी जगह पे मीठा पाट होता है, किसी किसी जगह पे तीता पाट होता है, इसीलिए दोनों जगह पे हम मोटा मोटी बोलेंगे। पाट के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पाट ऐसा एक फसल है जिसमें 150 सेंटीमीटर पार एनम पर ईयर में अगर 150 सेंटीमीटर भी पानी मिल जाए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से पूरा वर्षा भर पानी रहे तो बहुत बढ़िया करता है। पाट जो है जनरली फेब्रुआरी टू अप्रैल लगाया जाता है, फेब्रुआरी माह से अप्रैल माह तक लगाया जाता है। फेब्रुआरी जो तीता पाट होता है उसको प्रेफर करते हैं फेब्रुआरी मार्च, फेब्रुआरी मंथ या मार्च मंथ तक तीता पाट को लगाया जाता है। मीठा पाट जस्ट उसके एक महीना पीछे पीछे चलता है। जैसे मीठा पाट के लिए मार्च टू अप्रैल, अप्रैल तक ही जनरली पाट की शोइंग हो जाते हैं। जो भी पाट का शोइंग होता है, शोइंग के भी जो सीड रेट है, सीड के जो दर है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सीड रेट के बारे में हम बताएं, सीड रेट जो है मीठा पाट के लिए थोड़ा कम लगता है, तीता पाट के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। मीठा पाट के लिए जो सीड रेट है, तीता पाट के लिए जो सीड रेट है वो 6-8 केजी पर हेक्टर के दर से लगता है। जो मीठा पाट के लिए सीड रेट है वो 4-5 केजी पर हेक्टर के दर से लगता है। अगर हम स्पेसिंग के बात करें तो पंक्ति से पंक्ति के दूरी 30 सेंटीमीटर तक और पौधे से पौधे के दूरी 5-7 सेंटीमीटर तक रखेंगे मीठा पाट के लिए। सो मीठा पाट के लिए हम लोग पंक्ति से पंक्ति के दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के दूरी 5-7 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर हम लोग ये तीता पाट के बारे में बताएं, अगर हम मीठा पाट थोड़ा सा कम लगता है। मीठा पाट में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर। हम एक बार और क्लियर कर दे, अगर हम सीड रेट के बात करें तो सीड रेट 6 से 8 केजी पर हेक्टर के दर से तीता पाट मतलब सफ़ेद जूट के लिए लगेगा, सफ़ेद पाट के लिए लगेगा, और 4 से 5 केजी पर हेक्टर ये तोशा जूट, तोशा पाट या फिर आपके मीठा पाट के लिए लगेगा। ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर बाई 5 से 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, ये मीठा पाट के लिए लगेगा। और 30 सेंटीमीटर पंक्ति की पंक्ति से दूरी और 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, ये तीता पाट के लिए लगेगा। मतलब तीता पाट के लिए स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और मीठा पाट के लिए स्पेसिंग थोड़ा सा कम लगता है। मैं महीने के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, फरवरी मार्च हम लोग ले लेंगे तीता पाट के लिए, और मार्च के बाद से अप्रैल मई हम ले लेंगे मीठा पाट के लिए। हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताएं, जो पोषक तत्वों की जो उपयोग करना है, अगर हम मीठा पाट के बात करें तो 60 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन के दर दे दीजिएगा, 40 केजी पर हेक्टर P2O5 मतलब फास्फोरस दे दीजिएगा, और 60 केजी पर हेक्टर पोटाशियम, ये तीता पाट के लिए। अगर हम मीठा पाट के बात करें, मीठा पाट में थोड़ा सा कम लगता है, तीता पाट में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तीता पाट में हम लोग मोटा मोटी लगभग सेम ही देंगे, तीता पाट में 80 केजी पर हेक्टर के दर से नाइट्रोजन और बाकी 40 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटाशियम देंगे पर हेक्टर के हिसाब से। और मीठा पाट में थोड़ा सा कम, 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटाशियम दे देंगे। तो मीठा पाट में सीड रेट भी कम लगता है, स्पेसिंग भी कम लगता है, और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट मतलब फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा कम लगता है। ये जितने भी पाट के बारे में हम बताएं, पाट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वेजिटेटिव स्टेज का, क्योंकि उनकी जो स्टेम होता है, स्टेम लंबा हो वो ही अच्छा है। जितना पौधे लंबा, मोटा मोटी 9 फिट तक ये पौधे जा सकता है, 150 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं ये लंबे पौधे ही जनरली प्रेफरेबल है, क्योंकि उनकी जो रेशा होता है वो बिना कटे हुए लंबे रेशा निकलता है, जो क्वालिटी एस्पेक्ट से बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। जो भी उस मीठा पाट से यील्ड होता है, यील्ड के लगभग मामले में 13 क्विंटल तक हम फाइबर ले सकते हैं पाट से। अगर हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर के दर से भी हम लोग को फाइबर रेशा मिल सकता है पाट से। पाट के सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आता है उसकी रेटिंग प्रोसेस, मतलब उसको गलाना सड़ाना, पाट काटने के बाद पाट के जो लंबे लंबे स्टेम्स होते हैं उस स्टेम्स को ऐसे पानी में रखना चाहिए जिस पानी में बहुत ही शांत पानी हो, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लोटिंग हो, धीरे धीरे चल रहा है, एकदम क्लीन साफ सुथरा पानी है। इसमें हम लोग पाट के जो स्टेम्स है उसको काट के, मतलब पाट के एकदम नीचे से, ग्राउंड से एकदम नीचे, जमीन के एकदम नीचे से, क्योंकि जितना लंबा पाट उतना ही अच्छा क्वालिटी है, उतना ही अच्छा रेशा मिल सकता है। उसको पहले 2-3 दिन के लिए खड़ा करके हम लोग उस पानी में रख देंगे। 2-3 दिन खड़ा करके रखने के बाद धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि उसकी जो रेशा है वो लूज होने लग रहा है, उसकी जो स्टेम्स है, स्टेम्स से उसकी जो काठी, पाट काठी से थोड़ा थोड़ा ढीला होने लग रहा है, लूज हो रहा है। तो उस पाट को लेयर बाय लेयर सुला देना है, सो के रखना है, मतलब हॉरिजॉन्टली उसको बिछा देना है, एक के बाद एक, एक लेयर बाय लेयर उसको रखना है। उसको भी लेयर बाय लेयर भी 10 दिन तक रख सकते हैं लेयर बाय लेयर, लेकिन लेयर बाय लेयर रखते वक्त हमें एक चीज की ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब लेयर बाय लेयर रखेंगे तो कोई भी भारी चीज़ देके उसको ऊपर से दबा देना पड़ेगा ताकि वो पूरा डूबा हुआ रहे, 10 सेंटीमीटर तक वो पानी के नीचे डूबा हुआ रहे। इसीलिए ये लेयर बाय लेयर जैसे उसको सुला दिए, पहले 2-3 दिन खड़ा करके रखने 2-3 दिन के बाद उसको सुलाना पड़ेगा। जब वो स्टेम्स को हम लगातार एक के ऊपर एक करके सुला रहे तो एक लेयर बन जाएंगे। लेयर को हम लोग और 10 दिन के लिए, आगे के 10 दिन के लिए सो देंगे। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। कोई लकड़ी का या फिर बनाना केला का कोई स्टेम्स देके उसको ऊपर में भारी नहीं दे सकते, मतलब किसी भी चीज़ों से उसको दबाना है, दबा के पानी के अंदर कर देना है। लेकिन ध्यान में रखना है कोई लकड़ी, ऐसा लकड़ी ना हो जिससे से कलर निकल रहा है, जिससे से रंग निकल रहा है, या फिर केला पानी में आता है तो उसमें काला काला रंग छोड़ता है, और उससे उस जूट के पाट के स्टेम्स को दबाना नहीं है, क्योंकि वो वो रंग जो है वो रेशा में आ जाएगा, तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कोई ईटा का टुकड़ा रख सकते हैं, कोई पत्थर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रख सकते जिससे हमें रेशा में कोई दाग आ सकता है, उनकी कोई क्वालिटी खराब हो सकता है। तो 10 सेंटीमीटर तक उसको, 10 सेंटीमीटर नीचे उस पानी के, 10 सेंटीमीटर नीचे तक उसको डुबा के रखना है और अगले 10 दिन के लिए रखना है। जूट के जो रेशा है उसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे उसकी काठी से अलग करना पड़ता है। पाट के जो रेशा है उसको काठी से जब अलग कीजिएगा तो बहुत ध्यान से रखिएगा, उसको धीरे धीरे हिलाना पड़ता है ताकि और थोड़ा लूज हो जाए और थोड़ा ढीला हो जाए, और हाथों से एक एक करके उसको, यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है उसका रेशा निकालना। एक एक जो किसान भाई ये काम करते हैं उनको शायद पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मुश्किल काम होता है उसकी रेशा निकालना। तो धीरे धीरे उसकी रेशा निकलना है। कभी भी कोई लकड़ी का लाठी लेके, काठी लेके उसको धक्का नहीं लगाना है कि धक्का लगाते जल्दी जल्दी करने के चक्कर में धक्का लगा दिए तो तब भी वो रेशा टूटने लगेगा, और रेशा टूटा आपकी क्वालिटी खराब, तो वो बाजार में नहीं बिकेंगे। जितने लंबा, जितना सुंदर, फाइन, चमकीले, चकचक वाला रेशा मिलेंगे उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ों से जब हम लोग जूट के रेशा निकालते हैं, पाट के रेशा निकालते हैं, तो कोई भी स्टिक या फिर कोई भी लकड़ी लेके उसको पाट काठी को धक्का लगा के नहीं निकलना है। अपने हाथों से धीरे धीरे धीरे धीरे खींचते हुए, वो पानी में वैसे भी सर गया, गल गया, तो धीरे धीरे खींचिएगा वो सरक सरक के निकल जाएंगे। निकल के अच्छे से पानी में धो के उसको लेना है, उसके बाद एकदम शेडेड एरिया में सुखाना है ताकि वो पूरा मसरीन मिहिम हो जाए और काम में आ जाए। उसके बाद आगे का प्रोसेस, जैसे फैक्ट्री में प्रोसेस होता है उसमें पॉलिशिंग होता है, उसको कॉमर्शियल यूज़ होता है उसको लेके, इस तरह का कॉमर्शियल यूज़ होता है। इस तरीके से हम लोग पाट को यूज़ कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने रेशेदार फसलों के पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में जाना, मैडम ने आपको बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे रेशा निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप सावधानियों के साथ जो है इसका इस्तेमाल करें जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं इस रेशे से। तो अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़ बात
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है, अच्छा करने का और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है? कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमज़ोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज़ एक ही समय पर सोने जाएं और रोज़ एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है, तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं। अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो भी आपको नींद अच्छी आती है या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप, अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना। लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है। लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंजाइटी के, स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंजाइटी तक पहुंच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंजाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं, तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। और अगर हम बात करें कि बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नजरअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं, नींद खान पान इन सारी चीज़ों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा ख़त्म होने लगती है और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आप, आपका दिमाग ही, आपका मन ही लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, रोने का मन करेगा, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे, और इसके साथ ही मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे दिखता है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग ख़त्म हो चुका है। और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है और फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ेंगे पे तो भूल जाएंगे, तो ऐसे में आप अचानक, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीज़ें बोलेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये मानसिक थकान है, आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रिसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है, पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन परिवर्तन अचानक तेज हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं, आप एंजाइटी आपको होती है। तो अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें, और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमजोर कर देता है, और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमजोर बनाता है, और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज़ जो तरक्की की है, आपने हर रोज़ जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोलें कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से, परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है, तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, और एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी ज़िंदगी, सारी चीज़ें प्रभावित होगी। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लें, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, और ज़रूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जो एग्जाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है तो उसे बात करें, उसका साथ दे और जरूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम जरूरी है, अच्छा खान पान जरूरी है, योगा जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं आप सभी को बता दूँ, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: सर। सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है, परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती ना करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं। और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्टी ड्रिल का उपयोग करते हैं।
1: जी सर, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
2: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फायदे हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं। जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है, और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं। इसमें सबसे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी विधि बुवाई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुआई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्रिक है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता।
1: जी सर, धान की सीधी बुआई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
2: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें, और समतलीकरण करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पर कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं, उनका समुचित उपयोग होता है। और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है, पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है, और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेवल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं और साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
2: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ पर खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी

0: प्रभेदों की बात करें तो राजेंद्र महसूरी एमटीयू 1001 सबौर अर्जल सहभागी सुष्क्रमराज, इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
0: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत ये मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस बार का ही लें, इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था, और उसके बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम है जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
1: सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूंकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 केजी नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 केजी आप फास्फोरस की मात्रा और 60 केजी पोटास की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नेत्रजन की 1/3 मात्रा तथा स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12-32-36 के माध्यम से भी पोषक तत्व तो हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण

0: चिंतन कर लिया तो आप धान की सीधी बुआई और धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना ना हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिन, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पाइरेजोसल्फिरॉन। ये पाइरेजोसल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। यह खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पाइरेजोसल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है, जिसको कि हम 250 ml दवा है जो कि 1 हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोप है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 2,4-D इथाइल इस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुशंसा हमारे यहाँ की पाइरेजोसल्फिरॉन एवं बिसपायरीबैक सोडियम का हम इस्तेमाल है जो कि बुआई के 15 से 20 दिन के बाद करें तो हम अधिकतम घासों का है जो कि कंट्रोल कर लेते हैं आराम से। इसके बाद एक और चीज़ बचती है कि सिंचाई एवं जल प्रबंधन। जहाँ तक धान की सीधी बुआई का बात है, हम सिंचाई के बाद सामान्यतः क्या होता है कि उचित नमी रहती है तो हम धान को बिना सिंचाई के भी हम खेतों में लगा लेते हैं। सीधी बुआई की फसल जमाव की अवस्था में जल भराव से समानता है जो कि उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से 1 महीना पहले कर देना चाहिए। समानता हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए और हमको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सामान्यतः हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं। तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज़ होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। सामान्यतः अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहाँ उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक पर निर्धारित करती है। इसलिए हमें बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में नमी उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम धान की सीधी बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं और इससे न केवल हमको हमारी लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन बराबर रहने के बावजूद है जो कि हमारे आर्थिक जो लाभ है उसमें बढ़त प्रदान करती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है धान की सीधी बुआई में आपको क्या कुछ करना है। तो आशा करते हैं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको अब भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हो। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं, फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर जरूरत से ज्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा हो सकता है। और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेजी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें। और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं। और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं। और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें। और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं। और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
3: Ladies first.

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: और जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप

ब्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, निनवा, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दे। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
3: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं, जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है, जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र के तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है। पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्राय हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
2: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
3: इंजन चालित छिड़काव यंत्र
2: है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
3: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की अश्वशक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
2: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
3: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और जिनको धूल की फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
2: जी,
3: भुड़काव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुड़काव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिलकर जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है
4: जी।
3: इसलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह
4: जी।
3: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हाथे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहां पे भी अलग से हम
4: डाल सकते हैं जी।
3: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे, इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा।

0: जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे, सेम चीज यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
1: जी।
0: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
1: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित, जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं, उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए भी इन दवाओं के विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
1: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे, तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं, लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
1: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
1: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
0: हर एक जगह फैल सकता है उनकी सहायता से
1: जी।
0: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए
1: जी।
0: ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें, जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
1: जी। डब्बे पे भी लिखा होता है, उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद, जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को, अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
1: जी,
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुला में नहीं रखना चाहिए। अगर खुला में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
1: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने तो में उसको कोई
0: इसमें सीधे जान जा सकती है, और उसका कोई उपाय नहीं है
1: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का, उस समय ये खराब हो गया।
1: बिल्कुल।
0: इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहां भी घोल या दवा

0: गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
1: ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
1: पड़े, फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय।
1: तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई। हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे, जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है, तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए भी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में 2 या 3 बार या 5 बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर 1 यह है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके, बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए। कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें।
1: जी,
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से।
1: जी
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छान कर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें।
1: जी।
0: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा।
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोल कर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है।
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
1: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पर हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो तो,
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें। अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
1: जी।
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर, ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं। अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है, तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए हैं खेत में लेके अपना मशीन।
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
1: जी।
0: उसका गैप को जो रहता है, जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
1: जी।
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद
0: कर देगा। ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जाँच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें चार स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं
1: जी।
0: वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास टू स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें। जो ब्लोअर लगाए हैं, जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं, जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें। ठीक है, अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग, जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है। ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्त चालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद

0: लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए। ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर, और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है। गंदगी जमा होगी तो आपके कूलिंग सिस्टम जो है, शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढंप कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियाँ थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं, तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 83, अध्याय 7, वर्षा बहार।

0: इस पार्ट के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पार्ट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा बहार, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, मुकुट धर पांडेय। भाई इसने तो हंस उड़ा दिए। यहां इस पृष्ठ पर वर्षा से संबंधित एक सुंदर चित्र प्रस्तुत है। चित्र में दो और पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी के ऊपर एक बालक और बालिका रंग बिरंगी छतरी लिए नृत्य कर रहे हैं, दूसरी ओर की पहाड़ी के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं जिनसे एक पानी की धार बहती हुई नीचे आ रही है। पहाड़ी के नीचे हरियाली है और वहां कुछ बालक बालिकाएं एक कुत्ते के साथ वर्षा में भीगते हुए आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर नीचे की ओर एक पुरुष और एक महिला छाता लिए चल रहे हैं। चित्र के अगले भाग की ओर एक बालक छाता लिए चल रहा है, वहीं एक दूसरा बालक केले के पत्ते को लिए स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक बालिका और एक पुरुष कपड़े अथवा पॉलीथीन के माध्यम से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए हंसों की कतार जा रही है, भूमि पर एक मेंढक बैठा हुआ है और एक मोर अपने पंखों को फैलाए वर्षा को निहार रहा है। पृष्ठ संख्या 84, कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडेय का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडेय के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। यहां मुकुटधर पांडेय का एक रेखाचित्र दिया गया है। रेखाचित्र के नीचे उनका जन्म वर्ष 1895 और मृत्यु वर्ष 1989 अंकित है। पृष्ठ संख्या 85, पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता, क्रोध और विरोध। दो, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है, पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। तीन, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। चार, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बालक बालिकाएं रंग बिरंगी छतरियां लिए वर्षा का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 86। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। ख, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। यहां एक मोर का चित्र है। मिलकर करें मिलान, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां स्तंभ एक में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ दो में दिए गए हैं। स्तंभ एक की पंक्तियों का स्तंभ दो की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहां एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। स्तंभ एक से संबंधित पंक्तियां हैं। एक, पानी बरस रहा है झरने भी ये बहे हैं। दो, चलती हवा है ठंडी हिलती हैं डालियां सब। तीन, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। चार, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। पांच, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। छः, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। स्तंभ दो से संबंधित पंक्तियां हैं। एक, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। दो, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। तीन, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। चार, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। पांच, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। छः, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? ख, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। यहां दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है? क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक तालाब है और वर्षा का जल उसमें गिर रहा है। तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही हैं और तालाब के किनारे एक पक्षी और एक मेंढक बैठे हैं। पृष्ठ संख्या 87। ग, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, इसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। घ, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है, इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? अणा, कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ख, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। संकेत, आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। ग, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीव। ग, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में उड़ते हुए हंसों की एक कतार है। आपकी रचनाएं। क, कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। ख, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। ग, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए, उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों। रिपीट, पृष्ठ संख्या 88। शब्द से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द यहां दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आपकी सुविधा के लिए वर्षा से संबंधित एक शब्द उत्साह दिया गया है। अब आप अपनी विवेकानुसार दिए गए 6 रिक्त स्थानों में वर्षा से जुड़े शब्दों को लिखिए। कविता की रचना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। यहां वर्षा बहार को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार वसंत का दूसरा नाम है। यहां वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इस पृष्ठ पर एक जंगल का चित्र है। घनघोर वर्षा हो रही है, चारों ओर हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं, जगह जगह फूल खिले हुए हैं। बीचों बीच एक तालाब है जिसमें बत्तख तैर रही हैं और एक बगुला खड़ा हुआ है। तालाब के किनारे एक मेंढक और एक पक्षी पत्थर पर हैं। एक ओर एक हिरन इन्हें देख रहा है और एक मेंढक इनकी ओर मुंह कर बैठा है। पृष्ठ संख्या 89। कविता का सौंदर्य। क, यहां कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रही हैं, उन पर घेरा बनाइए। रिक्त स्थान, बहार के मन को लुभा रही है। संकेत के लिए कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, बारिश, बरसात, बरखा, वृष्टि। पंक्ति संख्या 2, रिक्त स्थान में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। संकेत शब्द हैं, आकाश, गगन, अंबर, व्योम। पंक्ति संख्या 3, बिजली चमक रही है, रिक्त स्थान गरज रहे हैं। शब्द संकेत हैं, मेघ, जलधर, घन, जलद। पंक्ति संख्या 4, रिक्त स्थान बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। शब्द संकेत हैं, जल, नीर, सलिल, तोए। ख, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जंच रहे हैं और क्यों। विशेषण, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिने अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य शब्द है। क, यहां दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक पंक्ति और उसके समक्ष विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। यहां एक तालिका है जिसके तीन स्तंभ हैं। स्तंभ के पहले भाग में पंक्ति, दूसरे में विशेषण और तीसरे भाग में विशेष्य शब्दों के लिए उपयुक्त स्थान दिया गया है। पंक्ति एक, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आपकी सुविधा के लिए विशेषण शब्द दिया गया है अनूठी और विशेष्य के लिए शब्द दिया गया है छटा। पंक्ति संख्या दो, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। अब आप इसके समक्ष विशेषण और विशेष शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। पंक्ति संख्या तीन, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब आप समक्ष दिए गए रिक्त स्थानों में विशेषण और विशेष शब्द छांट कर लिखिए। पंक्ति संख्या चार, चलती हवा है ठंडी हिलती हैं डालियां सब। अब आप विशेषण और विशेष शब्द इस पंक्ति से ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक झरने का चित्र है जो वर्षा के जल से और अधिक विस्तार में बह रही है। पृष्ठ संख्या 90, ख, यहां दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। यहां प्रत्येक शब्द के आगे दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक विशेष्य के लिए आपको दो विशेषण सोचकर लिखने हैं। एक, वर्षा, दो, पानी, तीन, बादल, चार, डालियां, पांच, गुलाब। ऋतु और शब्द, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से छह ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। यहां दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। यहां ऋतुओं से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं धूप, लू, बयार, हिमपात, वृष्टि, पाला, ताप, जाड़ा, झड़ी, ठिठुरन, धुंध, कोहरा, आंधी, उमस, हरियाली, बहार, तपन, जेठ, सावन, रिमझिम, शीतलता, ओस, ठंडक, बादल फटना, कड़ाके की ठंड। अब इन शब्दों से आपके मन में कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, ये आप कल्पना कीजिए और इसी के अनुसार आगे दिए गए ऋतुओं के समक्ष इन शब्दों को लिखिए। संकेत संख्या एक, वसंत ऋतु सामान्यतः मार्च अप्रैल। अब आप वसंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या दो, ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः मई जून। अब आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या तीन, वर्षा ऋतु सामान्यतः जुलाई अगस्त। अब आप वर्षा ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 91, संकेत संख्या चार, शरद ऋतु सामान्यतः सितंबर अक्टूबर। अब आप शरद ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या पांच, हेमंत ऋतु सामान्यतः नवंबर दिसंबर। अब आप हेमंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 6, शिशिर ऋतु, सामान्यतः जनवरी फरवरी। अब आप शिशिर ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक पेड़ का चित्र है। पेड़ के अलग अलग भागों को अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें अलग अलग ऋतुओं में एक पेड़ के अलग अलग स्वरूपों को दिया गया है। पृष्ठ संख्या 91, पाठ से आगे, आपकी बात। क, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? ख, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। ग, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं? घ, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? अण, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर और आस पड़ोस से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक मुर्गी का चित्र है जो वर्षा से बचाने के लिए अपने चूजों को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी है। पृष्ठ संख्या 92, साक्षात्कार। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। क, अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। संकेत, आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं आदि। ख, अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बिल्ली वर्षा के जल के भरने से उसके ऊपर छतरी को उल्टा किए तैर रही है और कुछ गा रही है। वर्षा के दृश्य, वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। ख, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देते हैं? क्यों, पता कीजिए। ग, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए? घ, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए अनुभव किया है? संकेत, चींटी, गाड़ियां, बच्चे आदि। वर्षा में ध्वनियां। क, कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। ख, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं? यहाँ वर्षा की एक बूंद का तबला बजाते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 93, सृजन। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद इस प्रकार है, हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थीं, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब यहाँ दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। आपके अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं जो कि आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्य हैं। इनका उपयोग करते हुए एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। ये संकेत हैं, बारिश के बाद उपवन में सैर, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम, वर्षा से जुड़े गीत, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिने अब, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। रिपीट, इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 94, आज की पहेली। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। यहां कुछ पहेलियां हैं और उनके साथ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन पहेलियों को बूझने का प्रयास कीजिए। यहां एक चमकते हुए सूर्य का चित्र है और उसी के साथ पंक्तियां हैं, जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर बताइए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक फसल का चित्र है और इसी के साथ पंक्तियां हैं, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। अब आप इन पंक्तियों के द्वारा इस मौसम का नाम सोचिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बादल है और उससे बरसती बूंदें हैं। इसके साथ जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं, पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर सोचिए। यहां इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उसके साथ ही पहेली है, पत्ता पत्ता गिरता जाए। यहाँ इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उन फूलों के चित्र के साथ ही पहेली इस प्रकार है, फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। तो आप बूझिए ये कौन सी ऋतु है। यही इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं और उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है, पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। तो अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से पहेली का उत्तर सोचें। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें ऊन की बनी हुई टोपी और मफलर का चित्र है। उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है, बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस ऋतु के नाम को सोचिए। झरोखे से आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी है उसे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। आइए अब पढ़ते हैं इन्हीं की लिखी एक अन्य कविता, ग्रीष्म का अंश। ग्रीष्म, बीते दिवस बसंत के, लगा ज्येष्ठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास, अवनी आतप से लगी जलने सब ही हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल, रवि मयूख के ताप से झुलस गए बन बाग, सूखे सरिता सर तथा नाले कूप तड़ाग, लगी आग पुर ग्राम में चिंता बढ़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे भय सदैव उर्धार। यहां इस पृष्ठ पर एक चमकते हुए सूर्य का चित्र भी है। पृष्ठ संख्या 95, साझी समझ। अब इस कविता पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। खोजबीन के लिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु पर अधिक जानकारी के लिए यहां एक YouTube लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है, https://www.youtube.com/wattch?v=capital T 6 capital V capital A capital V capital O C capital U B capital Y capital U। आंधी पानी, इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है, https://www.youtube.com/wattch?v=capital D-capital Q capital B E capital N 2 U 8। वसंत, वसंत से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहां एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है, https://www.youtube.com/wattch?v=capital P 5 Z -capital V 8 1 capital Y 0। ऋतुएं, इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहां एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है, https://www.youtube.com/wattch?v=i-y-v-x-a-e-2 8। यहां यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यंकन मंजू कुमारी, वाचन स्वर चांद मोहम्मद, निर्माण संग्रह।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आरजे अनु को और ये है हमारा खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। अभी हम बात करेंगे, जी हाँ, वैसे तो जो खेती है वो सिर्फ हल और जो खेत है वहीं तक सीमित नहीं रह गई है, इसमें किसानों की सहायता के लिए बहुत सारे ऐप भी डेवलप किए गए हैं जहाँ से वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे योजनाओं के बारे में हो, चाहे आपको खेती से जुड़ी कोई भी दिक्कतें आ रही हों, आप उन ऐप का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि हमारा विषय है सूचना क्रांति, मोबाइल ऐप का कृषि में उपयोग। इस विषय को लेकर हमारे बीच है डॉक्टर चंदन कुमार पांडा, जो कि वैज्ञानिक हैं प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू मैडम।
2: डॉक्टर साहब, सूचना और एक उपयोगी सूचना, क्या अंतर है, ये क्या होता है?
3: थैंक यू मैडम। एगेन, तो पहले जितना किसान बंधु हमारा FM रेडियो स्टेशन सुन रहे, सबको थैंक यू बोलूँगा, और उसके साथ मैं प्रसार शिक्षा की तरफ से भी आप सबको हार्टफेल ये बताता हूँ। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, जो सूचना और मतलबी सूचना बा जो भी बोले यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होता है, देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जब सूचना आता है, सब सूचना सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्यों? आप देखेंगे तो मोबाइल में जाएंगे तो सोशल मीडिया में जाएंगे तो बहुत तरह का सूचना आता है आपके पास। मान लिया मेडिकल रिलेटेड कुछ सूचना आ गया, इमीडिएटली उस तरह का इन्फॉर्मेशन की आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन वैल्यूलेस हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उसी तरह से कोई किसान के पास, मान लिया हमारा सबौर बा भागलपुर एरिया में किसान है, तो उसके हम दूसरी तरह का कुछ क्रॉप के बारे में, यहाँ का किसान क्या गेहूँ हुआ, मकई हुआ, डिफरेंट टेबल जो वेजिटेबल्स हुआ, उसके बारे में पता करना चाहते हैं, उसके हम ग्रेप्स के बारे में बताएंगे तो उनको क्या इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहिए जो उनका ज़रूरत है, और उसी आधार पर आप भी मैं डिस्कस भी करूँगा मोबाइल ऐप्स में, जिसे डिफरेंट टाइप का मोबाइल से ऐप है, बहुत मोबाइल ऐप्स है, आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का गूगल प्ले स्टोर में जाके एक बार टाइप करेंगे तो मोबाइल ऐप्स इन एग्रीकल्चर अब बहुत तरह का मिल जाएगा। नॉन नेसेसरीली किसान के लिए हर तरह का मोबाइल ऐप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्यों? सब मोबाइल ऐप सब तो एक ही तरह से उसको सपोर्ट नहीं करता है, पर जरूरत को उसको जो जरूरत है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो डिस्कशन में किसान के पास रहता है, जो मोस्टली किस तरह का इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है किसान को, ये सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, क्यों? मोबाइल ऐप्स जब डेवलप किया जा रहा है तो डेवलप इसीलिए किया जा रहा है ना, किसान के जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। तो किसान को किस तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है, मैंने एक स्टडी भी किया था यही बाजू वाला 3-4 गाँव लेके, जो इन्फॉर्मेशन किस तरह का इन्फॉर्मेशन किसान को जरूरत था, मैं उसका रैंकिंग भी किया था। तो रैंकिंग करने के बाद मैंने देखा जो किसान को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जरूरत होता है, बीज, जो सीड हम लोग बोलते हैं, बीज का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग। सबसे बोलते हैं सर बीज अच्छा क्वालिटी बीज मिल जाएगा, बाकी तो हम लोग देख लेंगे सर। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही होता है जो अच्छा क्वालिटी का बीज, इसके बारे में किसान को इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जरूरत होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो तो पौधा तो क्या बोलते हैं, जर्मिनेट हो गया, सीड भी जर्मिनेट कर गया, पौधा भी आ गया, उसके बाद कीड़ा मकोड़े के मतलब इंसेक्ट और डिजीज का अटैक आ जाता है। इसके बारे में किसान को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जरूरत है, क्यों, टाइमली समय के आधार पर जितना कीड़ा मकोड़ा आता है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो फसल का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब हुआ उनका जो एक्सपेक्ट जो यील्ड होता है वो एक्सपेक्ट यील्ड के आधार पर नहीं पहुँच पाएंगे। और दूसरा उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसान लोग, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं जे शुरुआत से लेके, जैसे मतलब किस समय हम बुआई करें और किस समय हम जुताई करें, कब पटाए मतलब इरिगेशन कब डाले, हम खाद किस समय दें, कितना अमाउंट ऑफ खाद देंगे, इस तरह का तरह तरह के इन्फॉर्मेशन का किसान के पास ज़रूरत पड़ता है। और आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत भी है ना, किसान को हम लोग कैटेगरी करते हैं मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, मतलब उसका लैंड कितना अमाउंट ऑफ लैंड है उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ कैटेगरी है, रेगुलेशन है उसके, वो किसान का भी इन्फॉर्मेशन का भी रिक्वायरमेंट ना हम ये स्टडी करके देखे हैं, जो वो भी चेंज हो जाता है उसका लैंड होल्डिंग के आधार पर। और खरपतवार मतलब वीड मैनेजमेंट के बारे में किसान को भी बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है
2: जी। और पहले किस प्रकार की सूचना पहुंचाई जाती थी किसानों तक?
3: ओके हाँ, पहला देखिए इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करने का जो तरीका था मोस्टली क्या होता था, अभी भी है मतलब फार्मर टू फार्मर, एक कोई गांव में अच्छा किसान है बहुत दिन से खेती के वगैरह कर रहा है, उनके इस क्रॉप के कल्टीवेशन व खेती के बारे में ज़्यादा कुछ पता है, वो तो क्या करते थे, वो एक्सपीरियंस जो हो जाता है और उनके साथ थोड़ा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व साइंटिस्ट बोलिए उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत रिश्ता बना रहते थे, रेगुलर आना जाना लगा रहते थे, वो आने जाने के अंदर उनका भी नॉलेज ग्रेन हो जाता था, एक्सपीरियंस भी बढ़ता था। वो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर, वो हो गया गाँव का प्रोग्रेसिव फार्मर। तो गाँव का जितना भी प्रोग्रेसिव फार्मर होता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पहले भी प्ले करता था, अभी भी वो लोग वो इम्पोर्टेंट रोल आपका किस खेती में प्ले कर रहा है। ये छोड़ के भी हम लोगों का सिस्टम में जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होता है, किसान सलाहकार होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, ये सबसे भी किसान को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी किए है तो उसमें भी देखा है एग्री इनपुट डीलर्स, इसका मतलब जहाँ से किसान लोग खाद दबा वगैरह जो भी लेते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। क्यों होता है, देखिए उनके पास वो लोग जब दुकान मनाते हैं या दुकान चलाते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड बोलिए जो भी है वो सब रहता है, और किसान को भी वो लोग एडवाइस देते हैं, वो लोग भी ट्रेंड होता है। हमारा यूनिवर्सिटी में भी 15 दिन का एक ट्रेनिंग भी चलता है उन लोगों के लिए, फर्टिलाइजर डीलर के लिए, तो उसे फर्टिलाइजर तो नहीं है उसके साथ वो लोग कुछ दवा वगैरह भी रखते हैं, तो उस आधार पर उन लोगों के पास भी थोड़ा अच्छा सा नॉलेज हो जाता है और वो लोग कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं और कंपनी वाले भी उन लोगों को रेगुलरली टाइम टू टाइम उन लोगों को अपडेट भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये सब अपना जो कन्वेंशनल जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है मतलब जहाँ से किसान को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो है वहाँ से वो मिल जाता है। वो छोड़ के हमारा पुराना जो है, अब हम लोग रेडियो FM बोल रहे हैं लेकिन रेडियो तो बहुत पुराना समय से है, जब से हमारा क्या बोलते हैं सब्ज क्रांति जब हुआ था, हाई यील्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तब से ही वो क्या बोलते हैं जब शाम के समय में किसान के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता है रेडियो, गवर्नमेंट का क्या सोच है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है, मान लिया गेहूं का खेती हो रहा है उस समय के आधार पर किस तरह का कीड़ा मकोड़ा आ सकते हैं उसके बारे में वो लोग भी डिस्कस भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये टोटल एक सिस्टम है जो पहले था अभी भी है, लेकिन समय के आधार पर आप देखिए सोशल मीडिया बोलिए, आपको ये भी पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये भी है किसान हेल्पलाइन है, वहाँ से भी किसान लोग वहाँ पे भी किसान लोग फ़ोन लगाते हैं व फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और अभी के समय में जो ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन जो किसान लोगों को पहले मिलता था मान लेते थे अभी भी ले रहा है, लेकिन नया नया कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये लोग मांग रहे हैं, जैसे आप मान लिया ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कुछ किसान बोलते हैं सर अब बताइए ना सर कहाँ से ड्रोन खरीदेंगे, कितना प्राइस होगा, उसको कैसे यूज किया जाएगा, और फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में वो पूछते हैं। और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट अभी एरिया हो रहा है, देखिए लेबर जो मार्केट है ना थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर में ज़्यादा लेबर शिफ्ट हो रहा है, तो लेबर एक इशू हो गया। जो जैसे जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय ज़्यादा दिक्कत है, हार्वेस्टर जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ लेबर का भी क्राइसिस होता है, इस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और किस तरह के इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट इंफॉर्मेशन तो है, मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब जैसे मान लिया कोई एक फसल का भागलपुर यहाँ पर एक प्राइस होता है, पटना में भी एक प्राइस होता है, तो थोड़ा गैप हो जाता है। कोई कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे भागलपुर में 5 रुपया कम, पटना में 10 रुपया मान लिया ज़्यादा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसान के पास पहुँच जाएगा तो उसमें भी ज़्यादा भाव मिल जाता है और उनको भी उस तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है और ये भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है
2: जी। अगला सवाल ये है सर कि इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होगा किसान भाइयों को, क्या कुछ प्रोसेस है इसके बारे में बताइए।
3: हाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हो ही गया है उसके आधार पर आप मोबाइल ऐप्स आ गया है, मोबाइल ऐप्स आपका पहुंच गया है। मोबाइल ऐप्स मतलब एक एंड्रॉयड जो फोन होता है स्मार्टफोन बोलते हैं, दो तरह का, एक iOS सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, दूसरा होता है एंड्रॉयड, मोस्टली आप देखेंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में चलता है। और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर वही मोबाइल अभी देखिए जो स्मार्टफोन हम लोग बोलते हैं, इस स्मार्टफोन के कारण इन्फॉर्मेशन ठीक से आप देंगे तो हम लोग एक टेक्निकल टर्म फिंगरप्रिंट बोलते हैं, फिंगर टिप बोलते हैं, तो आपका सामने ऑलवेज 24/7 मोड में कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मोबाइल ऐप्स के थ्रू से। नहीं अभी जो बात होता है, मोबाइल ऐप्स है क्या और ये कैसे किसान को हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे ना। मोबाइल ऐप्स एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू से कोई भी किसान क्रॉप का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसका क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब उसका जो बीमारी वगैरह होता है, जो कीड़ा मकोड़े आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और भी कुछ इशू जैसे मार्केटिंग रिलेटेड जो इशू है वो भी यहाँ से ये लोग ले सकते हैं
2: जी। अब इसके बाद एक सवाल और कि खेती में कौन कौन से मोबाइल ऐप्स जो अभी हैं उपलब्ध हैं जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होंगे।
3: अच्छा देखिए, अब देखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मोबाइल से लिखेंगे तो बहुत मोबाइल से आपको मिल जाएगा, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह वो लोग भी बना रहे हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल भी बना रहे हैं, तो कुछ मोबाइल ऐप्स आपको फ्री में मिल जाता है, कोई मोबाइल सब पेड होता है, लेकिन इस मोबाइल ऐप को हम कैटेगरी करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कुछ होता है क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड, दूसरा होता है मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा होता है क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, और भी होता है प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और फाइनली वो हम लोग बोल सके सीड रिलेटेड। इसका मतलब यही हो गया, आप जितना भी मोबाइल ऐप है उसको कैटेगरी कर दो, ब्रॉडली हम लोग 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक हो गया क्रॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया फिर रिपीट कर रहा हूँ मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा हो गया क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, चौथा हो गया प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और पांचवा हो गया सीड रिलेटेड, मतलब कहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी सीड मिल जाएगा ये आपको। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हम छोटा छोटा करके इसके बारे में बताएं। क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड इसमें क्या किस तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे मान लिया आपको सोइंग कब करना चाहिए, सीड रेट आपको कितना देना चाहिए, और कब आपको क्रॉप के मैच्योरिटी के बारे में बताएगा, इरिगेशन कब देना मतलब आपको देना चाहिए, इस रिलेटेड छोटा छोटा जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसमें ज़्यादा रहता है। और क्रॉप प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो मोबाइल ऐप्स होता है उसमें देखिए क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड ज़्यादा नहीं रहता है, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब आप कीड़ा मकोड़ा जो लगेगा, जो जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा, मान लिया मकई का बा गेहूं का फसल में किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया, मतलब कीड़ा का अटैक हो गया, उस समय किसान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्यों वो टाइम नहीं देता है। मतलब जब कीड़ा का अटैक हो जाता है या कोई बीमारी आ जाता है तो किसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, कुछ कुछ ऐसा होता है, मान लिया आपको जैसे बताया था मेज के लिए फॉल आर्मी वार्म, ये बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इंसेक्ट के आधार पर काम करता है, तो ये फॉल आर्मी वार्म को

करता है। और मार्केटिंग रिलेटेड जो क्या होता है, आपको पता होगा गवर्नमेंट का ईनेम एक प्रोग्राम भी है, उसके आधार पर वो जो जितना भी मार्केट को कनेक्ट करके रखते हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्केट है ऑल ओवर इंडिया का, मेजर जो क्रॉप होता है बा वेजिटेबल होता है उसका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है बा कैसा प्राइस रहता है पता चलता है। आप बोलेंगे सर इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा किसान को जरूर होगा, वो बार्गेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हम जितने भी बोले, अभी भी हमारा सिस्टम में एग्रीकल्चर सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम में मिडिल मैन सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं मेजर रोल प्ले करता है। तो किसान को जब पता चल जाएगा, जैसे ठीक है दिल्ली का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, पटना का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, कलकत्ता में ऐसा चल रहा है, तो किसान क्या मिडिलमैन के साथ बार्गेन करके वो थोड़ा प्राइस भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग रिलेटेड ऐप्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। और मैंने ये भी बताया था जो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ ऐसा भी ऐप्स है जिस ऐप्स के थ्रू से किसान भी चाहे तो अपना सामान वगैरह थोड़ा लार्ज क्वान्टिटी होना चाहे वो भी बेच भी सकते हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस सपोर्ट करते हैं, और कुछ कुछ कंपनी भी आगे बढ़ गए हैं वो क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके किसान को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नेचुरली आप लोगों के मन में आएगा, तो क्वेश्चन यही है जी सर मोबाइल ऐप्स तो है, मोबाइल ऐप्स कैसे हम सर्च करें और कैसे मोबाइल ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल करें, ये क्वेश्चन जरूर आपके पास आएगा। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत को पता है लेकिन फिर भी मैं ये भी मालूम करना हम लोग को होना चाहिए जी। कुछ कुछ किसान मान लिया इस रेडियो टॉक सुनने के बाद उसका मन में भी आ सकता है नहीं सर इन लोग जब बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग जब बोल रहे हैं यार ये मैंने मोबाइल ऐप्स हमारा काम में आ सकता है, तो कैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ बता देता हूँ। पहले आपको स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक सर्च बॉक्स दिखाएगा, तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मान लिया हमारा यूनिवर्सिटी का जो मोबाइल ऐप है ई नीरो, बा आप इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा एक ऐप्स चलता है प्लांटिक्स, मान लिया आप टर्म को आपको ये करना पड़ेगा क्या बोलते हैं टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के बाद क्या होता है वो सर्च जो एक क्या बोलते हैं एक ग्लास की तरह सर्च को सिम्बल कुछ देता है उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने उस रिलेटेड मोस्टली मान लिया हमारा ई नीरोग होगा तो ई नीरोग का ऐप्स का आइकॉन आपके पास आ जाएगा, और उसमें फाइल कितना एमबी का होगा नहीं होगा वो भी उसमें लिखा रहता है, आप देख लीजिए उतना ज़्यादा मान लिया किसी का 10 MB हो सकता है, किसी का 15 MB हो सकता है, 20 MB हो सकता है, आप आपका मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल में जाइए। तो इंस्टॉल जब कर देंगे थोड़ा टाइम लेगा सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हुए जो भी है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के पहले अभी जो सिस्टम होता है सिक्योरिटी चेक में जाता है, तो सिक्योरिटी चेक करके आपको भी दिखा देगा इस ऐप्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधा आपको वार्न कर देगा ये ऐप्स का सिक्योरिटी रिलेटेड सम इशू है। आप देखने के बाद कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हैं ये कर लीजिए मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा सीधा ही ओपन करके आएगा OPEN, तो ओपन आप क्लिक करेंगे तो जैसे प्लांटिक्स जो है अभी देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा सर हम इंग्लिश में तो आपको डील नहीं कर पाएंगे, बात सही है, उसके लिए भी अभी का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ लोकल वर्नाकुलर भी आ सकता है, मान लिया आपको हिंदी की जरूरत है ठीक है लैंग्वेज चूज कर लीजिए, इंग्लिश की जगह आप हिंदी मराठी गुजराती इंग्लिश बंगाली बहुत तरह का लैंग्वेज उसमें ऑप्शन रहता है, आप हिंदी चूज करना चाहते हैं सीधा हिंदी को चूज कीजिए, और चूज करने के बाद वहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, मतलब आपके ऐप्स के क्या बेनिफिट है आप ऐप्स को कैसे ऑपरेट करोगे इस तरह का दिया जाता है, और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे बहुत तरह का वो आपका ये मांगता है एक्सेप्टेंस मांगता है, जैसे वो आपका लोकेशन भी ट्रैक करने के लिए परमिशन मांगते हैं आप देंगे तो होगा, वो आपका मोबाइल का कैमरा का भी परमिशन मांग सकता है जे आपका मोबाइल कैमरा यूज कर सकते परमिशन देंगे कि नहीं देंगे वो भी मांगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट टाइप कोई कोई मोबाइल में ऐप्स में ऐसा भी हो सकता है आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे और मतलब आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा उसके बाद एक OTP आएगा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इस तरह से आपको कॉम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके आधार पर आपका जो मोबाइल ऐप्स का इंस्टॉल हो जाएगा, होने के बाद आपको वो मोबाइल ऐप्स को यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर किस तरह का मोबाइल ऐप्स है, पहले मैंने बता दिया आप
आपके पास पेन और पेपर है तो थोड़ा

0: डाउन कर लीजिए। ई निरोग एक मोबाइल ऐप्स है, पर्टिकुलरली हमारे यूनिवर्सिटी का ये मोबाइल ऐप्स है। ये प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्ट कैटाग हो, डिजीज का प्रॉब्लम हो, इसके बारे में। दूसरा एक ऐप से लिख लीजिए, एग्री ऐप्स है, AGRI एग्री APP ऐप। इसके बाद एक है इप्को फर्टिलाइजर, के बारे में आप सुने हैं, इप्को एक बड़ा कंपनी है, इप्को किसान IFFCO KISAN इप्को किसान। इसके बाद आपको मिल जाएगा पूसा कृषि PUSA पूसा KRISHI पूसा कृषि। इसके बाद आपको ऐप्स मिल जाएगा खेती KHETI खेती। इसके बाद आपको मिल जाएगा कृषि जागरण KRISHI JAGRAN कृषि जागरण। इसके बाद आपको एक ऐप्स मिलेगा BIJAK ऐप्स बीजक, ये मोस्टली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस। इसके बाद आपको मिल जाएगा खेती बाड़ी KHETI BADI, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, KHETI BADI खेती बाड़ी। ये मोस्टली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ना, उन लोगों के लिए ये इस ऐप्स के थ्रू से आप मार्केटिंग करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं इसके थ्रू से। ये छोड़ के एग्री मार्केट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 से एक ऐप्स अभी भी काम कर रहा है, इसमें वेदर डाटा क्रॉप रिलेटेड डाटा वो पिक्चर बेस है, देख सकते किसान सुविधा बोलते हैं KISAN SUVIDA सुविधा है। ये छोड़ के आपको और भी मोबाइल्स है, जैसे है फार्म बी FARM फार्म BEE, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स है। आप थोड़ा ऐप्स के बारे में पढ़ भी लीजिए और यूट्यूब वगैरह में जाइए, वहाँ भी जाके भी आप ऐप्स के बारे में थोड़े देख भी सकते हैं वो कौन सा ऐप इस कितनी आपका काम में आएगा, क्यों बहुत तरह का ऐप्स है। देखिए हर तरह का ऐप्स आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वही ऐप्स को यूज़ कीजिए। पहली बार बता रहा हूँ, ये सिक्योरिटी के लिए आप इंस्टॉल करने के समय सिक्योरिटी एक बार चेक देखिए क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ये मोबाइल ऐप्स को आपका मोबाइल में कंटिन्यू, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत तरह का फ्रॉडुलेंस रिलेटेड इशू आता है, कुछ लिंक वगैरह भेज देते हैं, उसके बारे में भी केयरफुल आप लोग रहिए, ये भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो फाइनली यही बताएंगे, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसका अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी है, आप कैसे इसको यूज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि वो स्मार्टफोन भी अवेलेबल है और इंटरनेट का नेटवर्क भी अभी अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द गांव में तो पहुंच ही गया इंटरनेट का कनेक्शन। सो इट इज़ नाउ अप टू यू किसान बंधु। फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और नया साल आप लोगों के लिए अच्छा भी हो, ये भी हम ऊपर वाला से क्या प्रार्थना भी करते हैं, और आप लोग यूज कीजिए। और हमारा यूनिवर्सिटी का जो 90.8 FM ग्रीन जो, इसको भी सुनिए और आप लोग भी बेनिफिट भी रहिए। थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, तो आप इन ऐप का ज़रूर लाभ उठाइए, आपके लिए ही ये ऐप डेवलप किए जाते हैं, इससे आपको बहुत बहुत सारे फायदे होंगे। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम। नमस्कार।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत है लेकिन सही जानकारी अभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। आज हम बात करने वाले हैं TB रोग के बारे में, यानी क्षय रोग के बारे में। आज हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं, किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं TB मुक्त भारत, इस बारे में हम बातें करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, पास के ना एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश भाई जी को कई हफ्तों से खांसी थी। पहले उन्होंने सोचा मौसम बदल गया होगा, फिर पड़ोसियों ने कहा कि पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, बुखार आने लगा, रात में पसीना आने लगा, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने जांच ही नहीं करवाई। जब हालात ज्यादा बिगड़ गई तब आशा दीदी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तब पता चला कि TB है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई? इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मुफ्त मिली, पोषण सहायता मिली और आज रमेश पूरी तरह स्वस्थ है। यानी सच यही है कि टीबी लाइलाज नहीं है बल्कि पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अपनी प्रिय टीकन देवी। स्वागत है आपका टीकन देवी जी।
5: धन्यवाद आरजी जी। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, टीबी से डरने की नहीं समझने की जरूरत है। जी हाँ, टीबी को समझने की जरूरत है। टीबी को हम समझेंगे तभी उससे हम लड़ पाएंगे। श्रोताओं, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलती है, और जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, टीबी का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ये पूरी तरह मुफ्त है। और भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से टीबी को पूरी तरीके से देश से ख़त्म कर दिया जा सके।
4: टीकन देवी जी, आपने बताया कि देश में टीबी खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, क्या कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं?
5: बिल्कुल आरजी जी, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साफ और समयबद्ध लक्ष्य तय किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी हो सके टीबी मरीजों की पहचान की जाए, क्योंकि अक्सर लोग महीनों तक खांसी को सामान्य समझते रहते हैं, जांच नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम के बदलने की वजह से हो गया है, या फिर किसी भी वजह से वो जांच नहीं करवाते, जिससे टीबी जैसी बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। इसलिए अब सरकार की कोशिश ये है कि हर संदिग्ध व्यक्ति तक जांच की सुविधा पहुंचे और बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान हो। और दूसरा लक्ष्य है टीबी से होने वाली मौतों को कम करना। देखिए, जब मरीज समय पर इलाज शुरू करता है और दवाइयां नियमित लेता है तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज देर करता है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मरीज का इलाज बीच में ना छूटे। इसलिए मरीजों के लिए जरूरी होता है कि वो नियमित और पूरी दवाई ले। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा है हमारे भारत सरकार ने कि समुदाय में नए टीबी मामले कम से कम मिले या बिल्कुल खत्म हो जाए। यानी सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। श्रोताओं, दरअसल ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। जैसा अभियान का संदेश भी कहता है, टुगेदर वी कैन स्टॉप टीवी, योर वॉइस, योर अवेयरनेस एंड योर एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर टीबी मुक्त भारत। यानी हम सबकी आवाज और भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत संभव है।
4: बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब सरकार अपना काम कर रही है लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी साथ आएगा। टीकन देवी जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टीबी के लक्षण पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य खांसी या कमजोरी है। ऐसे में लोग कैसे समझें कि जांच करवाने का समय आ गया है?
5: आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है और कुछ मामलों में खून भी दिखाई दे सकता है, और ये गंभीर संकेत होते हैं अगर आपको बलगम के साथ खून दिखाई दे। इसके अलावा अगर बार बार बुखार आता रहे, खासकर शाम या रात के समय, और रात में अधिक पसीना आए, तो ये भी टीबी का लक्षण हो सकता है। कई मरीजों में धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, भूख कम लगती है और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है, और कुछ लोग सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ भी महसूस करते हैं। इसलिए रोजमर्रा के काम करते हुए जल्दी थक जाना भी एक संकेत हो सकता है आरजे जी। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो जांच करवाने में देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी।
4: यानी शरीर संकेत देता है, बस हमें समझने की जरूरत होती है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। एक सवाल और, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं?
5: देखिए, टीबी किसी को भी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को पहले कभी टीबी हो चुकी है उनमें दोबारा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरह अगर घर में किसी सदस्य को टीबी है तो बाकी परिवार के लोगों की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे लंबे समय तक एक मरीज के संपर्क में रहते हैं तो हो सकता है कि उनमें भी संक्रमण फैल जाए। और एक और बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। जिसे कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कुपोषण और टीबी का क्या रिश्ता होगा? है, जिन लोगों का शरीर कमजोर होता है या जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो टीबी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जिन्हें डायबिटीज है और HIV से प्रभावित है उन व्यक्तियों में भी संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है आरजे बाबू। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि धूम्रपान और शराब का सेवन फेफड़ों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे टीबी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए धूम्रपान शराब से बिल्कुल बचा कर रखें खुद को, और जो भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं उन सभी की नियमित स्क्रीनिंग बहुत जरूरी मानी जाती है, ताकि बीमारी समय रहते पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके।
4: मतलब जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने और समय समय पर जांच करवाने की जरूरत है।
5: बिल्कुल, और यही जागरूकता टीबी मुक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
4: अब तक हमने लक्षणों और जोखिम वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है जल्दी जांच और जल्दी इलाज। आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
5: देखिए आरजे जी, टीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति बहुत सरल है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पहला कदम हमें क्या उठाना है? बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना है, और जब किसी व्यक्ति की समय पर जांच हो जाती है तो संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचानना, दूसरा कदम है तुरंत इलाज शुरू करना। कई बार लोग जांच तो करवा लेते हैं लेकिन दवा शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं या फिर वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप दवा शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज स्वस्थ होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा इलाज पूरा करना। टीबी की दवाइयां बीच में छोड़ देने से बीमारी वापस आ सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आप टीबी का इलाज बीच में छोड़ेंगे तो उसके बाद मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा हो जाता है आरजे बाबू। इसलिए ये तीन कदम बहुत जरूरी होते हैं। पहला कदम, बीमारी को जल्दी पहचान लीजिए। दूसरा कदम कि तुरंत इलाज शुरू कीजिए। और इलाज शुरू करने के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, इलाज पूरा कीजिए। डरना नहीं है, इलाज करवाना है, नियमित और पूरी दवाई खानी है और पौष्टिक आहार लेना है। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, खर्चा बहुत होगा और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है टीबी को लेकर। इसलिए अब सरकार सिर्फ इंतजार नहीं कर रही है कि टीबी मरीज अस्पताल आएंगे, बल्कि अस्पतालों में, विशेष ओपीडी में और हाई रिस्क समूहों में स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि बीमारी की पहचान खुद लोगों तक पहुंच कर की जा सके। इससे क्या होगा कि बीमारी की पहचान हो जाएगी, उनका इलाज जल्दी शुरू होगा और उनका इलाज जल्दी शुरू होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी।
4: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इंतजार नहीं कर रही बल्कि लोगों तक खुद पहुंच रही है। ये सच में बहुत अच्छी पहल है। टीकन देवी जी, कई श्रोता ये सोचते हैं कि टीबी की जांच और इलाज बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग डर जाते हैं और जांच कराने में देर करते हैं। क्या सच में इलाज इतना मुश्किल और खर्चीला है?
5: नहीं आरजे जी, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। और मैं आज सभी श्रोताओं से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, टीबी की जांच और इलाज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में बलगम की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है, यानी कि उनके जांच में टीबी निकलता है, तो पूरी दवाइयां भी सरकार के द्वारा निशुल्क दी जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे बहुत खर्च होंगे। आपको जांच से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा।
4: मतलब मरीज को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं?
5: बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं, लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर ना करें। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की चिंता की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए। और ये बात हर किसी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आप, अगर आपको लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाइए जो मुफ्त होगा। और अगर लक्षण दिखने के बाद, जांच करवाने के बाद टीबी निकलता है तो उसके बाद आगे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। डरिए मत, इलाज करवाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे।
4: लेकिन लोग अक्सर दवा कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है?
5: बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टीबी का इलाज सामान्य बुखार या खांसी जैसा नहीं होता है। इसका इलाज कई महीनों तक लगातार चलता है। और सबसे जरूरी बात, दवा नियमित और पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो बीमारी दोबारा और बहुत गंभीर रूप में लौट सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद क्या होगा कि दवाइयां कम असर करने लगेगी और उसके बाद टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें और याद रखें कि पूरा इलाज ही टीबी को पूरी तरह से ठीक करता है।
4: टीकन देवी जी, आपने पहले बताया था कि सरकार सक्रिय रूप से लोगों की जांच भी करा रही है। ये जांच कहाँ कहाँ की जा रही है?
5: बहुत अच्छा सवाल। अब टीबी की पहचान सिर्फ अस्पताल वाले मरीजों तक सीमित नहीं है। सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सक्रिय खोज अभियान चला रही है और अब जांच कई जगहों पर की जा रही है, जैसे कि एचआईवी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होती है, एनसीडी क्लिनिक में होती है जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियों के मरीज आते हैं, डायलिसिस केंद्र में भी मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर उपचार केंद्र में, वहीं तंबाकू निषेध क्लिनिक में भी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि इस समूह को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अस्पताल के ओपीडी में या फिर आईपीडी में, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही विभागों में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय खोज अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य साफ है, बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके ताकि संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके।
4: यानी अब सरकार मरीज के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद खोज रही है।
5: बिल्कुल सही कहा, यही रणनीति टीबी खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जल्दी पहचान और तुरंत इलाज।
4: टीकन देवी जी, क्या इन प्रयासों से भारत में सच में कोई बदलाव दिख रहा है?
5: जी हाँ, ये बहुत उत्साहजनक खबर है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच हमने टीबी के रोकथाम में बहुत सफलता पाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में टीबी के मामलों में लगभग 18% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सबके प्रयासों का ही फल है कि हम वैश्विक औसत से भी तेज प्रगति कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जब सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव बहुत संभव हो जाता है।
4: ये सच में उम्मीद देने वाली बात है, यानी अगर लोग समय पर जांच और पूरा इलाज करवाएं तो टीबी को खत्म किया जा सकता है।
5: बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं से फिर कहना चाहूंगी, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, जांच और इलाज मुफ्त है, दवा नियमित लें और पूरा कोर्स करें, और लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर बिल्कुल ना करें।
4: दोस्तों याद रखिए, जानकारी ही बचाव है और समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। एक सवाल जो अक्सर श्रोता पूछते हैं, इलाज तो ठीक है लेकिन टीबी मरीज कमजोर हो जाता है, ऐसे में सरकार या समाज उनकी क्या मदद कर सकता है?
5: बहुत जरूरी सवाल है ये। टीबी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही पोषण से भी ठीक होती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है तभी दवाइयां असर करती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होता है कि टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो पौष्टिक भोजन ले सके और इलाज के दौरान जो कमजोरी होती है उससे बच सके। इसके अलावा

0: निक्षय मित्र पहल भी चल रही है, जिसमें समाज के लोग, संस्थाएं और समुदाय आगे आकर मरीजों को पोषण, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी मरीजों को आप किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप उन्हें हौसला दे सकते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज पूरा कीजिए और जो भी जरूरी सहायता आपसे संभव हो सके वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा समाज मरीज का सहारा बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान अकेला महसूस ना करे।
1: वाह, मतलब इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के सहयोग से पूरा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत सिर्फ सरकार अकेले नहीं बना सकती है ना, इसमें समाज की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जन भागीदारी का मतलब होता है हर व्यक्ति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सबसे पहले लोगों तक टीबी के लक्षणों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है और जब जानकारी होगी तभी लोग जांच के लिए आगे आएंगे। दूसरा, हमें लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। कई लोग डर या शर्म की वजह से जांच नहीं करवाते और ये सोच बदलनी होगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। आप जांच करवाइए और इलाज करवाइए। और लोग इसलिए भी डरते हैं, शर्माते हैं कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो। तो तीसरी सबसे जरूरी बात यही है कि भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। टीबी मरीज को अलग या कमजोर समझना बहुत गलत है, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मरीज को पूरा इलाज करवाने में मदद करना चाहिए। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि मरीज को पूरा इलाज के लिए आप प्रोत्साहित करें। और सबसे अहम बात कि मरीज को पोषण और मानसिक सहयोग देना होता है। जब समाज साथ खड़ा होता है तो मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि टीबी पर खुलकर बात करें, इसे छुपाएं नहीं।
1: सही कहा आपने, बीमारी छुपाने से नहीं समझने और मिलकर लड़ने से खत्म होती है। टीकन देवी जी, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीबी छूने से फैलती है या मरीज के पास बैठने से बीमारी हो जाती है, क्या ये सच है?
0: नहीं, ये पूरी तरह गलत धारणा है आरजे बाबू। टीबी साथ बैठने से नहीं फैलती, ना ही खाना साझा करने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से तब फैलती है जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है या छींकता है और हवा में मौजूद जीवाणु उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी सावधानियां बहुत ही सरल है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें और घर या कमरे में ताजी हवा आने दें। जब सही जानकारी होगी तब डर और गलत फहमियां भी खत्म होगी आरजे।
1: यानी डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। टीकन देवी जी, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुद को टीबी से कैसे बचा सकता है?
0: देखिए, रोकथाम के तरीके बहुत आसान है और रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले खांसी शिष्टाचार, यानी कि जब भी खांसी आए तो अपने मुंह को ढकें, छींके तो भी अपने नाक को ढककर छींके। इससे क्या होगा कि संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है कि पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर लड़ पाता है ना। और तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और घर में अच्छा वेंटिलेशन रखना भी बहुत जरूरी है ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। आप बंद कमरे में रहेंगे तो जो भी संक्रमण होगा वो कमरे में ही रहेगा, लेकिन जब साफ हवा कमरे के अंदर आएगी तो आप संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। और जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जोखिम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए।
1: छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, यही संदेश है।
0: और अंत में मैं सभी श्रोताओं से दिल से कहना चाहूंगी कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी जांच और इलाज दोनों मुफ्त है। बस सबसे जरूरी है कि पूरा इलाज करिए और मरीजों का साथ दीजिए, भेदभाव नहीं करिए। और याद रखिए, अभियान का संदेश यही है, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय इंडिया, पावर्ड बाय जन भागीदारी। यानी कि जन भागीदारी के साथ ही हम टीबी को खत्म कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता और आपका सहयोग ही बनाएगा टीबी मुक्त भारत। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी टीबी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। और अब समय है विदा लेने का, पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
3: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली का।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाईमेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं ईश्वर चंद्र और आपके समक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार जो कि SMS हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, इसका विषय है प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त कृषि का एक विकल्प। हम विकल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खेती को इतनी ज़्यादा रासायनिक युक्त कर दिया है कि अब हम उस रासायनिक मुक्त की तरफ हम बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों ज़रूरी है और आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान द्वारा समर्थित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, जो इसे टिकाऊ और व्यवहार्य पद्धति बनाती है। इसे आज की भाषा में परिभाषित करें तो प्राकृतिक खेती एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है तथा जिससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। अगर दूसरी सरल भाषा में से बात किया जाए तो प्राकृतिक खेती एक ऐसे अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणाली का संरक्षण और पोषण करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों के उपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि प्राकृतिक खेती क्यों करें, प्राकृतिक खेती करने के लिए कई कारण हैं, जैसे कि खाद्य असुरक्षा, भोजन और पानी में जो कीटनाशकों और उर्वरकों का अवशेषों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं जैसी विभिन्न समस्याओं से समाधान प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती से रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। प्राकृतिक खेती उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखती है जिससे ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।
2: जी, तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती ये आपके लिए आज के समय बेहद ज़रूरी है। अब हम थोड़ा अपने पीछे चलें तो इस रासायनिक खेती की शुरुआत बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, बल्कि जो जिस जनरेशन के साथ हम लोग हैं उसे पिछली पीढ़ी जो है, पिछली जनरेशन ने इसे शुरू किया था और संभवतः इस वजह से किया था ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता ली जाए। लेकिन इस वर्ष या पिछले वर्ष भारत सरकार का जो एक लक्ष्य रहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब हमें बढ़ना है, अब हमें थोड़ा गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीनी है। जब हमें चुनौतियाँ थीं कि हमें पेट भरना है, अधिक से अधिक खाद्यान्न संकट को पूर्ति करनी है, गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, तब तक तो ये रासायनिक खेती ने हमें बहुत सहायता भी किया है, हम एक बारगी इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव सामने आया है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगली पीढ़ी को हम क्या हस्तांतरित करेंगे, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच क्या समानताएं समानताएं हैं, क्योंकि हम जैविक खेती के बारे में हम बहुत सारे जैविक उत्पाद देखते हैं और मार्केट में थोड़ी सी महंगी कीमत पे या कई बार ज़्यादा कीमत पे जैविक उत्पाद हमें आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर के ग्रॉसरी मार्केट तक में आपको हर तरह के जैविक उत्पाद की भरमार रहती है। तो अब ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या फर्क है, जरा हमारे जो श्रोता भाई हैं, श्रोता बहने हैं, उनके लिए जरिए बताएं।
3: सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त खेती का एक प्रकार का तरीका है। दोनों प्रणाली में किसानों को खेती के साथ साथ सभी कृषि पद्धतियों में किसी भी रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करने से प्रबंधित करती है। इसमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती

0: दोनों तरीके से, दोनों तरीके में किसानों को देसी नस्ल का बीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सब्जी, अनाज और दालों का बीज का। और लास्ट यह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के जो तरीके होते हैं वो जैव रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण तरीका को बढ़ावा देते हैं। अब जब जैविक खेती था तो प्राकृतिक खेती लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि किसान भाइयों आप लोग जानते हैं कि जैविक खेती में जो इनपुट लगते थे, जैसे वर्मी कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, यह सब ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। अब उसी चीज़ को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती का विषय लाया गया है, जिसमें कम मात्रा में गोबर, गोमूत्र, इस सब का उपयोग करके हम उसको प्राकृतिक खेती में अपना सकते हैं।
1: तो इस तरीके से हमने जाना कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या समानताएं हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में क्या क्या अंतर हैं, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जैविक खेती में हैं और प्राकृतिक खेती में नहीं है, जो प्राकृतिक खेती के जो उद्देश्य हैं वो जैविक खेती से थोड़े अलग हैं। तो इसके अंतर जो है डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: जैसा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक और ना ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में कोई भी बाहरी उर्वरक मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है और न ही पौधों को दिया जाता है, जबकि जैविक खेती में जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और इसमें बाहरी स्रोतों से खेत में मिलाया जाता है। दूसरी बात, प्राकृतिक खेतों में सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मिट्टी की सतह पर ही प्रोत्साहित किया जाता है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। जबकि जैविक खेती के लिए अभी भी बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे जुताई, खाद मिश्रण, निराई गुड़ाई आदि की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, प्राकृतिक खेती में न तो जुताई की जा सकती है और न मिट्टी को चुकाया जा सकता है और ना ही उर्वरक दिया जाता है और ना ही इसमें निराई गुड़ाई का कोई तरीका अपनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जैविक खेती में खाद की अधिक मात्रा में उसका आवश्यकता होता है, जिससे उसकी लागत और महंगी हो जाती है और इसका आसपास के वातावरण पर भी पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती एक बेहद कम लागत वाली कृषि पद्धति है जो पूरी तरह से स्थानीय जैव विविधता के अनुरूप होता है।
1: तो इस प्रकार आपने जाना कि जो प्राकृतिक खेती है वो जैव विविधताओं को अपने में समेटता है और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को भी बरकरार रखता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी ऐसी पद्धति है जो अपनाई जाती है जिससे कि हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति के जो जितने भी अवयव हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं और साथ साथ जो उसके उत्पाद होते हैं वो भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव और पशु जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण को सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थानीय संसाधन को कुशल उपयोग पर जोर देना और पारिस्थितिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती जैव विविधता के साथ काम करती है या मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और खाद उत्पादन प्रणाली के साथ साथ पौधे और जीवित जीवों दोनों के जीवन की जटिलता का प्रबंधन करती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। पहला, जुताई न करना। इसके अंदर होता है कि वार्षिक जुताई में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग से केचुआ की आबादी में लगातार बदलाव आता है। जब खेत की जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे केचुओं के प्रसार में वृद्धि होती है। केचुओं मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाने और अपनी कास्टिंग से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे जो पत्ती है मल्चिंग, मल्चिंग है वो मिट्टी की सतह पर लगाई जाने वाली एक परत है। मल्चिंग निश्चित रूप से मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, उसे ठंडा करती है और उसके सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। पुलाव से मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी की मात्रा विकसित होती है जो सूक्ष्म जीवों और केचों के विकास के लिए अनुकूल होती है। यह बिना जुताई के बीजों के अनुकरण में सुधार करता है। दाल वाली फसलों को मल्चिंग से उगाने पर मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिति स्थिरीकरण बढ़ जाता है और खरपतवार की वृद्धि में कमी आती है। उसके बाद बीजा अमृत जो है, जो कि बीजों को उपचार के लिए मुक्त यूज किया जाता है प्राकृतिक खेती में बीजा अमृत का जो प्रयोग किया जाता है वो बीजों को उपचार के लिए किया जाता है। यह गाय के गोबर, गोमूत्र, चूने और मुट्ठी भर मिट्टी से तैयार किया जाता है। गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से लाभकारी सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को बीजा अमृत से के रूप में संवर्धित किया जाता है और बीजों को इनोकुलम के रूप में क्रियाशील किया जाता है। बताया गया है कि बीजा अमृत से बीज का उपचार करने से फसल में हानिकारक मिट्टी जनित रोग जनकों से बचाया जाता है। 20 लीटर बीजा अमृत 100 किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होते हैं। अब सवाल है कि बीजा अमृत बनाए कैसे। इसके बनाने के लिए पहले 5 किलो गोबर को एक सूती के कपड़े में बांधकर उसे 20 लीटर पानी में डुबाया जाता है, जिसे हम 12 घंटे तक छोड़ देते हैं। दूसरा एक लीटर पानी हम लेते हैं और जिसमें हम 50 ग्राम चूना मिलाकर उसे हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जो कपड़े में बांधे जो 5 किलो गोबर होते हैं उसे निकालकर हम 2 से 3 बार उसे पानी में निचोड़ देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। फिर उस 20 लीटर पानी में खेत की मुट्ठी भर मिट्टी को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के साथ साथ जो हम 50 ग्राम चूना जो 1 लीटर पानी में मिलाए हुए रहते हैं उसे भी हम उस बाल्टी में मिला देते हैं। इसके बाद उसमें हम 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं और उसे अच्छी तरह मिलाकर हम उसको तैयार करते हैं। जब बीजा अमृत जब बन जाते हैं तो उसके अगले दिन से हम उसे बीज उपचार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और बीज उपचार के लिए 100 किलोग्राम बीज उपचार के लिए 20 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त है। बीजों पे घोल लगाकर अच्छी तरह मिला ले या बीजों को छाया में उसको सुखा देना चाहिए। बीजा अमृत से पौधों को जड़ों को भी उपचारित किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पत्ती है जीवा अमृत जो है, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों मिट्टी की उर्वरकता में सक्रिय कार्य करते हैं, क्योंकि वे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के चक्र में शामिल होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे मिट्टी में प्रवेश करने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और विघटन के लिए तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण के लिए लाभदायक है। यह पौधे के अपघटन, खनिजीकरण और पोषक तत्व प्रदान करने में भाग लेते हैं। अब यह बीजा अमृत अगर बनाना है तो उसको हम बनाने की क्या क्या विधि होते हैं। एक, जैसा आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 200 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त होते हैं, जिसे हम सिंचाई के द्वारा या उसको छिड़काव कर सकते हैं। अब उसके बनाने की विधि क्या क्या है। 200 लीटर बीजा अमृत बनाने के लिए पहले हम एक ड्रम लेते हैं जो 250 से 300 लीटर का ड्रम होते हैं। उसमें हम 180 लीटर पानी लेते हैं। पानी लेने के साथ 10 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर मिलाते हैं। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं। दो किलोग्राम गुड़ मिलाते हैं और दो किलोग्राम बेसन मिलाते हैं। उसके बाद 100 से 150 ग्राम पीपल के नीचे का मिट्टी, जड़ का मिट्टी लेकर उसमें हम मिला देते हैं। सभी सामग्रियों को ड्रम में मिलाकर उसे हम पूरी रात भर के लिए हम छोड़ देते हैं। पूरे सामान मिलने के बाद हम दिन में उसे दो बार एक लकड़ी से उसे हम घुमाते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक सुई के दिशा में और एक सुई के दिशा के उल्टा दो बार उसे हम मिलाते हैं, जिसे वो अच्छी तरह मिल जाए। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि ड्रम को बोरी से ढककर छाया में रखते हैं, या अगर छाया में रखने के लिए सूती कपड़ों या प्लास्टिक का मच्छरदानी का उपयोग करते हैं उस ड्रम को ढकने के लिए। अब हर जीवा अमृत जब हम नौवे दिन जब हो ऐसा ये सेम प्रक्रिया हम 9-8 दिन तक करते हैं। नौवे दिन हम इसे उपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अब इसे जीवा अमृत को उपयोग करने के लिए आप 12 से 15 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: और इस तरीके से आपने जाना किसान भाइयों कि बहुत सारे अवयव जो हैं इसमें कुछ जीवामृत या बीजामृत बनाकर अपने फसल पद्धतियों में बदलाव लाकर और साथ ही मल्चिंग करके आप प्राकृतिक खेती के जो फायदे हैं उसे आप लेना शुरू कर देते हैं। तो प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं आप, तो एक तो आप ये बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक खेती की शुरुआत करते हैं, इससे आपके आसपास के किसान भाई भी प्रोत्साहित होते हैं। और आप ख्याल रखें कि यह पृथ्वी और एक जो भूमि है और मिट्टी सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, जिस तरीके से आपको अपने पूर्वजों द्वारा आपको हस्तांतरित की गई, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे भी आप आने वाली पीढ़ियों को ठीक उसी तरीके से उपजाऊ भूमि की तरह आप हस्तांतरित करें। लेकिन जिस तरीके से इसका दोहन चल रहा है रासायनिक खेतियों द्वारा, ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ मिट्टी दे पाएंगे जिसमें कि हम जिस तरीके की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए उपज के लिए वो हो पाएगी। तो हम इसी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, उसके जो बिल्कुल एक प्रायोगिक जो एक वार्तालाप यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब हम इसके जो प्रयोग विधि हैं जो अभी आपको बताया गया, बीजामृत, जीवामृत, इन सभी का, तो उसमें से जीवामृत है उसका क्या प्रयोग विधि है आप जानिए।
0: जब जीवामृत तैयार हो जाता है 9 दिन के बाद, तो उसे महीना में 2 बार या 1 बार खेत में डालना चाहिए। अब 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ खेत के लिए, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। जो फसल है गन्ना, केला, गेहूं, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, बैंगन, टमाटर, आलू, लहसुन एवं सुगंधित पौधों आदि पर जीवामृत का छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है। अब यह जो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, यह अपनाने से कुछ इसके फायदे जो होते हैं और कुछ फायदे आप जानते हैं, जैसे कि यह जो प्राकृतिक खेती है वो अन्य कृषि प्रणाली की तुलना में शारीरिक कार्य और श्रम को अत्यधिक कम किया जा सकता है। दूसरा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से रासायनिक खेती के समान पैदावार संभव है, जो कि आप जब प्राकृतिक खेती अपनाते हैं उसके 3 साल के बाद आप रासायनिक खेती के बराबर पैदावार आप ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि साल दर साल मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होता है। जब आप प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो उससे सूक्ष्म जीवों का जो संख्या होता है उसमें बढ़ते हैं, केचुआ को जो संख्या होते हैं वो खेतों में बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं केचुआ जो किसान का मित्र होते हैं, जिस खेतों में केचुआ का मात्रा, सूक्ष्म जीवों का मात्रा जितना ज़्यादा होगा उस खेतों का जो उर्वरकता शक्ति है वो उतना ही ज़्यादा होगा। चौथी बात कि इसमें जो पानी की आवश्यकता है वह न्यूनतम हो जाती है। पांचवी यह प्राकृतिक खेती

0: को उपचार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी, आपने सुना कि जो जीवा अमृत है, जीवा अमृत में 20 किलो जीवा अमृत में जो 10 किलो जो गोबर होते हैं वो पर्याप्त होते हैं 200 लीटर है जीवा अमृत बनाने के लिए, जो कि इसका जो इनपुट जो लागत है इससे कम हो जाता है, और जो प्राकृतिक खेती है उसका जो मुनाफा के साथ साथ जो उपज है वह ज़्यादा किसानों को मिलता है।
1: तो किसान भाइयों, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में सभी पहलुओं से परिचित हो गए होंगे। किस प्रकार की खेती है, क्या इसमें इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत होती है, यानी कि बहुत ही कम लागत होती है, क्योंकि रासायनिक खेती में जब खेती अपने बिल्कुल चरम पे होता है तो आप पूरी भागदौड़ करते हैं कि किस तरीके से उसमें खाद डालें, कीड़ा लग गया है तो उसको कीटनाशी डालें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गया है तो फिर उसमें आप खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती में इस सभी के रोकथाम के लिए डाले जाते हैं, लेकिन रसायनों से बचा जाता है, यानी आपको बहुत सारे तरीके का खर्च करने से बच जाते हैं, बाजार पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है, और सीधे तौर पर आप अपने जो घरेलू स्तर पर जो आपके जो गाय हैं उनके गोबर हैं और अन्य तरह की जो बातें बताई गई बीजामृत और जीवामृत के द्वारा ही आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो इस प्रकार आपके इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, उसकी उत्पादकता बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, और आप भविष्य के लिए एक बेहतरीन मिट्टी, एक स्वच्छ जलवायु आप आगे की ओर हस्तांतरित करके जाते हैं। तो आप प्राकृतिक खेती अपनाएं, यही हमसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे हमारा FM रेडियो 90.8 सुनते रहें और हमें इजाज़त दें। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू

और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मेलाथियान 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोल ले और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दे, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, निनवा, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं ईश्वर चंद्र और आपके समक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार जो कि SMS हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, इसका विषय है प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त कृषि का एक विकल्प। हम विकल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खेती को इतनी ज़्यादा रासायनिक युक्त कर दिया है कि अब हम उस रासायनिक मुक्त की तरफ हम बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों ज़रूरी है और आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान द्वारा समर्थित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, जो इसे टिकाऊ और व्यवहार्य पद्धति बनाती है। इसे आज की भाषा में परिभाषित करें तो प्राकृतिक खेती एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है तथा जिससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। अगर दूसरी सरल भाषा में से बात किया जाए तो प्राकृतिक खेती एक ऐसे अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणाली का संरक्षण और पोषण करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों के उपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि प्राकृतिक खेती क्यों करें, प्राकृतिक खेती करने के लिए कई कारण हैं, जैसे कि खाद असुरक्षा, भोजन और पानी में जो कीटनाशकों और उर्वरकों का अवशेषों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं जैसी विभिन्न समस्याओं से समाधान प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती से रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। प्राकृतिक खेती उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखती है जिससे ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।
2: जी, तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती ये आपके लिए आज के समय बेहद ज़रूरी है। अब हम थोड़ा अपने पीछे चलें तो इस रासायनिक खेती की शुरुआत बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, बल्कि जो जिस जनरेशन के साथ हम लोग हैं उसे पिछली पीढ़ी जो है, पिछली जनरेशन ने इसे शुरू किया था और संभवतः इस वजह से किया था ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता ली जाए। लेकिन इस वर्ष या पिछले वर्ष भारत सरकार का जो एक लक्ष्य रहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब हमें बढ़ना है, अब हमें थोड़ा गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीनी है। जब हमें चुनौतियाँ थीं कि हमें पेट भरना है, अधिक से अधिक खाद्यान्न संकट को पूर्ति करनी है, गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, तब तक तो ये रासायनिक खेती ने हमें बहुत सहायता भी किया है, हम एक बारगी इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव सामने आया है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगली पीढ़ी को हम क्या हस्तांतरित करेंगे, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच क्या समानताएं समानताएं हैं, क्योंकि हम जैविक खेती के बारे में बहुत सारे जैविक उत्पाद देखते हैं और मार्केट में थोड़ी सी महंगी कीमत पे या कई बार ज़्यादा कीमत पे जैविक उत्पाद हमें आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर के ग्रॉसरी मार्केट तक में आपको हर तरह के जैविक उत्पाद की भरमार रहती है। तो अब ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या फर्क है, जरा हमारे जो श्रोता भाई हैं, श्रोता बहने हैं, उनके लिए जरिए बताएं।
3: सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त खेती का एक प्रकार का तरीका है। दोनों प्रणाली में किसानों को खेती के साथ साथ सभी कृषि पद्धतियों में किसी भी रसायन उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करने से प्रबंधित करती है। इसमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों तरीके में किसानों को देसी नस्ल का बीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सब्जी, अनाज और दालों का बीज का। और लास्ट यह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के जो तरीके होते हैं वो जैव रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण तरीका को बढ़ावा देते हैं। अब जब जैविक खेती था तो प्राकृतिक खेती लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा कि किसान भाइयों आप लोग जानते हैं कि जैविक खेती में जो इनपुट लगते थे जैसे वर्मी कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, यह सब ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। अब उसी चीज़ को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती का विषय लाया गया है, जिसमें कम मात्रा में गोबर, गोमूत्र इस सब का उपयोग करके हम उसको प्राकृतिक खेती में अपना सकते हैं।
2: तो इस तरीके से हमने जाना कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या समानताएं हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में क्या क्या अंतर हैं, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जैविक खेती में हैं और प्राकृतिक खेती में नहीं है, जो प्राकृतिक खेती के जो उद्देश्य हैं वो जैविक खेती से थोड़े अलग हैं, तो इसके अंतर जो हैं डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं।
3: जैसा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है, वास्तव में कोई भी बाहरी उर्वरक मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है और न ही पौधों को दिया जाता है, जबकि जैविक खेती में जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और इसमें बाहरी स्रोतों से खेत में मिलाया जाता है। दूसरी बात, प्राकृतिक खेतों में सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मिट्टी की सतह पर ही प्रोत्साहित किया जाता है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, जबकि जैविक खेती के लिए अभी भी बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे जुताई, खाद मिश्रण, निराई गुड़ाई आदि की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, प्राकृतिक खेती में न तो जुताई की जा सकती है और न मिट्टी को चुकाया जा सकता है और ना ही उर्वरक दिया जाता है और ना ही इसमें निराई गुड़ाई का कोई तरीका अपनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जैविक खेती में खाद की अधिक मात्रा में उसका आवश्यकता होता है, जिससे उसकी लागत और महंगी हो जाती है और इसका आसपास के वातावरण पर भी पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती एक बेहद कम लागत वाली कृषि पद्धति है जो पूरी तरह से स्थानीय जैव विविधता के अनुरूप होता है।
2: तो इस प्रकार आपने जाना कि जो प्राकृतिक खेती है वो जैव विविधताओं को अपने में समेटता है और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को भी बरकरार रखता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन से ऐसी पद्धति है जो अपनाई जाती है जिससे कि हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति के जो जितने भी अवयव हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, और साथ साथ जो उसके उत्पाद होते हैं वो भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव और पशु जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
3: जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण को सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थानीय संसाधन को कुशल उपयोग पर जोर देना और पारिस्थितिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती जैव विविधता के साथ काम करती है या मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और खाद उत्पादन प्रणाली के साथ साथ पौधे और जीवित जीवों दोनों के जीवन की जटिलता का प्रबंधन करती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। पहला जुताई न करना, इसके अंदर होता है कि वार्षिक जुताई में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग से केचुआ की आबादी में लगातार बदलाव आता है। जब खेत की जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे केचुओं के प्रसार में वृद्धि होती है। केचुओं मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाने और अपनी कास्टिंग से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे जो पत्ती है मल्चिंग है वो मिट्टी की सतह पर लगाई जाने वाली एक परत है। मल्चिंग निश्चित रूप से मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, उसे ठंडा करती है और उसके सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। पुलाव से मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी की मात्रा विकसित होती है जो सूक्ष्म जीवों और केचों के विकास के लिए अनुकूल होती है। यह बिना जुताई के बीजों के अनुकरण में सुधार करता है। दाल वाली फसलों को मल्चिंग से उगाने पर मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बढ़ जाता है और खरपतवार की वृद्धि में कमी आती है। उसके बाद बीजामृत जो है, जो कि बीजों को उपचार के लिए मुक्त यूज किया जाता है प्राकृतिक खेती में बीजामृत का जो प्रयोग किया जाता है वो बीजों को उपचार के लिए किया जाता है। यह गाय के गोबर, गोमूत्र, चूने और मुट्ठी भर मिट्टी से तैयार किया जाता है। गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से लाभकारी सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को बीजामृत से के रूप में संवर्धित किया जाता है और बीजों को इनोकुलम के रूप में क्रियाशील किया जाता है। बताया गया है कि बीजामृत से बीज का उपचार करने से फसल में हानिकारक मिट्टी जनित रोग जनकों से बचाया जाता है। 20 लीटर बीजा अमृत 100 किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होते हैं। अब सवाल है कि बीजा अमृत बनाए कैसे। इसके बनाने के लिए पहले 5 किलो गोबर को एक सूती के कपड़े में बांधकर उसे 20 लीटर पानी में डुबाया जाता है जिसे हम 12 घंटे तक छोड़ देते हैं। दूसरा एक लीटर पानी हम लेते हैं और जिसमें हम 50 ग्राम चूना मिलाकर उसे हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जो कपड़े में बांधे जो 5 किलो गोबर होते हैं उसे निकालकर हम 2 से 3 बार उसे पानी में निचोड़ देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। फिर उस 20 लीटर पानी में खेत की मुट्ठी भर मिट्टी को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के साथ साथ जो हम 50 ग्राम चूना जो 1 लीटर पानी में मिलाए हुए रहते हैं उसे भी हम उस बाल्टी में मिला देते हैं। इसके बाद उसमें हम 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं और उसे अच्छी तरह मिलाकर हम उसको तैयार करते हैं। जब बीजा अमृत जब बन जाते हैं तो उसके अगले दिन से हम उसे बीज उपचार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और बीज उपचार के लिए 100 किलोग्राम बीज उपचार के लिए 20 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त है। बीजों पे घोल लगाकर अच्छी तरह मिला ले या बीजों को छाया में उसको सुखा देना चाहिए। बीजा अमृत से पौधों को जड़ों को भी उपचारित किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पत्ती है जीवा अमृत। जीवा अमृत जो है जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों मिट्टी की उर्वरकता में सक्रिय कार्य करते हैं, क्योंकि वे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के चक्र में शामिल होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे मिट्टी में प्रवेश करने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और विघटन के लिए तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण के लिए लाभदायक है। यह पौधे के अपघटन खनिजीकरण और पोषक तत्व प्रदान करने में भाग लेते हैं। अब यह बीजा अमृत अगर बनाना है तो उसको हम बनाने की क्या क्या विधि होते हैं। एक जैसा आप जानते हैं कि एक एकड़ में 200 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त होते हैं, जिसे हम सिंचाई के द्वारा या उसको छिड़काव कर सकते हैं। अब उसके बनाने की विधि क्या क्या है। 200 लीटर बीजा अमृत बनाने के लिए पहले हम एक ड्रम लेते हैं जो 250 से 300 लीटर का ड्रम होते हैं। उसमें हम 180 लीटर पानी लेते हैं। पानी लेने के साथ 10 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर मिलाते हैं। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ मिलाते हैं और 2 किलोग्राम बेसन मिलाते हैं। उसके बाद 100 से 150 ग्राम पीपल के नीचे का मिट्टी, जड़ का मिट्टी लेकर उसमें हम मिला देते हैं। सभी सामग्रियों को ड्रम में मिलाकर उसे हम पूरी रात भर के लिए हम छोड़ देते हैं। पूरे सामान मिलने के बाद हम दिन में उसे दो बार

0: एक लकड़ी से उसे हम घुमाते हैं एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एक सुई के दिशा में और एक सुई के दिशा के उल्टा, दो बार उसे हम मिलाते हैं जिसे वो अच्छी तरह मिल जाए। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि ड्रम को बोरी से ढककर छाया में रखते हैं, या अगर छाया में रखने के लिए सूती कपड़ों या प्लास्टिक का मच्छरदानी का उपयोग करते हैं उस ड्रम को ढकने के लिए। अब हर जीवा अमृत जब हम नौवें दिन जब हो ऐसा, ये सेम प्रक्रिया हम 9-8 दिन तक करते हैं, नौवें दिन हम इसे उपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अब इसे जीवा अमृत को उपयोग करने के लिए आप 12 से 15 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: और इस तरीके से आपने जाना किसान भाइयों कि बहुत सारे अवयव जो हैं इसमें कुछ जीवामृत या बीजामृत बनाकर अपने फसल पद्धतियों में बदलाव लाकर और साथ ही मल्चिंग करके आप प्राकृतिक खेती के जो फायदे हैं उसे आप लेना शुरू कर देते हैं। तो प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं आप, तो एक तो आप ये बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक खेती की शुरुआत करते हैं, इससे आपके आसपास के किसान भाई भी प्रोत्साहित होते हैं। और आप ख्याल रखें कि यह पृथ्वी और एक जो भूमि है और मिट्टी सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, जिस तरीके से आपको अपने पूर्वजों द्वारा आपको हस्तांतरित की गई, यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे भी आप आने वाली पीढ़ियों को ठीक उसी तरीके से उपजाऊ भूमि की तरह आप हस्तांतरित करें। लेकिन जिस तरीके से इसका दोहन चल रहा है रासायनिक खेतियों द्वारा, ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ मिट्टी दे पाएंगे जिसमें कि हम जिस तरीके की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए उपज के लिए वो हो पाएगी। तो हम इसी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, उसके जो बिल्कुल एक प्रायोगिक जो एक वार्तालाप यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब हम इसके जो प्रयोग विधि हैं जो अभी आपको बताया गया बीजामृत जीवामृत इन सभी का, तो उसमें से जीवामृत है उसका क्या प्रयोग विधि है आप जानिए।
0: जब जीवामृत तैयार हो जाता है 9 दिन के बाद, तो उसे महीना में 2 बार या 1 बार खेत में डालना चाहिए। अब 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ खेत के लिए, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के पानी के सिंचाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। जो फसल है गन्ना, केला, गेहूं, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, बैगन, टमाटर, आलू, लहसुन एवं सुगंधित पौधों आदि पर जीवा अमृत का छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है। अब यह जो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, यह अपनाने से कुछ इसके फायदे जो होते हैं और कुछ फायदे आप जानते हैं, जैसे कि यह जो प्राकृतिक खेती है वो अन्य कृषि प्रणाली की तुलना में शारीरिक कार्य और श्रम को अत्यधिक कम किया जा सकता है। दूसरा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से रासायनिक खेती के समान पैदावार संभव है, जो कि आप जब प्राकृतिक खेती अपनाते हैं उसके 3 साल के बाद आप रासायनिक खेती के बराबर पैदावार आप ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि साल दर साल मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होता है जब आप प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, तो उससे सूक्ष्म जीवों का जो संख्या होता है उसमें बढ़ते हैं, केचुआ को जो संख्या होते हैं वो खेतों में बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं केचुआ जो किसान का मित्र होते हैं, जिस खेतों में केचुआ का मात्रा सूक्ष्म जीवों का मात्रा जितना ज़्यादा होगा उस खेतों का जो उर्वरकता शक्ति है वो उतना ही ज़्यादा होगा। चौथी बात कि इसमें जो पानी की आवश्यकता है वह न्यूनतम हो जाती है। पांचवी, यह प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट उसमें 100 kg लगते हैं, प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगता है उसका जो मात्रा होता है वो बहुत कम लगता है। जैसा कि आप 5 से लेकर 20 किलो गोबर जो पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ प्राकृतिक खेती में उपयोग करने के लिए, जैसा कि आपने सुना इससे पहले बीजामृत में 5 किलो गोबर उपयोग किए जाते हैं 20 लीटर बीजामृत बनाने के लिए और वह 20 लीटर 100 केजी बीजों को उपचार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी, आपने सुना कि जो जीवा अमृत है, जीवा अमृत में 20 किलो जीवा अमृत में जो 10 किलो जो गोबर होते हैं वो पर्याप्त होते हैं 200 लीटर जीवा अमृत बनाने के लिए, जो कि इसका जो इनपुट जो लागत है इससे कम हो जाता है और जो प्राकृतिक खेती है उसका जो मुनाफा के साथ साथ जो उपज है वह ज़्यादा किसानों को मिलता है।
1: तो किसान भाइयों, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में सभी पहलुओं से परिचित हो गए होंगे, किस प्रकार की खेती है, क्या इसमें इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत होती है, यानी कि बहुत ही कम लागत होती है, क्योंकि रासायनिक खेती में जब खेती अपने बिल्कुल चरम पे होता है तो आप पूरी भागदौड़ करते हैं कि किस तरीके से उसमें खाद डालें, कीड़ा लग गया है तो उसको कीटनाशी डालें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गया है तो फिर उसमें आप खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती में इस सभी के रोकथाम के लिए डाले जाते हैं, लेकिन रसायनों से बचा जाता है, यानी आपको बहुत सारे तरीके का खर्च करने से बच जाते हैं, बाजार पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है और सीधे तौर पर आप अपने जो घरेलू स्तर पर जो आपके जो गाय हैं उनके गोबर हैं और अन्य तरह की जो बातें बताई गई बीजामृत और जीवामृत के द्वारा ही आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो इस प्रकार आपके इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, उसकी उत्पादकता बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और आप भविष्य के लिए एक बेहतरीन मिट्टी, एक स्वच्छ जलवायु आप आगे की ओर हस्तांतरित करके जाते हैं। तो आप प्राकृतिक खेती अपनाएं, यही हमसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे हमारा FM रेडियो 90.8 सुनते रहें और हमें इजाज़त दें। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाईमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं ईश्वर चंद्र और आपके समक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार जो कि SMS हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, इसका विषय है प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त कृषि का एक विकल्प। हम विकल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खेती को इतनी ज़्यादा रासायनिक युक्त कर दिया है कि अब हम उस रासायनिक मुक्त की तरफ हम बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों ज़रूरी है और आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान द्वारा समर्थित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, जो इसे टिकाऊ और व्यवहार्य पद्धति बनाती है। इसे आज की भाषा में परिभाषित करें तो प्राकृतिक खेती एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है तथा जिससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। अगर दूसरी सरल भाषा में से बात किया जाए तो प्राकृतिक खेती एक ऐसे अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणाली का संरक्षण और पोषण करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों के उपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि प्राकृतिक खेती क्यों करें, प्राकृतिक खेती करने के लिए कई कारण हैं, जैसे कि खाद्य असुरक्षा, भोजन और पानी में जो कीटनाशकों और उर्वरकों का अवशेषों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं जैसी विभिन्न समस्याओं से समाधान प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती से रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। प्राकृतिक खेती उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखती है जिससे ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।
2: जी, तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती ये आपके लिए आज के समय बेहद ज़रूरी है। अब हम थोड़ा अपने पीछे चलें तो इस रासायनिक खेती की शुरुआत बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, बल्कि जो जिस जनरेशन के साथ हम लोग हैं उसे पिछली पीढ़ी जो है, पिछली जनरेशन ने इसे शुरू किया था और संभवतः इस वजह से किया था ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता ली जाए। लेकिन इस वर्ष या पिछले वर्ष भारत सरकार का जो एक लक्ष्य रहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब हमें बढ़ना है, अब हमें थोड़ा गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीनी है। जब हमें चुनौतियाँ थीं कि हमें पेट भरना है, अधिक से अधिक खाद्यान्न संकट को पूर्ति करनी है, गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, तब तक तो ये रासायनिक खेती ने हमें बहुत सहायता भी किया है, हम एक बारगी इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव सामने आया है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगली पीढ़ी को हम क्या हस्तांतरित करेंगे, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच क्या समानताएं समानताएं हैं, क्योंकि हम जैविक खेती के बारे में हम बहुत सारे जैविक उत्पाद देखते हैं और मार्केट में थोड़ी सी महंगी कीमत पे या कई बार ज़्यादा कीमत पे जैविक उत्पाद हमें आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर के ग्रॉसरी मार्केट तक में आपको हर तरह के जैविक उत्पाद की भरमार रहती है। तो अब ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या फर्क है, जरा हमारे जो श्रोता भाई हैं, श्रोता बहने हैं, उनके लिए जरिए बताएं।
3: सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त खेती का एक प्रकार का तरीका है। दोनों प्रणाली में किसानों को खेती के साथ साथ सभी कृषि पद्धतियों में किसी भी रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करने से प्रबंधित करती है। इसमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों तरीके में किसानों को देसी नस्ल का बीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सब्जी, अनाज और दालों का बीज का। और लास्ट यह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के जो तरीके होते हैं वो जैव रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण तरीका को

0: बढ़ावा देते हैं। अब जब जैविक खेती था तो प्राकृतिक खेती लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि किसान भाइयों आप लोग जानते हैं कि जैविक खेती में जो इनपुट लगते थे जैसे वर्मी कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, यह सब ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। अब उसी चीज़ को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती का विषय लाया गया है, जिसमें कम मात्रा में गोबर, गोमूत्र इस सब का उपयोग करके हम उसको प्राकृतिक खेती में अपना सकते हैं।
1: तो इस तरीके से हमने जाना कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या समानताएं हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में क्या क्या अंतर हैं, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जैविक खेती में हैं और प्राकृतिक खेती में नहीं है, जो प्राकृतिक खेती के जो उद्देश्य हैं वो जैविक खेती से थोड़े अलग हैं। तो इसके अंतर जो हैं डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: जैसा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक और ना ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में कोई भी बाहरी उर्वरक मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है और न ही पौधों को दिया जाता है, जबकि जैविक खेती में जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और इसमें बाहरी स्रोतों से खेत में मिलाया जाता है। दूसरी बात, प्राकृतिक खेतों में सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मिट्टी की सतह पर ही प्रोत्साहित किया जाता है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। जबकि जैविक खेती के लिए अभी भी बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे जुताई, खाद मिश्रण, निराई गुड़ाई आदि की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, प्राकृतिक खेती में न तो जुताई की जा सकती है और न मिट्टी को झुकाया जा सकता है और ना ही उर्वरक दिया जाता है और ना ही इसमें निराई गुड़ाई का कोई तरीका अपनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जैविक खेती में खाद की अधिक मात्रा में उसका आवश्यकता होता है, जिससे उसकी लागत और महंगी हो जाती है और इसका आसपास के वातावरण पर भी पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती एक बेहद कम लागत वाली कृषि पद्धति है जो पूरी तरह से स्थानीय जैव विविधता के अनुरूप होता है।
1: तो इस प्रकार आपने जाना कि जो प्राकृतिक खेती है वो जैव विविधताओं को अपने में समेटता है और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को भी बरकरार रखता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी ऐसी पद्धति है जो अपनाई जाती है जिससे कि हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति के जो जितने भी अवयव हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं और साथ साथ जो उसके उत्पाद होते हैं वो भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव और पशु जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण को सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थानीय संसाधन को कुशल उपयोग पे जोर देना और पारिस्थितिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती जैव विविधता के साथ काम करती है या मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और खाद उत्पादन प्रणाली के साथ साथ पौधे और जीवित जीवों दोनों के जीवन की जटिलता का प्रबंधन करती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। पहला जुताई न करना, इसके अंदर होता है कि वार्षिक जुताई में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग से केचुआ की आबादी में लगातार बदलाव आता है। जब खेत की जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे केचुओं के प्रसार में वृद्धि होती है। केचुओं मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाने और अपनी कास्टिंग से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे जो पत्ती है, मल्चिंग है वो मिट्टी की सतह पर लगाई जाने वाली एक परत है। मल्चिंग निश्चित रूप से मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, उसे ठंडा करती है और उसके सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। पुलाव से मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी की मात्रा विकसित होती है जो सूक्ष्म जीवों और केचों के विकास के लिए अनुकूल होती है। यह बिना जुताई के बीजों के अनुकरण में सुधार करता है। दाल वाली फसलों को मल्चिंग से उगाने पर मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बढ़ जाता है और खरपतवार की वृद्धि में कमी आती है। उसके बाद बीजा अमृत जो है, जो कि बीजों को उपचार के लिए मुक्त यूज किया जाता है प्राकृतिक खेती में बीजा अमृत का जो प्रयोग किया जाता है वो बीजों को उपचार के लिए किया जाता है। यह गाय के गोबर, गोमूत्र, चूने और मुट्ठी भर मिट्टी से तैयार किया जाता है। गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से लाभकारी सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को बीजा अमृत से के रूप में संवर्धित किया जाता है और बीजों को इनोकुलम के रूप में क्रियाशील किया जाता है। बताया गया है कि बीजा अमृत से बीज का उपचार करने से फसल में हानिकारक मिट्टी जनित रोग जनकों से बचाया जाता है। 20 लीटर बीजा अमृत 100 किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होते हैं। अब सवाल है कि बीजा अमृत बनाए कैसे। इसके बनाने के लिए पहले 5 किलो गोबर को एक सूती के कपड़े में बांधकर उसे 20 लीटर पानी में डुबाया जाता है, जिसे हम 12 घंटे तक छोड़ देते हैं। दूसरा 1 लीटर पानी हम लेते हैं और जिसमें हम 50 ग्राम चूना मिलाकर उसे हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जो कपड़े में बांधे जो 5 किलो गोबर होते हैं उसे निकाल कर हम 2 से 3 बार उसे पानी में निचोड़ देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। फिर उस 20 लीटर पानी में खेत की मुट्ठी भर मिट्टी को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के साथ साथ जो हम 50 ग्राम चूना जो 1 लीटर पानी में मिलाए हुए रहते हैं उसे भी हम उस बाल्टी में मिला देते हैं। इसके बाद उसमें हम 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं और उसे अच्छी तरह मिलाकर हम उसको तैयार करते हैं। जब बीजा अमृत जब बन जाते हैं तो उसके अगले दिन से हम उसे बीज उपचार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और बीज उपचार के लिए 100 किलोग्राम बीज उपचार के लिए 20 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त है। बीजों पे घोल लगाकर अच्छी तरह मिला ले या बीजों को छाया में उसको सुखा देना चाहिए। बीजा अमृत से पौधों को जड़ों को भी उपचारित किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पत्ती है जीवा अमृत जो है, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों मिट्टी की उर्वरकता में सक्रिय कार्य करते हैं, क्योंकि वे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के चक्र में शामिल होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे मिट्टी में प्रवेश करने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और विघटन के लिए तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण के लिए लाभदायक है। यह पौधे के अपघटन, खनिजीकरण और पोषक तत्व प्रदान करने में भाग लेते हैं। अब यह बीजा अमृत अगर बनाना है तो उसको हम बनाने की क्या क्या विधि होते हैं। एक, जैसा आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 200 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त होते हैं, जिसे हम सिंचाई के द्वारा या उसको छिड़काव कर सकते हैं। अब उसके बनाने की विधि क्या क्या है। 200 लीटर बीजा अमृत बनाने के लिए पहले हम एक ड्रम लेते हैं जो 250 से 300 लीटर का ड्रम होते हैं। उसमें हम 180 लीटर पानी लेते हैं। पानी लेने के साथ 10 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर मिलाते हैं। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ मिलाते हैं और 2 किलोग्राम बेसन मिलाते हैं। उसके बाद 100 से 150 ग्राम पीपल के नीचे का मिट्टी, जड़ का मिट्टी लेकर उसमें हम मिला देते हैं। सभी सामग्रियों को ड्रम में मिलाकर उसे हम उसे हम पूरी रात भर के लिए हम छोड़ देते हैं। पूरे सामान मिलने के बाद हम दिन में उसे दो बार एक लकड़ी से उसे हम घुमाते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक सुई के दिशा में और एक सुई के दिशा के उल्टा दो बार उसे हम मिलाते हैं जिसे वो अच्छी तरह मिल जाए। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि ड्रम को बोरी से ढककर छाया में रखते हैं, या अगर छाया में रखने के लिए सूती कपड़ों या प्लास्टिक का मच्छरदानी का उपयोग करते हैं उस ड्रम को ढकने के लिए। अब हर जीवा अमृत जब हम नौवें दिन जब हो ऐसा ये सेम प्रक्रिया हम 9-8 दिन तक करते हैं, नौवें दिन हम इसे उपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अब इसे जीवा अमृत को उपयोग करने के लिए आप 12 से 15 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: और इस तरीके से आपने जाना किसान भाइयों कि बहुत सारे अवयव जो हैं इसमें कुछ जीवामृत या बीजामृत बनाकर अपने फसल पद्धतियों में बदलाव लाकर और साथ ही मल्चिंग करके आप प्राकृतिक खेती के जो फायदे हैं उसे आप लेना शुरू कर देते हैं। तो प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं आप, तो एक तो आप ये बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक खेती की शुरुआत करते हैं, इससे आपके आसपास के किसान भाई भी प्रोत्साहित होते हैं। और आप ख्याल रखें कि यह पृथ्वी और एक जो भूमि है और मिट्टी सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, जिस तरीके से आपको अपने पूर्वजों द्वारा आपको हस्तांतरित की गई, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे भी आप आने वाली पीढ़ियों को ठीक उसी तरीके से उपजाऊ भूमि की तरह आप हस्तांतरित करें। लेकिन जिस तरीके से इसका दोहन चल रहा है रासायनिक खेतियों द्वारा, ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ मिट्टी दे पाएंगे जिसमें कि हम जिस तरीके की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए उपज के लिए वो हो पाएगी। तो हम इसी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, उसके जो बिल्कुल एक प्रायोगिक जो एक वार्तालाप यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब हम इसके जो प्रयोग विधि हैं जो अभी आपको बताया गया बीजामृत जीवामृत इन सभी का, तो उसमें से जीवामृत है उसका क्या प्रयोग विधि है आप जानिए।
0: जब जीवामृत तैयार हो जाता है 9 दिन के बाद, तो उसे महीना में दो बार या एक बार खेत में डालना चाहिए। अब 200 लीटर जीवा अमृत पर्याप्त होते हैं एक एकड़ खेत के लिए, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। जो फसल है गन्ना, केला, गेहूं, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, बैंगन, टमाटर, आलू, लहसुन एवं सुगंधित पौधों आदि पर जीवा अमृत का छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है। अब यह जो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, यह अपनाने से कुछ इसके फायदे जो होते हैं और कुछ फायदे आप जानते हैं, जैसे कि यह जो प्राकृतिक खेती है वो अन्य कृषि प्रणाली की तुलना में शारीरिक कार्य और श्रम को अत्यधिक कम किया जा सकता है। दूसरा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से रासायनिक खेती के समान पैदावार संभव है, जो कि आप जब प्राकृतिक खेती अपनाते हैं उसके 3 साल के बाद आप रासायनिक खेती के बराबर पैदावार आप ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि साल दर साल मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होता है जब आप प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, तो उससे सूक्ष्म जीवों का जो संख्या होता है उसमें बढ़ते हैं, केचुआ को जो संख्या होते हैं वो खेतों में बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं केचुआ जो किसान का मित्र होते हैं, जिस खेतों में केचुआ का मात्रा सूक्ष्म जीवों का मात्रा जितना ज़्यादा होगा उस खेतों का जो उर्वरकता शक्ति है वो उतना ही ज़्यादा होगा। चौथी बात कि इसमें जो पानी की आवश्यकता है वह न्यूनतम हो जाती है। पांचवी, यह प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट उसमें 100 के जी लगते हैं, प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगता है उसका जो मात्रा होता है वो बहुत कम लगता है। जैसा कि आप 5 से लेकर 20 किलो गोबर जो पर्याप्त होते हैं एक एकड़ प्राकृतिक खेती में उपयोग करने के लिए, जैसा कि आप

0: तो किसान भाइयों, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में सभी पहलुओं से परिचित हो गए होंगे। किस प्रकार की खेती है, क्या इसमें इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत होती है, यानी कि बहुत ही कम लागत होती है, क्योंकि रासायनिक खेती में जब खेती अपने बिल्कुल चरम पे होता है तो आप पूरी भागदौड़ करते हैं कि किस तरीके से उसमें खाद डालें, कीड़ा लग गया है तो उसको कीटनाशी डालें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गया है तो फिर उसमें आप खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती में इस सभी के रोकथाम के लिए डाले जाते हैं, लेकिन रसायनों से बचा जाता है, यानी आपको बहुत सारे तरीके का खर्च करने से बच जाते हैं, बाजार पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है, और सीधे तौर पर आप अपने जो घरेलू स्तर पे जो आपके जो गाय हैं उनके गोबर हैं और अन्य तरह की जो बातें बताई गई बीजामृत और जीवामृत के द्वारा ही आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो इस प्रकार आपके इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, उसकी उत्पादकता बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और आप भविष्य के लिए एक बेहतरीन मिट्टी, एक स्वच्छ जलवायु आप आगे की ओर हस्तांतरित करके जाते हैं। तो आप प्राकृतिक खेती अपनाएं, यही हमसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे हमारा FM रेडियो 90.8 सुनते रहें और हमें इजाज़त दें। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है, इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
1: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
2: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है।
1: जी,
2: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
2: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बेफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्णकुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्णकुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज की वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया

कहा जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

is first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है। और लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी थी, लेकिन एन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन में, ये किसी बदले की कहानी नहीं है। वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियां किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर अपने परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है। और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी है। और ये इतनी कमाल की कहानी है, वाकई आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज हुई फिल्म पिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बहुत ही कमाल की फिल्म। एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है, क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं। और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश जरूर देखिए। और हम आगे बढ़ें तो द ग्रेट इंडियन किचन, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जो जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है।
ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप भौचक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना जरूरी होता है और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपकी उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज हुई थी, थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। थप्पड़ 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़ लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। ये फिल्म हर महिला को ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कम बैक करती है और सारी चीज़ें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस मैं यहाँ देने बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज़ हुई थी फिल्म लापता लेडीज़। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी अपनी बेटी अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है। अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को समझने को मिलेगा। इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे तो ये फिल्में आप ज़रूर देखें। अभी के लिए
तो लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दे इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी के लिए खास विषय लेकर हाजिर हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं, जी हाँ, मौसम को देखते हुए हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की। और आप सभी जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सब्जियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को हमें ठंडा करती हैं और गर्मी से कहीं ना कहीं राहत भी दिलाती हैं। तो आज हम बात करेंगे गर्मा मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में। इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब और किस समय लगाना चाहिए कद्दू वर्गीय सब्जियों को?
4: गर्मियों के मौसम में उगाए जाने वाली जो सब्जियां है उसमें से कद्दू वर्गीय सब्जी जो है ये मुख्य होते हैं, और इन्हीं में से खीरा, नेनुआ, झिंगली, करेला, कदीमा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि ये सब जो वो सब्जी है ये प्रमुख है। और ये कद्दू वर्गीय सब्जी जो है ये क्षेत्र में सीधे बोया जाता है, और इन फसलों को साधारण तो जो है फरवरी के पहले सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह में बुआई किया जाता है। और अगर हम लोग ये फसल को ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो पॉली बैग में जनवरी के अंत में जो है इसको बुआई कर सकते हैं, और इससे जो है बीड़ा जल्दी तैयार हो जाता है और इनकी देखरेख भी अच्छी हो सकती है, फसल जल्दी तैयार।

0: होने से जो है अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि मार्च से ही जो है इनका फल निकलने लगता है, मार्च अप्रैल मई में जो है इनका काफ़ी अच्छा फलन होने लगता है। और फसल लगाने से पहले खेत की अच्छे से तैयारी होना ज़रूरी है। सर्वप्रथम तो हम लोग खेत की प्रारंभिक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं, और साथ साथ में जो जब अंत जुताई के समय आता है तो 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद खेत में मिलाते हैं, और अंतिम जुताई के समय पे अच्छे से पाटा चलाकर खेत को समतल बना लेते हैं।
1: अगर किस्मों की बात हम करें तो कौन कौन सी किस्में जो है वो अच्छी होंगी इसके लिए वो बताएं।
0: अच्छे फसल के लिए हमेशा से अच्छे किस्मों का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। तो खीरा के लिए उन्नत किस्मों में जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट, पॉइंसेट, पूसा उदय, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा, यहीं पे खीरा के संकर किस्म पूसा संयोग या पंथ संकर खीरा 1 लगा सकते हैं। लौकी में काशी गंगा, नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र ज्योति, पूसा नवीन, पूसा संदेश, पंजाब कोमल, राजेंद्र चमत्कार, पूसा समृद्धि लगा सकते हैं। लौकी के संकर में पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा हाइब्रिड 3, नरेंद्र संकर 4 लगा सकते हैं। कदीमा या कुम्हड़ा में जो है हम लोग काशी हरित, पूसा विशेष, पूसा विश्वास लगा सकते हैं। संकर में पूसा हाइब्रिड 1 लगा सकते हैं। पेठा में काशी धवल, काशी उज्जवल या पूसा उज्जवल को लगा सकते हैं। करेला के काशी उर्वशी, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, कल्याणपुर बारामासी, अर्का हरित, अर्का सुमित, अर्का सुजात लगा सकते हैं। करेला के संकर किस्म में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 लगा सकते हैं। आरा तुराई में पूसा नजदार, पूसा सदाबहार, सतपुरिया, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार लगा सकते हैं। घिया तुराई या नेनुआ में पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, राजेंद्र नेनुआ 1 एवं राजेंद्र नेनुआ 2 लगा सकते हैं। खरबूजा में काशी मधु, दुर्गापुरा मधु, हिसार मधुर, पंजाब सुनहरी, हरा मधु, पूसा सरबती, पूसा मधुरास, अर्का जीत, अर्का राजहंस लगा सकते हैं। इसके संकर में पूसा रसराज और पंजाब हाइब्रिड लगा सकते हैं। तरबूजा में जो है शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, और संकर में अर्का ज्योति और मधुमिलन लगा सकते हैं।
1: बीज दर की हम बात कर लें तो कितना बीज दर होना चाहिए?
0: लौकी के लिए हेक्टेयर प्रति जो है 4 से 5 किलो, करेला के लिए 5 से 6 किलो, खीरा के लिए 2 से 3 किलो, कोहड़ा के लिए 4 से 5 किलो, टिंडा के लिए 5 से 6 किलो, खरबूजा के लिए 3 से 4 किलो एवं तरबूज, तुरई और पेठा के लिए जो है 4 से 5 किलो हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है बीज। और हमको याद रखना पड़ेगा कि जो कद्दू वर्गीय सब्जी है इनके बीज लगाने से पहले अच्छे से फुला के लगाएंगे ताकि इनका अंकुरण अच्छे से होता है। और इनको हम जब मैदानी प्रक्षेत्र में लगाएंगे तब कद्दू में 2 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी रखेंगे, करेला में जो है 150 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, खीरा में 150 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, नेनुआ और झिंगली में 150 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। और हम देखेंगे कि लौकी में लगभग लगभग हेक्टेयर में 2500 से 3000 पौधे आएंगे, करेला में 7.5 से 8 हज़ार, खीरा में भी 7.5 से 8 हज़ार, कोहड़ा में 2250 से 2500, टिंडा में 6250 से 7000, खरबूजे में 5500 से 6250, और तरबूजा तुरई और पेठा में 3500 से लेकर 3600 तक के पौधा आएंगे।
1: इसके अलावा अगर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए?
0: पोषक तत्वों में जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक का सब्जियों में आपूर्ति बहुत अच्छे से की जा सकती है। जैविक खाद जो है मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को जोड़ने के लिए ही ना केवल, उपरांत यह मिट्टी का बनावट और संचारना में भी सुधार लाती है। तो मिट्टी की जल धारण क्षमता और वेंटिलेशन में वृद्धि होती है। कद्दू या कदीमा या जो भी कद्दू वर्गीय सब्जी है इनकी खेत की तैयारी के समय लगभग लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से सड़ी हुई गोबर की खाद हम मिला सकते हैं, और उसके बाद में भी जो है 50 से 60 किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फॉस्फेट और 40 से 60 किलो पोटैश प्रति हेक्टेयर के दर से इनकी आवश्यक होती है। पोटैश और फॉस्फेट की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है इसको हम बुवाई के समय पे देंगे, और बाकी जो ये आधी मात्रा नाइट्रोजन की बचे रहेगी इसको हम बुवाई के 30 दिनों के बाद में टॉप ड्रेसिंग के तौर से उपरिवेश करेंगे।
1: जल प्रबंधन किस प्रकार करेंगे?
0: जल प्रबंधन गर्मियों के कोई भी सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गर्मी के मौसम में जो है सिंचाई नियमित रूप से करना जरूरी हो जाता है। 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत जरूरी है, और इसमें जो है बाढ़ सिंचाई या कुंड सिंचाई किया जाता है, और सिंचाई बहुत ही नियमित होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना होगा कि पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसमें जल जमाव भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, और पौधों के जो जड़ क्षेत्र है उसमें जल जमाव से सड़न आ सकती है।
1: अब हम बात करते हैं रोग और कीट की, तो कौन कौन से रोग और कीट का प्रकोप देखा जाता है इस पर?
0: कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत सारे रोग और कीट आते हैं, खास करके एंथ्रैक्नोज हम देख सकते हैं, जिसमें शुरू में पत्तियों में पीले गोल जलयुक्त धब्बे दिखाई देते हैं, और उसके बाद में ये धब्बे बड़ा हो जाता है और रोगी जो पत्तियां है वो सूख जाती है। फलों पर भी गोलाकार धब्बे होते हैं जो शुरू में हल्के रंग के होते हैं और उसके बाद में ज़्यादा भूरा हो जाता है, और ये देखते हैं कि जो हमारा जो पत्तियां है उसमें ज़्यादा होने पर जो है पत्ती पीली हो जाती है और पत्ते उसके बाद में भूरा होकर झुलस जाती है। इस रोग के निदान के हेतु में जो है हम लोग जो बीज लगाएंगे वो बीज को अच्छे से थायरम या बेविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो के बीज के दर से उपचारित करके हम बीज की बुवाई कर सकते हैं। अतः अगर फसल में आ जाती है तब मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर सकते हैं। पत्ती झुलसा रोग भी देख सकते हैं, उसमें जो है सर्वप्रथम पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और उसके बाद में गहरे रंग के बड़े आकार के वो धब्बे हो जाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो है हम लोग मैंकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। विल्ट भी एक रोग है जो इसमें आ सकती है, इसमें जो है पौधा मुरझा जाती है और सूख जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और कॉलर वाला जो कॉलर क्षेत्र है पौधे का वो सिकुड़ जाता है। पौधे के जड़ के भीतरी भाग जो है अगर हम उखाड़ के देखते हैं तो वो भूरा हो जाता है और पौध की वृद्धि रुक जाती है। ये लक्षण जो हम देखते हैं ये फूल आने पे और फल बनने के समय जब आता है उसी समय पे ज़्यादा दिखता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमको रोधी प्रजातियाँ लगानी होगी, इसके अलावा भी जो है भूमि सौर किरण से शोधन कर सकते हैं और इससे जो है बीमारी कम हो सकते हैं। इसके अलावा बुवाई करने से पहले बीज को अच्छे से कार्बेंडाजिम 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उपचारित करके हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में विषाणुजनित रोग भी होते हैं, क्यूकम्बर मोजाइक, और इसमें हम देखेंगे कि ग्रसित पौधों में नई पत्तियाँ बहुत छोटे हो जाते हैं, उसमें पीले धब्बे दिखते हैं, पत्तियाँ सिकुड़कर मुड़ जाती है तथा पीले मोजेक या मोटल जैसे दिखने लगते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो है बीज को उपचारित करके हम लगाएंगे और जो रोगी पौधा है उसको उखाड़कर अच्छे से जला देना होगा या उसको दूर कहीं पे दफना देना होगा, और जंगली आसपास के जंगली खरपतवार को भी नष्ट कर देना है, और जो कीड़ा इसको इस रोग की वाहक है वाहक कीट की रोकथाम के लिए जो है हम लोगों को इमिडा क्लोरप्रिट 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके 1-1 सप्ताह के अंतराल पर खड़ी फसल पर छिड़काव करना होगा 2 से 3 बार। इससे जो है वाहक कीट नष्ट हो जाएंगे। और थ्रिप्स एफिड या माहू या फिर जो जैसिड है ये भी पत्तियों का रस चूसते हैं और विभिन्न जो है ये विषाणु के वाहक होते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग इमिडा क्लोरप्रिट या फिर थायोमिथोक्साम का छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गर्मा मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, और आप सभी को यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी आशा करते हैं, और इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
2: खांसी? हाँ। इसको तो 1-2 महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को 1-2 महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए
2: डॉक्टर,
4: खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है
1: जी।
2: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी

0: दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी,
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी,
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: हाँ, चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?

0: 丢。
1: 啊！अरे ये तो बेहोश हो गया मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन
2: क्या बात है बेटे क्या बात है
1: देखो ना हामिद काका मोहन को क्या हो गया
2: लगता है इसे लू लग गई है बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका
2: हाँ हाँ डॉक्टर के पास ही चलते हैं मैं उठाता हूँ ऐसे चलो
1: हाँ हाँ चलिए चलिए
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा
1: डॉक्टर साहब
3: कौन है भाई अभी आया
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए आइए आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए
3: क्या बात है हामिद भाई क्या बात है
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है
3: ओहो अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए ये लीजिए इस लोटे में ठंडा पानी है तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ
2: अच्छा डॉक्टर साहब
3: और विद्या बेटी इस पंखे से तुम हवा करती रहो
1: जी
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं बुखार चेक कर लेते हैं अरे हामिद इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो
2: जी
3: ऐसे लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं हाँ बुखार कम हो गया भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है
1: इससे क्या होता है
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए
2: डॉक्टर साहब नींबू पानी गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है
3: हाँ हाँ हामिद भाई खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी
1: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब मोहन को होश आ गया
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे अभी तुम्हें आराम की जरूरत है
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं
1: जी
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में
1: नहीं काका मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया
3: कोई बात नहीं चलो एक बात फिर बता देता हूँ गर्मी के दिन घर में बिताओ खीरा ककड़ी तरबूज खाओ नींबू पानी लस्सी पियो 3 गुना पानी पियो गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना तेज धूप में कभी ना खेलो गर्मी के दिन घर में बिताओ गर्म हवा से रहे हम दूर ठंडक में खेले भरपूर
2: गर्म हवा से रहे हम दूर
4: ठंडक में खेले भरपूर ठंडक में खेले भरपूर
3: आग बरसाती धूप।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
0: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
0: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक है जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़ बात
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंकें, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पका कर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: കൃഷി. नमस्कार साथियों, आप सुन रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका रेडियो स्टेशन जी हाँ एफएम ग्रीन, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं. साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम मृदा कार्ड के महत्व के बारे में जानेंगे. मृदा कार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, किसान भाइयों के लिए कैसे लाभप्रद है, ये सारी जानकारी आज देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में है डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, ये मृदा कार्ड क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं.
1: नमस्कार श्रोतागण, मेरे किसान बहनों भाइयों, मैं सोनल, और आज का हमारा टॉपिक है मृदा कार्ड का क्या महत्व है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं किसान के परिप्रेक्ष्य में. तो पहले हम जानते हैं ये मृदा कार्ड है क्या. ये जो आपको मृदा कार्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी. इस कार्ड का उद्देश्य ही था कि जिससे किसानों को उनकी मिट्टी की, जो उनका भूमि है, भूमि की मिट्टी का गुणवत्ता का और उसके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके. और ये जो कार्ड है ना, मिट्टी के विभिन्न गुणों पर काम करता है, स्पेशली जो हमारा पूर्णतः मतलब 12 गुण पे ये आपको उसका विश्लेषण करके, जांच करके उस कार्ड पर इसका विवरण दिया रहता है. और ये कार्ड जो आया था, इसको भारत सरकार चलाया था, भारत सरकार की शुरुआत थी ये जो पहल थी भारत सरकार की थी, ये जो मृदा कार्ड हमारा है कि हर किसान के पास अपनी भूमि क्या है, उनकी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो. और इस भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत अगर बोला जाए तो कब स्टार्ट किया था, तो ये जो योजना है ना 19 फरवरी 2015 को आपको शुरू की गई थी. राजस्थान का एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को. और इस कार्ड का मैंने पहले बताया कि इस कार्ड का क्यों आखिर किया गया, ये कार्ड की किसी किसान को अपनी मिट्टी, भूमि जो है उनकी मिट्टी है, उसकी मृदा स्वास्थ्य क्यों, मृदा स्वास्थ्य जानना क्यों जरूरी है. मृदा स्वास्थ्य जानेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना उनकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें पोषक तत्व तो अगर उपलब्ध है तो कितना उपलब्ध है, और कमी है तो किस लेवल पर कमी है, तभी तो वो अपने कौन सा फसल के लिए लगा सकते हैं, कौन सा फसल लगाना वहाँ सही रहेगा. अगर फसल लगा भी रहे हैं तो उसमें कितना हमें और जो हम बाहरी जो हम खाद पदार्थ डालते हैं कितना डालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका स्वास्थ्य जान पाएंगे, तभी तो उसमें उसका हम निवारण कर पाएंगे ना. तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी.
0: इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें.
1: क्यों हुई कैसे हुई, मैंने अभी जस्ट इसके डिटेल में ही बता दिया था क्यों किया गया था, जिससे हम जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी है उसका मिट्टी का गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकें, उसमें कितने हमारे पोषक तत्व, कितनी पोषक तत्व प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, तो कितना हमें बाह्य खाद जो हम ऊपरी लेवल से जो बाहर से डालते हैं खाद पदार्थ कितना हमें डालना पड़ेगा, और डालना पड़े उसके अलावा कौन सा हमें फसल लगाना सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना सही रहेगा, कौन सा मिश्रित खेती के लिए वो हमारा भूमि सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त हमें वहीं से होती है, ये इसके लिए जगह हुआ. कब हुआ, तो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत सरकार का योजना था जो 15 फरवरी 2015 को, सॉरी 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर, राजस्थान के सूरतगढ़ में. यही उद्देश्य लेके इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्ड का, हेल्थ कार्ड का यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में योजना को लागू किया गया था.
0: जी, मृदा कार्ड कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं.
1: अब हम आते हैं मृदा कार्ड का फायदा क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अब इसका फायदा क्या है, कैसे काम करता है, उसके जाने. ये मृदा जो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है ना, योजना के अंतर्गत जो सरकार है क्या करती है, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करती है. अब जो मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना होता है तो जाहिर सी बात इसको सरकार नहीं करेगी, जो हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, जो हमारा मृदा प्रयोगशाला होता है, उसकी मिट्टी के नमूने को वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्व में की विश्लेषण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्व है, अगर है तो कितनी उसमें कमी है तो उस कमी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है. और इस रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को ना मृदा कार्ड दिया जाता है, जिसमें उनको उनकी भूमि की जो मिट्टी है उसके उपयुक्त उर्वरक, अन्य आवश्यकता की विवरण दी रहती है. मतलब आपने ये समझना है उसमें कि अगर हमने अपनी मिट्टी के नमूने भेजा तो उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, पोषक तत्व चेक की जाएगी। इसमें बेसिकली मैं बता रही हूँ, बहुत सारे चीज़ें हमें जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जाँच करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बट इसमें मुख्यतः 12 पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, 12 पैरामीटर्स में ही 12 मतलब स्पेशली हमें जो 12 होते हैं ना, 12 चीज़ों का ही जानकारी प्राप्त की जाती है। वो क्या क्या है, मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब वो आपको अम्लीय है कि क्षारीय है कि वो दोनों के बीच का है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। मिट्टी का जैविक कार्बन की मात्रा कितना है, मिट्टी में नेत्रजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी में पोटास कितना है। और जो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास है, ये तीनों के हमारा है जिसको मिट्टी का हम बोलते हैं इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहने का मतलब हुआ प्रथम, जो हमारा प्रथम बोलते हैं प्रथम पोषक तत्व, उसकी जानकारी मिलती है। और द्वितीय जो पोषक तत्व जिसमें होता है उसमें होता है सल्फर की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। उस सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, वो 5 है। जिंक होता है, आयरन तत्व का है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है। और इसके अलावा जो हमारे सॉइल सैलिनिटी, जिसको जो हम क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारता कितनी है, जिसको हम ईसी बोलते हैं अपने एक साइंस के टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी क्षारता की भी जानकारी दी जाती है। तो टोटल जो पैरामीटर्स में 12 पैरामीटर्स पे काम करता है, और इस 12 पैरामीटर्स का मिट्टी के प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे ही किसानों को उस कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा आपको फसल के लिए सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना है, कौन सा आपको मिश्रित खेती में जाना है, उसका विवरण दिया जाता है और किसान को उसको समझाया जाता है। अब इसके फायदे क्या कर सकते हैं, ये तो फायदे ही मैंने बताया है, क्या क्या हो सकते हैं। फायदे का यही हो सकता है कि आपको सही समझ में, अगर आपको ने कार्ड प्राप्त कर लिया है तो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि उर्वरक हम सही प्रयोग कैसे करें। किसान अपनी मिट्टी की जाँच के बाद अगर उनको पता चल गया कि हमारी ये है तो उर्वरक का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है, जिससे उनका फसल उत्पादन में और उत्पादकता में सुधार ला सके, ये पहला हमारा फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो सकता है लागत की कमी। बहुत सारे किसान हमारे क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, जितना मन करता है, सपोज उन्होंने धान की खेती करा था, जितना मन करता है वो जो हमारा एक बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में, वैज्ञानिक तरीके से खेती में एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हर फसल के लिए अलग अलग होता है, वो दिया जाता है। तो किसान अपने सूझबूझ से जो मन करता है जितना मन करता है डाल देते हैं। उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हमारी उपज आएगी, हमारी उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। किसी को, जैसे हम मनुष्य हैं, हम भोजन उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी सक्षम है जितना ग्रहण करने में। वैसे भी पौधे हैं, वो भी हमारे सजीव हैं, वो भी उतना ही ग्रहण करें जितनी उनको आवश्यकता है। तो ज़्यादा डालने से भी क्या हो जाता है, आपको क्या है, आपके ही आपकी जो लागत लग रही है वो आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो बोलते हैं खेती करने में, खेती बाड़ी करने में। लोग आज क्यों खेती बाड़ी में पीछे आ रहे हैं, अरे लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन उतना होता नहीं, घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये नहीं होती है, जानकारी के अभाव में हम वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या, हम ना 21st सेंचुरी में हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज होगी, हर चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, तब हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अति आवश्यक है। तो आपको लागत में कमी आएगी अगर आपने जान गया कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आपने उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो लागत में कमी आपकी आएगी, लागत आपका बचेगा। देन पर्यावरण संरक्षण होगा, मृदा कार्ड का, आप मृदा कार्ड में सही उर्वरकों का चयन करेंगे तो पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगी। मिट्टी पानी का संरक्षण होगा, मिट्टी पानी में हमें ज़्यादा जितने पौधे को चाहिए उतने ही डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ से जो हमारे उर्वरक है वो बहकर पानी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा हमारा, मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा हमारा, और हमारा पानी भी संरक्षित रहेगा। फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जितना मात्रा में हमको उर्वरक डालना है उतना पौधे हमारे जो फसल हैं पोषक तत्व वहाँ से प्रदान किए, अच्छी उपज आ गई, अच्छी हमारी उत्पादकता बढ़ी, तो वृद्धि भी इससे फायदा होगी हमारी, फसल के उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगी हमारी।
0: मृदा कार्ड किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
1: अब बात आती है मृदा कार्ड जो हमारे है किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने बताया कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे किसान के लिए उपयोगी हो सकता है, तो जो मृदा कार्ड है सभी प्रकार का फसलों के लिए उपयोगी है। पहली बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मृदा कार्ड हम कर रहे हैं, मृदा कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे हमारे जो किसान हैं, इसका तो उपयोग करने के लिए पहले तो क्या करने का, जिनको किसान को अपने नहीं पता है कि उनको अपने मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है कैसे नहीं है, तो उनको पहले तो अपने एरिया में उनको पता करना पड़ेगा वहाँ किसी सेवा केंद्र है या है कि नहीं है, या मिट्टी का जांच घर है कि नहीं। उस मिट्टी जांच घर में क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का जो उनको भूमि है, भूमि का मिट्टी है, उस नमूने भेजना पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर्स का पहले ही अपने प्रश्नों में उत्तर में दिया है वो अंकित है, उस चीज़ पर जाँच की जाती है, उस जाँच के सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव में लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या आपके भूमि में किसी चीज़ कमी है, अगर है तो किस मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम कोई चीज़ हमारा जो पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं ना, हम लैब में जब उसका विश्लेषण करते हैं, हम प्रयोगशाला में, उसको तीन कैटेगरी

0: बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। जैसे मैंने बोला हमारा जो मृदा प्रथम हमारा प्राथमिक हमारा पोषक तत्व है, जिसका हम बोलते हैं नेत्रजन बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं, पोटास होते हैं, इस सब का एक हमारे साइंटिफिक टर्म से एक लेवल दिया रहता है, जिसको बोलते हैं लो है कि मीडियम है कि हाई है, सारे का ऐसे ही रहता है। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऐसे ही हमारे द्वितीय पोषक तत्व होता है। पीएच है तो पीएच का भी एक लेवल होता है जो 0 से 14 तक होता है, कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको मिट्टी का हमको सैलिनिटी टेस्ट करना होता है, उसका हम टेस्ट के लिए रहता है सब एक ऑर्गेनिक जो हम जैविक कार्बन बोलते हैं उसका भी एक लेवल होता है, लो मीडियम हाई के रेंज में है। उस सारे वहाँ पर क्या होते हैं मेंशन किए रहते हैं, उस मेंशन करने के आधार पर ही कि आपको किस कैटेगरी में आपका मिट्टी का गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्व की जो है प्रेजेंट है उपलब्ध है किस कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, उसके बेसिस पे आपको किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सा वो फसल वहाँ का चयन करना सही रहेगा। फसल चुन रहे हैं और फसल चक्र में तो कौन सा फसल चक्र को अपनाना सही रहेगा, कौन सा आपको मिश्रित खेती के लिए सही रहेगा, या इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो कौन सा इस सब चीज़ के लिए जानकारी सब चीज़ दी जाती है और किसानों को सलाह दिया जाता है कि आप टाइम टू टाइम आके जो भी आपका जहां से आपने कार्ड को प्राप्त किया है वहां आप उससे उसके टच में रहें, जो भी आपको सेवा केंद्र दिख रहा है वहां पर, अब स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं जो मिट्टी का जांच केंद्र होता है जो हमको बोलते हैं जो हम किसी के वी के बोलते हैं किसी विज्ञान केंद्र जो हमारा है, वहाँ से अपनी मिट्टी के नमूना का जांच कराइए, वहाँ से अपने देखिए क्या क्या है और टाइम टू टाइम से उनसे सलाह लेते रहिए अब वैज्ञानिक तरीके से खेत कीजिए और अपने जो भी फसल को जितना चाहिए उतना ही उर्वरक का प्रयोग कीजिए, जिससे कोई चीज़ बह गई पानी वानी में ना जाए, जितने आपको पौधे को जरूरत उतनी पौधा वहाँ से प्रयोग करें, पोषक तत्व उपज अपनी उपज को उत्पादन को उत्पादकता को बढ़ाइए और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं हो, हम भी प्रदूषित नहीं होंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके ये हमारे फायदे हैं। और बहुत सारे उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से हमें लागत में भी कमी आएगी, ये सब फायदे मैंने पहले ही लिस्ट आउट किया है, ये सारे हमारे इसके फायदे हो सकते हैं
1: जी। अब आगे बढ़ते हैं, जानना चाहिए कि मृदा कार्ड से जो जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं किसान, तो ये जानकारी प्राप्त करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
0: हाँ देखिए, बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं, बहनें हैं, उनको बहुत चीज़ों से अवगत हो चुके हैं, अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अवगत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसा जगह भी है ना जहाँ हमारे जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं, जो हमारे अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने हमारे प्राकृतिक चीज़ों पर उपलब्ध है, बहुत चीज़ें उनको जानकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, उस पर तो मैं नहीं कहूँगी उनको, अगर जिसको जहाँ जहाँ अभाव है, अगर उन्होंने मृदा कार्ड का पर्याप्त कहीं से प्राप्त हो गया, मृदा कार्ड उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती, सूझबूझ नहीं है, चाहे सही से नहीं उनको बातों को बताया पहुँचाया गया है, तो बहुत चीज़ों को दिक्कत आ जाती है। वो जैसे हमारी क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कुछ हैं कि जैसे जानकारी की पहुँच है, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं ना जो हमारे किसान हैं उनका मृदा कार्ड की जानकारी प्राप्त करने की बहुत कठिनाई आती है, वो जैसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि सेवा की पहुँच बहुत सीमित है, जहाँ हमारी कृषि सेवा है, जहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वो बेचारे हमारे जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बहुत टेक्निकल स्टाफ से इस पर काम करें, वो वहाँ तक पहुँचने में असक्षम है, वो चाह रहे हैं पूरी अपनी तरह कोशिश है बट अपनी बातों को अपनी चीज़ों को किसान तक नहीं पहुँचा रहे हैं, किसान भी इतने रिमोट एरिया पर रह रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने जो हमारे टेक्निकल स्टाफ्स हैं टेक्नीशियन काम करते हैं इसके लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे ना उन तक पहुंच पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे एक दूसरे को बोलते हैं ना रीच कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है, सबसे बड़ी गैप हो जाती है जिसमें जानकारी की पहुँच नहीं, हमारी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जहाँ लोग अपने जो उनके अंदर जानकारी चाहिए, जो प्रश्न उनको रखना है वो प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, जिनको उत्तर देना वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको जिसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप आ जा रही है। दूसरी हमारी एक तकनीकी जो समझ का होता है अभाव पड़ जाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है कि जही से जो तकनीकी हमें समझ लेनी है, जैसे हमको उर्वरक का प्रयोग करना, अगर धान की खेती हम कर रहे हैं, धान की भी वैरायटी होती है, आपने लो लैंड में करा है, मिड लैंड में किया है या हाई लैंड में करा है, कौन से धान की वैरायटी प्रयोग करा है, वो आपने कौन से मौसम में किया है, और उसी की उर्वरक की बात करें तो उस उर्वरक कितना उर्वरक हमको प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, और प्रयोग कर लिया तो कितने हमारे खाद अवशेष मिट्टी में ऑलरेडी बचे होंगे, जिस खाद का प्रयोग करके हम दूसरी फसल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसका अभाव में रहता है, जो हमारे किसान तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे कुछ किसान हमें जैसे मृदा कार्ड की उनको दी गई है, तकनीकी जानकारी सबने कठिनाई हो सकती है क्योंकि उससे उसके पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, जैसे मैंने ये सब चीज़ें ये दिक्कत आते हैं तकनीकी समझ की। तीसरी आपकी होती है सूचना का अनुपालन हो सकता है, कुछ किसान को मृदा कार्ड की सिफारिश के अनुसार कृषि तकनीकों को अपने अपनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए होती है खासकर अगर ये देखा है कि उन्होंने पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती करना को ही उन्होंने मान रखा है कि नहीं मुझे पारंपरिक तरीके से खेती करना है, उन्होंने किसान जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी ले लिया है, बट वो चीज़ें बहुत रिजिड हो जाते हैं, यानी हम ऐसे करते हैं ऐसे ही करेंगे हम। जैसे जलवायु में इतना हमारा देख रहे हैं परिवर्तन हो रही है, जलवायु में परिवर्तन होता है हमारी मिट्टी बदल रहा है, हमारा पानी बदल रहा है, हमारे में चेंजिंग आ रहा है, बहुत चीज़ों में चेंजिंग आ रही है, बदलाव हो रही है, जो सारे चीज़ जलवायु पर डिपेंडेंट है। तो हमें भी अब पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए कुछ नए तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो लोग रिजिड हो जाते हैं, नहीं हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, जहाँ आपको जिससे फायदे हो रहे हैं ना, जहाँ आपकी फसल के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो आपको नई तकनीकों भी अपनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारे बताते हैं सूचना का अनुपालन जरूर करना चाहिए, जो भी हमें जहाँ से जही सही चीज़ें सीखने को मिल रही उसको हमको सीखना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ें का हमें चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे मृदा कार्ड के बारे में, और इसमें पूरी जानकारी आपने प्राप्त की कि किस प्रकार ये आपके लिए उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है और किन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिली। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जरूरी बात, आई एम शनिंद्र धनुष, टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और ऐसे में रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और कल आपके कोर्स ASC 121 यानी कि सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की परीक्षा है और आपको सब कुछ क्विकली रिवाइज कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। हम लोग जिस कोर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं उस कोर्स का नाम है सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। उसकी कोर्स कोड है ASC 121। ये एक 3 credit की कोर्स है जिसमें कि 2 lectures पर थ्योरी और 1 lecture पर प्रैक्टिकल होता है, तो 2+1 के आधार पर वीक क्लासेस इस कोर्स में होते हैं। जैसे कि हमें पहले से ही पता है शेड्यूल के अनुसार कल ही इसकी मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है, तो मिड टर्म एग्जामिनेशन जनरली इसकी जो आपकी क्वेश्चन पैटर्न रहती है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स रहते हैं जो कि आपको 1-2 paragraph में लिखना होता है। तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जो पहले से आपकी क्लासिफिकेशन है मार्किंग सिस्टम की या क्वेश्चंस की, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसका जो मार्क है वो 0.5 marks की होते हैं और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें 8 marks की शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 होती है उसमें शॉर्ट नोट्स राइट इन 1-2 paragraph या आंसर द फॉलोइंग, इसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो क्योंकि इसकी हमारी जो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है वो 1 hour की होती है, इसमें बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो लोग अपने समय को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से लिख लें। तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही लिखना है। हम लोग अगर इसकी सिलेबस को एक्सप्लेन करें या चर्चा करें इसके बारे में, तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स हमारी इस कोर्स का जो कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग भी सब जानते हैं। जैसे कि अगर मैं यूनिट्स का नाम बताऊं तो इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स, जिसमें आता है आपकी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, रोल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सिस्टम और टू द प्लांट्स, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि नाइट्रोजन क्या है, फॉस्फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स लाइक मैक्रो, माइक्रो, मेजर, माइनर, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है इसको भी आप लोग को अच्छे से स्टडी करनी है। और इस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, आपको इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट आती है जिसका नाम फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी यूनिट है इस कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स की नाम ही है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर के सेक्शन में बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जिसको आप लोग को अच्छी तरह से डील करना है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स में हम लोग ने पहले पढ़ाया हुआ है कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। फर्टिलाइजर है क्या, मैन्योर्स क्या है, और डिफरेंट जो फर्टिलाइजर्स है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। जैसे क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड, लाइक प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स। तो इसके बेसिस में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, तो उसके आधार पे आपको सॉलिड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, या फिर मिक्स फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटैशिक फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, इस तरह के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो फर्टिलाइजर्स को आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इससे भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आए। उसके बाद एक यूनिट थी जो आपकी मैन्योर्स का यूनिट था, जिसमें कंपोस्ट क्या है, FIM क्या है, ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है, हम लोग फर्टिलाइजर्स तो प्रिपेरेशन फैक्ट्री में होता है, बट कंपोस्ट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्या होती है और कंपोस्ट की एग्जांपल्स क्या है, चाहे फर्टिलाइजर हो या आपकी मैन्योर से, उस सब में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। और स्पेसिफिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारे डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है। ये ना कि आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरत है, ये आपकी आने वाली एंड टर्म एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। और ये आपकी यहाँ की एग्ज़ाम के बाद भी, आपकी जो भी JRF या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इस आधार पे आप कंपोस्ट को भी या मैन्यूर्स को भी उसी तरह से आपको स्टडी करना है। और मैन्यूर्स में भी बहुत सारे मैन्यूर्स हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आपने और एक यूनिट में पढ़ा होगा नैनो फर्टिलाइजर्स। सो नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, उसको आप क्या समझते हैं, नैनो फर्टिलाइजर की साइज क्या होती है, यानी नैनो पार्टिकल की क्या साइज होती है, और नैनो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आप किस किस नैनो फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने नैनो यूरिया, नैनो DAP और नैनो फर्टिलाइजर की आपकी रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों नैनो फर्टिलाइजर आज की टाइम में इतना ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो भी आप डिटेलिंग में स्टडी कर सकते हैं। तो मेरी ये बच्चों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग अच्छे से जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं, आप उसकी नोट्स भी बना सकते हैं। आपको ऑलरेडी स्लाइड PPT मोड में आप लोग को पढ़ाया गया है, तो आपको स्टडी मटेरियल तो दिया जा चुका है, इसके बावजूद आप

0: टाइम मैनेजमेंट, या फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, लिख पाओगे उस समय सीमा के अंदर ही, तो आपकी नंबर कट सकते हैं। तो आप लोग जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, एमसीक्यू आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकती है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके लिखना है, क्योंकि एक बार आपने उसको लिख लिया आप ओवरराइटिंग नहीं कर सकते हो। ओवरराइटिंग पे हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपके मार्क्स को हम लोग आधा काटने को मजबूर हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको अच्छी तरह से वो याद आ जाए, तभी आप उसको लिखें। और जो हमारी सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन पैटर्न का, जो शॉर्ट नोट्स या डिफरेंशिएट बिटवीन इस तरह की क्वेश्चन जो आती है, आंसर द फॉलोइंग, उसको आप कोशिश कीजिए कि 1 to 2 पैराग्राफ्स में उसको अच्छी तरह से लिखें, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल व्हाट इज फर्टिलाइजर, आपको अगर पूछा जाएगा तो फर्टिलाइजर क्या है, उसको आप 1 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ। तो वैसे ही अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आया होगा तो जो भी पैरामीटर आपको दिया गया होगा तो उसके बारे में आपको पहले डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब समय के अंदर आपको कैसे करके वो 20 मार्क्स को कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 आवर है, तो क्वेश्चन को समझते समझते ही हम लोग को 10 मिनट्स ऐसे ही लग जाती है। तो आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करके अपने सोच विचार से जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई होगी, जो भी आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हुई होगी, इस कोर्स की सारे जो यूनिट्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। और जो मेरी क्लास की जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग क्लासेस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो जो यूनिट्स के बारे में मैंने डिटेल में बोला है उसको आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर्स है, या फिर ऐसे कुछ भी कंपोनेंट या कंपाउंड है जिसको आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की परसेंटेज को आप जरूर याद कर ले। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आकार में आए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर के बारे में बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है, तो आप अच्छी तरीके से इसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को याद करो। फॉर एग्जाम्पल यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, तो ऐसे बहुत फर्टिलाइजर है, चाहे यूरिया हो, SSP हो, DAP हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, कैन हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो, जिंक सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, मतलब बहुत ऐसी फर्टिलाइजर्स है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। और मैन्योर्स जैसे FIM हो, कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर, तो कितने परसेंटेज में इसमें NPK या बाकी न्यूट्रिएंट्स से वो आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और आपको जो भी स्टडी मटेरियल PPT के तौर पे दिया गया है या हैंडआउट्स दिए गए हैं, आपको अच्छी तरह से उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे वो उसी से ही जनरली आएंगे। बट स्टिल मेरा ये सजेशन रहेगा, आप बुक्स को भी फॉलो कीजिए, जितना आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी बहुत सारे शुभकामनाएं हैं मेरे स्टूडेंट्स को, आप अच्छे से अपने कोर्स को प्रिपेयर कीजिए, और आने वाली जो हमारी कल की मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें मैं ये विश करूंगी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और क्योंकि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है तो इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, अगर फुल मार्क्स 20 है तो कोशिश करो आप 20 से 20 ही लाओ, ताकि आपको ये आने वाली जो एंटर्म एग्जाम है उसमें अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी गया तो कंपेंसेट हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और स्टडी हार्ड एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों उम्मीद है कि आपके कल के एग्जाम के लिए ये रेडियो रिवीजन काफ़ी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8

8FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए। तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था। तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी
मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर, जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना। मुगलकालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना अंग प्रदेश के नाम के पीछे, अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा। भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और ऐसे में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कल आपके कोर्स एएससी 1:1 यानी कि सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की परीक्षा है। और आपको सब कुछ क्विकली रिवाइज कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। हम लोग जिस कोर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, उस कोर्स का नाम है सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। उसकी कोर्स कोड है एएससी 1:1। ये एक 3 क्रेडिट की कोर्स है जिसमें कि 2 लेक्चर्स फॉर थ्योरी और 1 लेक्चर फॉर प्रैक्टिकल होता है। तो 2+1 के आधार पर वीक क्लासेस इस कोर्स में होते हैं। जैसे कि हमें पहले से ही पता है, शेड्यूल के अनुसार कल ही इसकी मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन जनरली इसकी जो आपकी क्वेश्चन पैटर्न रहती है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, जो कि आपको 1-2 पैराग्राफ में लिखना होता है। तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जो पहले से आपकी क्लासिफिकेशन है मार्किंग सिस्टम की या क्वेश्चंस की, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसका जो मार्क है वो 0.5 मार्क्स की होते हैं। और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें 8 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी जो 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 होती है उसमें शॉर्ट नोट्स राइट इन 1-2 पैराग्राफ या आंसर द फॉलोइंग, इसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो क्योंकि इसकी हमारी जो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है वो 1 आवर की होती है, इसमें बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो लोग अपने समय को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से लिख लें। तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही लिखना है। हम लोग अगर इसकी सिलेबस को एक्सप्लेन करें या चर्चा करें इसके बारे में, तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स हमारी इस कोर्स का जो कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग भी सब जानते हैं। जैसे कि अगर मैं यूनिट्स का नाम बताऊं, तो इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स, जिसमें आता है आपकी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, रोल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सिस्टम और टू द प्लांट्स, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि नाइट्रोजन क्या है, फॉस्फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स लाइक मैक्रो, माइक्रो, मेजर, माइनर, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको भी आप लोग को अच्छे से स्टडी करनी है। और इस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, आपको इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट आती है, जिसका नाम फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी यूनिट है इस कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स की नाम ही है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर के सेक्शन में बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जिसको आप लोग को अच्छी तरह से डील करना है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स में हम लोग ने पहले पढ़ाया हुआ है कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। फर्टिलाइजर है क्या, मैन्योर्स क्या है, और डिफरेंट जो फर्टिलाइजर्स है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। जैसे क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड, लाइक प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स। तो इसके बेसिस में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, तो उसके आधार पे आपको सॉलिड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, या फिर मिक्स फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटैशिक फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, इस तरह के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो फर्टिलाइजर्स को आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज है, तो इससे भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आए। उसके बाद एक यूनिट थी जो आपकी मैन्योर्स का यूनिट था, जिसमें कंपोस्ट क्या है, FIM क्या है, ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है, हम लोग फर्टिलाइजर्स तो प्रिपेरेशन फैक्ट्री में होता है बट कंपोज को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्या होती है और कंपोस्ट के एग्जांपल्स क्या है, चाहे फर्टिलाइजर हो या आपकी मैन्योर से, उस सब में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। और स्पेसिफिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारे डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है। ये ना कि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरत है, ये आपकी आने वाली एंड टर्म एग्जामिनेशन में भी आ सकता है और ये आपकी यहाँ की एग्ज़ाम के बाद भी आपकी जो भी JRF या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इस आधार पे आप कंपोस्ट को भी या मैन्यूर्स को भी उसी तरह से आपको स्टडी करना है और मैन्यूर्स में भी बहुत सारे मैन्यूर्स हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आपने और एक यूनिट में पढ़ा होगा नैनो फर्टिलाइजर्स। सो नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, उसको आप क्या समझते हैं, नैनो फर्टिलाइजर की साइज़ क्या होती है, यानी नैनो पार्टिकल की क्या साइज़ होती है और नैनो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आप किस किस नैनो फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने नैनो यूरिया, नैनो DAP और नैनो फर्टिलाइजर की आपकी रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों नैनो फर्टिलाइजर आज की टाइम में इतना ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो भी आप डिटेलिंग में स्टडी कर सकते हैं। तो मेरी ये बच्चों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग अच्छे से जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं आप उसकी नोट्स भी बना सकते हैं, आपको ऑलरेडी स्लाइड PPT मोड में आप लोग को पढ़ाया गया है तो आपको स्टडी मटेरियल तो दिया जा चुका है। इसके बावजूद आप मैंने जैसे कि पहले से भी आप लोग को सजेस्ट किया हुआ है, आप बहुत सारे बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस हो या फिर हमारी सोसाइटी की जो बुक होती है उसको आप स्टडी कर सकते हो, दिलीप कुमार दास जी की जो बुक है आप भी उसको भी स्टडी कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी आप बहुत सारे सॉइल साइंस की बुक्स रखे हुए हैं उसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो इन अ नटसेल आपको सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जो पहले 4 यूनिट्स हैं आपको उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। और मैंने पहले ही बताया है अगर आप टाइम मैनेजमेंट या फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, लिख पाओगे उस समय सीमा के अंदर ही, तो आपकी नंबर कट सकते हैं। तो आप लोग जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, MCQ आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकती है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके लिखना है, क्योंकि एक बार आपने उसको लिख लिया आप ओवरराइटिंग नहीं कर सकते हो। ओवरराइटिंग पे हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपके मार्क्स को हम लोग आधा काटने को मजबूर हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको अच्छी तरह से वो याद आ जाए तभी आप उसको लिखें। और जो हमारी सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन पैटर्न का, जो शॉर्ट नोट्स या डिफरेंशिएट बिटवीन इस तरह की क्वेश्चन जो आती है आंसर द फॉलोइंग, उसको आप कोशिश कीजिए कि 1-2 पैराग्राफ्स में उसको अच्छी तरह से लिखें और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल व्हाट इज फर्टिलाइजर, आपको अगर पूछा जाएगा तो फर्टिलाइजर क्या है उसको आप 1 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ। तो वैसे ही अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आया होगा तो जो भी पैरामीटर आपको दिया गया होगा तो उसके बारे में आपको पहले डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखना है, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब समय के अंदर आपको कैसे करके वो 20 मार्क्स को कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 आवर है तो क्वेश्चन को समझते समझते ही हम लोग को 10 मिनट्स ऐसे ही लग जाती है। तो आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करके अपने सोच विचार से जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई होगी, जो भी आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हुई होगी, इस कोर्स कि सारे जो यूनिट्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। और जो मेरी क्लास की जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग क्लासेस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो जो यूनिट्स के बारे में मैंने डिटेल में बोला है उसको आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइजर से मैन्योर से या फिर ऐसे कुछ भी कंपोनेंट या कंपाउंड है जिसको आपको पढ़ाया गया है तो उसमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की परसेंटेज को आप जरूर याद कर ले। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आकार में आए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर के बारे में बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है तो आप अच्छी तरीके से इसकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को याद करो। फॉर एग्जाम्पल यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, तो ऐसे बहुत फर्टिलाइजर है, चाहे यूरिया हो, SSP हो, DAP हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, कैन हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो, जिंक सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, मतलब बहुत ऐसी फर्टिलाइजर्स है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। और मैन्योर्स जैसे FIM हो, कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर, तो कितने परसेंटेज में इसमें NPK या बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और आपको जो भी स्टडी मटेरियल PPT के तौर पे दिया गया है या हैंडआउट्स दिए गए हैं आपको अच्छी तरह से उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे वो उसी से ही जनरली आएंगे, बट स्टिल मेरा ये सजेशन रहेगा आप बुक्स को भी फॉलो कीजिए। जितना आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी बहुत सारे शुभकामनाएं हैं मेरे स्टूडेंट्स को, आप अच्छे से अपने कोर्स को प्रिपेयर कीजिए और आने वाली जो हमारी कल की मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें मैं ये विश करूंगी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और क्योंकि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है तो इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, अगर फुल मार्क्स 20 है तो कोशिश करो आप 20 से 20 ही लाओ, ताकि आपको ये आने वाली जो एंड टर्म एग्जाम है उसमें अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी गया तो कंपेंसेट हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और स्टडी हार्ड एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों उम्मीद है कि आपके कल के एग्जाम के लिए ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जाम दीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंकें, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहे।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आरजे अनु आप सभी के बीच एक अलग विषय, एक नए विषय को लेकर. वैसे किसान भाइयों, आपको बताएं तो जब आप एक फसल उगाते हैं तो ज़रूरी रहता है कि आप चेक करते हैं, आप देखते हैं कि उस ज़मीन की जो मिट्टी है वो कैसी है. तो आज मिट्टी के बारे में जानेंगे, यानी कि फसल उगाने के लिए मिट्टी जो सबसे ज़रूरी उसका कारक है उसके बारे में जानेंगे. तो आज जब बात आती है स्वास्थ्य की, यानी कि मृदा के स्वास्थ्य की और उसका प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे. तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है.
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सारे किसान भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार करता हूँ. जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज मानी जाती है वो है मिट्टी, या फिर मृदा जिसे हम कहते हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति आई थी, और हरित क्रांति आने के बाद कई सारे फसलों को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, जिसके चलते उत्पाद बढ़ा. लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को अगर हमने बरकरार रखा, आज हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे अस्वस्थ होती जा रही है. इसका कारण ये है कि केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य है उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि फसल को किसी भी तरह का पोषक तत्व देने में मदद करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी हानि पहुंचती है, जिसकी वजह से मृदा का स्वास्थ्य धीरे धीरे घटता जा रहा है. तो इसलिए कई सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फसल उगाते हैं, खास करके अगर हम मृदा स्वास्थ्य की बात करें. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं और आने वाले दिनों में हमारे उत्पाद को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर उस प्रबंधन को हम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कहते हैं.
0: अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिसकी वजह से मृदा की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी रहती है, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं.
1: अच्छा ठीक, सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ हो जाती है हमारे लिए अगर हमें किसी एक जानकारी को लेना है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी का नमूना संग्रह और उसका जांच, जिसे हम मिट्टी जांच कहते हैं प्रयोगशाला में. तो ये करने से क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी एक फसल को उगाने से पहले जिस जगह पे, जिस जमीन पे हम फसल उगाना चाहते हैं, उस जमीन से हमने मिट्टी के नमूने का संग्रह किया,
0: यानी सैंपल ले लिया,
1: जिसे हम सॉइल सैंपलिंग कहते हैं. और ज्यादातर किसान भाई इस बारे में जागरूक हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक वो ये करने से कतराते हैं. वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक ज्यादा काम हो जाता है. जैसे हमें कोई फसल उगाना है, उसमें उर्वरक का प्रयोग किया, हमें उत्पाद मिला. लेकिन किसान भाइयों से हम बार बार यही कहते हैं कि किसी भी फसल को उगाने से पहले आप वहाँ की मिट्टी को एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला में लेके जाइए, उसका जांच कराएं, उसमें कितने सारे पोषक तत्व हैं उनके जानकारी लें, उसके बाद ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें. तो सबसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मिट्टी की जाँच है. उसके बाद मिट्टी की जांच करने के बाद हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमारे जो मिट्टी में कितने पोषक तत्व कितने मात्रा में उपस्थित हैं.
0: अच्छा, आपने मिट्टी की जांच की बात कही, तो हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे कर सकते हैं हम.
1: देखिए, मिट्टी की जांच करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी का नमूना संग्रह.
0: अच्छा,
1: मिट्टी का नमूना संग्रह, जैसे कि आप जानते हैं, किसान भाइयों को भी ये पता होगा कि अगर हम कोई फसल उगाते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि फसल उगाते हैं, तो उसके लिए मिट्टी का नमूना हम सतह से, जो मिट्टी का सतह है उससे 15 सेंटीमीटर नीचे तक का एक गड्ढा खोद के वहां से हम मिट्टी का नमूना संग्रह करते हैं.
0: यानी कि अगर कोई जानकार नहीं होंगे, इस बात को नहीं जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो ऊपर के सतह के ही मिट्टी अगर ले जाते हैं तो उससे पता नहीं चलता है उसमें कौन कौन से तत्व अवेलेबल है.
1: ऊपर का जो सतह है वो पूरी तरह से जो हमारे प्राकृतिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, तो जिसके चलते अगर कोई बारिश होती है, धूप होती है, ठंड का समय होता है, तो अगर हम सतह से मिट्टी को लेते हैं तो हमें उसकी जानकारी मिलेगी नहीं, क्योंकि जो पोषक तत्व तो होते हैं मिट्टी में
0: अंदर होते
1: वो
0: हैं।
1: मिट्टी के अंदर ही होते हैं, और ऊपर से अगर लेते हैं तो उनका कई तरह का लॉस से वो गुजरते हैं कि जितनी मात्रा में वो होनी चाहिए वो सतह में होती नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ फसलों के लिए, जैसे हम धान गेहूं मक्का इत्यादि दलहनी फसल इत्यादि की बात करें तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर तक का मिट्टी का नमूना लेते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम किसी बड़े पेड़ों के लिए, जैसे कि आम का पेड़ है, बड़ा पौधा है, तो उनके लिए नमूना संग्रह का जो डेप्थ है, मतलब जब हम जमीन से नीचे जाने की बात करते हैं, वो 60 से 90 या फिर 1 मीटर तक का गड्ढा करके हमें वहां से मिट्टी का नमूना लेना पड़ता है। इसका कारण सिर्फ ये है कि बड़े पौधों में उनके जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, तो जहां तक जड़ पहुंचती हैं वहां की मिट्टी में अगर हमें सूक्ष्म पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक इत्यादि का अगर हमें जानकारी चाहिए तो जहां तक उनकी जड़ें जाती हैं वहां से हमें मिट्टी के नमूने का संग्रह करना होता है। और अलग से अगर किसी किसान भाई को इस बारे में अगर कोई जानकारी भी चाहिए होगा तो वो विश्वविद्यालय से संपर्क करके, यहाँ के वैज्ञानिक से बात करके वो इसकी जानकारी ले सकते हैं कि मिट्टी का नमूना किस तरह से लिया जा सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तो बात हो गई कि मिट्टी की जांच की, लेकिन हमारे किसान भाई ये कैसे पहचाने, अगर किसी मिट्टी की जांच करवाते हैं तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये मिट्टी उनके पेड़ों के लिए यानी कि उनके पौधों को लगाने के लायक नहीं है या फिर उनके फसलों के लगाने के लायक नहीं है वहाँ पर?
1: जी देखिए, हम जब भी किसी मिट्टी के नमूने का संग्रह करते हैं, उसकी जांच करते हैं, जांच के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि वो जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, कई और ऐसे घटक हैं जैसे पीएच का मान, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैविक कार्बन, जो एक फसल को अच्छी तरह उगाने में मदद करती हैं, उनकी मात्रा मिट्टी में कितनी है, इसकी जानकारी हमें मिट्टी जाँच के बाद मिल जाती है। जब हमें उसकी जानकारी मिल जाती है उसके बाद हर एक फसल का, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, कोई भी फसल हो, सबकी एक पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा है। तो उसी चीज को देखते हुए मिट्टी जांच के बाद हमें जो उसका सैंपल का जो कंटेंट मिलता है, जो उसका मतलब मात्रा मिलती है किसी भी पोषक तत्व की, उसी के बिना पे हमें पता चल जाता है कि वो पोषक तत्व उस मिट्टी में ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, और उसे कितनी मात्रा में हमें देनी है वो फसल को उगाने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो हैं अपनी जमीन यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं?
1: ठीक, जैसे कि हमने अभी बात की मिट्टी जांच की, तो मिट्टी जांच के बाद एक बार जब हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि किस पोषक तत्वों को हमें कितनी मात्रा में डालनी है, उसके बाद हमें उसका प्रबंधन करना होता है। जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर हम किसी भी, जैसे हम अगर अपनी ही स्वास्थ्य की बात करें तो हम सिर्फ दवाइयों पे जिंदा नहीं है।
0: जी जी,
1: ठीक है, हमें अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ लेने की जरूरत पड़ती है जो पौष्टिक होती है और हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करती है। ठीक उसी तरह से मृदा का स्वास्थ्य है, जैसे कि काफी लोगों को ये लगता होगा कि मृदा तो निर्जीव है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे वैज्ञानिक हैं सभी इस बात से राजी होंगे कि मृदा निर्जीव नहीं, एक जीवित वस्तु है। उसका कारण ये है कि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से सारे पोषक तत्व जो पौधों तक पहुंच पाती है, तो उनके वजह से ही हम मृदा को जीवित मानते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अगर मृदा को हमें जीवित रखना है तो उन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं को हमें जिंदा रखना है जो
0: अच्छा।
1: हमारे फसलों को और अच्छा बनाने में मदद करते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि हमारे किसान भाई लगातार अगर एक जमीन पर फसलें उगाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जमीन की जो उर्वरा क्षमता है वो कम होती जाती है।
1: जी, जी।
0: तो उस समय में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
1: इसी बात पे हम आते हैं। हम सबसे पहले एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा, जैसे अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक चीज जो सबसे प्रमुख है जो हमारे किसान भाई ज्यादातर करते हैं वो है केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं।
0: हाँ।
1: वो भी सीमित रह जाते हैं नाइट्रोजन तक, ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस तक, कई लोग पोटेशियम डालते नहीं है। तो इस चीज को करने से क्या होता है, जो हमारी अनुशंसित मात्रा है किसी फसल को उगाने के लिए, अगर उतनी मात्रा में हम पोषक तत्व, हर एक पोषक तत्व को नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है उनमें एक बैलेंस नहीं रहता, जिसके चलते एक पोषक तत्व ज्यादा हो जाता है, दूसरी पोषक तत्व कम हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है धीरे धीरे हमारा उत्पाद जो है फसल का वो घटता जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही हम ये कहते हैं कि सिर्फ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, उसके साथ साथ
0: जैविक
1: खाद, जैव उर्वरक जिसे हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, जितने भी जैव पदार्थ हैं उनका संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक के साथ ही प्रयोग करें, जिसे हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं।
0: कहने का मतलब है कि हमारे किसान भाई सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें, अगर वो करते भी हैं तो कम मात्रा में करें और जैविक खादों का इस्तेमाल ज्यादा करें,
1: कम मात्रा में या फिर जो अनुशंसित मात्रा है। जैसे अगर हम वो किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे तो उनको पता चल जाए कि उनके मिट्टी के लिए, उनके इलाके में जो मिट्टी है उसके लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, उससे ज्यादा वो ना डालें और उसके साथ साथ वो जैव पदार्थों का इस्तेमाल करें। इसके लिए कई किसान भाइयों से हमारी बात भी हुई जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गाय उतनी होती नहीं है जिसके चलते हमें गोबर की खाद उतनी मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम उनको और भी चीजें हैं जो कहते हैं कि आप अगर वो नहीं कर सकते हैं कुछ और चीजें करें, जैसे फसल रोपने से पहले ढैंचा का खेती कर सकते हैं। ढैंचा लगाने से भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, उसके साथ साथ जो फसल अवशेष होते हैं पिछले फसल को पूरी तरह से ना काट के नीचे का जो उसका अवशेष है उसको मिट्टी में मिला के अगले खेत को, अगले फसल को लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी वो बिना गोबर के खाद के जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो चाहे राइजोबियम हो जो ज्यादातर दलहनी फसलों के लिए काम में आते हैं, एजोटोबैक्टर हो, एजोस्पाइरिलम हो, जिनकी सारी जानकारी वो विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। इन सब चीजों का प्रयोग करके वो रासायनिक उर्वरकों के साथ उनका संतुलित मात्रा में प्रयोग करके मृदा स्वास्थ्य को बजाय रख सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी, लेकिन अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: हम हमारे किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहेंगे कि क्योंकि वो लोग पहले से ही खेती से जुड़े हुए हैं तो कई सारी जानकारी उनके पास पहले से है, तो उनको बस एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि उनको थोड़ा जागरूक होना होगा अपने फसल और अपने मिट्टी को लेकर।
0: अच्छा,
1: जैसे बार बार उसी फसल को उसी जमीन पर ना लगाएं, उसका विविधीकरण करें। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक जगह पे धान लगा रहे हैं खरीफ में, तो रबी में कोई और फसल लें।
0: अच्छा,
1: जो कि अच्छा होगा वो अगर
0: लगातार एक किस्म की फसलें नहीं लगानी है।
1: लगातार एक किस्म की फसल लेने से कई सारी चीजें होती है, वो चाहे मृदा का जो पोषक तत्व है वो घट जाती है और अलग अलग चीजें जैसे उसमें रोग ज्यादा लगते हैं, उनमें कीड़े ज्यादा लग जाते हैं, तो ये सारी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम उनसे कहेंगे कि एक ही फसल ना लगाएं, उसको अलग अलग फसल बदल बदल के लगाएं और उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का नहीं उसका संतुलित मात्रा में जैव पदार्थों का प्रयोग करें, जिसके चलते कि मृदा स्वास्थ्य को वो अच्छा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जो उपज वो अभी ले रहे हैं उससे ज्यादा उपज ले सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मृदा को बंजर होने से बचा सकते हैं, उनके पौष्टिक तत्वों का आप जो है परीक्षण कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सहायता से आप अपनी मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही और बस आप सभी से गुजारिश है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप जानकारी रखें और हाँ, जानकारी रखने के अलावा आप जो सलाह यहाँ पर दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, आप उन्हें अपनाएं, यानी कि आप जो खेती करते हैं आप उन्हें उसमें सम्मिलित करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना जरूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए जरूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीजें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है। और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है, इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उससे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं, परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और

0: तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा, और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आई एम शनिंद्र धनुष, टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
2: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
1: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
4: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब भी कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब

0: चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है और अब ज़रूरी होता है कि हम जानें कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
0: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी एनजीओ के द्वारा भी और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें कि श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का जिस नस्ल का जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसेमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AM PM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसेमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24-26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनेको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें, तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीका से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसेमिनेशन में गाय का, कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है या पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावे भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
0: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है, उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
0: और दूसरी चीज़ है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे ज़रूरी है, समय। और तीसरी चीज़ है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है, नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो कैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहां से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं। थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर, हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें, ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी, जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा, उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल, छोटी गाय है, तो आप अगर होल्स्टीन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्ट्रोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको, अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं?
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, NGO के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी, ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायो कैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी NGO के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है। दूसरी चीज़ है कि जो इस जो भी व्यक्ति जो थोड़ा जिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है। क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जो जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर आप अगर इसे एक रोजगार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पका कर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद

संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612-222-6049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612-222-6049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहे।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान PMJY की बात करने वाले हैं, और आज हम जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती है, और अगर कोई परेशानी आए तो आप किनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल 24 घंटे सातों दिन कोई एक कॉल सेंटर है क्या, या फिर कोई आयुषी चैट बॉट कैसे काम करता है, कैसे आपकी मदद कर सकता है, इन बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए कि कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद आरजे उमा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आज तो दिल खुश करने वाली खबर भी लेकर आया हूँ। हमारे गांव की उर्मिला दीदी हैं, उम्र करीब 55 साल, कई महीनों से दिक्कत में थी, पेट में दर्द रहता था लेकिन पैसे की चिंता में अस्पताल जाने से डरती थी। फिर एक दिन आशा दीदी ने उन्हें समझाया कि उर्मिला दीदी, आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इसलिए अस्पताल चलते हैं। उसी दिन आशा दीदी के साथ वे नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल गईं। अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड स्कैन किए और बिना एक भी रुपया लिए उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई। आज उर्मिला दीदी ठीक है और खेतों में काम कर रही हैं।
0: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, अस्पताल का पता ना मिले या योजना के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो किससे पूछे? मतलब कोई ऐसी जगह है जहां दिन रात कोई उनके सवाल सुनकर उचित जवाब दे सके?
1: हाँ बिल्कुल, है ना उमा, आयुष्मान योजना के लिए सरकार ने आयुष्मान संपर्क नाम का 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर बना रखा है। बस आप 14555 डायल कीजिए और उधर से कोई ना कोई तुरंत बात करने के लिए आ जाएगा। मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके कार्ड पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, या किसी को अस्पताल में OPD या भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो बस कॉल कीजिए, कॉल सेंटर वाले आपको एक एक चीज समझा देंगे। कई बार मरीज अस्पताल से लौट आता है लेकिन आगे की दवा या जाँच कहाँ करानी है ये समझ में नहीं आता, ऐसे में आयुष्मान वाले संपर्क करते हैं और संपर्क करके बताते हैं कि नज़दीक में कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां फॉलोअप मिल सकता है। अगर आपको अस्पताल में गलत जानकारी दी गई या शिकायत दर्ज करवानी है तो भी आप इस नंबर पर बता सकते हैं। एक बात और, ये सिर्फ जानकारी देने वाली जगह नहीं है, यहाँ लोग आपकी राय भी पूछते हैं कि सेवा कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए।
0: सेहतिया भैया, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है।
1: देखिए, आयुष्मान योजना की अपनी एक वेबसाइट है, जो कि आप वेबसाइट पर जाकर beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर आपको आयुषी नाम का एक चैटबॉट मिलता है। आयुषी बड़ी ही मददगार है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपका कार्ड बना है या नहीं, योजना में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, या आपके आसपास कौन सा अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है, तो इस वेबसाइट को खोलिए और आयुषी से बात कीजिए। आप जैसे ही अपना सवाल टाइप करेंगे, आयुषी तुरंत जवाब दे देगी। न किसी का इंतजार, न कॉल लगाने की टेंशन, बस मोबाइल में लिखिए और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हों, चाहे आप लाभार्थी हों या अस्पताल चलाते हों। आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है, आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है।
0: बहुत अच्छा सेहतिया भैया, वैसे आयुष्मान PMJY में किस किस बीमारी का इलाज कवर होता है?
1: देखिए, आयुष्मान PMJY बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे अगर किसी को जनरल सर्जरी की जरूरत हो, मतलब पेट का ऑपरेशन, हॉर्निया, अपेंडिक्स वगैरह योजना में शामिल हैं। फिर आता है ENT यानी कान नाक और गले से जुड़ी हुई कोई परेशानियां, अगर किसी के कान में पानी बह रहा है या टॉन्सिल की दिक्कत हो तो उसका इलाज भी इस योजना के तहत होता है। मोतियाबिंद से परेशान हो तो सर्जरी भी आयुष्मान PMJY से हो सकती है। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत काम की है, प्रसूति और स्त्री रोग यानी डिलीवरी, महिलाओं की सर्जरी या अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। हड्डी वाली परेशानियां जैसे फ्रैक्चर, जोड़ बदलना या हड्डी में दर्द की समस्या भी इस योजना में आती है।
0: सेहतिया भैया, अभी आपने कई तरह के इलाज बताए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, दिल की बीमारी हो या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो, तो क्या उसका भी इलाज आयुष्मान पीएमजेवाई कराता है?
1: बिल्कुल करता है ना। कई लोग सोचते हैं कि योजना बस छोटे मोटे इलाज तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान पीएमजेएवाई कठिन और महंगे इलाजों को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट में कोई चोट लग जाए, कई जगह फ्रैक्चर हो जाए, इसे ही पॉलीट्रॉमा कहते हैं। ऐसे में इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में इसका खर्च कवर होता है। और फिर आता है दिल का इलाज, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्टंट लगाना जैसे बड़े ट्रीटमेंट भी इस योजना में शामिल हैं। लोग लाखों के खर्च से बच जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग और नसों यानी कि न्यूरो सर्जरी की। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो या सिर में चोट के बाद ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो भी आयुष्मान पीएमजेएवाई के तहत कराया जा सकता है। कैंसर का इलाज हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में कैंसर की सर्जरी कवर होती है।
0: सेहतिया भैया, क्या चेहरे का ऑपरेशन, जलने का इलाज, छोटे बच्चों की सर्जरी जैसे बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में कवर होते हैं?
1: आयुष्मान पीएमजेएवाई महंगे ऑपरेशन भी कवर करता है, जैसे प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे हादसे में किसी के चेहरे या हाथ पैर पर चोट आ गई हो या शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो इस सर्जरी में से डॉक्टर मरीज को ठीक कर देते हैं। इसका खर्च भी योजना उठाती है। फिर है चेहरे और मुंह की सर्जरी। किसी को चेहरे में चोट लग गई, जबड़े में समस्या है या कोई जन्मजात दिक्कत, तो इन समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई के तहत हो जाता है। अब बात करते हैं कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी की। ये छाती, दिल के आसपास और शरीर के नसों से जुड़ी बड़ी सर्जरी होती है। ये इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई इन्हें भी कवर करता है, जिससे लोगों को लाखों का खर्च उठाना नहीं पड़ता। फिर है वर्म्स मैनेजमेंट यानी जलने के बाद का इलाज। अगर कोई घर में खाना बनाते समय झुलस जाए या किसी दुर्घटना में जल जाए, तो उसका पूरा इलाज, ड्रेसिंग, सर्जरी सब कुछ योजना में शामिल है। और इस योजना की सबसे प्यारी बात बच्चों का इलाज। अगर बच्चों को किसी बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत है, तो यह ऐसी सर्जरी भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में कवर है। छोटे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन इस योजना से माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है।
0: सेहतिया भैया, अभी तक आपने सर्जरी वाली कई सुविधाएं समझाई, लेकिन क्या जनरल मेडिसिन, नवजात शिशुओं की देखभाल या गुर्दे मूत्र से जुड़े कोई इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में आते हैं?
1: देखिए, आयुष्मान पीएमजेएवाई सिर्फ ऑपरेशन वाला इलाज ही नहीं करता, बल्कि कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर करता है, जैसे यूरोलॉजी यानी गुर्दे, मूत्र नली और प्रोस्टेट जैसी जुड़ी समस्याएं। अगर किसी को किडनी स्टोन है, मूत्र रुक रहा है या प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो इसका इलाज भी योजना में हो जाता है। फिर आता है जनरल मेडिसिन, जिसमें डायबिटिक, ब्लड शुगर, बुखार, संक्रमण जैसी आम लेकिन गंभीर बीमारियां का इलाज भी हो जाता है। अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम से लेकर इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत, ब्लड से जुड़ी समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई में होता है। नवजात शिशुओं की देखभाल भी इस योजना में कवर है। कई परिवार कैंसर का नाम सुनकर ही टूट जाते हैं, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में कैंसर, बच्चों के कैंसर का इलाज भी शामिल है।
0: सेहतिया भैया, एक बात और जाननी जरूरी है कि क्या कैंसर की दवाइयाँ, रेडिएशन, इमरजेंसी इलाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएमजेएवाई कवर करता है?
1: बिल्कुल करता है। आयुष्मान पीएमजेएवाई का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कई बार तो महीनों तक चलती हैं, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है रेडिएशन एंकोलॉजी, मतलब कैंसर को विकिरण से जलाकर खत्म करना। ये भी बहुत हाईटेक और महंगी सुविधा है, पर योजना इसका खर्च भी अपने जिम्मे ले लेती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस योजना में शामिल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई गंभीर मानसिक विकार का इलाज भी इस योजना में आता है। और अंग प्रत्यारोपण सबसे अहम है। दिल, किडनी, लीवर जैसे बड़े प्रत्यारोपण का खर्च सोचकर ही लोग कांप जाते थे, लेकिन आयुष्मान पीएमजेएवाई में अंग प्रत्यारोपण भी कवर है।
0: सेहतिया भैया, जिन मरीजों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है, उनके तकलीफों को कम करने वाला उपचार भी क्या आयुष्मान पीएमजेवाई में मिलता है?
1: देखिए, कई बार बीमारी ऐसी होती है कि मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज या कोई गंभीर रोग। ऐसे में पॉलिएटिव केयर बहुत जरूरी है, जिसका मतलब मरीज की तकलीफ कम करना, दर्द कम करना, सांस की दिक्कत ठीक कर उसे आराम देना। आयुष्मान पीएमजेवाई में भी ये सुविधा कवर है। अब आते हैं उन खास इलाजों पर जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्लोक्लियर इम्प्लांट जिसमें बच्चों को सुनने की शक्ति वापस मिलती है, या किडनी प्रत्यारोपण। इन सब के लिए भी आयुष्मान पीएमजेवाई में विशेष पैकेज है।
0: दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आयुष्मान पीएमजेवाई देश की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। ये योजना करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाती है और अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खोलती है। 5 लाख रुपए तक का सालाना उपचार किसी भी गरीब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा है। जब इलाज बिना पैसे के, बिना भाग दौड़ के कैशलेस हो जाते हैं तो घर के लोग राहत महसूस करते हैं। श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आयुष्मान पीएमजेवाई के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे आशा और एएनएम की भूमिका, ऑनलाइन समाधान, अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली फॉलो अप केयर के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज हमारे साथ उन्नत कृषि कार्यक्रम में हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मोटे अनाज की उपयोगिता आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये लाभकारक है ही और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारक है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को समझाएं।
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से आप यूँ कह सकते हैं कि 30 वर्षों के बाद जो हमारे जलवायु में परिवर्तन होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में परमानेंट चेंजेज होते हैं, जैसे कि एक 30 वर्ष का डाटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई या इस पार्टिकुलर प्लेस पर अधिक वर्षा हो रहा है या इस पार्टिकुलर प्लेस पे कम वर्षा हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है कि जो लॉन्ग टर्म, जो लंबे अवधि में पूरे एक रीजन में परिवर्तन होते हैं वो जलवायु परिवर्तन। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन में हो क्या रहे हैं, चेंजेज क्या हो रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। तो दूसरे शब्द में हम कहें तो जो हमारे वातावरण की जो फिजिकल स्टेटस है, जो वातावरण में जो चेंजेज हो रहे हैं, जो वेदर है, वेदर में जो परमानेंट चेंजेज हो रहे हैं, 30 साल या उससे ज़्यादा अवधि में जो चेंजेज हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन ही जो है जलवायु परिवर्तन है। अब जलवायु परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तित हो रहे हैं, तो आप देखिए कि आप 30 साल पहले की बात करिए तो बरसात कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, आज बरसात कम हो गई है। बरसात कम हो गई, पूरी सीजन में बरसात कम हो गई, साथ ही साथ जो बरसात की जो अवधि थी, जो उसकी इरेगुलरिटीज भी हो गई, कभी बरसात होगी एक महीने तक बरसात नहीं होगी, किसी दिन 200 मिलीमीटर बरसात हो जाएगा, फिर 15 दिन तक बरसात होगा ही नहीं, मतलब अनियमितता भी हो गई, बरसात की मात्रा तो कम हुई ही, अनियमितता भी हो गई
0: जी।
1: अब जब मॉइस्चर आपके धरती पर कम आएगा तो स्वाभाविक है तापमान भी बढ़ेगा, क्योंकि पानी ही है जो नमी है, वही नमी ही टेम्परेचर को मेंटेन करती है
0: जी।
1: अब बरसात कम होने लगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम तापमान है वो ज्यादा होने लगा। एक एवरेज की बात करें तो पूरे भारत में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में बढ़ चुका है
0: जी।
1: कहीं पे आधा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो कहीं पे 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, एक एवरेज की बात करें तो 0.84 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। सुनने में तो लगता है कि 0.84 औसत टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन इतना टेम्परेचर बढ़ने से, मात्र इतना टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास जल संकट आ गया।
0: आप
1: देखिए कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो वाष्पीकरण है वो बढ़ जाता है, जो इवेपोरेशन लॉसेस है वो बढ़ता, तो पानी की जो है स्कर्सिटी और होने लगी, हमारे सरफेस लेयर पे पानी की कमी होने लगी। अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है वो भी आज 100 वर्षों में की तुलना में जस्ट दुगनी मात्रा हो गई। आज 420 ppm कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है, और कार्बन डाइऑक्साइड होने से, ज़्यादा होने से भी हमारे लिए विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जो हमारी सीथरी क्रॉप हैं, जिसमें धान है, गेहूं है, इन सब के लिए तो हानिकारक है, लेकिन जो चारा की फसलें हैं और C4 ग्रुप के क्रॉप हैं, C4 में ऐसे क्रॉप से हैं जो है हाई टेम्परेचर पे ग्रो हो जाते हैं, जिसमें मक्का आता है, रागी है, सावा, कोदो, चीना, प्रोसो मिलेट्स हैं, ये सभी फसलें जो C4 ग्रुप की फसलें हैं, शुगर केन है, ये सभी फसलें ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेती हैं, उनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है। लेकिन तापमान बढ़ने से या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो हमारी चारा की फसलें हैं, जिनकी हम केवल चारा के रूप में उसकी वनस्पतिक भाग को खाते हैं, तो होता यो है कि जो वनस्पतिक वृद्धि है वो ज़्यादा हो जा रही है हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि प्रतिदिन जो हमारा ग्रोइंग डिग्री डे है या हम हीट यूनिट कहते हैं वो ज्यादा मिल रहा है, तो वनस्पति ग्रोथ तो ज्यादा होगी। लेकिन जो ग्रेन वाली फसलें हैं धान गेहूं सी3 ग्रुप की, इसकी उत्पादन घट रही है। तो अब देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन होने से हमारी जो मुख्य फसलें हैं धान गेहूं, इन सब की उत्पादन में भारी कमी देखी जा रही है। लेकिन जो सी4 ग्रुप की फसलें हैं जिसमें हमारा मेज और मिलेट्स आता है, मिलेट्स में हमारे विभिन्न 7 प्रकार के मिलेट्स हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, सावा, मड़ुआ, कोदो, चीना, प्रोसो मिलेट, ये सभी फसलें हैं। तो इन सभी फसलों का उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है,

0: कि आज के डेट में ये सभी फसलें जलवायु के अनुकूल हम उनको लगा करके ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी फसलों में क्या है, हाई तापमान सहने की क्षमता है, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होने पर भी ये अच्छे से उसको अवशोषित करके भोजन का निर्माण करती हैं, और ये सभी फसलें कम जल चाहने वाली हैं
1: जी।
0: तो पानी की कमी होने पर भी ये सब फसलें अच्छे से हो जाती हैं। तो मेरा कहना है कि हम अगर ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में, ये जो हमारे मिलेट्स की फसलें हैं जिसको हम पोषक अनाज कहते हैं या श्री अन्न की फसलें हैं, इनको ले करके हम जलवायु अनुकूल इनको अपना सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, अभी देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन लगातार ये चेंज हो रहा है और होते रहेगा, और ऐसे में ज़रूरत होती है हम सभी को कि इस जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ही हम चलें और हम अपने आप को ढालें। खेती की बात करते हैं तो अभी आपने कहा था कि C4 क्रॉप्स जो ये मिलेट्स हैं, इनको सबसे पहले तो ये खेती के दृष्टि से अगर देखा जाए तो C3 क्रॉप से ये कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बता दें।
0: देखिए, जो जो भी C4 क्रॉप्स है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और उसको फिर फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा उसको फूड में बनाने की कैपेसिटी है, भोजन निर्माण करने की क्षमता है, इनमें ज़्यादा हो जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन पर, CO2 के कंसंट्रेशन होने पर भी ये अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। और जितने भी C4 क्रॉप्स हैं देखा जाए तो ये थोड़ा सा हाई तापमान पर भी अच्छे से सर्वाइवल कर लेते हैं। तो अब हो क्या रहा है, जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसमें तापमान ऑलरेडी हमने बताया कि बढ़ रहा है, 0.8 डिग्री से लेकर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड अलग अलग जियोग्राफिकल सिचुएशन में बढ़ा हुआ है तापमान, और जल की भी कमी हो रही है, और इवन भूमिगत जल की भी देखिए कमी होती जा रही है। हर वर्ष जो है 1.2 मीटर तक जो है वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। तो आज के डेट में ये जो हमारी मोटे अनाज की फसलें हैं ये परिवर्तित जलवायु की आवश्यकता है, और अगर हम इनको नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में हम गेहूं धान के द्वारा अत्यधिक जल का भी दोहन करेंगे और उत्पादकता भी घटती जा रही है। तो आने वाले समय में धान और गेहूं तो एक तरह से देखा जाए तो जो है उसकी एरिया बहुत ज़्यादा घट जाएगी, घटाना हमारी मजबूरी होगा क्योंकि उत्पादकता हमको नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं जो हम C4 ग्रुप की हमारी मिलेट की फसलें हैं, चाहे ज्वार है, बाजरा है, सावा, मड़ुआ, कोदो, चीना, जो भी हैं, इन सबको हमें कहीं ना कहीं से एरिया को बढ़ाना है और जो हमारा जल संकट है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। जो टेम्परेचर बढ़ा उसके अगेंस्ट भी ये सभी फसलें जो है आराम से सहनशील है, क्योंकि ये सभी फसलों का, मिलेट की सभी जो फसलें हैं मोटे अनाज की, सब 44 डिग्री 45 डिग्री तक आराम से सस्टेन करती हैं और उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं होती, वहाँ तक उत्पादन मिलता रहता है। जबकि धान और गेहूं में जो है देखा गया है कि 35-36 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर उसकी उत्पादकता में गिरावट होने लगती है। तो वही सिचुएशन है कि अब जब टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो ऐसे में हमको ये लगाना मजबूरी है, साथ ही बरसात भी कम हो रही है तो भी धान और गेहूँ वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं उत्पादन दे पाएंगे, वहाँ भी हमें मिलेट को ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे सूक्ष्म जीव है, बरसात कम होने से, मॉइस्चर कम होने से उनकी भी संख्या जमीन में घटने की संभावना हो जाती है। तो वहाँ पे धान गेहूँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, वहाँ पे हमारा मिलेट फसलें हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ जमीन थोड़ा सा कमजोर है, अनुपजाऊ है, वहाँ भी हम इन मिलेट फसलों को अच्छे से उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसलिए बदलते मौसम में जलवायु के अनुकूल ये जो मिलेट की फसलें हैं वो पूर्णतया जलवायु के अनुकूल है और किसान को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अब तो हमारे मिलेट में ऐसी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं, हर क्रॉप की ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो अच्छी उत्पादकता वाली हैं, और अच्छा उत्पादन मिलने से पर हेक्टेयर अगर 30-35 क्विंटल तक उत्पादन भी मिल जा रहा है तो किसानों को धान और गेहूं की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है। साथ ही साथ ये सभी जो मिलेट की फसलें हैं, मोटे अनाज की फसलें हैं, ये ग्रीन हरित गैसेस का उत्सर्जन बहुत कम करती हैं। जैसे जब हम धान लगाते हैं तो हम खेत को जलमग्न करते हैं, पडलिंग करते हैं, थोड़ा सा पडलिंग करते ही एनरोबिक कंडीशन होता है, खेत में पानी स्टैंडिंग होता है, तो वहाँ से इथेन मिथेन जैसी हानिकारक ग्रीन हरित गैसें निकलने लगती हैं, इनके उत्सर्जन होने से पुनः वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जबकि जब हम मिलेट्स को लगाते हैं तो ये मोटे अनाज की फसलें जो ग्रीन हरित गैस है इसका उत्सर्जन बहुत ही कम करती हैं, धान और गेहूं तुलना में 20 गुना ज़्यादा कम करती हैं, 20 गुना कम करती हैं। तो जिससे क्या होता है, जो हमारा वातावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ अब बात करें तो धान गेहूँ में हम खाद और पानी भी ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा खाद देने से क्या होगा कि खाद का जो पार्ट है या पेस्टिसाइड का जो कुछ पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट है, वो कहीं ना कहीं से रिस करके भूमिगत जल में चला जाता है, भूमिगत जल को टॉक्सिक करता है। और मिलेट में हम खाद कम देते हैं और पानी भी कम देते हैं, तो भूमिगत जल में रिसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, या अगर जाता भी है तो बहुत ही कम जाता है। तो इसलिए जल भी हमारा जो भूमिगत जल है वो भी स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। उसी तरह से वातावरण की अगर बात करें तो जब हम धान और गेहूं में वो उगाते हैं तो हम इन मिलेट फसलों की तुलना में दुगना फर्टिलाइजर देते हैं। हमें पता है जैसे यूरिया हम दे रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, तो यूरिया का केवल 30-35% भाग ही पौधा उपयोग में लाता है, बाकी 65% भाग इधर उधर नष्ट हो जाता है। नष्ट होने में उसका 18-20% भाग वाष्पीकरण के द्वारा वोल्टाइज होकर के एटमॉस्फेयर को जाकर नाइट्रस ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं से वो एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करता है। उसका 18-20% भाग रिस करके भूमिगत जल को जाकर नाइट्रेट टॉक्सिसिटी देता है। और पंजाब हरियाणा को आप देख लीजिए ना, वहाँ अत्यधिक खाद देने से क्या हो रहा है, भूमिगत जो जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसमें नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। और वहाँ जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं वो नीले कलर के हो रहे हैं, तो उसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और ये नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी से होती है। और ऐसे में हमारा भूमिगत जल में जब ये सब अवशेष रह जाता है, नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो देखा जाए तो जब हम मिलेट को लगाते हैं तो हम खाद कम देते हैं, पेस्टिसाइड भी कम यूज करते हैं, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी सुरक्षित रहता है। हमारा खाद कम दिए तो एटमॉस्फेयर में इसका वोलेटाइजेशन लॉसेस भी कम होगा, तो कहीं ना कहीं से हमारा जल भी, लिथोस्फीयर यानी जल के जो स्रोत हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, एटमॉस्फेयर भी वातावरण सुरक्षित और शुद्ध रहता है। और साथ ही साथ हम अगर मनुष्यों की बात करें तो हमारे ह्यूमन बीन जब इसका कंजप्शन करते हैं मोटे अनाज का या मिलेट्स का फसलों का, तो विभिन्न प्रकार से वो उनकी शरीर हिस्ट पुष्ट और स्ट्रांग रहती है, ऊर्जावान रहती है, और 200 से ज़्यादा बीमारियों से हम बचे सकते हैं इनका सेवन करके। इसलिए देखा जाए तो मिलेट्स फसलें, जो मोटे अनाज की फसलें हैं, ये हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी हैं। एनिमल को चारा खिलाते हैं वो भी हिस्ट पुष्ट रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी हैं। पर्यावरण को भी अगर देखें तो सुरक्षित और संरक्षित रखने में इन मिलेट फसलों का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो जल है, जल की संकट से भी निपटने के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में है। तो हम एक मिलेट की फसलों को लगा करके अपने पूरे इकोसिस्टम को सुरक्षित एवं संरक्षित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा विस्तार में बताइए कि कैसे ये लाभदायक है।
0: हाँ देखिए, चूंकि हमारे रेडियो श्रोता हैं, यहाँ पे कुछ दिखाने का ऑप्शन तो है नहीं, नहीं तो मैं पूरा एक स्लाइड अगर देखने का ऑप्शन होता तो थोड़ा सा उनको और ज़्यादा क्लियर होता। मोटी मोटा तौर पे हम बता देते हैं कि हमारे शरीर को एक बैलेंस फार्म में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं, वसा है, फैट है, मिनरल्स मैटर है, विटामिन है, इन सब की ज़रूरत होती है। जब कभी भी इन सब में से किसी एक या इन सभी की डिस्टर्बेंस होता है, कमी होती है, तो हम विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर या बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। जैसे हम अगर प्रोटीन की बात करें तो मिलेट्स फसलें जो हमारी हैं, जो मोटे अनाज की फसलें हैं, इसमें प्रोटीन जो होता है वो ग्लूटीन से मुक्त होता है, ग्लूटीन फ्री होता है। अब ग्लूटीन फ्री होने से क्या लाभ है, जैसा कि गेहूं में क्या है, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है, तो गेहूं का आप देखे होंगे ग्लूटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गेहूं का आटा अच्छे से बन जाता है। लेकिन जब गेहूं के आटे से हम रोटी बना लेते हैं और उस रोटी को खाते हैं तो हमारे आंतों में जाकर के वो कहीं ना कहीं से उसका कुछ भाग चिपक जाता है, क्योंकि गेहूं का जो आटा है या गेहूं में जो प्रोटीन है वो एडहेसिव नेचर की, चिपचिपे नेचर की करेक्टर्स की होती है। तो जब आंतों में भी हम खाते हैं तो आंतों की जो भिलाई होती है उसमें गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो गड्ढों में ये जो हमारा ग्लूटीन नमक प्रोटीन है गेहूं का, वो जाके चिपक जाता है। इसके ऊपर फिर क्या है, लिपिड्स की जो प्रोफाइल्स हैं, कुछ फैटी मटेरियल जाके चिपक जाते हैं। तो जब 2 से 3 दिन तक ये चिपके रह जाते हैं तो धीरे धीरे पेट में हमारे आंतों में क्या होती है, डिकम्पोजिशन या सड़न की स्थिति होने लगती है। जो ही सड़न होती है इन खाद्य पदार्थों की, अनडाइजेस्ट पदार्थों की, तो क्या होता है, धीरे धीरे खट्टा मीठा ढेकार, एसिडिटी, ये सब शुरू होने लगता है। और वहीं से खेला शुरू होता है लो लेवल प्रोटीन की, लो डेंसिटी प्रोटीन की, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है ये भी समझ लेने की जरूरत है। आपकी आपकी धमनियों में जो है, जब ये चिपचिपा मटेरियल जो उसको हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, या जो कह लीजिए कि एक कोलेस्ट्रॉल मटेरियल जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, जब हमारे धमनियों में ये फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं से धमनियों के साइज को घटा देता है। और जब कोलेस्ट्रॉल के कण कभी कभी आपस में बंधे हुए होते हैं, जब ये कोलेस्ट्रॉल के कण टूट जाते हैं, टूट करके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो वेंस हैं, जो न्यूरॉन्स वेंस हैं, जो उसमें जो बहुत महीन वाले वेंस हैं उसमें जाके जब फंस जाती हैं, तो चोकिंग करने से क्या होता है, हमको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, मतलब बहुत सी बीमारियों का उत्पत्ति शुरू होने लगता है। लेकिन अगर वहीं जब हम मोटे अनाज अर्थात मिलेट फसलों का कंजप्शन करते हैं, इनको खाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटीन अच्छे अमाउंट में है, अच्छी रेशियो में प्रोटीन है, अच्छा कंसंट्रेशन है प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन जो है साथ ही साथ ग्लूटीन से मुक्त है, ग्लूटीन फ्री प्रोटीन है, वहाँ पे ग्लूटीन नामक प्रोटीन नहीं होती है मिलेट में। तो अब जब हम इसको पहली बात गूंथते हैं तो इसका आटा नहीं गूंथ पाते हैं, लेकिन इसको विभिन्न अलग से रूपों में जब हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में जा करके आँतों में ये चिपकता नहीं है। पहली बार जब आंतों में चिपके गए तो डाइजेशन बेटर होगा। दूसरी बात है कि इसमें इन सभी फसलों में फाइबर, जिसको हम रेशा बोलते हैं, रेशा की मात्रा भरपूर होती है, 10% से लेकर 15% के बीच में रेशा भी होती है। तो फाइबर पर्याप्त मात्रा में होने से, जैसे इसबगोल की भूसी हम खाते हैं, जब हमारा कब जैसी होता है तो इसबगोल की भूसी शाम को हम खाते हैं, तो इसमें नेचुरल रूप में फाइबर है, नेचुरल रूप में रेशा है। तो रेशा युक्त अनाज होने से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो बहुत हेल्दी रहता है, और जो कुछ भी हम खाए पिए होते हैं उसको अच्छे से पचा लेता है, तो किसी प्रकार का कब्ज या एसिडिटी ये सब नहीं होता है। और अच्छा जब हमारा पाचन क्रिया रहेगा तो आगे हमको किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी ये सब की समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसमें फैट की। देखिए, ये सभी मिलेट फसलों में जो फैट है वो चावल की तुलना में लगभग दोगुना ढाई गुना ज़्यादा मात्रा होता है फैट। और फैट यानी वसा हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। विशेषकर बाजरा की बात करें तो 5% से लेकर 5.5% तक बाजरे में फैट होता है। उसके बाद चीना की बात करें, कौनी की बात करें, इसमें 3.5% तक फैट होता है। बाकी मिलेट्स में भी 2 से 2.5 के बीच में परसेंट के आसपास फैट होता है। तो ये फैट कहीं ना कहीं से हमारे लिए लाभदायक है और हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसमें मिनरल्स मटेरियल्स की, जिसे जो बोलते हैं एस मैटर। तो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम जो है, जैसे रागी की बात करें, मड़ुआ की बात करें, तो मड़ुआ में जो कैल्शियम है वो 500 ppm अर्थात 500 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम तक प्रति 100 ग्राम दाने में मिल जाता है। अब एक स्वस्थ शरीर के लिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर 30 साल की उम्र तक के हम लोग हैं तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम की हमें ज़रूरत है, अर्थात केवल 100 ग्राम मड़ुआ खाने से हमें कैल्शियम की पूर्ति हो गई। लेकिन 30 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को 750 से लेकर के अगर 50 साल की उम्र वाले हैं तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो उतना कैल्शियम हमको चाहिए, तो एक रागी एक ऐसा सोर्स है, रागी को खाने से हमें ज़बरदस्त कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और आपको पता है कि गेहूं और धान में रागी की तुलना में 15 से 20 गुना कम जो है कैल्शियम होता है, अर्थात रागी यानी मड़ुआ की बात करें तो इसमें धान की तुलना में 20 से 25 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, गेहूं की तुलना में 10 से 15 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम का क्या लाभ है आपके मानव स्वास्थ्य पर, ये देख सकते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारी हड्डियाँ हैं, जो बोन्स है, हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार की एक्टिविटी में, हड्डियों के फॉर्मेशन में, हड्डियों के निर्माण में, और कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कैल्शियम की कमी है तो 20 से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, बोन फाइब्रोसिस है, बोन सिस्ट, बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर हम इन मिलेट फसलों को अच्छे से कंजप्शन करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कहीं से कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में होती है, गेहूं और धान की तुलना में फास्फोरस भी इसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। फास्फोरस का भी रोल भी कैल्शियम की तरह ही है, हमारे शरीर में जो फाइटिंग है, फाइटिक एसिड है, या हड्डियों से संबंधित फॉर्मेशन में फास्फोरस का भी रोल है। तो देखा जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलके हमारे जो बोन्स का स्ट्रक्चरल बैलेंस है उसको बनाने में मदद करता है। तो हड्डियों से संबंधित विकार के लिए ये दोनों मतलब ये मिलेट की फसलें बहुत लाभकारी हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अब हार्ट की बात करें तो इन मिलेट फसलों में क्या होता है, मैग्नीज बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, गेहूं और धान की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मैग्नीज, और बहुत से फैटिक एसिड इत्यादि बहुत अन्य प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो जिसके चलते जो हमारा हार्ट का सिस्टम है वो एक

हो जाता है, तनाव घट जाता है और हमें कहीं न कहीं से एक अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। फिर बात करते हैं हम जिंक की और सूक्ष्म लोहा की। देखिए विशेष रूप से लोहा की अगर बात करें तो बाजरा में जो है ऐसी बाजरा की प्रजातियां भी आ चुकी है जिसमें 60 से 65 ppm तक लोहा होता है, जबकि हमारे शरीर को प्रतिदिन 5 से 7 ppm ही लोहे की ज़रूरत होती है। गेहूं और चावल की तुलना में इसमें लोहा 20 गुना ज़्यादा है। तो अब देखिए कि बाकी जो मिलेट की फसलें हैं उसमें 10 से 12 गुना ज़्यादा लोहा है। हमारे देश में लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये सबको पता है। और शहरी क्षेत्रों में करीब 70-80% महिलाएँ कहीं न कहीं से खून की कमी से ग्रसित हैं, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाती है। और उसी तरह 60-65% पुरुष भी शहरी क्षेत्रों में एनीमिया के शिकार हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो करीब 60% महिलाएं और 50% पुरुष एनीमिया के शिकार हैं। जब हम मिलेट की फसलों को लेते हैं तो हमारे शरीर में लोहा और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और कहीं न कहीं से एनीमिया अपने आप दूर हो जाता है। तो हम भविष्य में जो मेडिकल पर बहुत सी खर्च करते हैं, सिर्फ हम मिलेट को खा करके अपने देश को सुरक्षित एवं स्वस्थ रख सकते हैं। बात करते हैं अब जिंक की। तो जिंक भी एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए या किसी भी एनिमल सिस्टम या प्लांट सिस्टम के लिए भी अहम महत्वपूर्ण रोल होता है जिंक का। विशेषकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा करता है, शरीर को दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखता है। अगर जिंक की कमी है तो शरीर आपका सुस्त हो जाता है, एनर्जी का लेवल कम महसूस करते हैं। लेकिन ये जो मिलेट की फसलें हैं इसमें जिंक जो है कहीं न कहीं से गेहूं और चावल की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। और जो फोर्टिफाइड हमारी रागी की वेराइटीज़ हैं उसमें जिंक देखा गया है 40 ppm तक भी मिल जाता है। बाजरे की जो फोर्टिफाइड वेराइटी है उसमें भी 40-45 ppm तक जिंक मिल जाता है। तो जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा शरीर दिन भर एनर्जेटिक बना रहता है, चुस्त एवं दुरुस्त होता है। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं। अच्छा, अब एक बात करते हैं फाइबर की। तो चूंकि फाइबर यानी भूसी जो नेचुरल रेशा है वो मिलेट फसलों में 8-10% या और ज़्यादा होता है, 12% तक भी कुछ फसलों में है जैसे सामा मिलेट्स है। तो ये फाइबर हमारे आंतों को सही फंक्शन करने में मदद करता है। जैसे हमको जब कब्ज और एसिडिटी हो जाता है तो हम शाम को इसे उबाल के 2 चम्मच भूसी लेते हैं गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ। तो अगर हम मिलेट फसलों को खा रहे हैं तो हमको अलग से इसबगोल की भूसी या फाइबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10% से लेकर 12-13% तक फाइबर होता है, रेशा होता है, जो हमारे आंतों को सही फंक्शन करने में मदद करती हैं और किसी प्रकार का कब्ज एसिडिटी होने से बचाती हैं। और जब हमारा पेट स्वस्थ रहता है, पेट का फंक्शन अच्छा रहता है, तो पूरा शरीर का सिस्टम एनर्जेटिक बना रहता है और अच्छे से हम काम करते हैं। अब बात करते हैं स्किन के लिए भी हमारा रागी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी मिलेट्स फसलें हैं इसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, फैटिक एसिड या बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो त्वचा को एकदम साफ सुथरा और चमक के साथ मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन सब आज के डेट में हम देखें तो ओबेसिटी जो मोटापा है एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मैदा या अनियमित खान पान की वजह से जो है मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो जब हम मिलेट फसलों को करते हैं तो इसमें मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं ये मोटापे को घटाने में बहुत अहम रोल रखते हैं और आप प्रति महीने 2-3 kg तक बॉडी वेट लूज कर सकते हैं इन मिलेट फसलों के कंजप्शन करके। लेकिन आपको गेहूं और चावल पूर्णतया उस अवधि में छोड़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये जो हमारे मिलेट की फसलें हैं, मोटे अनाज की फसलें हैं, हमारे मानव स्वास्थ्य में लगभग 200 से ज़्यादा बीमारियों या डिसऑर्डर को नियंत्रित करने में बहुत अहम रोल है। इवन एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होती हैं ये मिलेट फसलें। तो एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होने से हमारी जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको ये कंट्रोल में रखती हैं और हमारी जो है एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है उसको भी ये नियंत्रण में रखती हैं। साथ ही साथ जो कैंसर जनरेट होते हैं, अगर एंटीऑक्सीडेंट आप परिपूर्ण ले रहे हैं तो कैंसर की सेल्स का जनरेशन नहीं होगा, कैंसर की सेल्स डेवलप नहीं होंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं से ये फसलें हमको कैंसर से भी बचाव में मदद करती हैं, लेकिन कुछ हद तक ये मदद करती हैं। तो इस तरह से
जो हमारे मिलेट की फसलें हैं देखा जाए शॉर्ट में हम कहें तो ये हमें कैंसर से बचाव कर सकती है, शुगर से बचाव कर सकती है, ये हार्ट की से संबंधित बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से बचाव कर सकती है, या किसी को हो गया तो उसमें भी लाभदायक है। पैंक्रियाज की एक्टिविटीज को सही करती है जिससे हमको शुगर

0: नहीं होने देता है, या शुगर हो भी गया तो इनके लगातार कंजप्शन से हमारा शुगर लेवल भी घटने लगता है। तो इस तरह से हम हड्डियों की मजबूती से लेकर के पूरे शरीर को एक बैलेंस फार्म में रख सकते हैं मिलेट फसलों को खा करके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए, कैसे हमारे लिए लाभकारक है इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम। फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
2: 90.8 MHz। उन्नत कृषि। सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आई एम मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.4 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। आप सभी को नमस्कार, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जो भी अपने बारे में सोचा है, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सफल बस वही होते हैं जो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सिर्फ मेहनती नहीं होते हैं बल्कि उनमें कुछ अच्छी आदतें भी होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट के बारे में, यानी कि सफल छात्रों के आदतों के बारे में। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, अच्छे मार्क्स लाए और अपने सपनों को पूरा करे, हर कोई चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से आती है, यानी कि सिर्फ समझदारी होशियारी से आती है? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा राज होता है आदतें। जी हाँ, आपकी आदतें कैसी है, आपके हैबिट्स कैसे हैं? तो आज हम जानेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में कौन कौन सी आदतें होती है जिसे आप ही अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सफल होना क्या है। कुछ लोगों के लिए सफलता है कि किसी एक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सफलता का मतलब है कि उन्हें कोई उनका ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए सफल होने का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, काफी है। लेकिन किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ भी हो, लेकिन हर एक सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वो होता है मेहनत और सही आदत। जी हाँ, मेहनत और सही आदतों का ही रिजल्ट होता है सफलता। और आज हम इसी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लिया है हमने कि सक्सेस क्या है, अब हम जानते हैं कि सक्सेस आता किसके साथ है। कहते ना कि बिल्कुल एक फिक्स पैकेज होता है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आना ही चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है टाइम मैनेजमेंट। वो अपना डेली शेड्यूल बनाते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं, जो आजकल बहुत सारे बच्चों की परेशानी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वो सोचते हैं कि आज मूड नहीं है, या फिर आज नहीं, कल से पढ़ेंगे, एक घंटे बाद पढ़ेंगे, और वो एक घंटे बाद कभी आता ही नहीं है। अगर आप हर रोज़ 2 घंटे फोकस करके पढ़ते हैं तो आपको जो लास्ट टाइम पे आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं ना, उसे कहीं ज़्यादा हर रोज़ 2 घंटे इफेक्टिव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना डेली शेड्यूल बनाएं, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स रखें और साथ ही प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। हर रोज़ आप टू डू लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना है। बाकी सारे काम नहीं भी होंगे तो चलेगा, और हर रोज़ आप उस पर टिक लगाइए कि हाँ, मैंने आज जो अपनी प्रायोरिटी थी उसे मैंने कंप्लीट की है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके रूम में आपने देखा होगा एक वाइट बोर्ड रहता है, उस पर वो लिख देते हैं कि कल उन्हें क्या करना है और फिर उस पर टिक करते हैं कि हाँ, मैंने ये काम भी कर लिया, मैंने ये काम भी कर लिया। यह आदत अच्छी होती है। और अभी मैंने कहा ना कि हर रोज़ आप 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप लास्ट टाइम में आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, बस हर रोज़ पढ़िए। तो इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्मार्ट स्टडी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना। जो भी सफल विद्यार्थी होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करते, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिविज़न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हर रोज़ पढ़ते हैं। कभी भी पढ़ना मिस नहीं करते कि हाँ ठीक है, आज नहीं पढ़ाई की, कल नहीं पढ़ाई की, परसों नहीं पढ़ाई की, तरसों पढ़ लेंगे 4 घंटे। नहीं होता ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुश्किल तब भी होता है अगर आपने अपने गोल्स क्लियर नहीं रखे हुए हैं। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं होगा तो डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगी। जाहिर सी बात है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से शहर जाना है तो आप ट्रेन कौन सी लेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको जब पता ही नहीं होता है कि आपका गोल क्या है तो आप उसके लिए काम कैसे करेंगे, उसके लिए पहला कदम कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने गोल को क्लियर रखें, तभी आपके डायरेक्शंस भी क्लियर होंगे। और कुछ लोगों के गोल होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो कि हर रोज़ अपना गोल फिक्स करते हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, या फिर वीकली बेसिस पे वो बनाते हैं कि इस वीक में मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि उन्हें पता होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। आपने हो सकता है कि अभी आपने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है, किसी एक एग्ज़ाम के बारे में आपने नहीं सोचा है, बस आप अभी अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। दोनों ही गोल आपने फिक्स किया हुआ है, दोनों ही गोल के लिए आप काम करेंगे, और दोनों ही गोल के लिए जब आप काम करते हैं तो आप सही दिशा में पहुँच ही जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, गोल होना चाहिए। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है डिस्ट्रैक्शंस। गोल बना लिया आपने, टू डू लिस्ट बना लिया, लेकिन आपकी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शंस है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से हम दूरी कैसे बनाएं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इनका बहुत ही लिमिट में इस्तेमाल करते हैं। वो फ़ोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, ना कि फ़ोन के गुलाम वो बन जाते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे फ़ोन के गुलाम बन गए हैं, फ़ोन के हिसाब से सोते हैं, जागते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे होता है तभी उन्हें ध्यान आता है कि अरे मैं करियर का क्या करूं, मैं क्या कर रही हूं अपने जीवन में। लेकिन जैसे ही फ़ोन चार्ज हुआ, वो भूल जाते हैं कि अभी हमें अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। और सोशल मीडिया ने तो इस तरीके से बहकाया हुआ है कि क्या ही कहने। इसलिए अभी सबसे ज़रूरी होता है कि आप मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना कर रखें, उन्हें यूज़ करें पर लिमिट में करें। और पढ़ाई के समय में तो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखिए, उसे दूर रखिए, नोटिफिकेशंस को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, और ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए और ख़ुद को समझा लीजिए कि ब्रेक के टाइम पे ही फ़ोन का इस्तेमाल करना है। जब पढ़ाई कर रहे हों तब फ़ोन का नो यूज़, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस दस्तक देगी। और जब सक्सेस दस्तक देती है तो उसके पहले बहुत सारी असफलताएँ भी रहती है। और ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप फेलियर से नहीं डरते हैं, तो फिर आप रेस में लंबे टिकते हैं। हर स्टूडेंट कभी ना कभी फेल जरूर होता है, फिर चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी हार्ड वर्किंग हो, कभी ना कभी उसके जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब वो हार जाता है। लेकिन वो हार मानता नहीं, डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जानता है कि जो फेलियर है ना, अंत नहीं है, वो एक सबक है। इसलिए नेगेटिव सोच से बचे, खुद पर विश्वास रखे और खुद के हेल्थ को भी बनाए रखे। जी हाँ, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। वो प्रॉपर नींद लेते हैं, जी हाँ, 7 से 8 घंटे, 7 से 9 घंटे, जी हाँ, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही हेल्दी खाना भी ज़रूरी होता है और एक्सरसाइज करना तो बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सोइए, हेल्दी खाना खाइए और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना बंद मत कीजिए। पर ध्यान रखिए कि आप कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों से मिलेंगे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, या फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हैं पर मोटिवेटेड तो हैं कम से कम, और वो अच्छे हैं, वो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, तो फिर ऐसे दोस्तों का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं आप ऐसे दोस्तों से मिलेंगे जो कि खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, लगातार गेम में लगे हुए हैं या फिर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी वो आदतें आ जाएंगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने, आप समझे कि आपके दोस्त कैसे हैं। आप अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको इंस्पायर करे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, आप अपने गोल्स क्लियर रखिए और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो यकीन मानिए सफलता आपके पांव जरूर चूमेगी और आपके कदमों में बिछ जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान, तो याद रखिए सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, ये हर रोज की आदतों से बनती है। आज आप जो कर रहे हैं वो कल के किसी क्षण को तय करने वाली है। तो आज ही एक छोटी सी अच्छी सी आदत शुरू करें और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच जाएं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके काम आएगा और आप अपना और अपने अपनों का और अपनी पढ़ाई का, अपने सपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि बिना सपनों के जीना बहुत मुश्किल होता है। सपने रखिए, सपनों को पाइए, और जो सपनों को पाने की आग होती है ना, वही हमें जिंदा रखती है। जिंदा रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणु नाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणु नाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को. आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें. तो आज भी एक खास विषय और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. जैसे कि आज का जो हमारा विषय है, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके.
1: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार. सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए. वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें हम क्या करें, अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो. लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है.
0: जी,
1: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
0: क्या किस
1: क्या करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो.
0: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए.
1: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं. जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है. अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए. सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें. साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हों, पत्तियाँ हों, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो तो उसका जो है, अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उस उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए. अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पे भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं. परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों उनकी छटाई भी आवश्यक है, ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके.
0: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए.
1: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक खत्म हो जाती है. जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे. और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है. साथ ही साथ लीची के मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें. उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े, उसके लार्वे नष्ट हो जाएं. और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं, और पोषण कहाँ पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें, और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपके सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते, उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है, वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फास्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है, और इसकी मात्रा जो इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें, और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
0: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हैं, कैसे करें?
1: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ, उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं।
0: जी
1: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
0: जी।
1: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम, और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हैं उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है। एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है। इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके, जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं। तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है। और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें। जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूबान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवंबर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड किलर कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है? तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है
0: जी।
1: और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है। उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं, उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है। आम में 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवंबर माह में करें
0: जी।
1: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डायबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डाईबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समस्या सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डाईबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थालों को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, इसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें, और उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए, और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
0: जी ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी भी बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इंटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है।
होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है और इसलिए आपको हॉट फ्लैग्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिएं, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। तो अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर है, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और एक बार फिर जी हां, जो मौसम है अभी और उसमें आम खाना हम बहुत पसंद करते हैं। फिलहाल कच्चे आम की आज हम बात करेंगे और कच्चे आम से क्या क्या बना सकते हैं आप, क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ अनीता कुमारी मैडम, जो कि केवी के सबौर से हैं और आज आप सभी को बहुत सारी जानकारियां देंगे इससे जुड़ी। मैडम स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद अनु।
1: मैडम सबसे पहले हम बात करते हैं, कच्चे आम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, स्क्वायर्स बनाए जाते हैं, इसके बाद जैम भी बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, तो बताएं मैम कि अगर हम बात करें स्क्वायर्स की तो कैसे बनाया जाता है?
2: अनु जो कच्चा आम है उसका काफ़ी उत्पाद बनता है। ऐसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है और आम एक प्रमुख स्थान रखता है फलों में, और इसके कच्चे और पक्के दोनों का उत्पाद बनता है। आज हम लोग जो कच्चे आम है उसके उत्पाद पर की चर्चा करेंगे। इसके इसका कच्चा फल का हम लोग स्क्वैश बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, और ये इसके सुखा करके इसको हम अमचूर बना सकते हैं। और ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम कच्चे आम का प्रोडक्ट है ये जो हमारा मौसम गर्मी जो अभी जो मई का समय रहता है, जो कच्चे आम का जिस वक्त मिलता है उस वक्त जो समय रहता है, मौसम का जो प्रचंड रूप रहता है, उसका जितना समस्या है, जो उस मौसम में समस्या आती, चाहे वो घमौरी का हो चाहे वो लू लगने का हो, वो सारा समाधान कच्चे आम का यदि हम प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, तो उससे हम कहीं ना कहीं हमें निजात मिलता है। तो इसलिए हम लोग कच्चे आम के विभिन्न प्रोडक्ट को बना करके उसको भंडारित कर सकते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार उसका हम प्रयोग करें। यहाँ तक कि इस सीजन में हम बना करके अगले सीजन जबकि गर्मी शुरू होती है उस वक्त कच्चे आम उतना नहीं मिलते हैं, या फिर तो उस समय भी जो हम इस सीजन में बना कर भंडारित करके रखे हैं उसका हम उपयोग करके जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जैसा तुम बताई कि कच्चे आम का स्क्वैश, हम लोग स्क्वैश की चर्चा करते हैं। तो कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए जो भी कच्चा आम पेड़ से गिरे हो, आंधी तूफान में गिरे हो, या जिस रूप में भी आपको कच्चा आम मिल जाए, वो तो आम को अच्छे से धो लीजिए, स्टील के चाकू से उसको छिलके को छील लीजिए, उसका छोटा छोटा टुकड़ों में उसको काट लीजिए। इसके कटे हुए टुकड़ों को

0: आपको 1.5 केजी चीनी लेना है, तो रस का 1.5 चीनी ले लीजिए, और जितना चीनी है उसका आधा पानी, मतलब यदि 1.5 केजी चीनी ले रहे हैं तो उसका 750 ग्राम पानी, तो 1.5 केजी चीनी और 750 ग्राम पानी को के साथ उसका घोल बना करके उसका चाशनी बना लीजिए, और उस चाशनी में 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर साइट्रिक एसिड हम लोग चाशनी में मिला देते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा गंदगी भी कट जाए, उसमें खटास पैदा हो जाए। और जब सीरा आपका ठंडा हो जाए तो उसे छान कर धीरे धीरे, जो आप आम का जो रस कपर छन करके तैयार किए थे उस रस में धीरे धीरे मिलाते हैं, और खूब अच्छे से सीरा और रस को अच्छे से मिला लेते हैं, और जब ये मिल जाए तो उसमें जूस का परिरक्षक के लिए पोटासियम मेटाबोसल्फाइट आता है, उसे 700 ml प्रति ग्राम प्रति लीटर तैयार जो पेय पदार्थ है उसमें हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी में घोल करके मिला देते हैं और फिर पूरे में मिला देते हैं, और इसके बाद फिर हमारा मार्केट में खाने वाला रंग एप्पल ग्रीन के नाम से मिलता है, जो कि कच्चे आम के जैसा रंग होता है, उसको हम लोग थोड़े से पानी में वो एप्पल ग्रीन कलर को मिला करके पूरे स्क्वायर से मिला देते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा पानी में जो कच्चे आम का एसेंस होता है 0.01% लेकर के और मिला करके वो भी उसमें डाल देते हैं, तो इस तरह से हमारा स्क्वायर तैयार हो जाता है। और अब इस स्क्वायर को गर्म पानी से धुली हुई एवं धूप में सुखाई हुई बोतलों में हम भर करके सील करके किसी साफ और सूखे जगह पे भंडारित कर देते हैं, और आवश्यकता अनुसार हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए जैसे 3 गिलास पानी में हम लोग 1 गिलास स्क्वैश डाल करके फिर इसको घोल करके आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी लेते हैं या बर्फ लेते हैं, इसका हम लोग सेवन करते हैं। यह काफ़ी पौष्टिक भी है और जो गर्मी जनित जो समस्या है उस समस्या को भी दूर करता है।
1: जी, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है कच्चे आम का जैम और मुरब्बा। मैडम, तो इससे बनाने की विधि भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: हाँ, कच्चे आम का जैम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कच्चे आम को छीलकर गुदे को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, और देख हमेशा छीलने का काम स्टेनलेस स्टील के चाकू से ही करेंगे, नहीं तो वो यदि लोहे का रहेगा तो वो काला पड़ जाएगा, रिएक्शन करता है, इसलिए हमेशा श्रोता भाई ध्यान रखें कि कच्चे आम को छीलकर गुदे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर थोड़ा पानी डाल करके इसे गर्म कर गुदा को नरम कर लीजिए। इसके बाद गुदे की मात्रा जो है हम लोग पहले ही मेजर कर लेते हैं, उसका 3/4 या बराबर मात्रा में चीनी लेते हैं और डाल करके उसको अच्छे से पकाते हैं, पके आम का गुदा निकाल, और इसके जब हमारा गुदा और वो पूरे अच्छे से खूब अच्छे से मिलाते हैं, जब लगता है कि हमको पक गए, लगभग पक गया, उसमें चीनी का जो रस है वो उससे अलग नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्रति किलो चीनी जो जितना हम चीनी लिए थे उसमें 5 ग्राम साइट्रिक एसिड मिला देते हैं, ताकि उसमें एक खटास पैदा हो जाए। जब इस तापमान का मिश्रण 105 डिग्री से 108 डिग्री तक पहुँच जाता है, तब इसको उतार कर इसमें सोडियम बेंजोएट थोड़ी पानी में मिला करके उसमें डाल देते हैं, 0.02% के दर से हम लोग सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। इसमें गंध के लिए आप एप्पल ग्रीन एसेंस का उपयोग कर सकते हैं, और इसे फिर चौड़े मुंह के बॉटल में इसको हम लोग भंडारित करते हैं, और इसे भी हम लोग साल भर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके बाद अनु तुम बता रही थी मुरब्बा, तो इसके लिए जो मुरब्बा बिल्कुल कच्चे आम का नहीं बनाते हैं, बल्कि जो पूर्णतः विकसित आम जो होता है, जैसे हम लोग स्क्वैश बना रहे थे या अमचूर बनाते हैं तो आंधी से गिरे आम का ही बनाते हैं, लेकिन जो हम लोग मुरब्बा बनाते हैं ये हम लोग पूर्णतः विकसित अधपका स्वस्थ अधपका आम लेते हैं, और उसको स्वच्छ पानी से धो लेते हैं, और आम को छिलके को जो है चाकू से काट कर हटा देते हैं, और इसकी मोटाई में इसका गोल गोल काट लेते हैं, और इसको 2 से 3% नमक का घोल में डुबा कर रखते हैं, ताकि ये काला नहीं पड़ जाए, और इन टुकड़ों को एक मसलिन का पतला कपड़ा लेते हैं, उसमें हल्की पोटली बांध देते हैं, और खौलते पानी में 5 मिनट तक डालते हैं। इसके बाद उसको वहाँ से निकाल कर सूखे कपड़े पर फैला कर सुखाते हैं, उसके बाद इन टुकड़ों में छेद कर लेते हैं, और एक बर्तन में आम के टुकड़ों के वजन के बराबर चीनी लेकर के पानी में चाशनी तैयार करते हैं, और पानी और चाशनी का अनुपात 1:3 लेते हैं।

0: और उसमें लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। जब हमारा चाशनी तैयार हो जाता है तो उसमें आम के जो टुकड़े छेद किए हुए जो हमारे टुकड़े थे उन टुकड़ों को डाल देते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि चाशनी 3 या 4 तार की ना हो जाए। जब 3-4 तार की चाशनी हो जाए तो हम समझना चाहिए कि हमारा मुरब्बा तैयार हो गया। उसको हम लोग आँच से उतार लेते हैं और ठंडा होने के बाद एक स्वच्छ जीवाणु रहित बोतल में उसको रखकर भंडारित करते हैं।
1: जी मैडम, इसके बाद इसकी मीठी चटनी भी बहुत बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो मीठी चटनी और इसके अलावा अचार, अचार तो है हम सभी जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन मीठी चटनी और अचार के बारे में एक विस्तार से आप बता दीजिए कैसे बनाया जाए कच्चे आम से।
0: इसके लिए आम की मीठी चटनी बनाने के लिए भी हमको पूर्णतः विकसित सख्त आम का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आंधी से गिरे हुए आम का हम लोग ये बनाएंगे। और तो ठंडे पानी से धो करके छिलका उतारें और कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस किए गए आम में 6% नमक डाल करके उसको हम लोग 5-6 महीने तक रखते हैं और जब आवश्यकता हो तो इस डब्बा बंद किए हुए कद्दूकस किए हुए आम से हम उसकी चटनी बना सकते हैं और या फिर हम ताज़ा भी जो मौसम में उपलब्ध आम है उससे भी बना सकते हैं। तो जो भी हो, डब्बा बंद हो या ताज़ा हो, कद्दूकस क्या हुआ, हम लोग आम 1 केजी लेते हैं, चीनी 1 केजी लेते हैं, नमक 50 ग्राम, इलायची एवं दालचीनी 30 ग्राम, लाल मिर्च 15 ग्राम, अदरक 15 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, सिरका 180 ग्राम। आम को थोड़े पानी में पकाकर मुलायम कर लेते हैं, फिर नमक एवं चीनी को डालकर पुनः उसको खौलाते हैं। जब चीनी को डालकर पुनः खौलाते हैं तब चीनी और नमक घुल जाए तो मसाले को पीसकर एक पत्ते का फ्रेम बांधकर मिश्रण में हम लोग डाल देते हैं और तब तक उबालते रहते हैं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। पोटली के मिश्रण को, जो मसाला हम लोग पोटली में बांधे हैं, उसको बीच बीच में दबाते हैं चलौना से ताकि उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आकर के जूस में मिले और अंत में सिरका डालकर जैम की तरह जमने का इंतजार करते हैं और इन्हें ठंडा कर स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में संरक्षित करते हैं। और जो ये हम लोग आम के विभिन्न उत्पाद बनाते हैं इसको हम लोग आराम से मार्केटिंग करके हम लोग आमदनी भी कर सकते हैं, घर में खा के स्वास्थ्य और स्वाद तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं, इसका मार्केटिंग करके हम लोग अपने आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक और अनु तुम कही थी आम का अचार, तो आम का अचार हम लोग
1: सभी जानते हैं
0: हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन आजकल की बच्चियां पढ़ने लिखने में रहती है, कुछ बच्चियां वो जो हम लोग दादी माँ से हम लोग सीखते आ रहे हैं तो थोड़ा सा वो लोग चेंज भी कर रही है और अब बच्चियां उतना पढ़ने में व्यस्त रहती है, हॉस्टल में रहती हैं, तो उन लोग को अचार बनाने का भी सीखना पड़ता है। तो हम
1: इसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं कि इन हाथों से नहीं छूना चाहिए, इस समय धूप में दिखाना चाहिए, तो थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है।
0: कहा भी जाता है अचार खोजे विचार, तो अचार को जो हमारा प्रिजर्व करके रखना है वो अचार खराब ना हो उसके लिए कुछ सावधानियां भी रखना होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। और कोई भी परिरक्षित उत्पाद हो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना है, चाहे वो अचार हो या जो भी हम बनाए, कि उसको हम लोग डब्बा बंद करके रखें, ठंडे जगह में भंडारित करें, शुष्क जगह पर भंडारित करें। अब हम लोग जब उसको किसी को डब्बे को खोलते हैं तो उससे निकाल करके, जैसे मान लीजिए अचार हम लोग यूज कर रहे हैं करने के लिए निकाल रहे हैं, तो मेन मर्तबान जो है उससे बार बार ना निकालें बल्कि उससे किसी सूखे चम्मच को उसमें डाल करके एक छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं और उससे फिर हम लोग खाने में डेली यूज में प्रयोग करते हैं। फिर जब ये खत्म हो जाए तो फिर तब हम मैन से दोबारा निकालते हैं। रोज रोज मैन अचार को निकालेंगे तो कभी हो सकता है उसमें पानी लगा हुआ चम्मच चला जाए और हमारा पूरा अचार बर्बाद हो जाए। और जो हमारी बच्चियां हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है अचार बनाने में, तो आप ये ट्रिक अपनाइए कि उसके पूरे अचार को तेल को गर्म करके फिर ठंडा करके पूरे अचार के ऊपर तक भर दीजिए, मतलब पूरा अचार आपका तेल में डूबा रहेगा तो आपका वो अचार कभी खराब नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: तो उसका हम लोग हवा से कांटेक्ट खत्म कर देते हैं अचार का, जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो उसमें किसी तरह का जीवाणु नहीं पनपेगा। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कहीं फंस जाएगा अचार बनाना ही है, तो उसमें बस यही ध्यान रखिए कि अचार को पूरे तेल में सरोबोर कर देना है, डुबो कर देना है, जो अचार के ऊपर तक हमारा तेल रहना चाहिए, आप अचार आपका कभी नहीं खराब होगा। एक मैं रेसिपी अचार का डिस्कस कर देती हूँ, जैसे आम का टुकड़ा जो है वो 1 केजी ले लीजिए, नमक 150 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, लाल मिर्च 10 ग्राम, काली मिर्च 5 से 10 ग्राम, पीसी सरसों 10 ग्राम, हींग 2 ग्राम, सरसों का तेल 300 ग्राम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कच्चे आम को लेकर अच्छी तरह से धो लेते हैं, इसमें गुठली सहित काट कर छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और गुठली के अंदर का भाग में जो है उसको हम लोग निकाल देते हैं और टुकड़े को अच्छी तरह से नमक में लपेट कर अचारदानी में भर देते हैं। तो 4 से 5 दिन तक इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। इस अवधि में नमक का जो पानी है नमक जो है वो पूरा पानी बन जाता है और पूरा पानी पानी उसमें हो जाता है और उसका रंग भी हल्का पीला पड़ जाता है। 4 से 5 दिन के बाद टुकड़ों को नमक के पानी से निकाल कर धूप में लगभग 2 घंटे तक सुखा लेते हैं। अब मेथी, सौंफ और कलौंजी को साफ करके मोटा दरदरा पीस लीजिए और दूसरे मसाला जो उसको बारीक पीस लीजिए। हींग को थोड़े से नमक के पानी में भिंगो दीजिए। अब धूप में सूखे हुए टुकड़ों में सब मसाले मिला दीजिए, जो हम मसाला 2 तरीके से दरदरा पीसें कुछ पाउडर पीसें सारे मसाले को मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक एवं थोड़ा सा तेल व हींग का जो घोल तैयार किए हैं वो भी मिला देते हैं। जब सब मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर अचार को अचार के मर्तबान बोयाम या अचारदाने जो भी है उसमें दबा दबा कर आप भर दीजिए। ऊपर से बचा हुआ नमक का पानी और तेल डाल दीजिए। लगभग 1 महीने में ये अचार गल कर खाने लायक आपका तैयार हो जाएगा। और यदि आपको नहीं कॉन्फिडेंस है तो उसमें और ऊपर से तेल को गर्म करके ठंडा करके डाल दीजिए, अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा
1: जी।
0: तो इस तरह से हमारे किसान भाई बहन अभी जो आम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसका विभिन्न तरह के उत्पाद बना सकते हैं, भंडारित करके रख सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, फिर आपसे मुलाकात होगी, हम फिर आपके बीच एक और नए विषय को लेकर आएंगे, जानकारियों से भरी विषय। तब तक के लिए आप यूं ही सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और जानकारियों के साथ गानों का मजा लेते रहिए। नमस्कार। कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें।
3: ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमीडा क्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी की कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 96, अध्याय 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। यहाँ इस पृष्ठ पर एक हारमोनियम, तबला और घुंघरू का चित्र दिया गया है। इसी पृष्ठ के बाई ओर मध्य भाग में एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिलें। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे। इस पृष्ठ पर बिरजू महाराज जी का कथक की एक विशेष मुद्रा में चित्र है। श्रेया, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बिरजू महाराज, एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थीं, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास जरूर करो। पृष्ठ संख्या 97। तनुश्री, आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा ताबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को

भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे दो कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूं कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बिरजू महाराज के पिता बिरजू महाराज से गंडा बांधने के लिए भेंट स्वरूप कुछ मांग रहे हैं। नेपथ्य में एक दीवार पर एक तस्वीर है, फर्श पर एक हारमोनियम तबला रखा हुआ है, साथ ही एक दरवाजे की चौखट है, पर्दा है और उसके बाईं ओर मेज के ऊपर एक फूलदान है और कुछ अगरबत्तियां जल रही हैं। साथ ही नीचे जमीन पर एक मूढ़ा रखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 98। तनुश्री, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर हैं और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूं। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूं। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बंट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। यहां बाईं ओर घुंघरू का चित्र है। मणिक, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहां 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3-3। यहां बाईं ओर 3 डाकुओं का चित्र है, वहीं दाईं ओर 3 कथिक गाते हुए कुछ बजा रहे हैं। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। पृष्ठ संख्या 99। श्रेया, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? बिरजू महाराज, गाना बजाना और नाचना, ये तीनों संगीत का हिस्सा हैं। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण, मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो
तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है, उसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर यशोदा और कृष्ण का चित्र है। आपने कथक में कई नई चीजें भी जोड़ी हैं ना बिरजू महाराज? कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। इस पृष्ठ के नीचे दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बिरजू महाराज किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 100। तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे बिरजू महाराज। भाषाएं अलग अलग होती हैं, पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सभी माएं यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके भी मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। माणिक, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था, और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होंठ रंगने के लिए पान होता था। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था, कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। श्रेया, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए, बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। पृष्ठ संख्या 101। माणिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया, वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। श्रेया, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी, अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूं,
वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? बिरजू महाराज, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू? यहां इस पृष्ठ पर हारमोनियम, तबला और घुंघरू का चित्र है। पृष्ठ संख्या 102। यहां इस पृष्ठ के बाईं ओर एक कथकली कलाकार की नृत्य की शैली में एक चित्र है। माणिक, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूं, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफकेस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूं। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्रायः रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूं। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूं और सो जाता हूं। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। जैसे अन्य खेल हैं, वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा व सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 103। इस पृष्ठ पर बिरजू महाराज जी का कथक नृत्य की शैली में एक चित्र है। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो जरूर सीखो, मन की शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पृष्ठ संख्या 104। पाठ से आइए अब हम बिरजू महाराज से पूछे गए प्रश्नों और उनसे मिले उत्तरों को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे? वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे? वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे? वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे?
दो, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। यहां दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को कुछ सिखा रहे हैं। तीन, बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती हैं। कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम नहीं है। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहां एक चित्र है जिसमें एक बालिका नृत्य कर रही है। पास बैठी एक बालिका हारमोनियम बजा रही है और एक बालक तबला बजा रहा है। पृष्ठ संख्या 105, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एवं शब्द समूह यहां दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही संदर्भों या अवधारणाओं से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका के दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में संदर्भ या अवधारणा दी गई हैं। तालिका का पहला स्तंभ जिसका शीर्षक है शब्द, ये शब्द इस प्रकार हैं। एक, कर्नाटक संगीत शैली। दो, घराना। तीन, शास्त्रीय संगीत। चार, हिंदुस्तानी संगीत शैली। पांच, कन छेदन। छे, लोक नृत्य। इस तालिका के दूसरे स्तंभ का शीर्षक है संदर्भ या अवधारणा, जिसके अंतर्गत संदर्भ और अवधारणाएं इस प्रकार हैं। एक, भारत की प्राचीन गायन वादन गीत नृत्य अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। दो, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। तीन, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। यह कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से संबंधित है। चार, हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। पांच, किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं। छह, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या 6 है। इसी पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक वीणा का चित्र है। शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? लिखिए। इस पृष्ठ पर एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है जिसमें एक पुरुष कलाकार और एक महिला कलाकार कुछ गा रहे हैं
बजा रहे हैं। इन्हें एक चारपाई

पर बैठे हुए परिवार के कुछ सदस्य सुन रहे हैं। चारपाई पर एक पुरुष है, एक बालक और एक बालिका है। पीछे की ओर एक घड़ा है और कुछ झोपड़ियां हैं। पृष्ठ संख्या 106, पंक्तियों पर चर्चा। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य यहां दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। तुम नौकरी में बंट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। लय हम नर्तकों के लिए देवता है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। यहां पृष्ठ के दाईं ओर ऊपरी भाग में घुंघरुओं का चित्र है, साथ ही एक पुस्तक और टोपी भी रखी है। सोच विचार के लिए। एक, साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? ख, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? ग, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? घ, बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? दो, पाठ में से उन प्रसंगों की पहचान कर उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि क, बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ख, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी उनकी मां का बहुत योगदान रहा। ग, बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक महिला का चित्र है जो वीणा बजा रही है। शब्दों की बात। क, पाठ में आए हुए कुछ शब्द यहां दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ये शब्द हैं आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे कि अदृश्य, अ जमा दृश्य, आवरण, आ जमा वरण, प्रशिक्षण, प्र जमा शिक्षण। यहां पर अ आ प्र उपसर्ग हैं। यहां इस पृष्ठ के निचली ओर एक पखावज का चित्र है जिसके साथ एक आरती की थाली पर दिए और फूल रखे हैं। पृष्ठ संख्या 107, शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सीमित, सीमा जमा इत, सुंदरता, सुंदर जमा ता, भारतीय, भारत जमा इय, सामूहिक, समूह जमा इक। यहां पर इत, ता, इय और इक प्रत्यय हैं। यहां एक बालिका का जल तरंग बजाते हुए चित्र है। ख, यहां दो तबले हैं। एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय हैं, दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए। पहले तबले में दिए गए शब्दांश इस प्रकार हैं, आ, अ, इय, सु, इक, आ, ता, इत।
इसी प्रकार दूसरे तबले में दिए गए मूल शब्द इस प्रकार हैं, मर्म, गमन, राष्ट्र, खंड, श्रम, संस्कृति, कर्म, नाम, साधारण। अब आप दिए गए शब्दांशों अर्थात उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग करते हुए मूल शब्द को जोड़ते हुए शब्द बनाइए और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ग, इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने कुछ और शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। शब्दों का प्रभाव, पाठ में आए वाक्य यहां दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। एक, कुछ कथिक डर गए किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना हटाकर वाक्य पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया है। पाठ में आए हुए वाक्यों में से ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। यहां एक चित्र है जिसमें दो कथिक नृत्य कर रहे हैं और उन्हें तीन डाकू देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 108। पाठ से आगे, कला का संसार। क, बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हां उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। ख, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने सहपाठियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ग, बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौ कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले इस पद का उल्लेख है। आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोक गीत को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यहां एक कथक नृत्यांगना का कथक की मुद्रा में नृत्य करते हुए चित्र है। साक्षात्कार की रचना, प्रस्तुत पाठ की विधा साक्षात्कार है। सामान्यतः इसे बातचीत या भेंट वार्ता का पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन यह भेंट वार्ता से इस संदर्भ में भिन्न है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और ढांचा होता है। यह साक्षात्कार किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए होने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है। प्रस्तुत साक्षात्कार एक प्रकार से व्यक्ति परक साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य साक्षात्कार दाता के निजी जीवन, उनके कामकाज, उपलब्धियों, रुचि अरुचि, विचारों आदि को पाठकों के सामने लाना है। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तैयारी, संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कार दाता के संदर्भ में कितना शोध किया गया है और प्रश्न किस प्रकार के बनाए गए हैं। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक सब्जी वाले का दो बालिकाएं साक्षात्कार कर रही हैं। एक बालिका सब्जी वाले से प्रश्न पूछ रही है, वहीं दूसरी बालिका सब्जी वाले के दिए गए उत्तरों को लिख रही है। सामने कुछ सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए। क, साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी। ख, आप इस साक्षात्कार में और क्या क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे। ग, यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक या सहायिका का
साक्षात्कार लेना हो तो आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे? पृष्ठ संख्या 109। सृजन, आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने जा रहा है। क, आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे? लिखिए। ख, इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ग, यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टि बाधित दर्शक है और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? आज की पहेली, अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे दैनिक जीवन में व्यतीत हो रहे समय को हम सेकंड के द्वारा मापते हैं। ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है और ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। जिस तरह घंटे में मिनट और मिनट में सेकंड होते हैं, उसी तरह ताल में मात्रा होती है। आज हम आपके लिए ताल से जुड़ी एक अनोखी पहेली लाए हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीत की कुछ तालों के नाम आए हैं। आप उन तालों के नाम ढूंढिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक डायरी का पन्ना है और उस पर लिखा है, कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें एक दो नहीं बल्कि चार कलाकार आए थे। उन कलाकारों में एक का नाम रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। शेष दो कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों से पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा या झूमरा? दर्शक बोले, तीनों में से कोई नहीं, हमें दीपचंदी और कहरवा पसंद है। दर्शकों की यह बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दी। पृष्ठ संख्या 110। अब यहां दी गई शब्द पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढकर लिखिए। यहां एक वर्ग पहेली है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनसे आपको मेल करते हुए तालों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। पहली पंक्ति बाएं से दाईं ओर, टी, झ, रू, ल, भ, ती। दूसरी पंक्ति न, च, प, क्ष्मी, क, ल। तीसरी पंक्ति म, ल, क, ह, र, वा। चौथी पंक्ति ल, ई, झू, म, रा, ड़ा। पांचवी पंक्ति दी, प, चं, दी, दा, त। छठी पंक्ति ड, च, क, र, द, ड। सातवीं पंक्ति ए, म, ल, घ, रा, क। झरोखे से नृत्य की छटाएं। बिरजू महाराज ने भारत के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया है। आइए इनके बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। भरतनाट्यम, यह नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। कुछ विद्वान भरत शब्द को राग, ताल, भाव से भी जोड़ते हैं। इस नृत्य विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है। यहां एक चित्र है जिसमें एक पुरुष कलाकार भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रहा है।
कथकली। दक्षिण भारत के एक राज्य में

में वर्णित कहानियां होती हैं। पूरे नृत्य नाटक का अनमोल आभूषण है भाव भंगिमाएं। आंखों और भौहों का लय संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक चित्र है जिसमें दो कलाकार कथकली नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 111। कथक। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक का नाम कथिक से लिया गया है, जिसे कथावाचक भी कहते हैं। ये कथिक महाकाव्यों के पदों व छंदों को संगीत तथा भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करते थे। कथक की महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। यहां एक चित्र है जिसमें कुछ कथक कलाकार कथक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति प्रार्थना से आरंभ होती है, तत्पश्चात नृत्य अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति के साथ कर्नाटक संगीत की संगत दी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य का समापन तरंगम प्रस्तुति के पश्चात होता है। यहां एक चित्र है जिसमें कुछ महिला कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मणिपुरी नृत्य। पौराणिक आख्यानों के अनुसार मणिपुरी नृत्य का स्रोत भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती का दैवीय नृत्य है। इस राज्य के प्रमुख त्योहार लाई हरोबा में इस नृत्य को करने का प्रचलन है। सामान्यतः यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें चेहरे की अभिव्यक्ति के स्थान पर हाथ के हाव भाव व पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। यहां एक चित्र है जिसमें एक मणिपुरी नृत्यांगना मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ओडिसी नृत्य। नाट्यशास्त्र में उल्लेखित सोदा नृत्य से ओडिसी नृत्य रूप को नाम मिला है। कुछ भाव मुद्राएं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इस नृत्य रूप का मुख्य आकर्षण है त्रिभंग मुद्रा, अर्थात शरीर का तीन मोड़ वाला रूप। नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफी सीमा तक स्थिर रहता है और धड़ लय ताल के साथ गति करता है। यहां एक चित्र है जिसमें ओडिसी नृत्यांगनाएं ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। मोहिनी अट्टम। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक मोहिनी अट्टम का उद्भव केरल राज्य में हुआ। मोहिनी अट्टम की विशेषता घुमावदार कोमल भाव वाले आंगिक अभिनय हैं। इस नृत्य के अंतर्गत अभिनय पर बल दिया जाता है। इस नृत्य शैली में मुख की अभिव्यक्ति और हस्त मुद्राओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। नर्तकियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, जिसे मुंडू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि कथकली केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। यहां एक चित्र है जिसमें एक मोहिनी अट्टम नृत्यांगना मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 112। साझी समझ। अभी आपने शास्त्रीय नृत्यों को निकटता से जाना समझा। 5-5 विद्यार्थियों के समूह में भारत के लोक नृत्यों की सूची बनाइए और उनकी विशिष्टताओं का पता लगाइए। यहां इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। अब आप भारत के मानचित्र में राज्यानुसार शास्त्रीय एवं लोक नृत्य अंकित कीजिए। पृष्ठ संख्या 113।

0: बीन के लिए। यहां दी गई इंटरनेट कड़ियों की सहायता से आप भारतीय नृत्य संगीत और बिरजू महाराज के बारे में जान समझ सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नृत्य संगत, इसके लिए यहां YouTube का एक लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v=capital W 1 capital Z capital X capital C capital U G I 8 4 8। कथक परिचय भाग 7, इसके लिए YouTube लिंक इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v=capital D P R J 6 9 I capital A capital M 2 4। पंडित बिरजू महाराज, इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए YouTube लिंक है https://www.youtube.com/wattch?v=capital D P R J 6 9 I capital A capital M 8 capital D 2 E capital A capital G G and LIST equal to capital P capital L Q T capital V capital C J 5 I I 1 capital H 6 capital B N capital M C 4 H capital I capital R Z capital V Y capital J underscore W T capital P G K Y 9 capital B। पृष्ठ संख्या 114। पढ़ने के लिए नृत्यांगना सुधा चंद्रन। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास चेन्नई जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं पैर में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा का दायां पैर काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के एक महीने बाद सुधा का दायां पैर घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दिया गया। एक पैर का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गईं। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार का पैर बनाया जो एल्यूमिनियम का था और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह पैर को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटे हुए पैर से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नया पैर बनवाया जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पैर लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज्यादा, जबकि उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। रामाज्ञा तिवारी, यह अध्याय यहां समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यंकन मंजू कुमारी।
2: अरे, अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहे। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी, अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहे।

0: ಋಷಿ. नमस्कार, मैं हूं अनु और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन पर. तो चलिए आज जो उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपको बता देते हैं हमारा विषय धान की उत्पादन तकनीकी. और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर एस के गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में. डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को धान की उत्पादन तकनीकी की विधियों के बारे में बताएं जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी साबित होंगे.
1: किसान भाइयों, धान हमारे राज्य की प्रमुख अनाज वाली खाद्यान्न फसल है. इसकी खेती बिहार में खरीफ मौसम में पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों तरह से की जाती है. परंतु पारंपरिक तकनीकी से ये लगाए जाने वाले धान के अंदर करीब करीब 70% रकबा है. इसी कारण इसकी उत्पादकता देश की तथा कई राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है. अक्सर धान उत्पादन बढ़ाने एवं धान विकास को बढ़ावा देने की हमारे राज्य में काफ़ी संभावनाएं हैं जिन्हें उपयुक्त शस्य क्रियाओं एवं अच्छी उत्पादन तकनीकी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है. बिहार में मुख्य रूप से धान की खेती लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि में की जा रही है. मुख्य रूप से खरीफ मौसम में पूरे राज्य में लगभग 90% भूभाग धान की फसल से आच्छादित होता है. धान की खेती प्राय ऊंची, मध्यम एवं नीची तीनों प्रकार की जो ज़मीनें हैं उनमें की जा सकती है. प्राय ऊंची ज़मीन में धान की खेती सिंचित अवस्था या पर्याप्त मात्रा में जो वर्षा जहां होती है वहां की जा सकती है, साथ ही जो ज़मीन में पानी का जमाव नहीं होता है. दूसरा, मध्यम जमीन उसे कहते हैं जिसमें 25 सेंटीमीटर तक पानी का जमाव होता है. नीची जमीन उसे कही जाती है जिसमें 50 सेंटीमीटर तक जल जमाव होता है. तो इस प्रकार ये दो तीन तरह की इस प्रकार की टोपोग्राफी में जो हमारा लैंड की सिचुएशन होती है जहां मध्यम जमीन से आवश्यकता पड़ने पर पानी को निकाला भी जा सकता है. तो इस प्रकार हम सफलतापूर्वक इसमें धान की खेती कर सकते हैं. जहां तक धान की उपयोग विधि है या उत्पादन तकनीकी की बात है, मुख्य रूप से किसान भाइयों धान की जो बुवाई है एक तो सीधी बुवाई विधि से हम कर सकते हैं और दूसरा धान की पौधशाला तैयार करके उसकी कुछ समय पश्चात जब धान का बिछड़ा 20 से 22 23 दिन का हो जाता है तो उसकी रोपनी विधि से हम धान की खेती करते हैं. जहां तक धान की सीधी बुवाई का बात है तो ये आप जानते ही हैं कि हमारे राज्य में धान आधारित फसल प्रणाली संपूर्ण क्षेत्रफल के आधे से अधिक लगभग 60% तक भूभाग में यह लोकप्रिय है. इस प्रणाली में धान की रोपनी के पूर्व कादों करने में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है. कादों का मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. साथ ही विगत वर्षों में राज्य में मानसून की अनियमितता भी बहुत देखी जा रही है. तो कहीं बिछड़ा तैयार करने में मानसून की बेरुखी का सामना करना पड़ता है तो कहीं रोपनी का कार्य वर्षा के ना होने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है. तो इसी परिस्थिति में हम जो धान की वैकल्पिक उत्पादन तकनीकी की जरूरत पड़ती है जिसमें कम पानी की जरूरत हो तथा वर्षा जल की अनियमित वितरण का धान फसल के उत्पादन पर कम से कम प्रभाव पड़े, ऐसे में धान की सीधी बुवाई जो पद्धति है वो अत्यंत उपयोगी होती है. इस विधि से बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों को फायदे हैं जैसे रोपनी धान की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है, दूसरा कम श्रम की आवश्यकता होती है, मेहनत भी कम लगती है, तीसरा ऊर्जा और ईंधन की भी बचत होती है
0: जी.
1: और इसके साथ साथ धान की सीधी बुवाई के उत्पादन के जो कुल खर्चे हैं जैसे जल है, मजदूरी है, ईंधन में बचत होने के कारण धान की जो सीधी बुवाई है उसमें लागत का भी खर्चा कम आता है. साथ ही हम ये कह सकते हैं कि किसान का जो शुद्ध लाभ है उसमें बढ़ोतरी होती है. इस विधि से कम लागत होने के कारण किसान का जो शुद्ध लाभ है वो बढ़ जाता है. साथ ही हम ये भी देखते हैं अनेक प्रकार के विश्लेषणों में ये पाया गया है कि मिट्टी की जो भौतिक गुणवत्ता है वो धान की सीधी बुवाई से वो बहुत अच्छी बनी रहती है क्योंकि मिट्टी में जो कदवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो उससे मिट्टी की भौतिक संरचना अच्छी रहती है. और साथ ही अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी, मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता बनी रहने से अगली फसल की जो पैदावार है वो भी अच्छी होती है. तो इस प्रकार धान की सीधी बुवाई के अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है, पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी होती है। धान की सीधी बुवाई करने से पर्यावरण जो है वो बहुत ही अच्छा अनुकूल होता है और इको फ्रेंडली होता है
0: जी,
1: ठीक है। और दूसरा जो धान की रोपनी की बात है, धान की रोपनी के लिए हम सबसे पहले पौधशाला तैयार करते हैं। पौधशाला जो तैयार करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उसको सबसे पहले हम बीज जो होता है उसको बीज उपचार कर लेते हैं। उसके बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं, जैसे नमक के घोल से बीज का उपचार करना, दूसरा रासायनिक बीज उपचार है, जो बाजार में आजकल दवाएं उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम बीज को उपचारित करके पौधशाला की तैयारी और उसका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। तो धान की अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छी एवं स्वस्थ पौधशाला अत्यंत आवश्यक होती है। आमतौर पर एक हेक्टेयर भूमि में धान की रोपाई करने के लिए लगभग एक वर्ग मीटर अर्थात 1/10 हिस्सा जो हेक्टेयर का होता है उसमें पौधशाला को आसानी से तैयार करके और फिर हम उसकी रोपनी करके और धान की उपज अच्छी ले सकते हैं
0: जी। और डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया कि धान की सीधी बुआई के बहुत सारे फायदे हैं किसान भाइयों के लिए, तो अब धान की सीधी बुआई और धान की पौधशाला हम कैसे तैयार कर सकते हैं और इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है?
1: देखिए, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, तो धान की जो सीधी बुवाई है, सीधी बुवाई जो मुख्य रूप से है, इसकी कुछ इस अनेक प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जो किसान को अति आवश्यक होती है और उनको ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे भूमि की तैयारी एवं समतलीकरण, खेतों को ठीक से समतलीकरण अगर नहीं होगा तो उस कारण परंपरागत विधि द्वारा समतलीकरण करने के बाद भी अधिकतर खेतों में लगभग 8-15 सेंटीमीटर का जो तलीय अंतर है वो बना रहता है, जिससे बहुत सारी ऐसी किसानों को क्षति उठानी पड़ती है। जैसे उचित समय एवं उचित नमी पर खेत की जुताई करना कठिन हो जाता है, समय समय पर कृषि क्रियाओं को अपनाना भी संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार जो भूमि का लेवलिंग, जो समतलीकरण होता है, वो अति आवश्यक हो जाता है। और साथ ही कुछ इस प्रकार की वो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, उसमें जो हमको वो ध्यान रखनी पड़ती हैं, उसमें ध्यान रखने की यही होता है कि अपनी फसल में उगाए हुए जितने भी खरपतवार हैं उनके आधार पर ही दवा या शाकनाशी का चुनाव हम करना चाहिए, और दवाई की सिफारिश किए गए जो समय हैं उसी पर खास तौर से करना चाहिए। और दूसरा, दवाई के छिड़काव से पहले प्रति एकड़ लगने वाले पानी का अंदाज़ा लगा लें। अंदाजे से तात्पर्य यहाँ ये है कि जितना आवश्यक या अनुशंसित पानी होता है उतनी ही मात्रा में अगर दवाई का प्रयोग हम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम, चाहे वो खरपतवार नियंत्रण के लिए हैं या अन्य किसी जो अनवांटेड प्लांट है जमीन में उसको नष्ट करने के लिए है, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही छिड़काव करने वाला जो व्यक्ति है सुरक्षा वस्त्र धारण करे, और छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोजल, मल्टीपल नोजल, बूम का प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव करते समय वायु दिशा एवं गति का भी अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साफ मौसम में इनके छिड़काव करने के लिए उत्तम समय माना जाता है, जिससे उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार सिंचाई का एवं उसका जल का समुचित प्रबंध करने के हिसाब से ही, और उसके साथ साथ ही हम उर्वरक प्रबंधन अगर करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा को जितना भी धान की सीधी बुवाई यंत्र होता है जिसको DSR मशीन कहते हैं, उसके माध्यम से अगर हमारा खेत समतल है और नमी उसमें पर्याप्त है तो हम बिना जुताई के या मिनिमम जुताई करके लगभग एक जुताई करने के बाद ही हम आसानी से धान की सीधी बुवाई कर सकते हैं। दूसरा पक्ष है हमारा धान की रोपनी तैयार करना। तो जो धान की रोपनी तैयार करते हैं उसके लिए हम लगभग पौधशाला की जो भूमि है वो उपजाऊ एवं अच्छे जल निकास वाली होती है, जिसके पास जल स्रोत हों वही इसका चुनाव कर सकते हैं किसान। और गीली जो नम विधि है उससे बिचड़े तैयार करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रचलित है, क्योंकि धनहर खेत की मिट्टी प्राय केवाल से जो है दोमट होती है। पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके रखना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि खेत में पानी भरकर लगभग 2-3 बार जुताई करते हैं, ताकि मिट्टी जो कादोयुक्त हो जाए और तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत को समतल कर देते हैं। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहता है तो खेत को लगभग 1.25 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ी सुविधा अनुसार लंबी लंबी क्यारियों में बांट लिया जाता है ताकि बुवाई निराई गुड़ाई और सिंचाई की विभिन्न शस्य क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। इस प्रकार दो क्यारियों के बीच में लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली भी बना लेते हैं। नाली इसलिए बना लेते हैं कि क्यारियों में आसानी से सिंचाई की जा सके। इन्हीं नालियों में खड़े होकर के हम हाथों से खरपतवारों को आसानी से निकाल सकते हैं। क्यारियाँ बनाने के पश्चात पौधशाला के जो बीज उपचारित एवं पहले से अर्ध अंकुरित बीजों को कदवा के ऊपर समान रूप से छींटा जा सकता है। शुरू में मिट्टी को हल्का फुल्का ढक देते हैं, बाद में खेत की जो सिंचाई करके लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर और इसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी उसमें प्रॉपर बना रहता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों जो बिछड़े हैं वो पानी में डूबने नहीं चाहिए। वैसे तो खेत जिनकी मिट्टी हल्की होती है उनमें सिंचाई की सुविधा जहाँ अभाव होता है, बिछड़े उगाने की जो है सूखी विधि से हम किसान भाई करने की सलाह दी जा सकती है। तो इस प्रकार हम इसका धान की पौधशाला तैयार करके वो तैयार हम कर सकते हैं। बस अंतर की जहां तक आपने पूछा कि दोनों में क्या अंतर है, तो धान की सीधी बुवाई में हम खेत की बहुत कम जुताई पर अर्थात एक जुताई करके ही धान की सीधी बुवाई विधि से हम सीधा उसकी बुवाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें डीजल की मजदूरी का और इस प्रकार से लगभग 4 से 5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान आसानी से बच सकते हैं। और साथ ही हमें जल का भी जो उसकी उपयोग करने की क्षमता है वो उसमें बढ़ जाती है और नमी अधिक समय तक सुरक्षित रहती है क्योंकि खेत की जुताई नहीं की जा सकती। तो इस कंडीशन में जो कदवा वगैरह करते हैं, कादो करते हैं, उसमें जो पानी अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है, साथ ही धान की सीधी बुवाई में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार दोनों में हम अंतर कर सकते हैं, कुल मिला के ये हम कह सकते हैं। साथ ही बस एक इसका डिसएडवांटेज कहिए या इसकी साइड इफेक्ट कहिए कि जो धान की सीधी बुवाई होती है उसमें खरपतवार नियंत्रण करना या तो समय पर कर दिया तो अच्छा नियंत्रित हो जाते हैं, अगर किसान थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या आ जाती है और जो बाद में उसकी उपज को भी घटा सकते हैं
0: जी।
1: तो इस प्रकार हम दोनों ही धान की खेती की अच्छी विधि हैं और इस प्रकार अंतर उसमें कर सकते हैं
0: जी। और एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि धान की रोपाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो जिसे अपनाकर किसान भाइयों को जो नुकसान होना चाहिए उससे बच सकते हैं, वो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसकी रोपाई के वक्त?
1: देखिए रोपनी के समय बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसान ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो किसानों के लिए धान की खेती में बहुत कारगर और वरदान साबित हो सकती हैं। जैसे रोपनी के लिए बिछड़ों को उखाड़ने में बिछड़ों की जड़ें जो हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खेत में पानी लगा रहना चाहिए। अगर खेत सूखा होगा तो वो बिछड़े जो हैं उनकी जड़ें टूट जाती हैं, जिससे अच्छा। उसकी एस्टेब्लिशमेंट उसका नहीं होता है, मॉइस्चर प्रॉपर बना रहना चाहिए। जब खास तौर से जब बिछड़े को हम उखाड़ते हैं उस अवस्था में पानी उसमें भरा होना चाहिए। दूसरा, बिछड़ा उखाड़ने के बाद जितना जल्दी संभव हो सके उसको खेत में रोपनी कर देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई बिछड़ा उखाड़ करके खेत में डाल देते हैं, रोपनी नहीं मिलती है, मजदूर नहीं मिलने की वजह से वो उखड़ा हुआ बिछड़ा अधिक समय तक पड़ा रहता है, जिससे कि वो आगे इस्टेब्लिश होने में, स्थापित होने में उसमें समय लगता है। बिछड़े जितनी कम गहराई में रोपे जाएं उतना ही अच्छा होता है। अगर कदवा अच्छी तरह किया जाए तो बिछड़ा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में रोपे जा सकते हैं। कम गहराई में रोपनी करने से कल्ले अधिक निकलते हैं। इस प्रकार एक गुच्छी में जो आवश्यकता से अधिक बिछड़ा रोपना बहुमूल्य बीज की बर्बादी करना है। प्राय जो एक गोछी या अटिया जिसको बोलते हैं उसमें से 1 से 2 या अधिक से अधिक 3 बिछड़े वो भी जब अधिक समय का हो जाए तब उसकी रोपाई हम कर सकते हैं, जिससे कि पर्याप्त कल्ले निकल सकते हैं। और जो बिछड़े हैं वो अनुशंसित दूरी पर ही लगाए जाएं। जैसे हमें पंक्ति से पंक्ति अनुशंसित अगर है हमारी 20 सेंटीमीटर और जो पौधे से पौधा है 15 सेंटीमीटर, तो हम 20-15 की जो अंतराल है उसी पर लगाएं। ये नहीं कि अपने मन से हम इधर उधर कहीं भी उसकी रोपाई कर दें। और इसके अलावा मुख्य रूप से जो रोपनी का समय है 5 से 6 सेंटीमीटर अधिक पानी नहीं रहना चाहिए। कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि अधिक पानी खड़ा का हो जाता है और पानी अधिक खड़ा होने से रोपनी जब करते हैं तो उसमें बिचड़े ठीक से स्थापित नहीं होते हैं और कुछ बिचड़े पीला पड़ के मर भी जाते हैं। तो इस प्रकार और इसके अलावा रोपनी के 1 सप्ताह बाद खेत का निरीक्षण अवश्य करें तथा मरे हुए बिचड़े अगर 1-2% कुछ रह भी जाते हैं तो उनकी जगह नए बिचड़े अति आवश्यक है कि उनको रोपाई अति शीघ्र करा दें, जिसको गैप फिलिंग करना कहते हैं। इसके अलावा खेत में चारों तरफ पौधे की उचित दूरी पर समान रूप से बनाए रखना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार अगर इन महत्वपूर्ण बातों को किसान भाई, चाहे वो बिचड़ा तैयार करना हो या धान की सीधी बुवाई करना हो या फिर हमारा रोपाई जो धान का बिचड़ा है उसकी रोपनी करते समय, इन पहलुओं पर अगर किसान भाई सभी ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं उससे निरीक्षण करते रहना समय समय पर, पानी की जब आवश्यकता हो, जैसा कि कहते हैं कि धान में अत्यधिक पानी नहीं भरना चाहिए क्योंकि अधिक समय तक और अत्यधिक पानी भरे रहने से भी जो पौधे हैं उनके वो पीले पड़ने लगते हैं, उनमें मर जाते हैं, जड़ें पूर्ण रूप से श्वसन नहीं कर पाती हैं और उसका प्रकाश संश्लेषण भी समुचित मात्रा में वो नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर जैसे ही पानी सूखता है तो उसमें हल्की सिंचाई उसमें फिर दोबारा की जा सकती है और इस प्रकार हम सूखा गीली विधि से और पानी की बचत करते हुए बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसानों को कि खेतों में क्रैकिंग, जिसको दरार पड़ना कहते हैं, वो नहीं आनी चाहिए। इससे पहले ही सिंचाई उसकी अगर हम कर देंगे और पूर्ण रूप से
0: जी
1: हर समय बना रहना चाहिए, तो इस प्रकार से की गई खेती को हम अच्छा मुनाफा धान की खेती करके ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक बिंदु हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो चाहे वो धान की सीधी बुवाई है, पारंपरिक विधि है या और बिचड़ा विधि से पौधशाला तैयार करके रोपनी की विधि है, आगे समय आ रहा है और किसान भाई इसका पूरा प्रयोग करके अगले माह से, ये जैसे धान की सीधी बुवाई है तो उसके जून माह से ही, जो जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के और पूरी अंतिम तिथि तक हम सीधी बुवाई भी कर सकते हैं और बिचड़े का भी चयन करके हम पौधशाला की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी रोपाई हम जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है और जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से, वो जब भी हमारा 22 से 23 दिन का बिचड़ा हो जाता है उस समय अवधि में हम पौधशाला से बिचड़े की रोपनी करके धान की अच्छी और उचित पैदावार ले सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं आपने जाना आज धान की उत्पादन तकनीकी, तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे आपके लिए अलग जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जरूरी बात, आई एम मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे, तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं, तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना,
6: और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
7: लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली, सर आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल

0: के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य है कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी यह चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं

0: ये रोजगार कैरियर की बातें
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
0: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
2: जी।
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है
1: जी।
2: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी। ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: हाँ, चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: जी
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई, अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी ना खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
5: ठंडक में खेले भरपूर।

0: आग बरसाती धूप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
4: इन्हें हमारा सलाम।
3: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
5: नमस्कार
3: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
5: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
3: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
5: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
3: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
5: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
3: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
5: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनकी नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुँच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके

प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणु नाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणु नाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता. आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: धन्यवाद उमा.
0: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं.
1: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं. बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है. बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है. तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है. तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि. तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे.
0: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में.
1: जी बिल्कुल. तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना. यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम 1,00,000 रुपए से ऊपर पहुंचाना है. इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5,00,000 का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है. बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं. इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं. अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं. इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं. इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त मिलती है, और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है. सफल रोजगार के बाद इसमें 2,00,000 की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है. जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं उस वहां पे जाकर के या फिर खुद ही इंटरनेट पर इसे इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं. अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC. इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है. इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए. उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है, वह है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
0: जी,
1: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और फिर इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50-80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना, फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आएं, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो कोई उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
0: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया और अंत में आप महिला किसान, खास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगी?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सके।
0: जी मैम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं और खेती के, जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि कृषि सखी, सरकार द्वारा एक पहल चल रही है कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत जरूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत कृषि सखी योजना के तहत पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं वहाँ जा कर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जा कर के या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पर जानकारी ले सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

FM Green और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ उमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है, और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है, यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी के स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है, आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी

0: यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
2: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
3: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
2: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
3: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8

0: से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पे अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं। परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए
0: भिंडी के फसल के लिए? खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है। और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं बुआई करेंगे। और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज झुरखुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी में आया हुआ हूं जो कि हमारे 14 नंबर वार्ड में अवस्थित है। आज मैं यहां की सेविका दीदी सोनी जी से मिलने के लिए आया हुआ हूं और उनसे पोषण संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। इसी के अंतर्गत मैं सोनी दीदी से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दीदी आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
7: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीवन भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और पोषण तत्व को शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं।
6: जी दीदी, पोषण को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं?
7: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। इसका मतलब है सभी पोषण तत्व शामिल करें, अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज, दाल, प्रोटीन की शामिल करें। पानी पीते रहें, शरीर के कार्य के लिए पर्याप्त पानी पिए, जंक फ्रूट से बचे, शक्कर, नमक और अस्थित कर वसा फलों की प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन सीमित करें।
6: जी दीदी, अगर कोई व्यक्ति दीदी दवाई से पोषण नहीं लेना चाहता हो तो वो किन किन पदार्थ या चीजों से का उपयोग करके पोषण को प्राप्त कर सकता है?
7: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए आप संतुलित आहार अपनाना सकते हैं, जिसमें फल सब्जियां साबुत अनाज तले।
6: जी दीदी, अगर आदमी को सही से पोषण ना मिले दीदी तो उनको क्या क्या परेशानियां हो सकती है?
7: अगर मनुष्य संतुलित ना ले तो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है, जिसके शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता हो जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में हो जाता है, कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो सकती है।
6: जी दीदी, महिलाओं को पोषण संबंधित आप क्या जानकारियां देना चाहते हैं?
7: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल सब्जियां साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल है। इसीलिए जरूरी, क्योंकि उन्होंने आयरन अस्तंत बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डी के लिए और फोलिक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषण तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, खासकर गर्भावस्था के मासिक धर्म के दौरान हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की मदद कर सकते हैं।
6: जी दीदी, तो ये तो महिलाओं की बातें हो गई दीदी, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बच्चों को पोषण के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?
7: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल सब्जियां साबुत अनाज लीन प्रोटीन दाल और अंडे दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
6: जी दीदी, तो मैंने अभी सारी बातों में एक चीजों को गौर किया कि बार बार लीन प्रोटीन के बारे में बातें हो रही है, तो आखिर लीन प्रोटीन क्या होता है ये हमारे श्रोतागण को पता नहीं है दीदी, तो आपके द्वारा हमें श्रोताओं को ये बतानी है कि लीन प्रोटीन क्या होती है?
7: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है, यह वजन घटाने और मांसपेशियों को रखरखाव में मदद करता है।
6: तो दीदी, हमारे यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई है जो कि हमारे 90.8 एफएम ग्रीन की ओर से भी मुहिम चलाई गई है और हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से भी मुहिम चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली। अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में आप क्या कह सकते हैं दीदी?
7: जैसे कि साग सब्जी अपने उपजाते हैं, उसमें खाद तो नहीं देते हैं, तो वो जो सब्जी हम लोग खाएंगे उसके लिए तो शरीर में अच्छा है, खाद्य पदार्थ उसमें मिला नहीं है।
6: उनसे आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा वगैरह उपलब्ध हो जाती है। जी दीदी, तो आज हमें क्या कहता है जानकारी सोनी दीदी की तरफ से मिली पोषण के बारे में। पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए सोनी दीदी को 90.8 एफएम ग्रीन तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद दीदी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव

आप और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणु नाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणु नाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूँ और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हैं, ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
1: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
0: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
1: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, ऐसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं उस सबका।
0: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
1: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
1: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
0: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
1: उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है वो, हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
0: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
1: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
0: तो अगर मान लिया जाए, ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
1: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
0: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएँ।
1: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, तो जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
0: ये तो मान लिया जाए कि बृहद पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
1: हाँ।
0: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
1: वो क्या करे अगर जो वो नहीं कर सकते, अगर जो उनके पास अपना जमीन नहीं है तो वो दूसरे पे डिपेंड कर सकता है, अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
0: नहीं नहीं अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो बाड़ी हो उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं और अपना जैसे कि सब्जी हो फल हो वो अपने आप आंगन में अगर उप जाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका अपना पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में होंगी उन्नत बातें और अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक रोज़ अलग अलग विषय आपको सुनाते हैं और आज का भी ये खास विषय है। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में। सिंचाई क्यों ज़रूरी है और साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से आज हमारी जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सनोज कुमार, कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। तो सुनते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना ना भूलें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: सिंचाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिंचाई का इस्तेमाल जो प्रमुखतः है वो किन किन कामों में किया जाता है।
3: किसान भाइयों, सिंचाई जल चक्रीय चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और सिंचाई का इस्तेमाल, जैसे कि आप लोग समझते हैं कि खेतों में जरूरी पानी को डालने के लिए किया जाता है, वो तो है ही। इसको और भी अच्छे तरीके से कहें तो छोटी अवधि के अगर सूखा पड़ा या ऐसे ही दूसरे समय में जरूरी जल को प्रदान करने में होता है, या मिट्टी में अगर लवण आ गया है, नमक आ गया है, तो उसको घोलने के लिए भी हमको उस सिंचाई का पानी को डालना पड़ता है। अगर हम कृषि रसायन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे केस में भी हमको सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करना है। पौधों को बढ़त के लिए तो करना ही है, साथ ही साथ पौधों को बढ़त के लिए, जो सिर्फ पौधे नहीं, उनके अगल बगल के जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए भी सिंचाई जल का प्रयोग होता है। और कुछ रासायनिक एजेंट्स होते हैं, उनको भी एक्टिवेट करने में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो हैं, आप मुख्यतः आप कह सकते हैं कि ये सिंचाई के कार्य हैं।
1: तो सिर्फ खेती बाड़ी में ही नहीं, और भी अन्य काम किए जाते हैं सिंचाई से, आपने जाना जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। सर, ड्रिप सिंचाई के बारे में आज हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस प्रणाली के बारे में, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मिट्टी के प्रकार, खेत के ढलान, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों में अपनाई जा सकती है। ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता लगभग 80-90% होती है, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की जो होती है गुणवत्ता बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। रसायन और उर्वरकों का हम दक्ष इस्तेमाल कर पाते हैं। जल के विचालन एवं अप्रवाह में कमी आती है, खरपतवारों में कमी आती है, और साथ ही साथ चूंकि हमारी दक्षता बहुत ज़्यादा है, 80-90% है, तो जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई में इमीटरों और ड्रिपरों की सहायता से पानी जो है पौधे के जड़ों के पास डाला जाता है, या मिट्टी के सतह अथवा उसके नीचे ये पानी पहुंच जाता है, और इसकी दर है जो कि 2 से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे, अर्थात बहुत ही कम होती है। और जल्दी जल्दी सिंचाई करके मिट्टी में नमी का स्तर हम अनुकूल रख सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के परिणाम स्वरूप जल अनुप्रयोग की दक्षता चूँकि बहुत उच्च है। विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे। जैसे कि अंत में ये कह सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई आज की ज़रूरत है क्योंकि प्रकृति की ओर से मानव जाति को उपहार के रूप में मिली जल जो है असीमित और मुफ्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जल का उचित उपयोग करें। विश्व जल संसाधनों में तेजी से कमी हो रही है, सभी लोग जानते हैं।
1: जी बिल्कुल, ड्रिप सिंचाई के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जिस तरीके से ये जल की जो कमी हो रही है उस सिचुएशन में, उस समय में हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली ही अपनाना चाहिए। इससे बहुत जल्दी सिंचाई होगी और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी। डॉक्टर साहब, और भी अगर विशेषताओं की बात करें तो थोड़ी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे।
3: ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय में और मजदूरी में जो खर्च होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। लंबे समय में आप देखेंगे तो जड़ क्षेत्र यानी कि जहाँ पर मिट्टी का पौधे का जड़ है में पानी सदैव जितना जरूरी है पौधे को उतना बना रहता है। जमीन में हवा या जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि बहुत ही तेजी से और एक समान रूप से होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पौधा बहुत आगे बढ़ गया, ऊंचा चला गया और एक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी पौधे आपको देख के ही लग जाएगा एक समान है और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर आप पानी दे सकते हैं और इसका सबसे बड़ा रूल है कि पानी को बहुत ही कम स्पीड, कम गति से दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 लीटर से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पानी को इसमें छोड़ते हैं।
1: अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएं हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की, और लाभ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
3: ड्रिप सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता। यानी कि टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन हमको जरूरी मात्रा में पानी देना है, उससे उन पर तनाव नहीं रहता है, ठीक है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है।
1: जी।
3: टपक सिंचाई से फल है, सब्जी है और कुछ अन्य फसलों के उत्पादन में देखा गया है कि 20-50% तक की बढ़ोतरी संभव है। दूसरा, पानी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी दक्षता जो है पानी को लगाने की वो 80-90% है, और इससे हम प्रैक्टिकली पाया गया है कि 30-60% तक पानी जो है ना, जो हम लोग जनरल इरिगेशन करते हैं, जनरल सिंचाई करते हैं, उसकी तुलना में बचा सकते हैं।
1: अच्छा।
3: तो आज के डेट में ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है,
1: बिल्कुल,
3: और कितना जरूरी है। फिर है जमीन, आपका अगर उबड़ खाबड़ जमीन है या लवण वाला है, क्षारयुक्त है, बंजर जमीन है, शुष्क जमीन है, पानी का कम रिसाव हो रहा है आपकी ज़मीन से, यानी कि नीचे पत्थर वगैरह है, या बहुत कम वर्षा वाला एरिया है, समुद्र तटीय ज़मीन हो, कैसा भी ज़मीन हो, आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो जनरल इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन जिसको बोला जाता है, सतही सिंचाई विधि, वो नहीं कर सकते हैं। फिर है रासायनिक खाद। हम जो सतही विधि से सिंचाई करते हैं उसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि पौधे तेजी से बढ़ें, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में हम पानी के साथ ही रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिंचाई के साथ साथ हम फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर भी एक ही साथ दोनों डाल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा समय का भी बचत होता है और साथ ही साथ हमारे पौधे के लिए भी वो बहुत ही अच्छा होता है।
1: बिल्कुल।
3: अगला है खरपतवार। अब सब किसान बंधु सभी जानते हैं कि जैसे ही हम सरफेस इरिगेशन या सतही सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत में हर एक जगह पानी पहुंचता है। अब जहां जहां पानी पहुंचेगा खरपतवार भी उगेगा ही उगेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या है, हम चूंकि पौधे के जड़ के पास पानी देते हैं, इसकी वजह से खरपतवार उगेगा कहाँ, जहाँ पे पानी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में खरपतवार बनता है ड्रिप सिंचाई में, तो खरपतवार को हम बहुत हद तक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल में कीट और रोग का प्रभाव है तो टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में टपक विधि भी कहा जाता है। इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में ऑब्वियस है कि तब थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर टपक सिंचाई में होने वाला खर्च जो है और कार्य क्षमता इसकी जो है, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति उपयोग के लिए आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा खर्च लगे, लेकिन आप एक बार जब लगा देते हैं तो सालों साल चलता रहता है, ठीक है। और कार्य क्षमता ऐसी है कि आप एक जगह बैठे बैठे आप पूरे खेत की सिंचाई को प्रबंध कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हैं जो मुख्य लाभ हैं।
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे लाभ हैं जिस तरह आपने बताया, जैसे कि फर्टिगेशन के साथ साथ आप इस सिंचाई को कर सकते हैं, और अगर खरपतवार को आपको ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना है तो आप, क्योंकि ये जो सिंचाई है वो पौधों के जड़ में ही पानी देती हैं, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे लाभ हैं इसके। और डॉक्टर साहब, अगर घटक की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं?
3: ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं, जैसे कि नंबर वन है हेडर असेंबली,

0: फिर फिल्टर्स होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन बेस्ड हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, स्क्रीन फिल्टर हो सकते हैं, यानी किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें से फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। रसायन और खाद देने का साधन होता है वेंचुरी कहते हैं, फर्टिलाइजर टैंक होता है, ये जो फर्टिगेशन सिस्टम में यूज होता है यही एक वेंचुरी होता है और एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। इसके अलावा पानी को लाने के लिए स्रोत से आपके खेत तक वहाँ मेन लाइन का प्रयोग होता है, फिर मेन लाइन को हम फिर एक अलग दूसरे पाइप से जोड़ते हैं जो कि सब मेन पाइप कहा जाता है। ठीक है, सब मेन पाइप के बाद आपका वाल्व होते हैं, लैटरल लाइन लगते हैं सब मेन पाइप में, फिर बहुत सारे इमिटर्स होते हैं और इमिटर्स भी बहुत तरीके के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन है, इनलाइन है, मिनी स्प्रिंकलर्स कहते हैं, कुछ जेट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले था हेडर असेंबली। हेडर असेंबली मतलब बाईपास या नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि पानी एक बार उधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, एयर रिलीज वाल्व, ये सब यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ जो हैं वो हेडर असेंबली में आते हैं। फिर आता है फिल्टर। चूँकि हम इसमें नोजल्स को यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पानी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल, बालू वगैरह, कण, कोई भी दूसरा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नोजल है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें जाके फंस जाएगा, जिससे कि पानी हमारा निकलेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम साफ़ पानी को यूज करें। साफ़ पानी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, जब हम कुएं से या किसी स्रोत से पानी लेंगे तो उस पानी को हम फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद ही हम अपने मेन लाइन में छोड़ेंगे। तो फिल्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोसाइक्लोन टाइप फिल्टर हो सकता है, सैंड एंड स्क्रीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र को जो है ना बंद होने की संभावना रहती है, और इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर को यूज कर सकते हैं, सैंड फिल्टर या सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर या फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर हैं हमारे। अब सैंड फिल्टर के बारे में बोलें तो सैंड फिल्टर होता है, ऐसा होता है कि एक बक्सा टाइप का है, समझिए उसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन को खोलकर बैकवॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर ना हाथ से उसमें बहुत सारा रेत जमा हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिल्टर से आने वाला पानी जो है ढक्कन से ऊपर ना निकलने दें, ये भी ध्यान रखना है। हाथ से रेत साफ करते समय अंदर के काले रंग के फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऐसा नहीं हो कि बार बार टच करके उसको डिस्टर्ब करें, अदरवाइज वो टूट जाएगा। इससे रेत के स्क्रीन फिल्टर में जाने की आशंका बढ़ जाएगी और आपका फिल्टर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एक स्क्रीन फिल्टर होता है। सैंड फिल्टर अगर नहीं छान पाए आपके पानी की गंदगी को, वैसे केस में आपको स्क्रीन फिल्टर की तरफ जाना है। ठीक है, तो सैंड फिल्टर द्वारा नहीं छनने वाला जो बारीक कचरा होता है उसको हम स्क्रीन फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसके बाद रसायन और खाद देने का साधन जो कि फर्टिगेशन बेसिकली कहा जाता है। तो टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी, फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी क्या है, तो ये एक दबाव के अंतर पर चलने वाला यंत्र है और रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन जो है ना दोनों इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं पौधों के पास, और इस पद्धति से तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं और इसके द्वारा 60 से 70 लीटर प्रति घंटे की गति से खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक घंटे में 60 से 70 लीटर फर्टिलाइजर का घोल को हम अपने खेत में डाल सकते हैं। और डालेंगे कहाँ, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए, जो टैंक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर टैंक, यानी कि उसी टैंक से निकालेंगे ना खाद को और वो पाइप के थ्रू भेजेंगे नोजल के पास, ठीक है, या ड्रिपर्स के पास। तो इस टैंक में तरल खाद भरकर दाब नियंत्रण से रासायनिक द्रव्य और खाद तुरंत संयंत्र के अंदर छोड़े जा सकते हैं, यानी कि एक टैंक है जिसमें हमारा खाद का घोल बना रहता है, उस घोल से हम वेंचुरी के माध्यम से हम उस खाद को भेजते हैं मेन लाइन में, मेन लाइन से हो जाता है सब मेन में, सब मेन से जाएगा वो लैटरल में, और लैटरल से जाएगा आपके ड्रिपर्स या नोजल, जो समझ किसान, ठीक है, तो ड्रिपर्स में जाएगा और वहाँ से पानी के साथ साथ आपका रसायन भी निकलता रहेगा। इसके बाद हमने बार बार टर्म यूज किया मेन लाइन। तो मेन लाइन है यह पंप से सब मेन तक, यानी कि पानी के स्रोत से सब मेन पाइप तक जोड़ने का एक साधन है, पानी पहुंचाने के लिए उपयोगी है। अब सब मेन क्या है, तो ये मेन को लैटरल पाइप से जोड़ता है। लैटरल पाइप सबसे पतले होते हैं, इनसे थोड़ा मोटा होगा आपका सब मेन, यानी कि इनका डायमीटर या व्यास ज़्यादा होगा, और सब मेन से ज़्यादा व्यास होता है मेन लाइन का, ठीक है। और वो जाएगा लैटरल के पास फाइनली। लैटरल क्या होता है, लैटरल प्लास्टिक के पतले ट्यूब्स होते हैं, उनको पॉली ट्यूब भी कहते हैं। सब मेन का पानी पॉली ट्यूब द्वारा पूरे खेत में हम पहुंचा सकते हैं पौधों के पास। हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार पॉली ट्यूब के ऊपर हम ड्रिपर लगा देंगे। और लैटरल जो होते हैं ना, वो LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन से बने होते हैं। अब जब लैटरल आ गया, तो लैटरल के ऊपर अब हमको इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इमीटर्स और ड्रिपर्स क्या हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है ड्रिप सिंचाई का। ऑनलाइन हो इनलाइन ड्रिपर्स का प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान ऐसे ही कुछ भी लगा लिया, उसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा पौधा लगाया है, उस पौधे की डेली की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसके खेत का जो ड्रिप सिंचाई की विधि है उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जगह जगह हम वाल्व्स का यूज करते हैं, तो पानी के प्रवाह और दबाव को हमको नियंत्रित करना होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि पानी मेन लाइन से सब मेन में आएगा, सब मेन से लैटरल में जा ही नहीं रहा। जब वो दबाव से नहीं जाएगा तो ड्रिपर से पास ही नहीं होगा पानी, ठीक है। तो हमको बहुत सारे वाल्व्स का प्रयोग करते हैं। सब मेन के शुरू में एयर रिलीज वाल्व यूज करते हैं, या वैक्यूम रिलीज वाल्व बहुत ही जरूरी है लगाना। अन्यथा क्या होगा, पंप को हम जैसे ही बंद करेंगे, हवा के साथ साथ मिट्टी के कण भी अंदर खींच जाएंगे और वो सीधे चले जाएंगे आपके ड्रिपर्स के पास, और उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बंद कर देंगे। और जैसे ही बंद होगा तो आपके ड्रिप सिंचाई विधि प्रणाली से एक भी पानी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेगा। ना आप इरिगेशन कर सकते हैं, ना ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमीटर्स और ड्रिपर्स का रेगुलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप रेगुलर इसका देखभाल करते रहें, इसको चेक करना होता है
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं ड्रिप सिंचाई के घटकों की। और डॉक्टर साहब, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो हम संयंत्र यूज करते हैं, इसका यंत्र जो होता है, तो उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। तो कैसे कर सकते हैं उनकी अच्छी देखभाल?
0: सबसे पहले हरेक दिन पंप को शुरू करने के बाद क्या करना है कि संयंत्र के दबाव स्थिर होने पर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट होने पर, सैंड फिल्टर जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको बैक वॉशिंग करना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। और हाइड्रोसाइक्लोन जो है उसको हर एक दिन सफाई करने के बाद हर 5-6 घंटे, या पानी के गुणवत्ता, अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको सफाई करना पड़े। तो आपका पहला काम हो गया कि आप जो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, इसकी डेली सफाई कर रहे हैं। अगर आप सैंड फिल्टर के साथ साथ अगर आप दूसरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई करें, सुनिश्चित करें। फिर फिल्टर की सफाई होने के बाद हमको क्या करना है, हेडर असेंबली में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एयर रिलीज वाल्व होगा, बाईपास सिस्टम होगा। तो उन सबों को आप देख लें कि उचित दबाव पे वो काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खेत में निरीक्षण कर आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं किसी पाइप में टूट फूट तो नहीं हुआ है, या कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। अगर वो लीकेज हो गया है तो आप उसे ठीक कर लें, टूट फूट हुआ तो उसे ठीक कर लें। पाइप अगर कहीं मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है तो उसको तुरंत सीधा करें,
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई में आप सभी ड्रिपर्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलर, कि पानी हर एक से बराबर मात्रा में निकल रहा है, मतलब ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ड्रिपर को आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंस गया है या जो भी हुआ है तो उसको आपको रिपेयर करना है। फिर है टपक सिंचाई प्रणाली जो है, पूरा जब एक बार जब हम चला देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका ज़मीन जो है पूरे का पूरा एक तरीके से भीगा है कि नहीं, कहीं पे हो सकता है पानी गया हो, कहीं पे नहीं, यानी जहाँ पे नहीं गया है वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे पानी का जो ड्रिपर लगाए हैं हमने वो ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपका जो ड्रिपर्स हैं वो सही जगह पर लगे हैं कि नहीं, यानी कि पौधा है यहाँ पे और आपने कहीं 2 मीटर दूर कहीं पे लगा दिया तो उससे तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी चाहिए तो उसके जड़ के पास वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ लैटरल और इनलाइन का अंतिम छोर जो है ना, उसको खोलकर पानी को एक से दो मीटर मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, ताकि पाइप में जितनी भी गंदगी हो, ठीक है ना, लैटरल पाइप को बोल रहे हैं, जितनी भी गंदगियां हो सारी के सारे निकल जाए बाहर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हुई यंत्र की, और फर्टिगेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।
0: फर्टिगेशन दो शब्दों, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक, जिसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन, जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उर्वरक भी डालना है और सिंचाई का पानी भी डालना है। जब दोनों काम एक साथ होता है तो उसको हम लोग उर्वरकीकरण या फर्टिगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुँचाना, यही इसका काम है। ड्रिप सिंचाई में जिस प्रकार ड्रिपर के द्वारा बूंद बूंद करके जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई जल में मिश्रित करके उर्वरक को हम पौधे के जड़ के पास ड्रिपर के माध्यम से गिराते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक जो है देने की एक सर्वोत्तम और अति आधुनिक विधि है, और फर्टिगेशन को फसल एवं मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक और जल का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तकनीक के रूप में भी माना जाता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। फर्टिगेशन जल और पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा ही पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर जब भी जरूरत हो हम दे सकते हैं। फर्टिगेशन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की जड़ों के द्वारा उनका उपयोग बढ़ा देता है, यानी कि हम उर्वरक को हम पौधे के पास दे रहे हैं, ना कि पूरे फील्ड में फेंक रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम पौधे को जड़ के पास पानी दे रहे हैं तो पौधे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा ज़्यादातर, वहीं हम हर जगह पानी डाल देंगे तो पौधा तो उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। उसी तरीके से फर्टिलाइज़र अगर हम पूरे खेत में फेंक दें तो पौधा को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे फेंक दिया है उर्वरक वहाँ पे वो खरपतवार उगाएगा, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे के जड़ के पास देते हैं, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की एक विश्वसनीय और सुरक्षित विधि है, इससे पौधों की जड़ों को हानि पहुंचने का भय नहीं रहता है। साथ ही साथ फर्टिगेशन से जल और उर्वरक जो है पौधों के मध्य न पहुंचकर सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम से कम संख्या में लगते हैं।
1: तो ये कुछ लाभ हैं फर्टिगेशन के, और आपने जाना कि फर्टिगेशन क्या है। और अब बात करते हैं सतही सिंचाई की, साथ ही अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सतही सिंचाई विधि जो है इससे कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि।
0: सबसे पहला है जल की बचत। ड्रिप सिंचाई में हम पहले भी बोल चुके हैं कि 60% से लेके 70% तक की पानी की बचत की संभावना है सतही सिंचाई की तुलना में। सिंचाई का जल जो है सतह पर बहकर और ज़मीन में नीचे नहीं जाता है, जो कि सतही सिंचाई में होता है। जबकि सतही सिंचाई में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी सूरज की गर्मी में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, वो हमारा बर्बाद हो गया। कुछ पौधे जो है अपने जड़ों में ले पाते हैं, और मैक्सिमम पानी तो ऐसे ही रहता है, जो पौधे से कोई लेन देन नहीं है, और जो ज़्यादा पानी डाल दिया वो पौधे के जड़ के नीचे चला गया, ठीक है, तो वो पानी तो पौधे का किसी काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कम दक्षता के साथ हम लोग सतही सिंचाई करते हैं, जिससे कि जल की बचत जो है ड्रिप सिंचाई में बहुत ज़्यादा होती है
1: जी।
0: ठीक है, उसी तरीके से जल के उपयोग की दक्षता है, तो ड्रिप सिंचाई में ये पाया गया है कि हम 80-90% तक हम अगर सोर्स से पानी दे रहे हैं तो उपयोगी होगा पौधे के बढ़ोतरी में, जबकि सतही सिंचाई में सिर्फ 30-50% अगर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हो तब। फिर साथ ही साथ श्रम की बचत है। ड्रिप संयंत्र जो है उसको लगभग प्रतिदिन शुरू और बंद करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको क्या करना है, आपके पास एक बटन होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बस उसका जो फिल्टर है उसको आपको देख लेना है, एक बार पूरे सिस्टम को चला के देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कहीं खराबी है अथवा नहीं। हाँ, अगर खराबी है तब आपको लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, अथवा लेबर की बहुत ही नगण्य ज़रूरत है, जबकि सतही सिंचाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है श्रम की। साथ ही साथ खरपतवार की समस्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ड्रिप सिंचाई में चूंकि पानी पूरे खेत को नहीं भीगाता, इसलिए खरपतवार की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि सतही सिंचाई में पूरे खेत को हम भीगाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और उस पर खर्च भी हमारा ऑब्वियस है बढ़ेगा। फिर खारे जल का उपयोग, अगर हम ड्रिप सिंचाई यूज करते हैं तो

0: फायदा यह है कि अगर हम मेरे पास किसी भी मिट्टी हो, किसी भी तरीके की मिट्टी हो, हम सिंचाई वहाँ पे कर सकते हैं, हम पौधा मतलब वहाँ पे उगा सकते हैं। लेकिन सतही विधि में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचा रह सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो वहाँ पे पानी जाएगा नहीं, जो बहुत ज़्यादा नीचे होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पौधा हमारा ना नीचे जगह पे उगेगा ना ऊपर जगह। लेकिन ड्रिप में ऐसा नहीं है, चूँकि पाइपों से पानी जाते हैं और पौधे के पास ही जाके गिरना है उनको, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमारे में नहीं आता है। हम अगला देखेंगे जल का नियंत्रण। जल का नियंत्रण मतलब हम एक वाल्व से या बैठे बैठे एक स्विच से हम पूरे का पूरे सिस्टम का इरिगेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सतही सिंचाई में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उर्वरक उपयोग की दक्षता, जो कि फर्टिलाइजर होता है, वो बहुत ही महंगे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, ना कि वो हमारी वजह से वो खरपतवार बना दे, हमारे लिए एक अलग खर्चा बने, ठीक है। हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो उर्वरक उपयोग की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है सतही उपयोग की तुलना में। अगला प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आ रहा है अब हमारे यहाँ भी, भूक्षरण, यानी कि धीरे धीरे जो मिट्टी जो है कटता जाता है। अब आप अपने खेत पे ही बहुत सारा पानी डाल दीजिए और थोड़ा भी अगर खेत में स्लोप होगा तो पता चलेगा मिट्टी का एक लेयर बह के दूसरे के खेत में चला गया या फाइनली नदी वगैरह में चला गया, नाला में। लेकिन हम ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैदावार में बढ़ोतरी। जल्दी जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का जो है टेंशन एक होता है टर्म, वो नहीं रहता और पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से और अच्छे से होती है, ठीक है। और पैदावार हमारा 100% तक बढ़ सकता है ड्रिप इरिगेशन में, जबकि हमारा ये जो सतही विधि है उसमें जल का वितरण हम समान रूप से कर ही नहीं पाते हैं पूरे खेत में, उबड़ खाबड़ आने की वजह से, ठीक है। तो असमान वितरण होता है और उसकी वजह से, और साथ ही साथ सिंचाई में अधिक अंतराल भी हम लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी का जो है, मिट्टी में जो एक जलीय तनाव होता है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो पानी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है जितने उसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से हमारा पैदावार में कमी हो जाती है
1: जी। तो इस तरह श्रोताओं आपने जाना कि सतही सिंचाई विधि से कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि, और पूरी जानकारी आपको मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ायदा है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने में ही है। और आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो अगले दिन एक अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनना ना भूलें एफएम ग्रीन और साथ ही उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए,
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीत।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
5: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं, फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
1: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
2: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है।
1: जी,
2: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
2: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्णकुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्णकुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज की वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आई एम मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों

में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंकें, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है और लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी थी, लेकिन एन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन में, ये किसी बदले की कहानी नहीं है। वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियाँ किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर अपना परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी है और ये इतनी कमाल की कहानी है, वाकई आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज हुई फिल्म पिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बहुत ही कमाल की फिल्म। एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है, क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं। और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ज़रूर देखिए। और हम आगे बढ़ें तो द ग्रेट इंडियन किचन, और ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जो जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है।
ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप भौचक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना जरूरी होता है और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपके उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज हुई थी, थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। थप्पड़ 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़ लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। ये फिल्म हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कमबैक करती है और सारी चीज़ें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस मैं यहाँ देने बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज़ हुई थी फिल्म लापता लेडीज़। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी अपनी बेटी अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है, अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को समझने को मिलेगा। इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे तो ये फिल्में आप जरूर देखें। अभी के लिए
तो लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दे इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं अनु और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी के लिए खास विषय लेकर हाजिर है. और आज हम जो बात करने वाले हैं, जी हां, मौसम को देखते हुए हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की. और आप सभी जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को हमें ठंडा करती हैं और गर्मी से कहीं ना कहीं राहत भी दिलाती हैं. तो आज हम बात करेंगे गर्मा मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में. इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो सबसे पहले मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब और किस समय लगाना चाहिए कद्दू वर्गीय सब्जियों को.
1: गर्मियों के मौसम में उगाए जाने वाली जो सब्जियां हैं उसमें से कद्दू वर्गीय सब्जी जो है ये मुख्य होते हैं. और इन्हीं में से खीरा, नेनुआ, झिंगली, करेला, कदीमा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि ये सब जो वो सब्जी है ये प्रमुख है. और ये कद्दू वर्गीय सब्जी जो है ये क्षेत्र में सीधे बोया जाता है. और इन फसलों को साधारण तो जो है फरवरी के पहले सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह में बुआई किया जाता है. और अगर हम लोग ये फसल को ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो पॉली बैग में जनवरी के अंत में जो है इसको बुआई कर सकते हैं. और इससे जो है बीड़ा जल्दी तैयार हो जाता है और इनकी देख रेख भी अच्छी हो सकती है. फसल जल्दी तैयार होने से जो है अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. और हम लोग देख सकते हैं कि मार्च से ही जो है इनका फल निकलने लगता है. मार्च, अप्रैल, मई में जो है इनका काफ़ी अच्छा फलन होने लगता है. और फसल लगाने से पहले खेत की अच्छे से तैयारी होना ज़रूरी है. सर्वप्रथम तो हम लोग खेत की प्रारंभिक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं. उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं. और साथ साथ में जो जब अंत जुताई के समय आता है तो 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद खेत में मिलाते हैं. और अंतिम जुताई के समय पे अच्छे से पाटा चलाकर खेत को समतल बना लेते हैं.
0: अगर किस्मों की बात हम करें तो कौन कौन सी किस्में जो है वो अच्छी होंगी इसके लिए, वो बताएं.
1: अच्छे फसल के लिए हमेशा से अच्छे किस्मों का चयन करना बहुत आवश्यक होता है. तो खीरा के लिए उन्नत किस्मों में जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट, पॉइंट सेट, पूसा उदय, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा, यहीं पे खीरा के संकर किस्म पूसा संयोग या पंथ संकर खीरा एक लगा सकते हैं. लौकी में काशी गंगा, नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र ज्योति, पूसा नवीन, पूसा संदेश, पंजाब कोमल, राजेंद्र चमत्कार, पूसा समृद्धि लगा सकते हैं. लौकी के संकर में पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा हाइब्रिड 3, नरेंद्र संकर 4 लगा सकते हैं. कदीमा या कुम्हड़ा में जो है हम लोग काशी हरित, पूसा विशेष, पूसा विश्वास लगा सकते हैं. संकर में पूसा हाइब्रिड 1 लगा सकते हैं. पेठा में काशी धवल, काशी उज्जवल या पूसा उज्जवल को लगा सकते हैं. करेला के काशी उर्वशी, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, कल्याणपुर बारामासी, अर्का हरित, अर्का सुमित, अर्का सुजात लगा सकते हैं. करेला के संकर किस्म में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 लगा सकते हैं. आरा तुरई में पूसा नजदार, पूसा सदाबहार, सतपुरिया, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार लगा सकते हैं. घिया तुरई या नेनुआ में पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, राजेंद्र नेनुआ 1 एवं राजेंद्र नेनुआ 2 लगा सकते हैं. खरबूजा में काशी मधु, दुर्गापुरा मधु, हिसार मधुर, पंजाब सुनहरी, हरा मधु, पूसा सरबती, पूसा मधुरास, अर्का जीत, अर्का राजहंस लगा सकते हैं. इसके संकर में पूसा रसराज और पंजाब हाइब्रिड लगा सकते हैं. तरबूजा में जो है शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर और संकर में अर्का ज्योति और मधुमिलन लगा सकते हैं.
0: बीज दर की हम बात कर लें तो कितना बीज दर होना चाहिए.
1: लौकी के लिए हेक्टेयर प्रति जो है 4 से 5 किलो, करेला के लिए 5 से 6 किलो, खीरा के लिए 2 से 3 किलो, कोहड़ा के लिए 4 से 5 किलो, टिंडा के लिए 5 से 6 किलो, खरबूजा के लिए 3 से 4 किलो एवं तरबूज, तुरई और पेठा के लिए जो है 4 से 5 किलो हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है बीज. और हमको याद रखना पड़ेगा कि जो कद्दू वर्गीय सब्जी है इनके बीज लगाने से पहले अच्छे से फुला के लगाएंगे ताकि इनका अंकुरण अच्छे से होता है. और इनको हम जब मैदानी प्रक्षेत्र में लगाएंगे तब कद्दू में 2 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी रखेंगे, करेला में जो है 150 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, खीरा में 150 सेंटीमीटर

0: बहुत जरूरी है, और इसमें जो है बाढ़ सिंचाई या कुंड सिंचाई किया जाता है, और सिंचाई बहुत ही नियमित होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना होगा कि पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसमें जल जमाव भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, और पौधों के जो जड़ क्षेत्र है उसमें जल जमाव से सड़न आ सकती है।
1: अब हम बात करते हैं रोग और कीट की, तो कौन कौन से रोग और कीट का प्रकोप देखा जाता है इस पर?
0: कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत सारे रोग और कीट आते हैं, खास करके एंथ्रैक्नोज हम देख सकते हैं, जिसमें शुरू में पत्तियों में पीले गोल जलयुक्त धब्बे दिखाई देते हैं, और उसके बाद में ये धब्बे बड़ा हो जाता है और रोगी जो पत्तियां है वो सूख जाती है, फलों पर भी गोलाकार धब्बे होते हैं जो शुरू में हल्के रंग के होते हैं और उसके बाद में ज़्यादा भूरा हो जाता है, और ये देखते हैं कि जो हमारा जो पत्तियां है उसमें ज़्यादा होने पे जो है पत्ती पीली हो जाती है और पत्ते उसके बाद में भूरा होकर झुलस जाती है। इस रोग के निदान के हेतु में जो है हम लोग जो बीज लगाएंगे वो बीज को अच्छे से थायरम या बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो के बीज के दर से उपचारित करके हम बीज की बुवाई कर सकते हैं। अतः अगर फसल में आ जाती है तब मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर सकते हैं। पत्ती झुलसा रोग भी देख सकते हैं, उसमें जो है सर्वप्रथम पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और उसके बाद में गहरे रंग के बड़े आकार के वो धब्बे हो जाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो है हम लोग मैंकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। विल्ट भी एक रोग है जो इसमें आ सकती है, इसमें जो है पौधा मुरझा जाती है और सूख जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और कॉलर वाला जो कॉलर क्षेत्र है पौधे का वो सिकुड़ जाता है। पौधे के जड़ के भीतरी भाग जो है अगर हम उखाड़ के देखते हैं तो वो भूरा हो जाता है और पौध की वृद्धि रुक जाती है। ये लक्षण जो हम देखते हैं ये फूल आने पे और फल बनने के समय जब आता है उसी समय पे ज़्यादा दिखता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमको रोधी प्रजातियाँ लगानी होगी, इसके अलावा भी जो है भूमि सौर किरण से शोधन कर सकते हैं और इससे जो है बीमारी कम हो सकते हैं। इसके अलावा बुवाई करने से पहले बीज को अच्छे से कार्बेंडाजिम 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उपचारित करके हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में विषाणुजनित रोग भी होते हैं, क्यूकम्बर मोजाइक, और इसमें हम देखेंगे कि ग्रसित पौधों में नई पत्तियाँ बहुत छोटे हो जाते हैं, उसमें पीले धब्बे दिखते हैं, पत्तियाँ सिकुड़कर मुड़ जाती है तथा पीले मोजेक या मोटल जैसे दिखने लगते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो है बीज को उपचारित करके हम लगाएंगे और जो रोगी पौधा है उसको उखाड़कर अच्छे से जला देना होगा या उसको दूर कहीं पे दफना देना होगा, और जंगली आसपास के जंगली खरपतवार को भी नष्ट कर देना है, और जो कीड़ा इसको इस रोग की वाहक है, वाहक कीट को वाहक कीट की रोकथाम के लिए जो है हम लोगों को इमिडा क्लोरप्रिट 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके 1-1 सप्ताह के अंतराल पर खड़ी फसल पर छिड़काव करना होगा 2 से 3 बार, इससे जो है वाहक कीट नष्ट हो जाएंगे। और थ्रिप्स एफिड या माहू या फिर जो जैसिड है ये भी पत्तियों का रस चूसते हैं और विभिन्न जो है ये विषाणु के वाहक होते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग इमिडा क्लोरप्रिट या फिर थायोमिथोक्साम का छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गर्मा मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, और आप सभी को यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी आशा करते हैं, और इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी? हाँ। इसको तो 1-2 महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को 1-2 महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है।

0: समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
2: जी।
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है
2: जी। और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी। ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: जी
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबाल कर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी ना खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
5: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनके

0: विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। एल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। एल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो एल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक है जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बा।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: കൃഷി. नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका रेडियो स्टेशन, जी हाँ, एफएम ग्रीन. और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं. साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम मृदा कार्ड के महत्व के बारे में जानेंगे. मृदा कार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, किसान भाइयों के लिए कैसे लाभप्रद है, ये सारी जानकारी आज देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में है डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, ये मृदा कार्ड क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं.
1: नमस्कार श्रोतागण, मेरे किसान बहनों भाइयों, मैं सोनल, और आज का हमारा टॉपिक है मृदा कार्ड का क्या महत्व है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं किसान के परिप्रेक्ष्य में. तो पहले हम जानते हैं ये मृदा कार्ड है क्या. ये जो आपको मृदा कार्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी. इस कार्ड का उद्देश्य ही था कि जिससे किसानों को उनकी मिट्टी की, जो उनका भूमि है, भूमि की मिट्टी का गुणवत्ता का और उसके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके. और ये जो कार्ड है ना, मिट्टी के विभिन्न गुणों पे काम करता है, स्पेशली जो हमारा पूर्णतः मतलब 12 गुण पे ये आपको उसका विश्लेषण करके, जांच करके उस कार्ड पर इसका विवरण दिया रहता है. और ये कार्ड जो आया था, इसको भारत सरकार चलाया था, भारत सरकार की शुरुआत थी ये जो पहल थी भारत सरकार की थी, ये जो मृदा कार्ड हमारा है कि हर किसान के पास अपनी भूमि क्या है, उनकी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो. और इस भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत अगर बोला जाए तो कब स्टार्ट किया था, तो ये जो योजना है ना, 19 फरवरी 2015 को आपको शुरू की गई थी. राजस्थान का एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को. और इस कार्ड का मैंने पहले बताया कि इस कार्ड का क्यों आखिर किया गया, ये कार्ड की किसी किसान को अपनी मिट्टी, भूमि जो है उनकी मिट्टी है, उसकी मृदा स्वास्थ्य क्यों, मृदा स्वास्थ्य जानना क्यों जरूरी है. मृदा स्वास्थ्य जानेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना उनकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें पोषक तत्व अगर उपलब्ध है तो कितना उपलब्ध है, और कमी है तो किस लेवल पर कमी है, तभी तो वो अपने कौन सा फसल के लिए लगा सकते हैं, कौन सा फसल लगाना वहाँ सही रहेगा. अगर फसल लगा भी रहे हैं तो उसमें कितना हमें, और जो हम बाहरी जो हम खाद पदार्थ डालते हैं कितना डालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका उसका स्वास्थ्य जान पाएंगे, तभी तो उसमें उसका उसका हम निवारण कर पाएंगे ना. तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी.
0: इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें.
1: क्यों हुई, कैसे हुई, मैंने अभी जस्ट इसके डिटेल में ही बता दिया था क्यों किया गया था, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी है उसका उसका मिट्टी का गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकें, उसमें कितने हमारे पोषक तत्व, कितनी पोषक तत्व प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, तो कितना है हमें बाह्य खाद, जो हम ऊपरी लेवल से जो बाहर से डालते हैं खाद पदार्थ, कितना हमें डालना पड़ेगा, और डालना पड़े उसके अलावा कौन सा हमें फसल लगाना सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना सही रहेगा, कौन सा मिश्रित खेती के लिए वो हमारा भूमि सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त हमें वहीं से होती है, ये इसके लिए जगह हुआ. कब हुआ तो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत सरकार का योजना था जो 15 फरवरी 2015 को, सॉरी 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर, राजस्थान के सूरतगढ़ में. यही उद्देश्य लेके इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्ड का, हेल्थ कार्ड का यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में योजना को लागू किया गया था.
0: जी, मृदा कार्ड कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं.
1: अब हम आते हैं मृदा कार्ड का फायदा क्या है, ये कैसे काम करता, क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अब इसका फायदा क्या है, कैसे काम करता है, उसके जाने. ये मृदा जो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है ना, योजना के अंतर्गत जो सरकार है क्या करती है, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करती है. अब जो मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना होता है तो जाहिर सी बात इसको सरकार नहीं करेगी, जो हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, जो हमारा मृदा प्रयोगशाला होता है, उसकी मिट्टी के नमूने को वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्व में की विश्लेषण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्व है, अगर है तो कितनी उसमें कमी है तो उस कमी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है. और इस रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को ना मृदा कार्ड दिया जाता है, जिसमें उनको उनकी भूमि की जो मिट्टी है उसके उपयुक्त उर्वरक, अन्य आवश्यकता की विवरण दी रहती है. मतलब आपने आपने ये समझना है उसमें कि अगर हमने अपनी मिट्टी का नमूने भेजा तो उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, पोषक तत्व चेक की जाएगी। इसमें बेसिकली मैं बता रही हूँ, बहुत सारे चीज़ें हमें जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जाँच करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बट इसमें मुख्यतः 12 पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, 12 पैरामीटर्स में 12 मतलब स्पेशली हमें जो 12 होते हैं ना, 12 चीज़ों का ही जानकारी प्राप्त की जाती है। वो क्या क्या है? मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब वो आपको अम्लीय है कि क्षारीय है कि वो दोनों के बीच का है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। मिट्टी का जैविक कार्बन की मात्रा कितना है, मिट्टी में नेत्रजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी में पोटास कितना है। और जो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास है, ये तीनों क्या हमारा है, जिसको मिट्टी का हम बोलते हैं इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहने का मतलब हुआ प्रथम, जो हमारा प्रथम बोलते हैं प्रथम पोषक तत्व, उसकी जानकारी मिलती है। और द्वितीय जो पोषक तत्व जिसमें होता है उसमें होता है सल्फर की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। उस सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, वो 5 है। जिंक होता है, आयरन तत्व का है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है। और इसके अलावा जो हमारे सॉइल सैलिनिटी, जिसको जो हम क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारता कितनी है, जिसको हम ईसी बोलते हैं अपने एक साइंस के टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी क्षारता की भी जानकारी दी जाती है। तो टोटल जो पैरामीटर्स में 12 पैरामीटर्स पे काम कर गया है, और इस 12 पैरामीटर्स का मिट्टी के प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे ही किसानों को उस कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा आपको फसल के लिए सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना है, कौन सा आपको मिश्रित खेती में जाना है, उसका विवरण दिया जाता है और किसान को उसको समझाया जाता है। अब इसके फायदे क्या कर सकते हैं, ये तो फायदे ही मैंने बताया है, क्या क्या हो सकते हैं। फायदे का यही हो सकता है कि आपको सही समझ में, अगर आपको ने कार्ड पर्याप्त प्राप्त कर लिया है तो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि उर्वरक हम सही प्रयोग कैसे करें। किसान अपनी मिट्टी की जाँच के बाद अगर उनको पता चल गया कि हमारी ये है तो उर्वरक का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है, जिससे उनका फसल उत्पादन में या उत्पादकता में सुधार ला सके, ये पहला हमारा फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो सकता है लागत की कमी। बहुत सारे किसान हमारे क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, जितना मन करता है, सपोज उन्होंने धान की खेती करा था, जितना मन करता है वो जो हमारा एक बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में, वैज्ञानिक तरीके से खेती में एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हर फसल के लिए अलग अलग होता है, वो दिया जाता है। तो किसान अपने सूझबूझ से जो मन करता है जितना मन करता है डाल देते हैं। उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हमारी उपज आएगी, हमारी उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। किसी को, जैसे हम मनुष्य हैं, हम भोजन उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी हमारी सक्षम है जितना ग्रहण करने में। वैसे भी पौधे हैं, वो भी हमारे सजीव हैं, वो भी उतना ही ग्रहण करेंगे जितनी उनको आ सकता है। तो ज़्यादा डालने से भी क्या हो जाता है, आपको क्या है, आपके ही आपकी जो लागत लग रही है वो आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो बोलते हैं खेती करने में, खेती बाड़ी करने में। लोग आज क्यों खेती बाड़ी में पीछे आ रहे हैं, अरे लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन उतना होता नहीं, घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये नहीं होती है, जानकारी के अभाव में हम वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या, हम ना 21st सेंचुरी में हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज हो गई, हर चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, तब हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अति आवश्यक है। तो आपको लागत में कमी आएगी अगर आपने जान गया कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आपने उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो लागत में कमी आपकी आएगी, लागत आपका बचेगा। देन पर्यावरण संरक्षण होगा, मृदा कार्ड का आप मृदा कार्ड में सही उर्वरकों का चयन करेंगे तो पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगी। मिट्टी पानी, हमारा मिट्टी पानी का संरक्षण होगा, मिट्टी पानी में हमें ज़्यादा जितने पौधे को चाहिए उतने ही डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ से जो हमारे उर्वरक है वो बहकर पानी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा हमारा, मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा हमारा, और हमारा पानी भी संरक्षित रहेगा, फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जितना मात्रा में हमको उर्वरक डालना है उतना पौधे हमारे जो फसल हैं पोषक तत्व वहाँ से प्रदान किए, अच्छी उपज आ गई, अच्छी हमारी उत्पादकता बढ़ी, तो वृद्धि भी इससे फायदा होगी हमारी, फसल के उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगी हमारी।
0: मृदा कार्ड किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
1: अब बात आती है मृदा कार्ड जो हमारे है किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने बताया कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे किसान के लिए उपयोगी हो सकता है, तो जो मृदा कार्ड है सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयोगी है। पहली बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मृदा कार्ड हम कर रहे हैं, मृदा कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे हमारे जो किसान हैं, इसका तो उपयोग करने के लिए पहले तो क्या करने का, अगर जिनको किसान को अपने नहीं पता है कि उनको अपने मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है कैसे नहीं है, तो उनको पहले तो अपने एरिया में उनको पता करना पड़ेगा वहाँ किसी सेवा केंद्र है कि नहीं है, या मिट्टी का जांच घर है कि नहीं है। उस मिट्टी जांच घर में क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का जो उनको भूमि है, भूमि का मिट्टी है, उस नमूने भेजना पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर्स का पहले ही अपने प्रश्नों में उत्तर में दिया है वो अंकित है, उस चीज़ पर जाँच की जाती है, जाँच के सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव में लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या आपके भूमि में किसी की कमी है, अगर है तो किस मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम कोई चीज हमारा जो पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं ना, हम लैब में जब उसका विश्लेषण करते हैं, हम प्रयोगशाला में, उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। जैसे मैंने बोला हमारा जो मृदा प्रथम हमारा प्राथमिक हमारा पोषक तत्व है, जिसका हम बोलते हैं नेत्रजन बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं, पोटास होते हैं, इस सब का एक हमारे साइंटिफिक टर्म से एक लेवल दिया रहता है, जिसको बोलते हैं लो है कि मीडियम है कि हाई है। सारे का ऐसे ही रहता है, ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऐसे ही हमारा द्वितीय पोषक तत्व होता है। पीएच है तो पीएच का भी एक लेवल होता है जो 0 से 14 तक होता है, कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको मिट्टी का हमको सैलिनिटी टेस्ट करना होता है, उसका हम टेस्ट के लिए रहता है। सबका एक ऑर्गेनिक जो हम जैविक कार्बन बोलते हैं उसका भी एक लेवल होता है, लो मीडियम हाई के रेंज में है। वो सारे वहाँ पर क्या होते हैं, मेंशन किए रहते हैं। उस मेंशन करने के आधार पर ही कि आपको किस कैटेगरी में आपका मिट्टी का गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्व की जो है प्रेजेंट है, उपलब्ध है, किस कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, उसके बेसिस पे आपको किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सा वो फसल वहाँ का चयन करना सही रहेगा। फसल चुन रहे हैं और फसल चक्र में तो कौन सा फसल चक्र को अपनाना सही रहेगा, कौन सा आपको मिश्रित खेती के लिए सही रहेगा, या इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो कौन सा, इस सब चीज़ के लिए जानकारी सब चीज़ दी जाती है और किसानों को सलाह दिया जाता है कि आप टाइम टू टाइम आके जो भी आपका जहां से आपने कार्ड को प्राप्त किया है वहां आप उससे उसके टच में रहें, जो भी आपको सेवा केंद्र दिख रहा है वहां पर, अब स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं, जो मिट्टी का जांच केंद्र होता है, जो हमको बोलते हैं, जो हम किसी के भी के बोलते हैं, किसी विज्ञान केंद्र जो हमारा है, वहाँ से अपनी मिट्टी के नमूना का जांच कराइए, वहाँ से अपने देखिए क्या क्या है और टाइम टू टाइम से उनसे सलाह लेते रहिए, अब वैज्ञानिक तरीके से खेत कीजिए और अपने जो भी फसल को जितना चाहिए उतना ही उर्वरक का प्रयोग कीजिए, जिससे कोई चीज़ बह गई पानी वानी में ना जाए, जितने आपको पौधे को जरूरत उतनी पौधा वहाँ से प्रयोग करे, पोषक तत्व उपज अपनी उपज को उत्पादन को उत्पादकता को बढ़ाइए और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं हो, हम भी प्रदूषित नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके ये हमारे फायदे हैं। और बहुत सारे उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से हमें लागत में भी कमी आएगी, ये सब फायदे मैंने पहले ही लिस्ट आउट किया है, ये सारे हमारे इसके फायदे हो सकते हैं
0: जी। अब आगे बढ़ते हैं, जानना चाहिए कि मृदा कार्ड से जो जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं किसान, तो ये जानकारी प्राप्त करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
1: हाँ देखिए, बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं, बहनें हैं, उनको बहुत चीज़ों से अवगत हो चुके हैं, अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अवगत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसा जगह भी है ना जहाँ हमारे जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं, जो हमारे अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने हमारे प्राकृतिक चीज़ों पर उपलब्ध है, बहुत चीज़ें उनको जानकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, उस पर तो मैं नहीं कहूँगी, उनको अगर जिसको जहाँ जहाँ अभाव है, अगर उन्होंने मृदा कार्ड का प्रयोग कहीं से प्राप्त हो गया, मृदा कार्ड उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती, सूझबूझ नहीं है, चाहे सही से नहीं उनको बातों को बताया पहुँचाया गया है, तो बहुत चीज़ों को दिक्कत आ जाती है। वो जैसे हमारे क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कुछ हैं कि जैसे जानकारी की पहुँच है, कई बार ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं ना जो हमारे किसान हैं उनका मृदा कार्ड की जानकारी प्राप्त करने की बहुत कठिनाई आती है, वो जैसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि सेवा की पहुँच बहुत सीमित है, जहाँ हमारी कृषि सेवा है, जहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वो बेचारे हमारे जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बहुत टेक्निकल स्टाफ इस पर काम करें, वो वहाँ तक पहुँचने में असक्षम है, वो चाह रहे हैं पूरी अपनी तरह कोशिश है, बट अपनी बातों को अपनी चीज़ों को किसान तक नहीं पहुँचा रहे हैं, किसान भी इतने रिमोट एरिया पर रह रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने तो जो हमारे टेक्निकल स्टाफ्स हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं इसके लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे ना उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे एक दूसरे को बोलते हैं ना रीच, कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है, सबसे बड़ी गैप हो जाती है, जिसमें जानकारी की पहुँच नहीं, हमारी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जहाँ लोग अपने जो उनके अंदर जानकारी चाहिए, जो प्रश्न उनको रखना है वो प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, जिनको उत्तर देना है वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको जिसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप आ जा रही है। दूसरी हमारी क्या तकनीकी जो समझ का होता है अभाव पड़ जाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है कि जही से जो तकनीकी हमें समझ लेनी है, जैसे हमको उर्वरक का प्रयोग करना, अगर धान की खेती हम कर रहे हैं, धान की भी वैरायटी होती है, आपने लो लैंड में करा है, मिड लैंड में किया है या हाई लैंड में करा है, कौन से धान की वैरायटी प्रयोग करा है, वो आपने कौन से मौसम में किया है, और उसी की उर्वरक की बात करें तो उस उर्वरक कितना उर्वरक हमको प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, और प्रयोग कर लिया था कितने हमारे खाद अवशेष मिट्टी में ऑलरेडी बचे होंगे, जिस खाद का प्रयोग करके हम दूसरी फसल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसका अभाव में रहता है, जो हमारे किसान तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे कुछ किसान हमें जैसे मृदा कार्ड की उनको दी गई है, तकनीकी जानकारी सबने कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उससे उसके पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, जैसे मैंने ये सब चीज़ें ये दिक्कत आते हैं तकनीकी समझ की। तीसरी आपकी होती है सूचना का अनुपालन हो सकता है, कुछ किसान को मृदा कार्ड की सिफारिश के अनुसार कृषि तकनीकों को अपनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए

0: कैसे करेंगे, नहीं, जहां आपको जिससे फायदे हो रहे हैं ना, जहां आपकी फसल के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो आपको नई तकनीकों भी अपनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारे होते हैं सूचना का अनुपालन जरूर करना चाहिए, जो भी हमें जहां से सही चीज़ सीखने को मिले उसको हमको सीखना है। यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ें का हमें चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे मृदा कार्ड के बारे में और इसमें पूरी जानकारी आपने प्राप्त की कि किस प्रकार ये आपके लिए उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है और किन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिली। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जरूरी बात, आई एम शनिंद्र धनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और ऐसे में रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कल आपके कोर्स ASC 1:1 यानी कि सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की परीक्षा है और आपको सब कुछ क्विकली रिवाइज कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। हम लोग जिस कोर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, उस कोर्स का नाम है सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। उसकी कोर्स कोड है ASC 1:1। ये एक 3 credit की कोर्स है जिसमें कि 2 lectures फॉर थ्योरी और 1 lecture फॉर प्रैक्टिकल होता है। तो 2+1 के आधार पर वीक क्लासेस इस कोर्स में होते हैं। जैसे कि हमें पहले से ही पता है शेड्यूल के अनुसार कल ही इसकी मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन जनरली इसकी जो आपकी क्वेश्चन पैटर्न रहती है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स रहते हैं जो कि आपको 1-2 paragraph में लिखना होता है। तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जो पहले से आपकी क्लासिफिकेशन है मार्किंग सिस्टम की या क्वेश्चंस की, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसका जो मार्क है वो 0.5 मार्क्स की होते हैं। और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें 8 marks की शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 होती है उसमें शॉर्ट नोट्स राइट इन 1-2 paragraph या आंसर द फॉलोइंग, इसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो क्योंकि इसकी हमारी जो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है वो 1 hour की होती है, इसमें बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो लोग अपने समय को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से लिख लें। तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके

0: से सोच विचार करके ही लिखना है। हम लोग अगर इसकी सिलेबस को एक्सप्लेन करें या चर्चा करें इसके बारे में, तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स हमारी इस कोर्स का जो कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग भी सब जानते हैं। जैसे कि अगर मैं यूनिट्स का नाम बताऊं, तो इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स, जिसमें आता है आपकी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, रोल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सिस्टम और टू द प्लांट्स, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि नाइट्रोजन क्या है, फॉस्फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स लाइक मैक्रो, माइक्रो, मेजर, माइनर, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको भी आप लोग को अच्छे से स्टडी करनी है। और इस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, आपको इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट आती है, जिसका नाम फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी यूनिट है इस कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स की नाम ही है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर के सेक्शन में बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जिसको आप लोग को अच्छी तरह से डील करना है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स में हम लोग ने पहले पढ़ाया हुआ है कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। फर्टिलाइजर है क्या, मैन्योर्स क्या है, और डिफरेंट जो फर्टिलाइजर्स है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। जैसे क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड, लाइक प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स। तो इसके बेसिस में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, तो उसके आधार पे आपको सॉलिड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, या फिर मिक्स फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटासिक फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, इस तरह की बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो फर्टिलाइजर्स को आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इससे भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आए। उसके बाद एक यूनिट थी जो आपकी मैन्योर्स का यूनिट था, जिसमें कंपोस्ट क्या है, FIM क्या है, ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है। हम लोग फर्टिलाइजर्स तो प्रिपरेशन फैक्ट्री में होता है, बट कंपोस्ट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्या होती है, और कंपोस्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, चाहे फर्टिलाइजर हो या आपकी मैन्योर से, उस सब में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और स्पेसिफिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारे डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है। ये ना कि आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरत है, ये आपकी आने वाली एंड टर्म एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। और ये आपकी यहाँ की एग्ज़ाम के बाद भी, आपकी जो भी JRF या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इस आधार पे आप कंपोस्ट को भी या मैन्योर्स को भी उसी तरह से आपको स्टडी करना है। और मैन्योर्स में भी बहुत सारे मैन्योर्स हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आपने और एक यूनिट में पढ़ा होगा नैनो फर्टिलाइजर्स। सो नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, उसके उसको आप क्या समझते हैं, नैनो फर्टिलाइजर की साइज क्या होती है, यानी नैनो पार्टिकल की क्या साइज होती है, और नैनो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आप किस किस नैनो फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने नैनो यूरिया, नैनो DAP, और नैनो फर्टिलाइजर की आपकी रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों नैनो फर्टिलाइजर आज की टाइम में इतना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो भी आप डिटेलिंग में स्टडी कर सकते हैं। तो मेरी ये बच्चों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग अच्छे से जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं, आप उसकी नोट्स भी बना सकते हैं। आपको ऑलरेडी स्लाइड PPT मोड में आप लोग को पढ़ाया गया है, तो आपको स्टडी मटेरियल तो दिया जा चुका है। इसके बावजूद आप मैंने जैसे कि पहले से भी आप लोग को सजेस्ट किया हुआ है, आप बहुत सारे बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस हो या फिर हमारी सोसाइटी की जो बुक होती है उसको आप स्टडी कर सकते हो। दिलीप कुमार दास जी की जो बुक है आप भी उसको भी स्टडी कर सकते हो। लाइब्रेरी में भी आप बहुत सारे सॉइल साइंस की बुक्स रखे हुए हैं, उसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो इन अ नटसेल आपको सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जो पहले 4 यूनिट्स हैं आपको उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। और मैंने पहले ही बताया है अगर आप टाइम मैनेजमेंट या फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, लिख पाओगे उस समय सीमा के अंदर ही, तो आपकी नंबर कट सकते हैं। तो आप लोग जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, एमसीक्यू आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकती है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके लिखना है। क्योंकि एक बार आपने उसको लिख लिया आप ओवरराइटिंग नहीं कर सकते हो। ओवरराइटिंग पे हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपके मार्क्स को हम लोग आधा काटने को मजबूर हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको अच्छी तरह से वो याद आ जाए, तभी आप उसको लिखें। और जो हमारी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन पैटर्न का, जो शॉर्ट नोट्स या डिफरेंशिएट बिटवीन इस तरह की क्वेश्चन जो आती है आंसर द फॉलोइंग, उसको आप कोशिश कीजिए कि 1-2 पैराग्राफ्स में उसको अच्छी तरह से लिखें। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल व्हाट इज फर्टिलाइजर, आपको अगर पूछा जाएगा तो फर्टिलाइजर क्या है उसको आप 1 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ। तो वैसे ही अगर डिफ्रेंशिएट बिटवीन आया होगा तो जो भी पैरामीटर आपको दिया गया होगा तो उसके बारे में आपको पहले डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब समय के अंदर आपको कैसे करके वो 20 मार्क्स को कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 आवर है। तो क्वेश्चन को समझते समझते ही हम लोग को 10 मिनट्स ऐसे ही लग जाती है। तो आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करके अपने सोच विचार से जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई होगी, जो भी आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हुई होगी, इस कोर्स की सारे जो यूनिट्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। और जो मेरी क्लास की जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग क्लासेस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो जो यूनिट्स के बारे में मैंने डिटेल में बोला है उसको आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, या फिर ऐसे कुछ भी कंपोनेंट या कंपाउंड है जिसको आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की परसेंटेज को आप जरूर याद कर ले। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आकार में आए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर के बारे में बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है। तो आप अच्छी तरीके से इसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को याद करो। फॉर एग्जाम्पल यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। तो ऐसे बहुत फर्टिलाइजर है, चाहे यूरिया हो, SSP हो, DAP हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, कैन हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो, जिंक सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, मतलब बहुत ऐसी फर्टिलाइजर्स है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। और मैन्योर्स जैसे FIM हो, कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर, तो कितने परसेंटेज में इसमें NPK या बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और आपको जो भी स्टडी मटेरियल PPT के तौर पे दिया गया है या हैंडआउट्स दिए गए हैं, आपको अच्छी तरह से उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे वो उसी से ही जनरली आएंगे, बट स्टिल मेरा ये सजेशन रहेगा आप बुक्स को भी फॉलो कीजिए। जितना आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी बहुत सारे शुभकामनाएं हैं मेरे स्टूडेंट्स को। आप अच्छे से अपने कोर्स को प्रिपेयर कीजिए और आने वाली जो हमारी कल की मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें मैं ये विश करूंगी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और क्योंकि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है तो इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। अगर फुल मार्क्स 20 है तो कोशिश करो आप 20 से 20 ही लाओ, ताकि आपको ये आने वाली जो एंटर्म एग्जाम है उसमें अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी गया तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और स्टडी हार्ड एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों उम्मीद है कि आपके कल के एग्जाम के लिए ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए। तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं। यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना, तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना, तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है, यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर, जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना। मुगल कालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा, भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और ऐसे में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कल आपके कोर्स एएससी 1:1 यानी कि सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की परीक्षा है। और आपको सब कुछ क्विकली रिवाइज कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। हम लोग जिस कोर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, उस कोर्स का नाम है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। उसकी कोर्स कोड है एएससी 1:1। ये एक 3 क्रेडिट की कोर्स है जिसमें कि 2 लेक्चर्स पर थ्योरी और 1 लेक्चर पर प्रैक्टिकल होता है। तो 2+1 के आधार पर वीक क्लासेस इस कोर्स में होते हैं। जैसे कि हमें पहले से ही पता है, शेड्यूल के अनुसार कल ही इसकी मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन जनरली इसकी जो आपकी क्वेश्चन पैटर्न रहती है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, जो कि आपको 1-2 पैराग्राफ में लिखना होता है। तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जो पहले से आपकी क्लासिफिकेशन है मार्किंग सिस्टम की या क्वेश्चंस की, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसका जो मार्क है वो 0.5 मार्क्स की होते हैं, और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें 8 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी जो 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 होती है उसमें शॉर्ट नोट्स राइट इन 1-2 पैराग्राफ या आंसर द फॉलोइंग, इसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो क्योंकि इसकी हमारी जो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है वो 1 आवर की होती है, इसमें बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो लोग

नेट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स. तो इसके बेसिस में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो उसके आधार पे आपको सॉलिड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स या फिर मिक्स फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटासिक फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, इस तरह के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है. तो फर्टिलाइजर्स को आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज है. तो इससे भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आए. उसके बाद एक यूनिट थी जो आपकी मैन्यूर्स का यूनिट था, जिसमें कंपोस्ट क्या है, FIM क्या है, ग्रीन मैन्यूर्स क्या होते हैं, कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है. हम लोग फर्टिलाइजर्स तो प्रिपेरेशन फैक्ट्री में होता है, बट कंपोस्ट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्या होती है और कंपोस्ट की एग्जांपल्स क्या है. चाहे फर्टिलाइजर हो या आपकी मैन्योर से, उस सब में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं. और स्पेसिफिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारे डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है. ये ना कि आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरत है, ये आपकी आने वाली एंड टर्म एग्जामिनेशन में भी आ सकता है. और ये आपकी यहाँ की एग्ज़ाम के बाद भी आपकी जो भी JRF या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो इस आधार पे आप कंपोस्ट को भी या मैन्यूर्स को भी उसी तरह से आपको स्टडी करना है. और मैन्यूर्स में भी बहुत सारे मैन्यूर्स हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को भी आपको याद रखना है. और उसके बाद आपने और एक यूनिट में पढ़ा होगा नैनो फर्टिलाइजर्स. सो नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, उसको आप क्या समझते हैं, नैनो फर्टिलाइजर की साइज क्या होती है, यानी नैनो पार्टिकल की क्या साइज होती है, और नैनो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आप किस किस नैनो फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने नैनो यूरिया, नैनो DAP और नैनो फर्टिलाइजर की आपकी रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों नैनो फर्टिलाइजर आज की टाइम में इतना ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो भी आप डिटेलिंग में स्टडी कर सकते हैं. तो मेरी ये बच्चों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग अच्छे से जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं, आप उसकी नोट्स भी बना सकते हैं. आपको ऑलरेडी स्लाइड PPT मोड में आप लोग को पढ़ाया गया है, तो आपको स्टडी मटेरियल तो दिया जा चुका है. इसके बावजूद आप मैंने जैसे कि पहले से भी आप लोग को सजेस्ट किया हुआ है, आप बहुत सारे बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस हो या फिर हमारी सोसाइटी की जो बुक होती है उसको आप स्टडी कर सकते हो. दिलीप कुमार दास जी की जो बुक है, आप भी उसको भी स्टडी कर सकते हो. लाइब्रेरी में भी आप बहुत सारे सॉइल साइंस की बुक्स रखे हुए हैं, उसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो. तो इन अ नटसेल आपको सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जो पहले 4 यूनिट्स हैं, आपको उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है. और मैंने पहले ही बताया है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट या फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, लिख पाओगे उस समय सीमा के अंदर ही, तो आपकी नंबर कट सकते हैं. तो आप लोग जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, MCQ आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकती है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके लिखना है. क्योंकि एक बार आपने उसको लिख लिया, आप ओवरराइटिंग नहीं कर सकते हो. ओवरराइटिंग पे हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपके मार्क्स को हम लोग आधा काटने को मजबूर हो जाएंगे. तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको अच्छी तरह से वो याद आ जाए, तभी आप उसको लिखें. और जो हमारी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन पैटर्न का, जो शॉर्ट नोट्स या डिफरेंशिएट बिटवीन इस तरह की क्वेश्चन जो आती है, आंसर द फॉलोइंग, उसको आप कोशिश कीजिए कि 1-2 पैराग्राफ्स में उसको अच्छी तरह से लिखें. और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस क्वेश्चन को, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फर्टिलाइजर, आपको अगर पूछा जाएगा तो फर्टिलाइजर क्या है, उसको आप 1 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ. तो वैसे ही अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आया होगा, तो जो भी पैरामीटर आपको दिया गया होगा, तो उसके बारे में आपको पहले डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिख सकते हैं. तो इस तरह से आप मतलब समय के अंदर आपको कैसे करके वो 20 मार्क्स को कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 आवर है. तो क्वेश्चन को समझते समझते ही हम लोग को 10 मिनट्स ऐसे ही लग जाती है. तो आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करके

0: अपने सोच विचार से जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई होगी, जो भी आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हुई होगी, इस कोर्स कि सारे जो यूनिट्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। और जो मेरी क्लास की जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग क्लासेस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो जो यूनिट्स के बारे में मैंने डिटेल में बोला है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, या फिर ऐसे कुछ भी कंपोनेंट या कंपाउंड है जिसको आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की परसेंटेज को आप जरूर याद कर ले। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आकार में आए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर के बारे में बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है। तो आप अच्छी तरीके से इसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को याद करो। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। तो ऐसे बहुत फर्टिलाइजर है, चाहे यूरिया हो, SSP हो, DAP हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, कैन हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो, जिंक सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, मतलब बहुत ऐसी फर्टिलाइजर्स है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। और मैन्योर्स जैसे FIM हो, कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर, तो कितने परसेंटेज में इसमें NPK या बाकी न्यूट्रिएंट्स है, वो आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और आपको जो भी स्टडी मटेरियल PPT के तौर पे दिया गया है या हैंडआउट्स दिए गए हैं, आपको अच्छी तरह से उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो उसी से ही जनरली आएंगे। बट स्टिल मेरा ये सजेशन रहेगा, आप बुक्स को भी फॉलो कीजिए। जितना आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी बहुत सारे शुभकामनाएं हैं मेरे स्टूडेंट्स को। आप अच्छे से अपने कोर्स को प्रिपेयर कीजिए, और आने वाली जो हमारी कल की मिड टर्म एग्जामिनेशन है, उसमें मैं ये विश करूंगी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और क्योंकि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। अगर फुल मार्क्स 20 है, तो कोशिश करो आप 20 से 20 ही लाओ, ताकि आपको ये आने वाली जो एंड टर्म एग्जाम है, उसमें अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी गया तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और स्टडी हार्ड एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आपके कल के एग्जाम के लिए ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जाम दीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो

0: ಕೃಷಿ. हेलो नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आरजे अनु आप सभी के बीच एक अलग विषय, एक नए विषय को लेकर. वैसे किसान भाइयों, आपको बताएं तो जब आप एक फसल उगाते हैं तो ज़रूरी रहता है कि आप चेक करते हैं, आप देखते हैं कि उस ज़मीन की जो मिट्टी है वो कैसी है. तो आज मिट्टी के बारे में जानेंगे, यानी कि फसल उगाने के लिए मिट्टी जो सबसे ज़रूरी उसका कारक है उसके बारे में जानेंगे. तो आज जब बात आती है स्वास्थ्य की, यानी कि मृदा के स्वास्थ्य की और उसका प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे. तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान जी और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में. और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है.
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सारे किसान भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार करता हूँ. जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज मानी जाती है वो है मिट्टी, या फिर मृदा जिसे हम कहते हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति आई थी, और हरित क्रांति आने के बाद कई सारे फसलों को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, जिसके चलते उत्पाद बढ़ा. लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को अगर हमने बरकरार रखा, आज हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे अस्वस्थ होती जा रही है. इसका कारण ये है कि केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य है उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि फसल को किसी भी तरह का पोषक तत्व देने में मदद करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी हानि पहुंचती है, जिसकी वजह से मृदा का स्वास्थ्य धीरे धीरे घटता जा रहा है. तो इसलिए कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फसल उगाते हैं, खास करके अगर हम मृदा स्वास्थ्य की बात करें. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं और आने वाले दिनों में हमारे उत्पाद को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर उस प्रबंधन को हम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कहते हैं.
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिसकी वजह से मृदा की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी रहती है, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं.
1: अच्छा ठीक, सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ हो जाती है हमारे लिए अगर हमें किसी एक जानकारी को लेना है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी का नमूना संग्रह और उसका जांच, जिसे हम मिट्टी जांच कहते हैं प्रयोगशाला में. तो ये करने से क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी एक फसल को उगाने से पहले जिस जगह पे, जिस जमीन पे हम फसल उगाना चाहते हैं, उस जमीन से हमने मिट्टी के नमूने का संग्रह किया,
0: यानी सैंपल ले लिया,
1: जिसे हम सॉइल सैंपलिंग कहते हैं. और ज्यादातर किसान भाई इस बारे में जागरूक हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक वो ये करने से कतराते हैं. वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक ज्यादा काम हो जाता है. जैसे हमें कोई फसल उगाना है, उसमें उर्वरक का प्रयोग किया, हमें उत्पाद मिला. लेकिन किसान भाइयों से हम बार बार यही कहते हैं कि किसी भी फसल को उगाने से पहले आप वहाँ की मिट्टी को एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला में लेके जाइए, उसका जांच कराएं, उसमें कितने सारे पोषक तत्व हैं उनके जानकारी लें, उसके बाद ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें. तो सबसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मिट्टी की जाँच है. उसके बाद मिट्टी की जांच करने के बाद हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमारे जो मिट्टी में कितने पोषक तत्व कितने मात्रा में उपस्थित हैं.
0: अच्छा, आपने मिट्टी की जांच की बात कही, तो हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे कर सकते हैं हम.
1: देखिए, मिट्टी की जांच करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी का नमूना संग्रह.
0: अच्छा,
1: मिट्टी का नमूना संग्रह, जैसे कि आप जानते हैं, किसान भाइयों को भी ये पता होगा कि अगर हम कोई फसल उगाते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि फसल उगाते हैं, तो उसके लिए मिट्टी का नमूना हम सतह से, जो मिट्टी का सतह है उससे 15 सेंटीमीटर नीचे तक का एक गड्ढा खोद के वहां से हम मिट्टी का नमूना संग्रह करते हैं.
0: यानी कि अगर कोई जानकार नहीं होंगे, इस बात को नहीं जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो ऊपर के सतह के ही मिट्टी अगर ले जाते हैं तो उससे पता नहीं चलता है उसमें कौन कौन से तत्व अवेलेबल है.
1: ऊपर का जो सतह है

0: पूरी तरह से जो हमारे प्राकृतिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। तो जिसके चलते अगर कोई बारिश होती है, धूप होती है, ठंड का समय होता है, तो अगर हम सतह से मिट्टी को लेते हैं तो हमें उसकी जानकारी मिलेगी नहीं, क्योंकि जो पोषक तत्व तो होते हैं मिट्टी में
1: अंदर होते
0: वो
1: हैं।
0: मिट्टी के अंदर ही होते हैं, और ऊपर से अगर लेते हैं तो उनका कई तरह का लॉस से वो गुजरते हैं कि जितनी मात्रा में वो होनी चाहिए वो सतह में होती नहीं है। तो
1: अच्छा।
0: इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ फसलों के लिए, जैसे हम धान, गेहूं, मक्का इत्यादि दलहनी फसल इत्यादि की बात करें, तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर तक का मिट्टी का नमूना लेते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम किसी बड़े पेड़ों के लिए, जैसे कि आम का पेड़ है, बड़ा पौधा है,
1: हाँ।
0: तो उनके लिए नमूना संग्रह का जो डेप्थ है, मतलब जब हम जमीन से नीचे जाने की बात करते हैं, वो 60 से 90 या फिर 1 मीटर तक का गड्ढा करके हमें वहां से मिट्टी का नमूना लेना पड़ता है। इसका कारण सिर्फ ये है कि बड़े पौधों में उनके जो जड़ें होती हैं वो ज्यादा गहराई तक जाती हैं, तो जहां तक जड़ पहुंचती है वहां की मिट्टी में अगर हमें सूक्ष्म पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक इत्यादि का अगर हमें जानकारी चाहिए, तो जहां तक उनकी जड़ें जाती हैं वहां से हमें मिट्टी के नमूने का संग्रह करना होता है। और अलग से अगर किसी किसान भाई को इस बारे में अगर कोई जानकारी भी चाहिए होगा, तो वो विश्वविद्यालय से संपर्क करके, यहाँ के वैज्ञानिक से बात करके वो इसकी जानकारी ले सकते हैं कि मिट्टी का नमूना किस तरह से लिया जा सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तो बात हो गई कि मिट्टी की जांच की, लेकिन हमारे किसान भाई ये कैसे पहचाने, अगर किसी मिट्टी की जांच करवाते हैं तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये मिट्टी उनके पेड़ों के लिए यानी कि उनके पौधों को लगाने के लायक नहीं है या फिर उनके फसलों के लगाने के लायक नहीं है वहाँ पर?
0: जी देखिए, हम जब भी किसी मिट्टी के नमूने का संग्रह करते हैं, उसकी जांच करते हैं, जांच के बाद हमें इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि वो जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, कई और ऐसे घटक हैं जैसे पीएच का मान, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैविक कार्बन, जो एक फसल को अच्छी तरह उगाने में मदद करती हैं, उनकी मात्रा मिट्टी में कितनी है, इसकी जानकारी हमें मिट्टी जांच के बाद मिल जाती है। जब हमें उसकी जानकारी मिल जाती है, उसके बाद हर एक फसल का, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, कोई भी फसल हो, सबकी एक पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा है। तो उसी चीज को देखते हुए मिट्टी जांच के बाद हमें जो उसका सैंपल का जो कंटेंट मिलता है, जो उसका मतलब मात्रा मिलती है किसी भी पोषक तत्व की, उसी के बिना पे हमें पता चल जाता है कि वो पोषक तत्व उस मिट्टी में ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, और उसे कितनी मात्रा में हमें देनी है वो फसल को उगाने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो हैं अपनी ज़मीन यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं?
0: ठीक, जैसे कि हमने अभी बात की मिट्टी जांच की, तो मिट्टी जांच के बाद एक बार जब हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि किस पोषक तत्व तो को हमें कितनी मात्रा में डालनी है, उसके बाद हमें उसका प्रबंधन करना होता है। जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर हम किसी भी, जैसे हम अगर अपनी ही स्वास्थ्य की बात करें, तो हम सिर्फ दवाइयों पे जिंदा नहीं है।
1: जी जी
0: ठीक है, हमें अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ लेने की जरूरत पड़ती है जो पौष्टिक होती है और हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करती है। ठीक उसी तरह से मृदा का स्वास्थ्य है, जैसे कि काफी लोगों को ये लगता होगा कि मृदा तो निर्जीव है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे वैज्ञानिक हैं सभी इस बात से राजी होंगे कि मृदा निर्जीव नहीं, एक जीवित वस्तु है। उसका कारण यह है कि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से सारे पोषक तत्व जो पौधों तक पहुंच पाती है, तो उनके वजह से ही हम मृदा को जीवित मानते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अगर मृदा को हमें जीवित रखना है, तो उन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं को हमें जिंदा रखना है जो
1: अच्छा
0: हमारे फसलों को और अच्छा बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि हमारे किसान भाई लगातार अगर एक जमीन पर फसलें उगाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जमीन की जो उर्वरा क्षमता है वो कम होती जाती है,
0: जी जी
1: तो उस समय में हमारे किसान भाइयों को क्या करना
0: इसी
1: चाहिए?
0: बात पे हम आते हैं। हम सबसे पहले एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा, जैसे अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो एक चीज जो सबसे प्रमुख है जो हमारे किसान भाई ज्यादातर करते हैं, वो है केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं।
1: हाँ।
0: वो भी सीमित रह जाते हैं नाइट्रोजन तक, ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस तक, कई लोग पोटेशियम डालते नहीं है। तो इस चीज को करने से क्या होता है, जो हमारी अनुशंसित मात्रा है किसी फसल को उगाने के लिए, अगर उतनी मात्रा में हम पोषक तत्व, हर एक पोषक तत्व को नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उनमें एक बैलेंस नहीं रहता, जिसके चलते एक पोषक तत्व ज्यादा हो जाता है, दूसरी पोषक तत्व कम हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, धीरे धीरे हमारा उत्पाद जो है फसल का वो घटता जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही हम ये कहते हैं कि सिर्फ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, उसके साथ साथ
1: जैविक
0: खाद, जैव उर्वरक जिसे हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं,
1: वर्मी कंपोस्ट
0: वगैरह जितने भी जैव पदार्थ हैं, उनका संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक के साथ ही प्रयोग करें, जिसे हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं।
1: कहने का मतलब है कि हमारे किसान भाई सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें। अगर वो करते भी हैं तो कम मात्रा में करें और जैविक खादों का इस्तेमाल ज्यादा करें,
0: कम मात्रा में या फिर जो अनुशंसित मात्रा है। जैसे अगर हम वो किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे तो उनको पता चल जाए कि उनके मिट्टी के लिए, उनके इलाके में जो मिट्टी है उसके लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, उससे ज्यादा वो ना डालें और उसके साथ साथ वो जैव पदार्थों का इस्तेमाल करें। इसके लिए कई किसान भाइयों से हमारी बात भी हुए जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गाय उतनी होती नहीं है, जिसके चलते हमें गोबर की खाद उतनी मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम उनको और भी चीजें हैं जो कहते हैं कि आप अगर वो नहीं कर सकते हैं, कुछ और चीजें करें, जैसे फसल रोपने से पहले ढैंचा का खेती कर सकते हैं। ढैंचा लगाने से भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, उसके साथ साथ जो फसल अवशेष होते हैं, पिछले फसल को पूरी तरह से ना काट के नीचे का जो उसका अवशेष है उसको मिट्टी में मिला के अगले खेत को, अगले फसल को लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी वो बिना गोबर के खाद के जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो चाहे राइजोबियम हो जो ज्यादातर दलहनी फसलों के लिए काम में आते हैं, एजोटोबैक्टर हो, एजोस्पाइरिलम हो, जिनकी सारी जानकारी वो विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, इन सब चीजों का प्रयोग करके वो रासायनिक उर्वरकों के साथ उनका संतुलित मात्रा में प्रयोग करके मृदा स्वास्थ्य को बजाय रख सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी, लेकिन अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: हम हमारे किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहेंगे कि क्योंकि वो लोग पहले से ही खेती से जुड़े हुए हैं, तो कई सारी जानकारी उनके पास पहले से है, तो उनको बस एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि उनको थोड़ा जागरूक होना होगा अपने फसल और अपने मिट्टी को लेकर।
1: अच्छा।
0: जैसे बार बार उसी फसल को उसी जमीन पर ना लगाएं, उसका विविधीकरण करें। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक जगह पे धान लगा रहे हैं खरीफ में, तो रबी में कोई और फसल लें।
1: अच्छा।
0: जो कि अच्छा होगा वो अगर
1: लगातार एक किस्म की फसलें नहीं लगा रही है।
0: लगातार एक किस्म की फसल लेने से कई सारी चीजें होती है, वो चाहे मृदा का जो पोषक तत्व है वो घट जाती है, और अलग अलग चीजें जैसे उसमें रोग ज्यादा लगते हैं, उनमें कीड़े ज्यादा लग जाते हैं, तो ये सारी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम उनसे कहेंगे कि एक ही फसल ना लगाएं, उसको अलग अलग फसल बदल बदल के लगाएं, और उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का नहीं, उसका संतुलित मात्रा में जैव पदार्थों का प्रयोग करें, जिसके चलते कि मृदा स्वास्थ्य को वो अच्छा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जो उपज वो अभी ले रहे हैं उससे ज्यादा उपज ले सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मृदा को बंजर होने से बचा सकते हैं, उनके पौष्टिक तत्वों का आप जो है परीक्षण कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सहायता से आप अपनी मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, और बस आप सभी से गुजारिश है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप जानकारी रखें, और हाँ, जानकारी रखने के अलावा आप जो सलाह यहाँ पर दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, आप उन्हें अपनाएं, यानी कि आप जो खेती करते हैं आप उन्हें उसमें सम्मिलित करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी, या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उससे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े। ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले, बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है बहन है बच्ची है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: हेलो
1: नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है, लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
6: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है। क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है, और अब ज़रूरी होता है कि हम जानें कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
6: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी NGO के द्वारा भी और कम्फर्ट के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें कि श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का, जिस नस्ल का, जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसेमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AMPM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर, जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि गर्भ जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24-26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से, या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें, तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीक़े से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का, कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं, और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है, ये पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावा भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
6: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है, उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
6: और दूसरी चीज है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे जरूरी है समय, और तीसरी चीज है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो कैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर, हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5-7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें, ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी, जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा, उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर होस्टिन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्ट्रोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको, अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं?
6: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, NGO के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी, ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी NGO के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है। दूसरी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर इसे एक रोजगार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। कृषि

0: और जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें,